0: ऑफ छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा आ रहा है आर्थिक तूफान, जनता को लगने वाला है झटका, एक्शन लेने की जगह प्रधानमंत्री गए विदेश। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, गई मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। और आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। प्रधानमंत्री मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक्स के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। यह पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है, हालांकि विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।
1: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
2: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है, पुख्ता कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री है वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं। और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
1: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया और ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
4: सर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है, सर विपक्ष को समझना चाहिए क्या?
3: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
1: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
5: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
1: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
6: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके, वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
1: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरि झिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
7: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी पीछे रखी जाती है, एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी भी चलती है। मैंने तो पुलिस को तो नहीं कहा, मैं तो कभी लेता ही नहीं पुलिस प्रोटेक्शन, लेकिन हमारे कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने जो साथ में जो गाड़ियां चलती है वो भी बंद कर दी है। और ईवी का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि वो ईवी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, तो बहुत सारे मंत्रियों ने, एमएलएज है, वो ईवी गाड़ी उसका यूज कर रहे हैं।
1: वहीं अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी ई रिक्शे से सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर की हैं। हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में इसी ई रिक्शे से पहुंची थी। हालांकि दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष बीजेपी नेताओं की पेट्रोल बचाने वाली मुहिम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा है।
2: मोदी के अपील को कहीं ना कहीं एक प्रतिसाद देते हुए महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीएम बनने के बाद एक हिंदुत्व के कड़े फैसले ले रहे हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का भी ऑर्डर दे दिया गया है।
8: राष्ट्रवादी मुस्लिम अपनाराओ बोले सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनका साथ।
9: शुभेंदु सरकार का फैसला, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
8: बंद करो, नो नीड संकलगु मोर्चा।
9: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
10: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
9: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
11: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
9: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है सरकार का काम? इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
9: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
11: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
9: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिस कर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
11: आप लोग पार्क सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
12: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
9: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
9: आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान से सियासत में शोले भड़क चुके हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
13: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
9: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
2: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पर कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
9: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
14: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
9: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई है। ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन इसे एंड मौके पर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई थी या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।
9: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला? क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और ना ही इसके फिर से शुरू ना होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है, यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है। अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी।
15: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but
16: possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
9: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे.
16: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
17: Yes.
16: We were going to be striking very, it would have been happening right now.
9: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है. ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है. अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है. अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है. अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी. पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे. दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा. तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा. चौथी शर्त, ईरान लेबनन सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे. आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी.
16: You know how it is to negotiate with a country where you're treating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
9: लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने पेंटागन के कहने पर युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है. उसके मुताबिक पेंटागन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी निगरानी की ताकत बढ़ा ली है. इस समय वो अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस पर भी ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर रख सकता है. इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान पलटवार करते हुए अमेरिकी विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसके एयर डिफेंस को सटीक निशाना बना सकता है. जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज का दावा है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिकी जेट आसानी से मार गिराए जा सकते थे. ईरानी न्यूज एजेंसी ने भी पेंटागन का हवाला दिया है. उसके मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही उसे ईरान के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है. दावा है कि ईरान की चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया. अगर अब हमला होता भी है तो पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया जाएगा और इसके लिए अमेरिका और इसराइल को रणनीति बनानी होगी और इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा. इस वजह से ही ट्रंप ने हमला कुछ दिनों के लिए टाल दिया है. ईरानी जनरल मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर निशाना साधा है. ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं. ऐसा करके वो ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. उन्हें ये गलत फहमी है कि वो ईरानी लोगों और अधिकारियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं. ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान की लोहे की मुट्ठी दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी. ईरान का दावा ये भी है कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा. अगर अमेरिका का हमला हुआ तो उसने पलटवार का पूरा प्लान तैयार कर रखा है. ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले फिर से शुरू हुए तो कम समय तक चलने वाला लेकिन बहुत तेज युद्ध हो सकता है. दावा ये भी है कि ईरान इसराइल और आसपास के इलाकों में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलों की जबरदस्त बौछार करने की तैयारी कर रहा है. ईरान रोजाना दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें दाग सकता है. खाड़ी के तेल के कुएं, बंदरगाह और रिफाइनरियां इनके मुख्य निशाने बन सकते हैं. UAE, सऊदी अरब और कुवैत भी इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकते हैं. ईरान की राजधानी तेहरान में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों ने सेना और सरकार के समर्थन में कार रैली निकाली। रैली आजाद स्क्वायर पर आयोजित की गई, जहां जोड़ों ने शादी समारोह के साथ समर्थन प्रदर्शन किया। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
19: घर के झाड़ू से आपके पैसे रुपए पर असर पड़ सकता है? क्या घर में चाकू आपके संतान पर असर डाल सकता है? क्या कैंची हवा में चलाने पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं? घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर कैसा है असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
20: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
21: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
24: It's my music and it's my station.
23: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पोर्टल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी पोस्ट कर कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आज द्विपक्षीय मुलाकात। बंगाल में गरजा, शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर, हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर ध्वस्त, हल्ला बोल को तैयार ममता, आज प्रदर्शन। राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा डर फैलाने की जगह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। आज देशभर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की मांग। भीषण गर्मी में झुलसा पूरा हिंदुस्तान, यूपी में हालात सबसे बदतर, बांदा में पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 8 दिन जारी रहेगी गर्मी।

सभी का आप दिख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। पांच देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी इटली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर इटली की विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी उनका स्वागत करते नजर आए और आज इतावली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मिलेंगे। भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है, ऐसे में इटली यात्रा के दौरान चुनिंदा भारतीय और इतालवी सीईओ से मुलाकात का प्लान भी है। ये पीएम मोदी का तीसरा इटली दौरा है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। वहीं 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया है।

एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री ने पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया और ये सेल्फी खुद जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट की है। मेलोनी ने पोस्ट की है ये सेल्फी और मोदी आपका स्वागत है ये उन्होंने लिखा। तो पांच देशों की यात्रा पर पीएम मोदी हैं जिसमें अब वो इटली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। तो भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी अब नई ऊंचाइयों पर है। ये जो यात्रा है काफी अहम मानी जा रही है। जो यहाँ पर भारतीय मौजूद थे जब इटली पीएम मोदी पहुंचे तो वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और पीएम मोदी का अभिवादन उन्होंने किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इटली की तस्वीरें। और ये इटली पहुंचने के बाद वहां पर कला का प्रदर्शन पीएम मोदी के सामने किया गया। तो इटली दौरे पर पीएम मोदी हैं और आज द्विपक्षीय मुलाकात वहां होने वाली है। ऐसे में इटली में पीएम मोदी के स्वागत की पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी और ये पीएम मोदी के स्वागत के दौरान हुआ। वहां पर नृत्य के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन इटली में किया गया। भारत की ये झलक एक तरीके से दिखाई गई है। मोदी मोदी के नारे पूरे एयरपोर्ट पर गूंजते हुए नजर आए हैं।

तो इटली में पीएम मोदी के कई प्रोग्राम हैं। दोपहर 1:45 पर राष्ट्रपति सर्जियो से मुलाकात उनकी होनी है। दोपहर 2:45 पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी। वहीं शाम 7 खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा पीएम मोदी करेंगे और 8:45 पर दिल्ली के लिए रवाना इटली से हो जाएंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करते हुए आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दे दी है, जिसके तहत मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत ही कम करने के लिए की गई है। हालांकि विपक्ष से पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है।

0: पीएम मोदी के बचत वाले मंत्र के बाद से बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपने अपने तरह से उनकी अपील पर अमल कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने हाइब्रिड कैबिनेट मीटिंग की इजाजत दी है, जिससे मंत्री मंत्रालय में खुद आकर या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकते हैं। ये पहल सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को बहुत कम करने के लिए की गई है।
1: पीएम मोदी के अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ईंधन खपत हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, उसी के साथ ऑनलाइन बैठक हो, इसमें कदम उठाते नजर आ रही है। आज कैबिनेट की बैठक में भी हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जाने वाला है। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मंत्री मुंबई और एमएमआर रीजन के बाहर से है वो ऑनलाइन इस बैठक में शरीक होने वाले हैं, जबकि आसपास के जो मंत्री हैं वो ऑफलाइन यानी खुद होकर फिजिकल अटेंडेंस इस बैठक में लगाने वाले हैं, और उसी के चलते आज मंत्रालय परिसर में ज्यादा भीड़ भी नजर नहीं आ रही।
0: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि पीएम की अपील देशहित में की गई है, इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। शिंदे पीएम की अपील के बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो चुके हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ये निर्णय लिया, ये अपील की है, इसलिए देश हित के लिए सभी भारतीय नागरिकों ने 140 करोड़ जनता ने आगे आने वाला जो समस्या है, संकट है, उसको कम करने के लिए ये जरूरी है।
3: सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है सर, विपक्ष के समझना चाहिए क्या कि
2: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह से ये ऐसे मुद्दे निकालते हैं और प्रधानमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उनका निषेध करता हूँ। ऐसे समय पर सबको एक साथ में प्रधानमंत्री जी का देश का साथ देना चाहिए।
0: इससे पहले 14 मई को सीएम फडणवीस बचत और सादगी का संदेश देते हुए बुलेट से मंत्रालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में काफी हद तक कटौती की है, साथ ही अपने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें और अपने काफिले को कम से कम रखें।
4: प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचे, इसलिए एक प्रयास के रूप में इसको किया है। वैसे हम लोगों ने हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास हम करेंगे। इसके चलते अगले 6 माह तक राज्य में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार की ओर से आयोजित नहीं किए जाएंगे।
0: महाराष्ट्र कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने भी पीएम मोदी के बचत मंत्र को आत्मसात करने की बात कही है। फडणवीस सरकार में उद्योग मंत्री उदय सावंत ने ईंधन की खपत कम करने के लिए अपने काफिले को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल दिया है।
5: हमारे जो पक्ष प्रमुख है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने प्रतिसाद देके खुद वो ईवी व्हीकल से अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं भी शिवसैनिक हूँ, अगर हमारे नेता ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ईवी व्हीकल से ही ट्रैवल करें। इसलिए मैं खुद ईवी व्हीकल में ही बैठता हूँ और जो जरूरत है पुलिस सिक्योरिटी की वो गाड़ियां कम करके, वो भी जो हमारा कॉन्वॉय रहता है वो भी हमने ईवी का बनाया।
0: इसी के साथ आदिवासी मंत्री नरहरी जिरवाल ने अपने सरकारी घर से सीधे मंत्रालय तक पैदल जाने का फैसला किया। इस बीच छगन भुजबल, गणेश नाइक और अदिति तटकरे समेत ज्यादातर दूसरे मंत्री अपनी सरकारी कारों में आए, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली बैकअप स्क्वाड गाड़ियों की संख्या कम कर दी।
6: हमारे पीछे जो गाड़ियों का ताफा चलता है वो भी हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे साथ में एक एक दो दो गाड़ी

0: दोनों के भत्ते बंद। बंगाल में शुभेंदु सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीधा वार।
1: सबका साथ सबका विकास, बंद करो नो नीड संघलघु मोर्चा।
0: सड़क पर नमाज पर योगी बोले, यूपी में भड़क उठे सियासी शोले।
2: बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी।
0: सियासत का धर्म काटा, किसको बांटा किसको काटा। बंगाल से यूपी तक हिंदुत्व का मॉडल, मैसेज क्लियर।
3: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद दो चीजें चर्चा में हैं। एक तो उनके ऑफिस की कुर्सी पर भगवा तौलिया, दूसरा शुभेंदु अधिकारी के हिंदुत्व वाले फैसले। अब शुभेंदु सरकार ने 14 साल पहले ममता सरकार में चलाई गई मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों की पॉकेट मनी यानी मानदेय योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इन्हें कोई सरकारी भत्ता नहीं मिलेगा।
3: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है सरकार का काम? इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
0: शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक फैसलों से सबको चौंका रखा है। सीएम शुभेंदु ने बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का इरादा भी साफ कर दिया है। जी हां, शुभेंदु ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा।
3: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
0: ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंकने के बाद शुभेंदु अधिकारी ठसक के साथ कह रहे हैं कि अब बंगाल में गुंडागर्दी और उपद्रवियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
4: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को भी क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा में पुलिस और केंद्रीय बल के कई जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इलाके का दौरा किया, उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बल के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब बंगाल में भी इस तरह की घटनाओं का अंत होगा।
3: आप लोग पार सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
4: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था। हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ, सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में

0: गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: आज तक ब्यूरो।
2: वहीं यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल पहले से लागू है और अब सीएम योगी के सड़क पर नमाज को लेकर नए बयान ने सियासत में शोले भड़का दिए हैं। जी हां, सीएम योगी पर अब अखिलेश यादव भड़क उठे हैं।
3: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
0: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं। और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है?
4: हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर, अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी बताओ, लखनऊ में रेंगता है ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
0: जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।
5: ये तो वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
0: अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तो वहीं यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां के विशाल का कश्मीर में धर्म परिवर्तन करवाया गया। जी हां, वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि गांव का ही एक शख्स विशाल को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर लेकर गया और फिर वहां पर जबरन उसे इस्लाम कबूल करवाकर विशाल से हमजा बना दिया।
0: कैसे बिजनौर का विकी कश्मीर में बना हमजा।
6: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ,
7: मैं गवाही देता हूँ।
0: नौकरी के बदले विकी को इस्लाम कबूल करवाया।
6: अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
0: मस्जिद में जबरन धर्मांतरण, वीडियो से पूरा खुलासा।
8: पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
0: रसूलुल्लाह। सोशल मीडिया से खुला विकी से हमजा बनने का राज। बिजनौर से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक मचा हड़कंप।
9: मर्जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
10: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: मस्जिद में खड़े होकर धर्म परिवर्तन करने वाले इस वीडियो ने जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के बिजनौर तक हलचल मचा दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बिजनौर के विकी को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, इस्लाम में दाखिल करवाने के लिए कलमा पढ़वाया जा रहा है।
6: कलमा पढ़े
8: हैं, याद है कलमा? पहला कलमा तैयार तैयमान पाक इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
10: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
6: सुभानल्लाह।
10: दूसरा नहीं सीखे,
6: अशहदु अल्ला इलाहा,
11: पढ़ो आप, आप मुझे पढ़ो,
6: अशहदु अल्ला इलाहा,
10: अशहदु अल्ला इलाहा। तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमे में पढ़ा तो तर्जुमे, तर्जुमे ही बता दो।
6: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ,
7: मैं गवाही देता हूँ,
6: अशहदु अल्ला, अल्लाह के बगैर कोई दूसरा खुदा नहीं।
0: 17 साल के विकी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे बिजनौर में हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है, और फिर जो खुलासा होता है वो और भी चौंकाने वाला था। कश्मीर के कुपवाड़ा में विकी हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा था, वहीं पर इसका धर्मांतरण करवाया जाता है।
12: देख एक बार, देख अपनी माँ की तरफ देख, कितनी रो रही है, इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया विशाल, देखो एक बार इसके चेहरे को तो देख।
13: अगर ये नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, अभी देखना क्या होगा यार।
12: ये तो बेटे तेरी चिंता कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास ये आए कि।
0: परिवार का कहना है कि 15 मई को एक अज्ञात नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आया, जिसमें उनका बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम के साथ दिखाया गया। कश्मीर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया, उसने कहा अब अपने लड़के को भूल जाओ, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इस तरह यूपी का विकी हमजा बन गया है।
14: वो 15 तारीख को इस बात का पता चला था।
15: क्या पता चला?
14: 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया, मैं कल SP के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है।
0: 17 साल के इस लड़के के धर्म परिवर्तन करने से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। वीडियो कश्मीर के गांदरबल जिले की मरकजी जामिया मस्जिद के हैं। पहले वीडियो में मौलवी लड़के को कलमा पढ़वाते दिखाई दे रहे हैं, उसका नया नाम मोहम्मद हमजा रख रहे हैं। दूसरे वीडियो में लड़का मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दे रहा है, गले में फूल मालाएं पड़ी हैं, साथ में चलने वाले लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेटे के बिना बताए अचानक धर्म बदलने से परिवार सदमे में है, और बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा रहा है। इस सिलसिले में परिवार ने पूर्व सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई, SP से मुलाकात कर लड़के को वापस लाने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
16: क्या नाम है?
17: वसीम।
0: विकी के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम नाम के लड़के का परिवार के साथ पुराना पेशेवर संबंध था, जिसका फायदा उठाकर उसने उनका भरोसा जीता। करीब 3-4 साल पहले वसीम सलून का काम सिखाने के बहाने विकी को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया। शुरुआत
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
15: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 6-1-2060. Dealer for warranty details.
16: घर के झाड़ू से आपके पैसे रुपए पर असर पड़ सकता है क्या? घर में चाकू आपके संतान पर असर डाल सकता है क्या? कैंची हवा में चलाने पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं? घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर कैसा है असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
17: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
18: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप। यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires.
19: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 6-1-2060. Dealer for warranty details.
20: WGU offers an affordable path to becoming a teacher. Our Bachelor of Arts in Elementary Education program is online, flexible, and built around a flat rate tuition model. That means you can complete as many courses as you can handle for each term without paying more, giving you more control over the costs of your education. It's a sustainable investment in a career that truly changes lives, yours and your future students. Your path to the classroom starts at WGU. Learn more at wgu.edu.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

होटल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी पोस्ट कर कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आज द्विपक्षीय मुलाकात। बंगाल में गरजा, शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर, हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर ध्वस्त, हल्ला बोल को तैयार ममता, आज प्रदर्शन। राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा डर फैलाने की जगह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। आज देशभर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की मांग।

0: गोंडा में पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 8 दिन जारी रहेगी गर्मी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भीषण गर्मी की खबर के साथ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त भीषण गर्मी से उबल रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है। बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार चला गया है और इसके अलावा उत्तर भारत के जो ज्यादातर राज्य हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, साथ ही दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी है, पारा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले 7 से 8 दिन तक इस गर्मी और लू से कोई भी राहत मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। तो देखिए, काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, पारा एकदम से बढ़ने लगा है। माना जा रहा है कि इस साल तो पारा 50 डिग्री भी पहुंच सकता है। अमृतसर में 43 डिग्री पारा हो गया है, फरीदकोट में 47.3 डिग्री तक, सबसे गर्म फरीदकोट माना जा रहा है। तो पंजाब का ये हाल आपको बता रहे हैं और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि आगे पारा और बढ़ेगा। तो दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 40 यूपी के हैं। बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार चला गया है। अब सवाल यह है कि क्या पारा इस साल 50 के पार चला जाएगा।
1: अभी तो आधा मई ही बीता है और आसमान से आग बरसने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। मौसम विभाग के इस नक्शे में उत्तर प्रदेश अलग लाल रंग से दर्शाया गया है। आलम यह है कि दुनिया और देश के सबसे गर्म इलाकों की सूची में यूपी के शहरों ने अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम है, जहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर, अलीगढ़, बलरामपुर, बरेली और वाराणसी में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जौनपुर, आजमगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली और अयोध्या में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
2: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ, रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहाँ पर तपन, सड़क के आसपास का जो एरिया है, बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है।
1: मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 7 से 8 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही लू चलने की आशंका है।
3: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें।
1: उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिले अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर को तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो मई की इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक और परेशान करने वाली खबर, आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आज देश भर में तमाम मेडिकल शॉप बंद रहेंगी, तो वहीं दिल्ली में 21 मई यानी कल से 3 दिन के लिए ऑटो टैक्सी वाले हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच ऑटो टैक्सी वालों ने भी किराया बढ़ाने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक खत भी लिखा है। ऑटो यूनियन का कहना है कि 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है और इससे तंग आकर किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो 3 दिन तक ऑटो टैक्सी की हड़ताल रहेगी। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर वो रहेंगे और आज केमिस्ट की दुकानें बंद रहेंगी। एक तरफ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ आज ये खबर भी लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि आज देश भर में जो दवाइयों की दुकान है वो बंद रहेंगी। तो मेडिकल स्टोर आज देश भर में बंद रहेंगे। AIOCD का देशव्यापी हड़ताल का ऐलान है। दवा विक्रेताओं की हड़ताल है। ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का विरोध जताया जा रहा है इसके जरिए, इसलिए आज के एक दिन की हड़ताल पर दवा विक्रेताएं हैं और पारंपरिक दवा के लिए एक दिन की हड़ताल पर है। ऑनलाइन दवा की बिक्री का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना आज करना पड़ सकता है और उसके बाद 3 दिन की हड़ताल ऑटो टैक्सी वालों की किराया बढ़ाने की मांग को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर ऑटो टैक्सी वाले जाने वाले हैं तो लोगों के लिए एक तरीके से गर्मी के अलावा ये भी दिक्कत का सबब बनने वाला है। वहीं अब बात करते हैं फलता की, क्योंकि विधानसभा सीट पर टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, अब बीजेपी उनके पुष्पा वाले बयान की याद दिला रही है तो वहीं टीएमसी के पास इस मामले में कोई भी जवाब नहीं है।
1: पुष्पा झुकेगा नहीं, ये फिल्मी डायलॉग मारने वाले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान न सिर्फ झुके बल्कि फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खुद को चुनावी दौड़ से बाहर भी कर लिया।
4: सम्मानीय मुख्यमंत्री फलता उन्नयनेर जन्य स्पेशल पैकेज दिच्छे, सेई जन्य आमी आगामी 21 मे जे रिपोल आछे सेई रिपोलेर कांटेस्ट थेके आमी निजेके दूरे सरिये निलाम।
1: इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी न हो। फलता और जहांगीर खान का रिश्ता सीधा अभिषेक बनर्जी से है। अभिषेक बनर्जी को हार्बर मॉडल पर इतना भरोसा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने सीधे अमित शाह को चुनौती दी थी। अब सवाल ये है कि अगर अभिषेक को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना ही भरोसा था तो वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहाँ प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने यहाँ अभी तक डर और अपने सिंडिकेट के जरिए चुनाव जीता, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका डायमंड हार्बर मॉडल दरक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव मैदान से हटने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कई विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।
5: हमारे साथ इस वक्त है कुणाल घोष। कुणाल दा, ये जो जहांगीर खान जिसे पुष्पा कहा जा रहा था वो अब मुखर गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे?
6: देखिए, हम लोग भी सुना है, डिटेल तो अभी नहीं पता, लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए। और ये वहाँ पे कोई डर का महल, ये भाजपा EC ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया, और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों ये भी देखना होगा। तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर में है हमारा, ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था, तो ऐसा क्यों हुआ अभिषेक बनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे। तो
5: कुणाल दा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि डायमंड हार्बर टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और जहांगीर खान टीएमसी स्ट्रांग मैन माना जाता है, वहां से अभिषेक बनर्जी का इतना बड़ा लीड मिला लेकिन अभिषेक बनर्जी भी नहीं दिखे वहां पे कैंपेनिंग के लिए।
6: ये तो पार्टी वर्कर्स का भी ये क्वेश्चन है क्यों नहीं ऑनरेबल MP वहां पर गया, लेकिन ये उनका खुद का डिसीजन है, ये उनका स्ट्रेटेजी है, उनका जो इलाका है। ये डायमंड हार्बर तो ये तो वो उनका खुद का इलाका है,
5: भी जाता था डायमंड हार्बर मॉडल,
6: ये डायमंड हार्बर मॉडल भी तो काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ क्या हुआ वो पार्टी एनालाइज करेगा।
0: अब आगे बढ़ते हैं, क्या ईरान से डरा अमेरिका हमले की धमकी देकर पीछे हट गया है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाली एक और भीषण जंग आखिरी पलों में टल गई। और ट्रंप की माने तो अमेरिका सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाली थी, लेकिन इसे एन वक्त पर टालना पड़ा। अब सवाल यह है कि ट्रंप के सामने कोई मजबूरी आ गई या फिर अमेरिका ईरान के पलटवार से डर गया है।

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों टाला, क्या है वजह? ईरान से डरे इसलिए युद्ध से पीछे हटे या फिर कोई और मजबूरी है? पेंटागन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी है? हमला टालने के पीछे क्या है? हमला टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई को फिर से क्यों धमकाया? ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ना तो ये खत्म होती दिख रही है और न ही इसके फिर से शुरू न होने की कोई गारंटी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से हर कोई हैरान है, क्योंकि वॉशिंगटन में उन्होंने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो ईरान पर हमले का फैसला कर चुके थे, लेकिन खाड़ी के कुछ देशों यूएई, कतर, सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने आखिरी समय पर उसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि ये तमाम देश ईरान के साथ किसी समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके उलट ईरान ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, ईरान ने बरहम पट्टी लगी ट्रंप की तस्वीर पोस्ट की है और ये बताया है कि ट्रंप हमला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत उस मरीज की तरह है जो व्हीलचेयर पर है। यानी अमेरिका पहले ही अपना बहुत नुकसान करा चुका है, अब सवाल ये है कि इस युद्ध से ट्रंप आखिर निकले भी तो कैसे? अब डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेश और रक्षा मंत्री के अलावा सैन्य अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ईरान की नजर इस बैठक पर भी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के साथ ही खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। वहीं इस बार हूती भी जंग में कूदेंगे और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन सा ऐसा दबाव आ गया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की बात माननी पड़ी?
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: अब जो बैठक होने जा रही है उसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल कैन समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।
1: We're all set to go. You're talking about yesterday.
2: Yes.
1: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
0: इस बैठक का मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत की समीक्षा, सैन्य विकल्पों पर चर्चा और आज के टाले गए हमले के बाद आगे की रणनीति तय करना है। ट्रंप ने जहां खाड़ी देशों का हवाला देते हुए युद्ध को टाला है, वहीं ये भी दो टूक कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अब बैठक से ट्रंप ये संकेत देने वाले हैं कि भले ही बातचीत को लेकर हमला टाल दिया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना किसी भी पल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर डील फेल हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक का विकल्प खुला है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। तीसरी शर्त, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। चौथी शर्त, ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। आखिरी शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी।
1: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly? They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट. मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: घर के झाड़ू से आपके पैसे रुपए पर असर पड़ सकता है क्या? घर में चाकू आपके संतान पर असर डाल सकता है क्या? कैंची हवा में चलाने पर रिश्ते बिगड़ जाते हैं? घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर कैसा है असर, जानिए मेरे साथ.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ.

0: अमेरिका इसराइल फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, रणनीति बन रही है, ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर से युद्ध संकट के बीच ईरान की तैयारी क्या है? अगर फिर से भीषण हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? क्या अमेरिका इसराइल के हमले से पहले वो बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर से युद्ध का और भी खतरनाक मोर्चा खुलेगा? जंग की शुरुआत से सीजफायर तक ईरान का रुख एक जैसा है। दावा यही है कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एक बार फिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दरअसल तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए 5 शर्तें सामने रखी हैं और इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों देशों में बातचीत अटकी हुई है। ईरान की मांग है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान खत्म हो, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। अमेरिका इन शर्तों पर राजी नहीं और ईरान का रुख नरम नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा है कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया के बदलावों को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। ऐसे बयानों से साफ है कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा और ऐसे में अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है, जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठको और रणनीति का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के 2 सबसे अहम बिंदु हैं। पहला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा, ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने का ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, जिससे ट्रंप अपने देश में ये दिखा सकेंगे कि उन्होंने कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही बाधित है, हालात तनावपूर्ण है, ईरान से सीजफायर हुए 40 दिन बीत गए हैं, डील का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। अब ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या ईरान पर फिर से बम बरसेंगे या बातचीत का रास्ता निकलने की एक आखिरी कोशिश होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर हर कूटनीति फिर फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त आज दीपक शिमला का। बंगाल में गरजा शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर, हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर ध्वस्त, हल्ला बोल को तैयार ममता, आज प्रदर्शन। राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा डर फैलाने की जगह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। आज देशभर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की मांग। भीषण गर्मी में झुलसा पूरा हिंदुस्तान, यूपी में हालात सबसे बदतर, बांदा में पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 8 दिन जारी रहेगी गर्मी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर की तमाम छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। तो आज आपको बताएंगे कि घर की छोटी छोटी चीजों का कैसे प्रयोग करें ताकि भाग्य बेहतर हो, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 11:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:12 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि घर की जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके भाग्य पर कैसे असर डालती हैं और इनका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। देखिए, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है, और घर की हर छोटी चीज का अपना महत्व होता है और जीवन में अपना योगदान भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर में प्रयोग करते हैं ये घर में संपन्नता लाती हैं और समृद्धि भी देती हैं। और अगर इन छोटी छोटी चीजों का सही प्रयोग ना किया जाए तो ये जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके हम जीवन में अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। यानी घर की छोटी सी चीज, चम्मच, चाकू, झाड़ू, ये सब हमारे जीवन पर असर डालने की ताकत रखती हैं, इसलिए इनका सही प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। अब ये जानते हैं कि जो झाड़ू है उसका हमारे भाग्य पर और हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ता है। झाड़ू का आपके भाग्य से क्या संबंध है, आपके जीवन पर झाड़ू का क्या असर है। झाड़ू घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। अगर आप झाड़ू का अनादर करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पैरों से झाड़ू को मारते हैं
या टूटी हुई झाड़ू अपने घर में रखते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। झाड़ू को तोड़ना, इधर उधर फेंकना, पैरों से मारना ये बहुत ही निगेटिव है, इससे पैसे रुपयों का नुकसान होगा। झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए और हाथ वाले हिस्से को नीचे रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय जब सूरज ढल रहा हो और सूर्यास्त के बाद शाम के समय झाड़ू लगाने से जीवन में दरिद्रता आती है। झाड़ू लगाने का उचित समय सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, या बहुत जरूरत है तो कपड़े से गंदगी की सफाई करिए, लेकिन सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए। वो समय घर में लक्ष्मी के आगमन का होता है। घर की बाकी वस्तुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

क्या रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो हमने झाड़ू का महत्व जाना, अब बात करते हैं कैंची की, सीजर की। कैंची का हमारे भाग्य से, हमारी किस्मत से क्या संबंध है? देखिए, कैंची घर के रिश्तों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप कैंची का गलत प्रयोग करें तो इससे आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कैंची को जब भी रखिए, कपड़े या कागज में लपेट करके रखिए, खुले हुए तरीके से कैंची नहीं रखनी चाहिए। अगर कपड़े या कागज में लपेट कर रखेंगे तो घर में रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। बिना वजह के हवा में कैंची मत चलाइए या बिना वजह के चीजों को मत काटिए कैंची से, नहीं तो घर में वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़े होंगे, रिश्ते खराब होंगे। कैंची कोई भी मांगे उधार मत दीजिए। कैंची उधार में देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कैंची उधार में देंगे उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब होंगे। तो मुख्यतः हवा में कैंची चलाना, बेवजह चीजों को काटना, ये आपके स्वभाव को भी खराब करेगा और घर में रिश्तों में बेवजह के विवाद

योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

ठीक रहेगी, करियर में लाभ भी होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कविता जी ने हमें लिखा है और कविता जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1973। जन्म का समय रात में 9:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। कविता जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से संतानों के साथ तालमेल मेरा बिगड़ गया है और उस वजह से मानसिक चिंताएं बहुत हैं, तनाव बहुत है, तो मैं क्या करूं जिससे मैं मेंटली ठीक हूं और संतान का सपोर्ट मुझे मिल सके। कविता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि संतान को लेकर के ज्यादा उम्मीद पालने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, वही आपके लिए बेहतर है। लेकिन संतान से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगी तो आपको तकलीफ होगी, डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपकी ज्यादातर समस्या देखो मानसिक है। आपका मन बेहतर हो, तनाव कम हो, संतान पक्ष के साथ थोड़ा सुधार हो, उसके लिए एक पीला पुखराज 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। घर की रसोई में चाकू जरूर होता है, सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए। इस चाकू का आपके भाग्य पर कैसे असर पड़ता है? देखिए, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, ये आप चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखना चाहिए। जो ब्लेड वाला हिस्सा है, धार वाला हिस्सा है, वो नीचे रहना चाहिए और हैंडल वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होगा। बिना धार वाला चाकू अगर आप रखते हैं या जंग लगा हुआ चाकू रखते हैं तो ये चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। बहुत सारे लोग अपने घर में अलग अलग साइज के बहुत सारे चाकू रखते हैं। घर में बहुत बड़ा चाकू रखना दाम

दाम्पत्य जीवन को, मैरिटल लाइफ को खराब करता है। घर में बड़ा चाकू रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होगी। आप किसी व्यक्ति से चाकू मांगते हैं और वो ब्लेड वाला हिस्सा, धार वाला हिस्सा आपकी तरफ करके चाकू देता है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचता है। लेकिन अगर आप किसी से चाकू मांगते हैं, ब्लेड अपनी तरफ रखता है और हैंडल वाला हिस्सा आपकी तरफ करता है, तो ऐसे लोग दूसरों की देखभाल करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। घर की वस्तुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात करते हैं पावदान की, यानी डोर मैट की। पावदान कैसा होना चाहिए, क्या प्रभाव है इसका? देखिए, पावदान जो है वो दरवाजों पर लगाया जाता है पैर पोंछने के लिए। वहां से आप घर में या कमरे में इंटर करते हैं, तो पावदान जो है इससे घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं। पावदान हमेशा साफ होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पावदान मत रखिए। गंदा और फटा हुआ पावदान अगर आप मेन डोर पे रखेंगे या दरवाजों पर रखेंगे तो ये आपके घर में समस्या को बुलाएगा। उसी पावदान के रास्ते आपके घर में मुश्किलें प्रवेश करेंगी। रोज सुबह पावदान को साफ करके दरवाजे पर लगाइए। जब घर की सफाई हो रही हो, पावदान को झाड़कर साफ करिए, मेन डोर पर जरूर लगाइए और प्रार्थना करिए कि इसी द्वार
से इसी पावदान पर पैर रख के ईश्वर आपके घर में प्रवेश करें। प्रयास करें कि पावदान पर शुभ चिन्ह ना बने हो, स्वस्तिक ना बना हो, शंख ना बना हो, ओम ना लिखा हो, क्योंकि अगर पावदान पर स्वस्तिक बना हो, शंख बना हो, ओम लिखा हो और उस पर पैर रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके घर में विपत्तियां आने लगेंगी, आपके घर में मुश्किलें आने लगेंगी। ज्यादा से ज्यादा पावदान पर वेलकम लिखा हो, जो लिखा रहता है, या होम स्वीट होम लिखा रहता है वो भी ठीक है, लेकिन पावदान पर स्वस्तिक बना लें, ओम लगा लें और उस पर पैर रख करके चलेंगे तो पक्की तौर पे जानिए कि आपके जीवन में दुर्भाग्य और विपत्तियां आपको परेशान करेंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में सफलता के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश के अलग अलग रंग के मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन नीले रंग के गणपति की पूजा सामान्यतः नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान गणेश की सफेद रंग की मूर्ति होती है, पीले रंग की होती है, लाल रंग की होती है, मुख्यतः इन्हीं रंगों के गणपति की पूजा की जाती है। नीले रंग के गणपति की पूजा भी होती है और नीले रंग के गणपति को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। ये जो उच्छिष्ट गणपति हैं, इनकी पूजा तंत्र की पूजा है, सामान्य रूप से नहीं की जाती। अगर आप गाढ़पत्य तंत्र में जाते हैं या भगवान गणेश के तंत्र की साधना करते हैं, तब आप नीले रंग के गणपति की पूजा कर सकते हैं, जिनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। बिना किसी गुरु के निर्देश के नीले रंग के गणपति की पूजा ना करें। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्या समाप्त होगी। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हल हो जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी हो, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा।

हुए काम सारे पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, यात्राएं लाभकारी होंगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को, बेवजह का तनाव हो सकता है, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, कोई भी नया काम इस समय शुरू मत करिएगा। आज जल का दान करिए और हरे फल का दान करिए या गाय को हरा चारा खिलाइए, ऐसा करना आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। नॉर्वे के कामयाब दौरे के बाद इटली पहुंची पीएम। इटली के विदेश मंत्री ने किया गर्मजोशी से स्वागत। रणनीति साझेदारी के साथ कई अहम समझौते पर लगेगी मुहर। इटली में होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी के एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। इटली में दिखी काशी की भी झलक। भारत इटली व्यापार 14.25 अरब यूरो पर पहुंचा। आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी। पीएम मोदी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत का 38 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैश्विक व्यापार में बढ़ी पकड़। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश बेहद कठिन दौर की ओर बढ़ रहा है और संकट के समय प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त हैं। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने ईंधन कीमतों, रुपये में गिरावट और एफडीआई को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा। कहा पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और जल्द $1 के मुकाबले 100 रुपए तक पहुंच सकता है। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वीर पासी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। आरक्षण 17% से घटाकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी के तहत 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था। अब व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों को आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलता उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आई। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर अवैध निर्माण को लेकर जारी किया एक नोटिस। 7 दिनों में जवाब के निर्देश। नोटिस जारी होने के बाद अभिषेक बनर्जी का पुष्पा स्टाइल में जवाब। कहा चाहे घर गिरा दो मैं झुकूंगा नहीं। कोलकाता में बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध संपत्ति और जमीन कब्जे के आरोप लगाए। टीएमसी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। टीएमसी ने पोस्ट पोल हिंसा और कथित बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 21 मई को हावड़ा, सियालदह और बालीगंज में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। टीएमसी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के संस्थापक शिवराज के बेटे से की पूछताछ। 12वीं परीक्षा में शामिल होने को लेकर भी जांच तेज। सीबीआई की छापेमारी में नागपुर से 2 छात्रों के घरों से मोबाइल, लैपटॉप और नोटिस जब्त। पेपर लीक नेटवर्क की गहराई से जांच जारी। एनटीए ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियां की गई। पुणे में ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे पर मध्यस्थता का आरोप। सीबीआई की जांच में पेपर लीक नेटवर्क के नए लिंक सामने आए। आज देशभर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स का भी बुधवार से 3 दिनों तक काम ठप। ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है। व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। किसानों के लिए सकारात्मक संकेत। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली मोदी सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि कर्ज में 15.7% और एमएसएमई लोन में 33% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा। भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी दर्ज। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का बड़ा ऐलान। बोले देश के विकास में बाधा नक्सलवाद अब पूरी तरह से खत्म। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह बोले छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म हुआ। बीजेपी सरकार बनने के बाद खत्म हुआ खौफ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। आसनसोल नगर निगम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाने से तनाव। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई कार्यकर्ता हिरासत में। आसनसोल के वरनपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जमीन पर बने तृणमूल कार्यालय पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस के बाद भी कई कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी की ईंधन की समझदारी भरे उपयोग की अपील का समर्थन किया। ईंधन बचत की अपील का असर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार की सवारी से पहुंची। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बोर्ड परीक्षा के अंकों और एमएचसीटी स्कोर में विसंगति का मुद्दा उठाया। जांच की मांग।
वहीं मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में बाबा अशोक खरात पर ईडी की कार्रवाई, नासिक जेल से हिरासत में लेकर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 400 से 500 अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नौसेना को मिलेगा नया दृश्य हथियार, नेवी के स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। केदारनाथ यात्रा में एक महीने में 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारधाम में लगाई हाजिरी, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी और एयर एम्बुलेंस से यात्रियों को दी जा रही है राहत। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर लगा लंबा जाम, रात में घोड़े खच्चरों की आवाजाही से बढ़ा हादसे का खतरा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। देवभूमि में भी धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मौसम को देखते हुए केदारनाथ में रोकी गई हेली सेवा। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई, 208 के पार पहुंचा एक्यूआई, बढ़ते प्रदूषण पर ग्रैप 1 लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8वीं तक स्कूल बंद, 31 मई तक के बाद खुलेंगे, प्रशासन ने लू से बचाव की एडवाइजरी जारी की। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घरों के ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर, बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, खजुराहो में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, वहीं भोपाल में तेज धूप के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े कई रिकॉर्ड, कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीटवेव का जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में 39 डिग्री दर्ज किया गया पारा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद, 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात, सगाई के 4 दिन बाद युवती की हत्या, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, जंगल में मिला शव, पाइप से गला घोटकर ईंट से सिर कुचलने का आरोप। लखनऊ रत्ना सिंह सुसाइड केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 25,000 की 2 इनामी महिला आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी महिला मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर लाई गई। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने के मालखाने और उसके बाहर बने पार्किंग एरिया में लगी भयंकर आग, थाना परिसर में उठा धुएं का गुबार। न्यू अशोकनगर थाने के मालखाने में जब्त गाड़ियों में 20 कारें जलकर खाक हुई, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रेवाड़ी में केमिकल कंपनी में लगी भयंकर आग, लगातार धमाकों से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम में धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी, आरपीएफ जवानों ने कोच अलग कर संभाली स्थिति। नू के 2 गांव में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग, इसमें मवेशी झुलसे, कई घरों में गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ लाखों का नुकसान। अहमदाबाद के सानंद में पेंट कंपनी में लगी भयंकर आग, केमिकल और थिनर के कारण तेज हुई लपटें, मौके पर 15 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। कर्नाटक के शिवमोगा में विशाल मार्ट में लिफ्ट फंसने के कारण 9 लोग फंसे, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने का एक वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। पालघर सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत के बाद एक ही गांव के 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार, पूरे गांव में पसरा मातम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में पानी फेंकने पर 2 पड़ोसी आपस में जाकर भिड़े, जमकर हुई मारपीट, मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के वसई में एटीएम मशीन का वीडियो वायरल, तकनीकी गड़बड़ी के कारण 100 रुपए निकालने पर मिले 500 के नोट, कैश के लिए उमड़ी भीड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला किया। सूरत में जमीन दलाल की गलती से दूसरे वाहन की डिग्गी में रखे 1,16,000 रुपए सीसीटीवी की मदद से बरामद, पुलिस ने थाने में बुलाकर लौटाई रकम।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते। हिंट,
3: बड़े आराम से।
5: लायन ओज फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
8: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते हैं।
9: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट फुटी,
12: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
14: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
13: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
14: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
16: नहीं,
14: और म्यूचुअल फंड्स है
16: सही।
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
18: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
19: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
21: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
22: तो क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने BJP को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते CM योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए? पहले योगी ने क्या कहा, ये जानिए। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए, संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
23: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
22: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है, और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है। लेकिन बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बात 2027 की ज्यादा है, क्योंकि BJP जानती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जीत का सबसे आसान फॉर्मूला है, और बंगाल में BJP की आसमानी जीत की मिसाल उसके सामने है। याद करिए, बंगाल चुनाव में BJP ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा, मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। तो UP में CM योगी भी बंगाल में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले के आसरे हैं। आज तक ब्यूरो।
24: ये तस्वीरें हैं यूपी के बिजनौर के रहने वाले उस नाबालिग लड़के की, जिसका जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया गया।
25: किसी किस्म का दबाव है जो यहाँ
0: جامع مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اگر اس میں کسی نے آپ پہ دباؤ ڈالا ہے یا کچھ لالچ دیے چلو ہاں, تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. جو میری کائنات کو دیکھ کے, میری قدرت کو دیکھ کے ایمان لائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اس کے لیے کسی قسم کا دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی ڈر ہوگا.
24: مسجد کمیٹی نے یہ ویڈیو نابالغ کے پریوار کو بھیج کر دعویٰ کیا تھا کہ 17 سال کے نابالغ نے اپنی مرضی سے اسلام دھرم قبول کیا ہے, لیکن پریوار کا آروپ ہے کہ اس کا جبرن دھرمانترن کرا کر بعد میں یہ ویڈیو بنوایا گیا ہے.
2: مرضی سے کلمہ پڑھ رہا ہوں یہاں, کیونکہ میں نے 4 سال میں یہ سیکھا, پڑھا میں نے مسلم دھرم, تو آج میں میرے کو یقین آیا اس پہ کہ مجھے کلمہ پڑھنا چاہیے. میرے کو کسی نے زور زبردستی نہیں کیا, میرے دل کو اچھا لگا اسلام, تو میں نے اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں.
24: بجنور ضلع کے راولی روڈ علاقے کا یہ لڑکا کچھ سمے پہلے کام کی تلاش میں جموں کشمیر کے کپواڑہ گیا تھا. ویڈیو میں لڑکا بنا کسی دباؤ کے اسلام دھرم قبولنے کی بات کر رہا ہے. پریوار کا آروپ ہے کہ جس نمبر سے کال آئی تھی اس نے کہا کہ اب اپنے لڑکے کو بھول جاؤ, کیونکہ اس نے اسلام دھرم سویکار کر لیا ہے.
3: وسیم احمد کاجی والے سے ہمارے بھائی کو لے کے گیا, ٹھیک ہے کام کے لیے, لیکن وہاں پہ لے جا کے انہوں نے زبردستی اس کو اسلام قبول کرایا.
24: آج تک نے یہ خبر دکھائی جس کے بعد یوگی سرکار نے سنجان لیا. اب یو پی پولیس کی 3 ٹیمیں نابالغ کا ریسکیو کرنے کپواڑہ جا رہی ہیں. ریتک راجپوت, بجنور, آج تک.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा.
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते.
9: विक्रम!
8: हिंट
7: बड़े आराम से.
10: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली लायन.
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है. लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली.
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स.
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट.
14: जेके मैक्स.
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
16: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.

0: डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करके आ गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने के बजाय महायुद्ध के खतरे तक पहुंच रही है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार स्थायी रोक के बजाय 20 साल के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने की बात कही। साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे, अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। ईरान लेबनान सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। एक तरफ तो अमेरिका ईरान से 5 शर्तें मनवाने के लिए पूरा दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के हैंडल पर भी युद्ध छेड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला मध्य पूर्व का एक मैप पोस्ट किया, जिसमें सभी दिशाओं से ईरान में दाखिल होने का निशान दिख रहा है। क्या ये ईरान में चारों तरफ से जमीनी सैन्य आक्रमण है या कुछ और? चूंकि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने एआई से बनाई गई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो दिखा रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और लेजर की मदद से समंदर के ऊपर बनराने वाले ईरानी विमान और समंदर का चक्कर लगाने वाली ईरानी बोट नष्ट की जा चुकी हैं। इनके अलावा ट्रंप एक एआई जनरेटेड वीडियो में ईरान के विमान को बटन दबाकर उड़ाने की एक्टिंग करते दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एआई युद्ध। अगर ट्रंप ने ईरान पर एआई से बनी तस्वीरों और वीडियो से निशाना साधा तो ईरान ने भी ट्रंप पर फिल्मी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए फिल्म द अप्रेंटिस का एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म ट्रंप के शुरुआती करियर पर आधारित है। वीडियो में ट्रंप के मेंटोर रॉय कोहन जीतने के नियम बताते नजर आ रहे हैं। इसमें कहा गया है, चाहे कुछ भी हो, जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। वीडियो में यह भी कहा गया है कि सफल होने के लिए इंसान को किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार रहना पड़ता है। चूंकि ट्रंप लगातार ईरान पर जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके ही जीवन पर बनी फिल्म की क्लिप को पोस्ट कर उन्हें बेनकाब करना चाहा है। हुर्मुज पर ईरान ने किया अमेरिकी दावों का खंडन। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि हुर्मुज जल डबरू मध्य अब IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। उसने ये ताज़ा वीडियो जारी कर दिखाया है कि हुर्मुज में ईरान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी तरह की आवाजाही के लिए ईरानी पक्ष यानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। IRGC की नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि वो हुर्मुज जल डबरू मध्य पर अपने नियंत्रण और अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है। उनका कहना है कि हुर्मुज जल डबरू मध्य अब पूरी तरह से IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसी भी सैन्य जहाज या पोत को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मित्र देश के जहाजों और पोतों को तो यहाँ से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन विरोधी देशों के जहाजों को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। पिछले 2-3 दिन में लगभग 30 से 40 जहाज और पोत इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर चीनी कंपनियों के थे। समंदर में ईरान का नया टैक्स सिस्टम। अब ईरान का इरादा है कि वो हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले इंटरनेट केबल के बदले एक फीस वसूलेगा। अगर इस फीस को देने से इनकार किया गया तो उसने यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को तबाह करने की धमकी दी है, जो इसी इलाके से होकर जाती है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक, डिजिटल सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ठप पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों की सर्विस के ठप होने की नौबत आ सकती है। ईरान की महिलाओं ने उठाई AK-47 असॉल्ट राइफलें। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल छोड़ने और खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया गया। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां आम नागरिकों को सैन्य तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो भी जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए थे। यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से टकराने को तो तैयार है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान अपनी नीति और नियत पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रों ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जबरदस्त स्वागत। आज पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर फोकस। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में ट्रंप ने की सीक्रेट वॉर मीटिंग। सैन्य हमलों के विकल्पों की दी जानकारी। ट्रंप बोले, डील के लिए ईरान के पास बस कुछ दिन बचे हैं। राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार। कहा, डर फैलाने की जगह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम। किराया बढ़ाने की मांग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। वो सभी खबरें जो इस वक्त देश दुनिया में सुर्खियों में है, साथ ही उन खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे जिनका ताल्लुक सीधा आपसे है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुपर 8 में तमाम खबरों की एक छोटी सी झलकियां। आज आप देखेंगे कि कैसे दुनिया में चल रही है भारत की कूटनीति। इटली पहुंचे पीएम मोदी तो क्या हुआ, वही बात नीट पेपर लीक के बारे में भी होगी, जिसके तार कैसे नागपुर तक जुड़ने लगे हैं। वहीं महंगाई पर तूफानी वार पलटवार और हड़ताल का डबल झटका आपको बताएंगे। साथ ही ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कैसे शुभेंदु सरकार का एक्शन चल रहा है वो भी बताएंगे। और देश कब तक झेलेगा इस चढ़ते हुए पारे का 48 डिग्री वाला टॉर्चर, ये खबर पर भी होगी बात। साथ ही आईपीएल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कैसे धमाल मचाया है, पूरी खबर थोड़ी देर बाद। तो तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर दोनों की अगली मुलाकात होने वाली है। मुलाकात अगले महीने फ्रांस में हो सकती है। अगले महीने 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में G7 की बैठक होने वाली है, और इस बैठक के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। इसी G7 मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शिरकत करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात इस बैठक के दौरान हो सकती है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस पर कई बार अमेरिका का साथ ना देने का आरोप भी लगाया था। ऐसे में ये मुलाकात न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। मैक्रों ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, जहां पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में जल्द ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। हमारी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। गीता जी, ये बताइएगा, देखिए करीब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, ऐसे में भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए ये कितनी अहम है?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। जैसे आपने कहा, कई समय बाद दोनों लीडर्स मिल रहे हैं और मिलेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस जाते हैं, जो ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन साइडलाइन G7 के साइडलाइन पे इनका मिलना बहुत जरूरी है। देखना ये होगा कि जुलाई में भी वक्त है कि क्या ये युद्ध रुकती है या नहीं, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और जो मुद्दा उठ रहा है, जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है, वो ये युद्ध है, जिसकी वजह से तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और ऐसे मौके पे जहां पर जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है टॉक्स को, तो ये मुलाकात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और देखना ये भी होगा कि क्या लीडरशिप लेवल पे जब अगर बातचीत होती है तो क्या ट्रेड पर जो बात हो रही है वो आगे बढ़ सकता है या नहीं, क्या कोई अनाउंसमेंट हो सकता है वहां पर। तो कई सारे मुद्दे हैं जो अब भारत के साथ जो हम देख रहे हैं, जिसमें लीडरशिप लेवल की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये मुलाकात से शायद काफी चीजों पर डिसीजन हो सकता है।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गीता तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, फ्रांस में अगले महीने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की भी संभावना है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये 5 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। ऐसे में पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। अब आज इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मिलेंगे। और भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी एक नई ऊंचाइयों पर है, तो इटली यात्रा के दौरान चुनिंदा भारतीय और इतालवी सीईओ से भी मुलाकात का प्लान पीएम मोदी का है। ये पीएम मोदी का तीसरा इटली दौरा है और इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बनकर उभरा है। तो 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया है। और ऐसे में ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम है। कई मुद्दों पर आज जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी होने वाली है। तो इटली पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। ये चार अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। भारतीय वहां पर पहुंचे थे और पूरे समय पर बस मोदी मोदी के नारे ही सुनाई दे रहे थे। कला का प्रदर्शन भी उसके बाद पीएम मोदी के सामने किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, भारतीय कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामने देखकर। और आज इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री की एक अहम मुलाकात भी होगी। तो इटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपने देखी, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। पूरा जो कार्यक्रम, अब इटली में पीएम मोदी का क्या रहने वाला है अब वो समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति सर्जियो मेटरेला से मुलाकात दोपहर 1:45 पर पीएम मोदी की होगी। दोपहर 2:45 पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जो कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। वही शाम 7:00 खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा भी पीएम मोदी करने वाले हैं और रात 8:45 पर उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना पीएम मोदी हो जाएंगे। तो इटली का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी वाली अपनी तस्वीर को साझा करते हुए मेलोनी ने लिखा है, वेलकम टू रोम माई फ्रेंड। ये तस्वीर भारत इटली के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मध्यपुर संकट से जुड़ी हुई खबर है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है और इस मीटिंग में ट्रंप को उनकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास डील के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। और वही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब दोबारा हमले को लेकर फैसला शुक्रवार, शनिवार या अगले हफ्ते तक हो सकता है। यानी ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ईरान के साथ जारी युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौता करने के लिए बेताब है और जल्द तेल की कीमतों में भारी गिरावट दिखेगी। अगले हफ्ते तक एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ट्रंप ये साफ कह चुके हैं।
3: And now we're blowing it away. We're blowing everything away. And we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen. And it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
1: तो ईरान को ट्रंप की चेतावनी की खबरों के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज में नाकेबंदी जारी रखी है और इससे जुड़ा वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कल वीडियो जारी किया जिसके जरिए दावा यह किया गया है कि अमेरिकी सेना होर्मुज पर अपनी नाकेबंदी को लागू कर रही है। लगातार गहराते हुए वैश्विक संकट के बीच होर्मुज में जारी तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी वाला एक्शन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ये वीडियो जारी किया है। ईरान को ट्रंप की चेतावनी की खबरों के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज में नाकेबंदी जारी रखी हुई है और इससे जुड़ा ये वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कल वीडियो जारी किया था।

0: राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता को डराने वाले बयान देने की जगह कांग्रेस को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि केंद्र के आयुष्मान, जनधन और किसान सम्मान नीति जैसे योजनाएं आखिर किसके लिए है। सभी वर्गों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण के ये स्टेटमेंट सामने आए। तो निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको समझाते हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस एक तरफ, केंद्र पर हमलावर है, तो अब निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट सामने आए। उन्होंने कहा है कि किसान, युवा, गरीब, महिलाओं के लिए काम कर रही है सरकार, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा है जनता में भय फैलाना कांग्रेस बंद कर दे, ये उन्होंने साफ तौर पर अपने जवाब में कहा है। तो जहां पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं उसके बाद निर्मला सीतारमण का ये जवाब सामने आया है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर उन्होंने कहा है किसान, युवा, गरीब, महिलाओं के लिए सरकार ने हर प्रयास किए हुए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच एक और परेशानी करने वाली खबर ये है कि आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी। जी हाँ, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने देशव्यापी हड़ताल पर ऐलान किया है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। साथ ही आज देश भर में तमाम मेडिकल शॉप बंद रहेंगी। तो वहीं दिल्ली में 21 मई यानी कल से 3 दिन के लिए ऑटो टैक्सी वाले हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच ऑटो टैक्सी वालों ने भी किराया बढ़ाने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक खत लिखा है। ऑटो यूनियन का कहना है कि 15 साल से किराया उनका नहीं बढ़ा, ऐसे में अब वो हड़ताल करें। तो देश भर में आज दवा की दुकानें बंद रहेंगी और साथ ही दिल्ली में 3 दिन तक चक्का जाम रहेगा। जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वो किराया बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं और ऐसे में वो हड़ताल पर जाएंगे। देश भर में आज मेडिकल स्टोर बंद रहेंगी। AIOCD का देशव्यापी हड़ताल का ऐलान है। दवा विक्रेताओं की अब हड़ताल है, तो आज ये हड़ताल होनी है। वहीं 3 दिन का चक्का जाम भी होगा। कल से ऑटो टैक्सी वाले भी हड़ताल पर जाएंगे। दिल्ली में 3 दिन नहीं चलेंगी टैक्सी और ऑटो। वही आगे बढ़ते हैं, महंगाई का करंट मुंबई वालों को भी लगा है। दरअसल मुंबई का सबसे मशहूर वड़ा पाव महंगा हो गया है। जी हाँ, वड़ा पाव की कीमत 5 रुपए तक बढ़ गई है। यानी मुंबई वालों के लिए सुबह से शाम तक का स्वाद अब कड़वा हो गया है। वड़ा पाव नाश्ते से लेकर स्नैक्स तक में मुंबई वालों का स्वाद बढ़ाता है और एक तरह से मुंबई की पहचान वड़ा पाव बन चुका है, उसके भी दाम बढ़ गए। मुंबई का मशहूर वड़ा पाव भी अब महंगा हो गया है लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से। अब ये मार मुंबई वालों को भी झेलनी पड़ रही है। तो वही यूपी का बुलडोजर अब पश्चिम बंगाल में गरज रहा है। कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बरनपुर में तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यालय पर एक्शन हुआ और टीएमसी का दफ्तर ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लिया गया। आरोप है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जमीन पर टीएमसी ने अवैध रूप से दफ्तर बनाया था, जिसे इसको मैनेजमेंट ने गिरा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन खाली करने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। तो वहीं बंगाल में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया है। 21 मई यानी कि कल हावड़ा, सियालदह स्टेशन और बालीगंज में टीएमसी नेता प्रदर्शन भी करेंगे। ममता बनर्जी के साथ हुई इस बैठक के बाद पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि टीएमसी बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ आंदोलन करेगी। और टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए।
1: तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ प्रोग्राम होगा, क्योंकि पोस्टपोल वायलेंस चल रहा है, बुरी तरह से चल रहा है।

0: और हकर लोगों के ऊपर जो एक्शन हुआ है गरीबों का, वो बहुत डैमेज हो रहा है। इसीलिए 21 मई सियालदा, हावड़ा और बालीगंज एरिया में तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ ये प्लेटफॉर्म से तृणमूल कांग्रेस टीम प्रोटेस्ट प्रोग्राम होगा।
1: वही फालतू विधानसभा सीट पर टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब बीजेपी उनके पुष्पा वाले बयान की याद दिला रही है, तो वही टीएमसी के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है।
2: निजे के सिंह मन करे सिनेमार आदिशे हमरा पुष्पा झुकेगा नहीं।
3: पुष्पा झुकेगा नहीं, ये फिल्मी डायलॉग मारने वाले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान न सिर्फ झुके बल्कि फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खुद को चुनावी दौड़ से बाहर भी कर लिया।
4: सम्मानीय मुख्यमंत्री फलता उन्नयनेर जन्य स्पेशल पैकेज दिच्छे, सेई जन्य आमी आगामी 21 मई जे रिपोल आछे से रिपोल थेके रिपोलेर कांटेस्ट थे के आमी निजेके दूरे सरिये निलाम।
3: इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो। फलता और जहांगीर खान का रिश्ता सीधा अभिषेक बनर्जी से है। अभिषेक बनर्जी को हार्बर मॉडल पर इतना भरोसा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने सीधे अमित शाह को चुनौती दी थी। अब सवाल ये है कि अगर अभिषेक को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना ही भरोसा था तो वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहाँ प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने यहाँ अभी तक डर और अपने सिंडिकेट के जरिए चुनाव जीता, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका डायमंड हार्बर मॉडल दरक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: बात नीट पेपर लीक की कर लेते हैं, जिसके केस के तार अब विदर्भ से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने नागपुर के चंद्रपुर इलाके में एक साथ कई जगह पर छापेमारी की है। जांच टीम दिल्ली से नागपुर पहुंची और संदिग्ध छात्रों के अलावा उनसे जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। सीबीआई को शक है कि इस पूरे मामले में बिचौलियों, कोचिंग संचालकों और डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक दो संदिग्धों से लंबी पूछताछ की गई और इस दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच भी की गई है। अब बात गर्मी की कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त भीषण गर्मी से उबल रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है, जहां पर बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार जा चुका है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी के अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले 7 से 8 दिन तक इससे कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।
3: अभी तो आधा मई ही बीता है और आसमान से आग बरसने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। मौसम विभाग के इस नक्शे में उत्तर प्रदेश अलग लाल रंग से दर्शाया गया है। आलम यह है कि दुनिया और देश के सबसे गर्म इलाकों की सूची में यूपी के शहरों ने अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम है, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर, अलीगढ़, बलरामपुर, बरेली और वाराणसी में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जौनपुर, आजमगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली और अयोध्या में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
5: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ, रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत यह है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहाँ पर तपन सड़क के आसपास का जो एरिया है, बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है।
3: मौसम विभाग ने साफ कह दिया।
1: अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। आईपीएल के मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने शानदार जीत हासिल की है। राजस्थान की टीम ने लखनऊ को 7 विकेट से हरा दिया और इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में शानदार 93 रन बनाए। इसके साथ ही वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हो गए हैं। उन्होंने अब तक खेले गए 13 मैच में 579 रन बनाए और कल खेले गए मैच में राजस्थान की ओर से ध्रुव जुरेल ने 53 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 43 रन की पारी खेली। लखनऊ ने राजस्थान के सामने 221 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में विजेता टीम ने 20 ओवर में पहली गेंद पर ही जीत हासिल कर ली। हालांकि प्लेऑफ में राजस्थान की जगह अब तक पक्की नहीं हुई है। इसके लिए उसे अपने आखिरी मैच में हर हाल में मुंबई इंडियंस को हराना होगा या फिर मामला दूसरी टीमों का जीत हार पर भी निर्भर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं सुपर 8। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धड़ाम, रिनोवेशन के लिए खाली थी इमारत, वीडियो वायरल। दिल्ली के इंद्रलोक में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। संभल में युवक का शव मिलने पर बवाल, पोस्टमार्टम के बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। टेहरी में पहाड़ टूटने से बड़ी मुसीबत, सड़क पर मलबा गिरा तो ट्रैफिक बाधित रहा। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, पिता पर लगा गंभीर आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR, दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की से बदसलूकी का आरोप। इंदौर के एक बिल्डर से मारपीट, ब्लैकमेल और धमकी देने के आरोप में भोपाल से एक महिला गिरफ्तार। भीषण गर्मी के बीच नैनीताल का मौसम पर्यटकों को लुभा रहा है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलाब। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
9: After multiple assassination attempts, they can't even get...
10: They're reliable.
11: Always when I need them.
8: To live sports action.
12: One hand jam by LeBron on the break.
13: That's another three, Steph Curry.
8: And your favorite music.
14: Well, the dawn begins to crack.
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
15: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
16: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
5: हिंट बड़े आराम से।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: मैं करता हूँ ना,
8: मैं करूँगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
10: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
11: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
12: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट,
17: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: Like I said before, we better hold the sins.
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
18: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
19: In association with
20: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
21: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
19: Hind, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
22: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
23: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
24: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

की जांच अब विदर्भ तक पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में से दो संदिग्ध उम्मीदवारों के घरों पर पहुंचकर लंबी पूछताछ की। मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड खंगाले। चंद्रपुर में भी एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ की गई। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने बोर्ड पर कालिक पोतकर और तोड़फोड़ जताया। रोष, कोचिंग माफिया के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। नीट छात्रों की परेशानी सुनकर भावुक हुए केजरीवाल। एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का भी मुद्दा उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की। दोस्तों और परिवार के नाम पर भी मालिकाना हक का आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले, अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों की होगी गहन जांच। बेनामी और साझा मालिकाना एंगल की भी पड़ताल। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। आरक्षण 17% से घटाकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। अब सिर्फ 66 श्रेणियों को फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी के तहत 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था। व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों को आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलता उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। तो कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर अवैध निर्माण को लेकर जारी किया नोटिस। 7 दिनों में जवाब देने के निर्देश। नोटिस जारी होने के बाद अभिषेक बनर्जी का पुष्पा स्टाइल में जवाब। कहा, चाहे घर गिरा दो, मैं झुकूंगा नहीं। कोलकाता में बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध संपत्ति और जमीन कब्जे के आरोप लगाए। टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। टीएमसी ने पोस्ट पोल हिंसा और कथित बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 21 मई को हावड़ा, सियालदह और बालीगंज में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। टीएमसी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। नॉर्वे में कामयाब दौरे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी। इटली के विदेश मंत्री ने किया गर्म जोशी के साथ स्वागत। रणनीति साझेदारी के साथ कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर। इटली में होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत इटली व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंचा। आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी। पीएम मोदी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत का 38 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैश्विक व्यापार में बढ़ी पकड़। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश बेहद ही कठिन दौर की ओर बढ़ रहा है और संकट के समय प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने ईंधन कीमतों, रुपये में गिरावट और एफडीआई को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा। कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और जल्द $1 के मुकाबले ₹100 तक पहुंच सकता है। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता कार्यकर्ता और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वीर पासी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है। व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। किसानों के लिए सकारात्मक संकेत। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मोदी सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि कर्ज में 15.7% और एमएसएमई लोन में 33% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा। भारत का कुल निर्यात $863 अरब पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी दर्ज। छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री का बड़ा ऐलान। बोले, देश के विकास में बाधा, नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह बोले, छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म हुआ। बीजेपी सरकार बनाने के बाद खत्म हुआ खौफ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में बंदूकों के युग का अंत। 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। आसनसोल नगर निगम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाने में तनाव। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई कार्यकर्ता हिरासत में। आसनसोल के बरनपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बने तृणमूल कार्यालय पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस के बाद की गई कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की अपील का समर्थन करते हैं। ईंधन बचत की अपील का असर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेंद्र पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार की सवारी से पहुंची।
कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बोर्ड परीक्षा के अंकों पर एमएचसीईटी स्कोर में विसंगति का मुद्दा उठाया, जांच की मांग। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में बाबा अशोक खरात पर ईडी की कार्रवाई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई, 208 के पार पहुंचा एक्यूआई, बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप एक लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8वीं तक स्कूल बंद, 31 मई के बाद खुलेंगे, प्रशासन ने लू के चलते एडवाइजरी जारी की। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, श्रद्धालु के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घरों के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर, बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, खजुराहो में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। वहीं भोपाल में तेज धूप, लगाए गए कूलर, बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, खजुराहो में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। वहीं भोपाल में तेज धूप के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए जारी किया हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में 39 डिग्री दर्ज हुआ पारा। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद। 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में भीषण आग, दूर तक उठती दिखी आग, भयंकर लपटे। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट का बारिश की जताई उम्मीद। 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में भीषण आग, दूर तक उठती दिखी आग, भयंकर लपटे। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट का ई ट्रेनिंग रूम जलकर खाक हुआ, सरकारी दफ्तर समेत कंप्यूटर सिस्टम राख। वडोदरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में आग लगी, तीसरी मंजिल से शुरुआत। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह गिरी 4 मंजिला इमारत, वायरल वीडियो में सामने आया हादसा। पश्चिम बंगाल में हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी, आरपीएफ जवानों ने कोच अलग कर संभाली स्थिति। नूह के दो गांव में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग, मवेशी झुलसे, घरों में गृहस्थी का सामान रहा। हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के जनरल कोच के बाथरूम से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी, आरपीएफ जवानों ने कोच अलग कर संभाली स्थिति। नूह के दो गांव में अज्ञात कारणों से लगी भयंकर आग, मवेशी झुलसे, घरों में गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ, लाखों का नुकसान। अहमदाबाद के सानंद में पेंट कंपनी में लगी भयंकर आग, केमिकल और थिनर के कारण तेज हुई आग की लपटे। कर्नाटक के शिवमोगा में विशाल मार्ट में लिफ्ट फंसने से 9 लोग फंसे, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने वाला एक वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। पालघर सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत के बाद एक ही गांव के 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, पूरे गांव में पसरा मातम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में पानी फेंकने पर दो पड़ोसी आपस में जाकर भिड़े, जमकर हुई मारपीट, मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के वसई में एटीएम मशीन का वीडियो वायरल, तकनीकी गड़बड़ी के कारण 100 रुपए निकालने पर मिले 500 के नोट, कैश के लिए उमड़ी भीड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने किया हमला। सूरत में जमीन दलाल की गलती से दूसरे वाहन की डिग्गी में रखे 1,16,000 रुपए सीसीटीवी की मदद से बरामद।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 11:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:12 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए दीवार में शांति रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, जिसका प्रयोग करके आप

अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रॉन ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल तक, जबरदस्त स्वागत। आज पीएम जॉर्जिया मेलेनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर फोकस। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में ट्रंप ने की सीक्रेट वॉर मीटिंग, सैन्य हमलों के विकल्पों की दी जानकारी। ट्रंप बोले डील के लिए ईरान के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री का पलटवार, कहा डर फैलाने की जगह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में तीन दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की मांग।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इटली की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलेनी के साथ मौजूद हैं। कल देर शाम प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और उनकी विजिट काफी खास मानी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कुछ ऐतिहासिक स्थलों को समझाती हुई जॉर्जिया मेलेनी दिखाई दे रही हैं। ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री के साथ जॉर्जिया मेलेनी और इटली में मिनी भारत की एक झलक भी इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दी। हर बार जब दोनों की मुलाकात होती है पूरे विश्व की नजरें इस पर रहती हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि इन दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ हैं और इटली और भारत किस तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए मकाम की ओर बढ़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, आप और मैं दोनों जानते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त प्रधानमंत्री की इटली विजिट से पटा हुआ है।
1: और ये बात जॉर्जिया मेलोनी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, इसलिए हर बार वो एक सेल्फी लेती हैं जिसे वो मेलोडी मोमेंट कहती हैं और प्रशंसकों को टीम मेलोडी कहती हैं। हर बार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती हैं और ये भारत और इटली के बीच में बढ़ती करीबी भी का भी एक असर है, क्योंकि अगर आप देखें 2023 के बाद से ये 7 मुलाकातें हो चुकी हैं दोनों नेताओं के बीच में। और यहां तक कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका फॉरवर्ड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखा गया था, वो भी प्रकाश में सामने आई थी।

0: और ये केवल दो नेताओं के बीच की आपसी केमिस्ट्री या उनके बीच में दोस्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ती प्रगाढ़ता का भी मसला है। आप देखें कि भारत और इटली ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाया है जो 2025 से 2029 तक दोनों देशों के बीच में किस तरीके से साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है, रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया जा सकता है, रक्षा के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से भारत और इटली मिलकर जो है ज्वाइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इनमें किस तरीके से सहयोग किया जा सकता है। भारत के लिए इटली एक बड़ा प्रमुख जो ट्रेड डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो किस तरीके से इटली के निवेश को आकर्षित किया जा सकता है, भारत की कंपनियां इटली में निवेश कर सकती हैं। 2 लाख के करीब भारतीय वहां पर मौजूद हैं, करीब 5,500 जो भारतीय छात्र हैं वो इटली की के विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ रहे हैं, और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को लेकर भी सहमति है कि किस तरीके से भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में इटली जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे समानता के बिंदु हैं जिनके ऊपर कोशिश होगी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की, कि जब आज वो बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो इन सहयोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से और ठोस माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। और ये जो मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं ना रोम के कोलोसियम से, ये बताती हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में इस चीज का रियलाइजेशन है कि भारत और इटली दोनों की दोस्ती दोनों के लिए न केवल फायदेमंद है, बल्कि ये भारत और यूरोप के बीच जो बढ़ती हुई नजदीकियां हैं उनको भी मजबूत करेगा।
1: और आज का क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का इटली में रहने वाला है प्रणय?
0: यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कॉलोन है इटली के राष्ट्रपति के से मुलाकात के लिए, उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ में उनका की डेलीगेशन लेवल टॉक्स है, यानी प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत होती है वो होगी। ज्यादा कार्यक्रम नहीं है प्रधानमंत्री का, यही मुख्य कार्यक्रम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री को रवाना भी होना है शाम के समय में, इटली के इस वक्त के अनुसार करीब 5 बजे वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे और कल सुबह वो भारत पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा था, इसमें आप देखें तो 4 देश तो यूरोप के शामिल थे, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और अब वो इटली पहुंचे हैं। ये भारत और ईयू यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो एफटीए मुक्त व्यापार समझौता जनवरी 2026 में हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूरोप यात्रा थी। किस तरीके से भारत के साथ में यूरोप का व्यापार और कारोबार बढ़ाया जा सकता है, यूरोप भारत के लिए एक प्रमुख व्यापार डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। अगर हम नीदरलैंड की बात करें या इटली की बात करें तो ये दोनों ही देश जो हैं ये भारतीय व्यापार, कारोबार और निर्यात के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। और साथ ही भारत की कोशिश है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो द्विपक्षीय कारोबार है उसको बढ़ाया जाए। अगर हम इटली की ही बात करें तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि इटली के साथ में जो द्विपक्षीय कारोबार है वो 20 अरब यूरो से अधिक होना चाहिए अगले 3 सालों के अंदर, और ये काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा होनी है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है जहां पर जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई है। ये कर्टियस हैंडशेक इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर इस वक्त छाई हुई हैं, जिसमें एक सेल्फी भी शामिल है जो जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री के साथ कर ली थी। और रोम और उसके आसपास जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री और मेलोनी मौजूद हैं, उन्हें समझाते हुए जॉर्जिया मेलोनी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो इटली में प्रधानमंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई ऐसे समझौतों पर मोहर लगेगी जिससे आने वाले वक्त में दोनों देशों को फायदा पहुंच सके। तो रोम में भी मोदी मोदी के स्वर गूंजे और वहां पर जो भारतीय समुदाय है उन्होंने भी प्रधानमंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया।

0: और यही वो सेल्फी है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलेनी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जब भी प्रधानमंत्री इटली गए हैं, इसी तरह की सेल्फी मेलेनी ने पोस्ट की है। जॉर्जिया मेलेनी और प्रधानमंत्री आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई अहम समझौतों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा आज शाम तक ही प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूदगी रहेगी, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। भारत और इटली के बीच कैसे परस्पर रिश्ते मजबूत हों, इस पर फोकस रहेगा। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणय, हमने देखा किस तरीके से भारत और इटली लगातार इस बात को लेकर फोकस्ड हैं कि कैसे उनके परस्पर रिश्ते और मजबूत हों, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो, और जो खास तौर पर प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात है उसको लेकर क्या जानकारी है।
1: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो द्विपक्षीय यात्रा के ऊपर हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली जो है बायलैटरल विजिट है इटली की। हालांकि वो मल्टीलैटरल विजिट्स के लिए या जो बहुराष्ट्रीय संगठन हैं उनके लिए, उनकी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए जाते रहे हैं। रोम में ही कुछ समय पहले G20 की शिखर बैठक हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी। लेकिन द्विपक्षीय दौरे पर जब जाते हैं तो राष्ट्रपति से मुलाकात एक कर्टसी का हिस्सा होती है। आप जानती हैं कि हमारे यहां भी जब कोई राजकीय मेहमान बनकर आते हैं तो उनका औपचारिक स्वागत जो है वो राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट्स में किया जाता है। राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होती है। उसी तरीके से इटली के राष्ट्रपति मटेरेला से भी जो मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी की, वो औपचारिक मुलाकात है, कर्सी मीटिंग है। लेकिन जो मुख्य मुलाकात है वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ में उनकी होनी है, जिसके अंदर द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा काफी लंबा चौड़ा रखा गया है, जिसके अंदर रक्षा से लेकर कृषि के क्षेत्र तक काफी महत्वपूर्ण जो मुलाकातें हैं, चर्चाएं हैं, वार्ताएं हैं वो होनी है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर दस्तखत की उम्मीद की जा रही है। और अगर आप देखें तो इटली के इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये UN की संस्था है, भारत इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश होने के नाते खाद्य सुरक्षा भारत की चिंता और प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण विषय है। और दुनिया के अंदर जो पश्चिम एशिया का इस समय संघर्ष चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिम एशिया के इस संघर्ष के बाद दुनिया में एक बड़ा संकट जो है वो केवल तेल और ऊर्जा का नहीं है नेहा, वो बड़ा संकट फर्टिलाइजर का भी संकट है। और उसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या और उपाय किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की FAO का जो हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, वहां भी आज उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और दिल्ली रवाना होने से पहले वो FAO के ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, वहां भी वो उनकी बातचीत होगी कि किस तरीके से भारत एक महत्वपूर्ण सहायक के तौर पर भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है, और साथ ही भारत की दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश होने के नाते भारत की चिंताएं और प्राथमिकताएं क्या है, वो भी हम UN के इस संगठन को बताने की कोशिश करेंगे। जी
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: भूमिका अदा कर सकता है, और साथ ही भारत की दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश होने के नाते भारत की चिंताएं और प्राथमिकताएं क्या हैं, वो ही हम UN के इस संगठन को बताने की कोशिश करेंगे। जी
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है इटली के दौरे को लेकर। ये प्रधानमंत्री का पोस्ट सामने आया है, कल कोलोजियम वो गए थे जॉर्जिया मेलेनी के साथ और वहां पर सेल्फी मेलेनी ने ली थी। इसके बाद भारत इटली की दोस्ती और मजबूत हो, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर। वहां के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, पहली उनकी बायलैटरल विजिट है। इससे पहले अन्य देशों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम इटली में रहा है, लेकिन इस बार कई ऐसे समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं जो भारत और इटली दोनों को लाभ पहुंचाएं। दोस्ती को और मजबूत बनाने का यहां पर संकल्प प्रधानमंत्री द्वारा ये पोस्ट। जाहिर तौर पर प्रणय, जिस तरीके से भारत और इटली आगे बढ़े हैं और जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, ये पहली बायलैटरल विजिट है और इस पूरे दौरे में यही सबसे अहम पड़ाव। हालांकि बहुत ऐसे देश भी प्रधानमंत्री पहले जा चुके हैं जहां पर तेल को लेकर महत्वपूर्ण समझौते किए गए, हालांकि इटली को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो पूरी विजिट है इसमें फोकस किस बात पर रहने वाला है।
1: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री की मोदी की इन पांच देशों की यात्रा को देखें तो इसके बिग टेक अवेज क्या है। भारत की चिंताएं इस समय दोहरे फ्रंट के ऊपर है। पहला, तेल का संकट, ऊर्जा के साधनों का संकट और उनको किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है वो, और दूसरी तरह जो घटता हुआ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको हम बचाना भी चाहते हैं, जिसके अंदर हम कुछ मितव्ययिता से और कुछ जो है वो अधिक आय बढ़ाने के साधनों पर उपाय कर रहे हैं, उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। यानी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर अधिक कहां से आ सकता।
0: ठीक है, प्रणय से हमारा संपर्क टूट गया है। कहां से डॉलर अधिक आ सकता है, कहां से रिश्ते और प्रगाढ़ हो सकते हैं, जो मौजूदा वैश्विक संकट है उसको लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा माना जा रहा है, जिसमें इटली एक पड़ाव है और कोलोजियम से आपने सेल्फी देखी जॉर्जिया मेलेनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला से भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का फोकस द्विपक्षीय वार्ता जो कि इटली के साथ होनी है उस पर भी रहने वाला है। एक पोस्ट प्रधानमंत्री ने किया एक्सपर कि और मजबूत हों भारत और इटली के दोस्ताना रिश्ते। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया। इसके साथ ही चीन के कई नेताओं ने पुतिन से मुलाकात की। थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी और ये दौरा दो दिनों का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के ठीक बाद हो रहे इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये यात्रा रूस चीन के बीच सद्भावना मैत्री और सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, स्वागत उनका हो चुका है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन का भव्य तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक बाद पुतिन अब चीन पहुंचे हैं और ये गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शी जिनपिंग उनके साथ मौजूद हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। दो दिवसीय ये दौरा है जिसमें द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसके साथ ही चीन के कई अन्य नेताओं के साथ भी पुतिन की वार्ता हो सकती है। द्विपक्षीय बैठक अब से कुछ ही देर बाद, ईरान अमेरिका युद्ध के बाद पुतिन की ये पहली मुलाकात है शी जिनपिंग के साथ। द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, खासतौर पर जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन अब भी बनी हुई है, सीज फायर हुआ नहीं है, ऐसे में चीन ने किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही रशिया की ओर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कैसे रशिया इस पूरे युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका निभाता है। हालांकि उस युद्ध पर अभी तक विराम नहीं लगा है, लेकिन चीन और रूस अब आमने सामने वार्ता के लिए। और बात दो बेटियों के लिए, देश के दो शहरों में चल रही इंसाफ की जंग की करेंगे खबर। भोपाल में ट्विशा शर्मा और गोरखपुर में रत्ना सिंह की मौत को लेकर इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। ट्विशा शर्मा का ससुराल में फंदे से लटका शव मिला था, जिसे ससुराल वालों ने खुदकुशी बताया और मायके वाले हत्या कह रहे हैं। वहीं लखनऊ के एक सैलून में बतौर मैनेजर काम करने वाली रत्ना सिंह ने अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली और सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर सैलून संचालक और कई लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और सुसाइड के नुकसान का आरोप लगाया। दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, शुरुआत ट्विशा मौत मिस्ट्री के साथ। तो भोपाल की ट्विशा मौत मिस्ट्री केस में आज भोपाल की एक अदालत अहम सुनवाई करने वाली है। ट्विशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहा है। परिवार ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की और इस मांग की वजह से अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। ट्विशा के परिवार की इस मांग पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनुदिता गुप्ता आज सुनवाई करने वाली है। कोर्ट ने पुलिस डायरी तलब की है। इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर सिंह पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 6 टीमें समर की तलाश कर रही है। समर का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बीच हो रहा है जब एक लड़की जिसकी मौत हुई है उसका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। परिवार ये मांग कर रहा है दोबारा पोस्टमार्टम हो, उसमें क्या बाधा आ रही है, दोबारा पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पा रहा है?
2: देखिए ये कानूनी अड़चने हैं, दरअसल परिवार जो है वो तब तक इंतजार कर रहा था दोबारा पोस्टमार्टम के लिए याचिका लगाने के लिए या आवेदन लगाने के लिए, जब तक समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर कोई सुनवाई ना हो जाए। हमने कल परिवार से यही पूछा था कि पिछले 7 दिनों से शव रखा हुआ है आपकी बेटी का, तो अंतिम संस्कार के लिए आप कोर्ट में कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पहले वो ये देखना चाह रहे थे कि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, उसके बाद ही उनको ये याचिका लगानी थी। और जब सोमवार को जो अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तब तक काफ़ी लंबा समय हो गया था, शाम के तकरीबन 6 बज गए थे, और ऐसे में वहाँ पर उस वक्त याचिका लगाई नहीं जा सकती थी सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। तो कल उन्होंने वकीलों से सलाह मशवरा करके और जो कागजी तैयारी करनी थी वो पूरी करके कल कोर्ट में आवेदन दे दिया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, और इसके बाद तय हो जाएगा कि ये पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो क्या पोस्टमार्टम दोबारा मध्य प्रदेश में होगा, या परिवार की जो मांग है कि पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश से बाहर किया जाए, कोर्ट वहां की इजाजत देता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया जो है पुलिस में वो भी शुरू कर दी है, ताकि समर्थ सिंह कहीं विदेश ना भाग जाए ये शक भी है पुलिस को, तो पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित है, लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है,
0: ठीक है।
2: लेकिन सवाल इन सबके बीच में ये है कि एक जज का बेटा और खुद एक वकील, क्या उसे कानून पे इतना भरोसा नहीं है कि वो भागा भागा फिर रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं ट्रिशा शर्मा की मौत सुसाइड है या फिर मर्डर से लेकर चर्चा तेज है। ट्रिशा के परिवार वाले ट्रिशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह दावा है कि ट्रिशा का मानसिक इलाज चल रहा था। आज तक ने डॉक्टर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्रिशा का इलाज किया।
2: ट्रिशा की मौत का मामला देश भर की सुर्खियों में है, और उसी तरह सुर्खियों में एक नाम और है, और वो नाम है भोपाल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का। गिरिबाला सिंह जो कि त्विशा की सास है, उन्होंने अपने बेल ऑर्डर में इसका जिक्र किया है कि त्विशा जो है वो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के क्लिनिक में गई थी। उन्होंने आज तक से बात करते हुए भी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का नाम लिया। आज एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी कोशिश हमने की आपसे बात करने की, लेकिन अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सुर्खियों में है, दावा किया जा रहा है कि त्विशा यहाँ पे आई थी, आपसे कंसल्ट भी उसने किया था, और आपने ही काउंसलिंग के लिए भी आगे डॉक्टर्स के नाम उन्हें दिए थे, क्या है सर इन दावों में सच्चाई?
3: देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि निश्चित तौर पर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन पेशेंट की फाइन डिटेल्स देना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देना, उनकी दवा के बारे में जानकारी देना, और खासकर जब ऐसा कोई मामला चल रहा हो तो वहाँ पर हम पब्लिकली इस बात को कहीं पर भी नहीं बोल सकते। जहाँ पर भी जो न्याय प्रक्रिया है उसका, अगर जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ जो भी मेरे पास जानकारी है।
2: न्यायिक प्रक्रिया का आपने नाम लिया, इसका मतलब कोर्ट और पुलिस अगर वो आपके पास आए तो आप उनसे साझा कर सकते हैं जानकारी?
3: तौर पर जो न्याय प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा होऊंगा उसमें जो भी मुझसे पूछा जाएगा तो वहां पर हम जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली किसी भी पेशेंट के बारे में ऐसे बात करना, उनकी डिटेल्स देना, उनकी दवा की जानकारी देना, उनकी बीमारी की हिस्ट्री की जानकारी देना कहीं ना कहीं से मतलब अनएथिकल है।
2: सिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट था क्या सर?
3: देखिए, मैं उनके बारे में मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता।
0: वहीं त्विशा की बहन नैना शर्मा ने ट्रिशा की मानसिक बीमारी की खबरों को खारिज कर दिया। कल मैंने खुद नैना शर्मा का इंटरव्यू लिया, जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा ट्रिशा के बारे में, आप भी सुनिए।
4: मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत कर रही, वो क्यों भागे? मैम, इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे, अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती, और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है, इनको तो सब पता होगा, ये तो सब कुछ पता, जब ये प्रीमेडिटेट मर्डर कर सकते हैं तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है, अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में, ये तो इनके कहने पे आई है, ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव।
0: और अब बात गोरखपुर की रत्ना सिंह की, जिसने 12 मई को लखनऊ में खुदकुशी कर ली। रत्ना के पिता का आरोप है कि रत्ना सिंह सैलून में मैनेजर थी, उसके संचालक और कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने जान दे दी। उनके लिए गोरखपुर में कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इंसाफ की मांग की गई। इस मामले में कल दो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने फरार चल रही 25,000 रुपए की दो इनामी महिला आरोपी पल्लवी जोशी और वैशाली को गिरफ्तार किया है। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, जबकि वैशाली को लखनऊ के एक होटल से दबोचा गया है।
5: वही तो हमें भी जानना है ना सर, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि वो अपनी डेथ के एक दिन पहले हमसे बात कर रही है, कॉन्वर्सेशंस कर रही है, वॉइस चैट कर रही है इन अ वेरी चर्पिंग मोड, देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट शी हैज टू एंड अप हर लाइफ लाइक दिस। जब उसकी डेथ हुई थी तब हमने अप्रोच किया था पुलिस को, FIR वगैरह कराई थी, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया था कुछ दिनों तक। बट 15th को जब हम CM सर से मिले उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी बदली। नहीं, वो उसी टाइम पे मिली थी जब हम पोस्टमार्टम के लिए थे वहां पे, तो लोगों ने बहुत बार हमें ये भी बताने की धमकियां दी थी, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी थी कि आप ये सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप आगे मत बढ़िए।
6: वो बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल लड़की थी, वो कभी ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती है, कभी नहीं। मतलब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अपनी लाइफ खत्म कर देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर, और ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई भी सुसाइड नहीं है। इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ मेंटल मर्डर। उसको बहुत सोच समझ के मारा गया है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, रत्ना सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि घर वाले तो कुछ और आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है ये आत्महत्या नहीं हत्या है।
7: बिल्कुल, देखिए नेहा, जिस दिन से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व होकर आदेश दिया है, उस दिन के बाद से ही लगातार कार्रवाई जारी है। और लेटेस्ट अगर आप बात करें तो रत्ना सिंह मामले में पल्लवी और वैशाली की गिरफ्तारी हुई, जो कि एक होटल से हुई है, 25,000 रुपए के इनामी थे। अब दूसरी तरफ इसमें जो और तीन आरोपी थे, तो शरद और इसके अलावा प्रशांत और मंगल, वो भी आरोपी गिरफ्तार हो जा चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो साफ कह रही कि कहीं ना कहीं इसमें जो स्ट्रगलिंग आई है, और उस तरीके से, यानी कि अभी शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के फंदे में जिस तरीके से आती है वो चीज़ें आई हैं निकलकर, और उसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा कि आखिर उसके रीज़न क्या रहे, किस तरीके से उकसाया गया उसको, या जिस तरीके से वो प्रताड़ित हो रही थी लगातार, कहीं ना कहीं सरस सिंह, इसके अलावा प्रशांत और इसके अलावा पल्लवी और ये वैशाली, ये सभी उसके संपर्क में लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिस तरीके से घर वालों ने आरोप भी लगाया। यहाँ ही नहीं, इसके बाद भी अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसके बाद भी धमकियां मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं इसमें आगे एक बड़ी कार्रवाई और होने की डिमांड भी कर रही हैं। शाली, ये सभी उसके संपर्क में लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिस तरीके से घर वालों ने आरोप भी लगाया। यहाँ ही नहीं, इसके बाद भी अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसके बाद भी धमकियां मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं इसमें आगे एक बड़ी कार्रवाई और होने की डिमांड भी कर रही है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं रत्ना सिंह का खुदकुशी के पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें वो सनसनीखेज आरोप लगा रही है। ये वीडियो देखिए।
8: हेलो एवरीवन, आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उस सुसाइड का रीजन रहेगा शरद सिंह, जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, पल्लवी जोशी, जो मुझे पागल कर दी थी, मेरा घर खत्म कर दी, वैशाली, मंगल यादव, प्रशांत शर्मा, शरद की पूरी फैमिली।
0: और अब बात महंगाई के नए डोज की करेंगे। वड़ा पाव पांच रुपए महंगा हो गया है। वड़ा पाव को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि वड़ा पाव पर कई लोग आश्रित रहते हैं खाने के लिए, तो पांच रुपए से महंगा कर दिया गया है मुंबई का मशहूर वड़ा पाव। अन्य जगहों पर भी महाराष्ट्र में काफी पसंद किया जाता है, सिर्फ मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में वड़ा पाव की काफी डिमांड रहती है। पांच रुपए का इजाफा इसमें। विद्या जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, वजह गैस की कीमतें बढ़ना है?
9: जी बिल्कुल, इनफैक्ट वड़ा पाव की जो कीमत है वो ज़्यादातर पाव के बढ़ने से नहीं हुई है। पाव की कीमत तो वही 4 रुपए है, लेकिन क्योंकि वड़ा बनाने में अब क्योंकि जो कह लीजिए गैस की कीमत बढ़ी है, साथ ही तेल की कीमत जो है वो भी बढ़ी है, तो इसकी वजह से वड़ा पाव की जो कीमत है वो बढ़ गई। जिस वक्त मैं इस दुकान पर हूँ यहाँ पर 18 रुपये में बिकता था, अभी 20 रुपये हो गया है पिछले कुछ समय में। तो यह इजाफा हर किसी ने किया है, डिपेंड कि उनका क्वांटिटी कितना बिकता है। बड़ी दुकानों ने ज़्यादा किया है इजाफा, छोटी दुकानों ने कम किया है, ऐसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं। लेकिन वड़ा पाव के भाव में क्योंकि काफ़ी समय से जो जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, गैस की कीमत बढ़ी है, तेल की कीमत बढ़ी है, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े से भाव ज़रूर बढ़ गए हैं।
10: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पेट्रोल डीजल की दाम में लगातार बढ़ोतरी की, इस बीच कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। बढ़ते हुए कीमतों को लेकर रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि देश में जल्द आर्थिक तूफान आने वाला है जिसका असर सीधा गरीबों पर पड़ेगा।
11: काफी दिनों से बोल रहा हूं कि मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो की जो जनता है उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं।
10: राहुल गांधी के आर्थिक तूफान वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता को डराने वाले बयान देने की जगह कांग्रेस को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वित्त मंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि केंद्र की आयुष्मान, जनधन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं आखिर किसके लिए हैं। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

माय फ्रेंड, आज द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। अगले महीने हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात। 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रॉन ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। बीजेपी ने जारी की ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। सब पर होगा एक्शन। हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम। किराया बढ़ाने की मांग।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन, नौवे के कामयाब दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री, मुलाकात का नया वीडियो आया सामने। इटली के विदेश मंत्री ने किया गर्मजोशी से स्वागत, रणनीति साझेदारी के साथ कई अहम समझौतों पर मोहर। इटली में होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय, इटली में दिखी काशी की झलक। भारत इटली व्यापार 14 अरब यूरो पहुंचा, आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी, प्रधानमंत्री आज रात दिल्ली के लिए रवाना। भारत का 38 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वैश्विक व्यापार में बढ़ी पकड़। ट्रंप के बाद चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका रेड कार्पेट पर स्वागत। पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा सहयोग और मौजूदा वैश्विक हालात पर चर्चा होने की संभावना। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव जैसे मुद्दे बैठक में प्रमुख रहेंगे। चीन पहुंचने से पहले जारी वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देश सहमत। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना, फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है दोनों के बीच भेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप में आमंत्रित किया। 15-17 जून तक होगा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की, हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों देशों ने जताई सहमति। स्वीडन और फ्रांस में बड़ा रक्षा समझौता, स्वीडन फ्रांस के नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया और जापान में ऐतिहासिक समझौता, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब विदर्भ तक पहुंची, सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में 2 संदिग्ध उम्मीदवारों के घरों पर पहुंचकर लंबी पूछताछ की, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खंगाले। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने बोर्ड पर काली कूद कर तोड़फोड़ कर जताया रोष, माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीट छात्रों की परेशानी सुन भावुक हुए केजरीवाल, एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का मुद्दा उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की, दोस्तों और परिवार के नाम पर मालिकाना हक का आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले अभिषेक बैनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों की जांच होगी, बेनामी और साझा मालिकाना एंगल की पड़ताल भी होगी। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव, आरक्षण 17% से घटाकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची, कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया, ममता सरकार के फैसले को पलटा, 66 श्रेणियों को फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी के तहत क्रमशः 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था, व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों के आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलता उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, टीएमसी नेता जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बैनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर अवैध निर्माण को जारी किया नोटिस, 7 दिन में जवाब देने के निर्देश। नोटिस जारी होने के बाद अभिषेक बैनर्जी का पुष्पा स्टाइल में जवाब, कहा चाहे घर गिरा दो मैं झुकूंगा नहीं। कोलकाता में बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध संपत्ति और जमीन कब्जे के आरोप लगाए, टीएमसी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। टीएमसी ने पोस्ट कर पोल हिंसा और कथित बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 21 मई को हावड़ा, सियालदा और बालीगंज में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। टीएमसी ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहा है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का दूसरा दिन, सरकार पर बड़ा हमला, कहा बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है देश। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने ईंधन कीमतों, रुपए में गिरावट और एफडीआई को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा, कहा पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, लगातार रुपया कमजोर हो रहा है, जल्द $1 के मुकाबले ₹100 तक पहुंच सकती है कीमत। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ओमान के साथ FTA 1 जून से लागू हो सकता है, व्यापार को मिलेगा नया विस्तार, अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य।
कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, किसानों के लिए सकारात्मक संकेत, वित्त मंत्री ने विपक्ष का डर फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, मोदी सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि कर्ज में 15.7%, एमएसएमई लोन में 33% की बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा। भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर पहुंचा, पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री का बड़ा ऐलान, बोले देश के विकास से बाधा नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म। बस्तर में गृहमंत्री बोले, छत्तीसगढ़ में भय का माहौल खत्म, बीजेपी सरकार बनने के बाद खत्म हुआ खौफ। गृहमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में बंदूक के युग का अंत हुआ, 5 साल में बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। आसनसोल नगर निगम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, ममता बनर्जी की तस्वीर हटाकर शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाने से तनाव। आसनसोल के बर्नपुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर बने तृणमूल कार्यालय पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस के बाद की गई कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया। ईंधन बचत की अपील का असर, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक कार से पहुंची। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बोर्ड परीक्षा के अंकों और एमएचसीईटी स्कोर में विसंगति का मुद्दा उठाया। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में बाबा अशोक खरात पर ईडी की कार्रवाई, नासिक जेल में हिरासत में लेकर पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हाईकोर्ट के आदेश में पश्चिम रेलवे, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 400 से 500 अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की। रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी से मुलाकात कर चुके हैं, दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलेनी ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी ने सोशल मीडिया पर मोदी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज होने वाली औपचारिक बातचीत में भारत इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी इटली के कई अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से भी मुलाकात करेंगे। कल देर शाम की तस्वीरें प्रधानमंत्री के कोलोसियम के भीतर चीजों को समझते हुए और इस ऐतिहासिक स्थल पर प्रधानमंत्री की ये विजिट बेहद अहम मानी जा रही है। उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी मौजूद जो भारतीय भाषा में इस कोलोसियम के बारे में बताती हुई। रोम का ऐतिहासिक स्थल है कोलोसियम, यहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कोलोसियम के भीतर भी कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने समझा और वहां पर कई लोगों से हैंडशेक के दौरान प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कोलोसियम के भीतर की तस्वीर है, जिसके बाद जॉर्जिया मेलेनी का पोस्ट भी आया, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड, और साथ ही उन्होंने एक सेल्फी साझा की।

0: योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जाहिर तौर पर आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, लेकिन क्या टेक अवेज रहने वाले हैं इस विजिट के?
1: देखिए, इस विजिट का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, उसके बाद जो महत्वपूर्ण भारत के व्यापारिक साझेदार हैं, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो नॉर्डिक के देश हो, चाहे वो इटली हो, इनके साथ में द्विपक्षीय व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और क्लीन टेक्नोलॉजीज में कैसे मिलकर काम किया जा सकता है, रक्षा और ऑटोमोबाइल भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें इटली के साथ भारत सहयोग कर रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र के अंदर ज्वाइंट डेवलपमेंट को रिसर्च एंड को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, या फिर जो है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। आप जानती हैं कि इटली जो है वो अपने अपैरल से लेकर ऑटोमोबाइल तक के लिए दुनिया भर में विख्यात है, तो टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है वो भारत का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और टेक्सटाइल के क्षेत्र के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो टेक्सटाइल क्षेत्र से रोजगार से जुड़ा हुआ है। इटली के जो डिजाइनर्स हैं जो कि अपने कपड़े की सोर्सिंग करते हैं, वो भारत के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के अंदर भारत एक बड़ा और बूमिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहां पर किस तरीके से भारत और इटली मिलकर काम कर सकते हैं, इटली का निवेश भारत में कहां और कैसे हो सकता है, भारत का जो मैन पावर रिसोर्स है वो किस तरीके से इटली अपने यहां पर इस्तेमाल कर सकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों की एक अहमियत केवल इन दो नेताओं के चेहरों या इन दोनों नेताओं की मुलाकात के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये भी बताता है क्योंकि सेटिंग क्या है। सेटिंग है रोम का जो कोलोजियम है, और रोम का वो कोलोजियम जिसके भारत के साथ में पुराने नाते पुराने संदर्भ रहे हैं, क्योंकि ये रोमन इतिहास से जुड़ी हुई जगह है, और साथ ही भारत के साथ यहाँ के पुराने ट्रेड रिलेशंस थे। अगर आप वहां गई हो नेहा, तो रोम के इस कोलोजियम के अंदर आपको जो मोज़ेक टाइल्स हैं, वहां पर आपको हाथी और शेर मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि एक समय था जब भारत से के जंगलों से हाथी या शेर जो हैं वो रोम ले जाए जाते थे, और वहां पर कोलोजियम के अंदर जो फाइट्स होती थी उसके लिए उन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था एक समय के अंदर। तो ये ट्रेड लिंकेजेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, यानी व्यापार का नाता जो है, कारोबार का जो नाता है भारत और इटली के बीच में, वो केवल आज का नहीं है जिसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सदियों से भारत और इटली के बीच में व्यापार का ये नाता रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, आईमैक का हिस्सा इटली बनना चाहता है, यानी वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिससे भारत में ही G20 शिखर बैठक के हाशिए पर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर भारत से लेकर और पश्चिम एशिया के इलाके से होते हुए यूरोप तक की कनेक्टिविटी बढ़ाने की पूरी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें इटली भी हिस्सा बनना चाहता है। और इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले इटली से एक डेटा केबल जो है वो भारत तक पहुंची है, यानी एक लंबी डेटा केबल जो डाली गई है, जो इटली के दक्षिणी इटली के जेनोवा पोर्ट से लेकर भारत के जो तट हैं वहां तक पहुंचती है। ये डेटा कनेक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि आईमैक का ही हिस्सा है, और किस तरीके से भारत और इटली इस डेटा कनेक्टिविटी के साथ साथ जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, व्यापारिक कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ा सकते हैं, ये तमाम मुद्दे आज मुलाकात और बातचीत की मेज पर होंगे।
0: दो तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी और मेलनी की मुलाकात, जिसमें कोलोजियम विजिट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जहां पर प्रधानमंत्री ने काफी वक्त बिताया, इस कोलोजियम के बारे में समझा। ये ऐतिहासिक स्थल है रोम का, जहां पर प्रधानमंत्री की ये यात्रा का हिस्सा बना। वक्त इशू से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
2: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
5: How they looked after game one.
6: I mean, they were frustrated.
4: The Daily.
7: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
10: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
11: विक्रम एक हिंट तो देते
12: विक्रम
11: हिंट
10: बड़े आराम से
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते हैं।
2: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते हैं।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: जेके मैक्स पेंट।
11: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
13: Like I said before, we better hold the sin.
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
17: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
18: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहां खबर वहां खबरदार।
26: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
27: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
28: तो क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने बीजेपी को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते सीएम योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए? पहले योगी ने क्या कहा ये जानिए। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए। संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
29: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
28: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है, और मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
29: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
28: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है, और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है। लेकिन बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बात 2027 की ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जीत का सबसे आसान फॉर्मूला है, और बंगाल में बीजेपी की आसमानी जीत की मिसाल उसके सामने है। याद करिए, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा, मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। तो यूपी में सीएम योगी भी बंगाल में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले के आसरे हैं। आज तक ब्यूरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

अमेरिका इसराइल फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, रणनीति बन रही है, ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर से युद्ध संकट के बीच ईरान की तैयारी क्या है? अगर फिर से भीषण हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? क्या अमेरिका इसराइल के हमले से पहले वो बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर से युद्ध का और भी खतरनाक मोर्चा खुलेगा? जंग की शुरुआत से सीजफायर तक ईरान का रुख एक जैसा है। दावा यही है कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एक बार फिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दरअसल तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए 5 शर्तें सामने रखी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की डिनर पर मुलाकात। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। आज द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रों ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। बीजेपी ने जारी की ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। सब पर होगा एक्शन। हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम। किराया बढ़ाने की मांग। उत्तर भारत को झुलसा रही है गर्मी। मौसम विभाग के अलर्ट से डर। यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट। 3 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है पारा।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ फिर हाजिर है। आज सुबह से खबरों में भारी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली में है। उनकी मेलोनी से मुलाकात भी हुई है, जो कि इटली की प्रधानमंत्री है। आज द्विपक्षीय वार्ता भी है। ईरान से फिर जंग या पक्की डील पर ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की है। तो ट्रंप के बाद एक और सुपर पावरफुल राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर भी हैं। इन खबरों को हम दिखाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आगे और क्या खास खास है। तो आगे रुक करेंगे बंगाल का, जहां चुनाव के बाद नई सियासी जंग छिड़ गई है। बताएंगे कल फालता में होने वाले वोटिंग से पहले टीएमसी के पुष्पा ने आखिर क्यों झुकना तय कर दिया। इसके अलावा बात होगी महंगाई की लड़ाई में हड़ताल की। बताएंगे कि देश भर में आज क्यों दवाई दुकानें बंद हैं और कल से टैक्सी ऑटो वाले क्यों चक्का जाम करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि 16 महीने बाद मोदी ट्रंप की कहां मुलाकात होगी, वो तारीख क्या है। लेकिन इससे सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इटली के दौरे से।

0: प्रधानमंत्री इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आज देर शाम ही प्रधानमंत्री का स्वदेश वापसी का भी प्रोग्राम है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की अच्छी केमिस्ट्री रही है और वो दिख भी रही है। इसके साथ दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता भी नजर आ रही है, कारोबार में भी मजबूती आई है। ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा इटली का दौरा है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनके उभरा है और 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस वक्त हम कई तस्वीरें अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का चाहे स्वागत हो, वहां पर आए भारतीय मूल के लोग हो, या प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी की वो सेल्फी हो, थोड़ा बताएं कि किस तरीके से भारत और इटली के बीच जो संबंध है वो इन दोनों देशों के नेताओं की आपसी रिश्तों और आपसी केमिस्ट्री की वजह से भी क्यों अब ज्यादा सुदृढ़ हो रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, क्योंकि वैसे तो आपने बताया कि तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का इटली के लिए 2021 में, 2023 में, 2026 में, लेकिन ये पहला दौरा माना जाएगा जब बायलेटरल टॉक्स बायलेटरल विजिट होगा प्रधानमंत्री मोदी का, और वो भी इटली की प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन के ऊपर वो इटली पहुंचे। सबसे खास बात यह कि इस पूरी बातचीत में अगर आपने देखा हो कि जब वो पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, इंडियन कम्युनिटी से वो मिले, लगातार उनको काशी की एक पेंटिंग प्रेजेंट की गई। लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं, तब भारत और इटली कैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा 2023 के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ एक मुलाकात हुई थी उनके काउंटर पार्ट से, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर चर्चा होगी वो होगी ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर। आपको याद है कि कैसे पूरी दुनिया जो है पिछले 2 महीनों से लगातार इन परिस्थितियों से जूझ रही है, और G20 की समिट में भी इस रोडमैप के ऊपर काम किया गया था, से भारत और यूरोप के अंदर जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट होगा या चीजें होंगी वो 40% तक कम हो जाएगी, उनकी लागत कम हो जाएगी, उनका समय सीमा कम हो जाएगी। तो ऐसे में उसमें भारत और इटली कैसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को पूरे आप कह सकते हैं यूरोप के देशों के लिए या फिर मिडिल ईस्ट के देशों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। तो ये दो मुख्य चीज है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ट्रेड के साथ साथ आप साइबर टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, AI की बात प्रधानमंत्री मोदी का। अब अगर आप देखें पांचों देशों के दौरे के अंदर AI का पर फोकस बहुत ज्यादा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप के अंदर भारत के अंदर जो खोल रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये मुख्य आप कह सकते हैं बिंदु होंगे, पहलू होंगे जिन पर ये बातचीत होगी।
0: जी जी सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है जब वो इटली में है। तो बताया ये जा रहा है कि 2:45 उनकी मुलाकात होगी इटली के राष्ट्रपति के साथ, और इसके अलावा एक द्विपक्षीय वार्ता की भी बात कही गई है। करीब 2:45 पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि प्रधानमंत्री है इटली की, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें जाहिर तौर पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल रहेंगे। इसके अलावा शाम 7:00 बताया जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि ये मुलाकात अहम है, इसमें फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को लेकर भी फोकस बना रहेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। दोनों की मुलाकात अगले महीने फ्रांस में हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। अगले महीने 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियों में G7 की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी दिया है। इसी G7 मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात इस बैठक के दौरान हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर कई बार अमेरिका का साथ न देने का आरोप लगाया है, बल्कि कई G7 कंट्रीज है जिनको उन्होंने लगातार टारगेट किया है। ऐसे में ये मुलाकात न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बल्कि भारत और अमेरिकी रिश्तों के लिए भी बेहद अहम हो जाती है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी का। सुमित, मुलाकात ये G7 यानी कि बैठक G7 की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी वहां होंगे क्योंकि न्योता है। तो क्यों अहम हो जाता है मोदी और ट्रंप का मिलना?
1: देखिए बिल्कुल, भारत और यूएस के ट्रेड चीजों को लेकर आपको याद होगा जो टैरिफ लगाए गए थे यूएस की तरफ से, उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उस मुलाकात के साथ साथ मिडिल ईस्ट को लेकर चर्चा की जाएगी कि मिडिल ईस्ट में जो संकट गहराता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो सकती है, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है। और ऐसे में देखिए अभी कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग डिसाइड नहीं की गई, लेकिन साइडलाइंस पर अक्सर हम देखते हैं कि नेता आपस में मिलते हैं, लगातार बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं पर या मुद्दों के ऊपर उनकी आपसी बातचीत हो जाती है जो आने वाले वक्त में एक बड़े आप कह सकते हैं कॉपरेशन का या फिर एक बड़े एग्रीमेंट का हिस्सा बनती है। तो ये मुलाकात या फिर ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये भी माना जा रहा है कि अगर साइडलाइन पे प्रधानमंत्री मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है तो ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा भारत के लिए, भारत के लिए वीजा के दूसरे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होंगे, और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में संकट है इसको लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है।
0: जी शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं देश से आ रही बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात बंगाल की, जहां सियासी बदलाव के बाद नई सियासी जंग भी शुरू हो गई है। शुभेंदु, सरकार ने जहां योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया है, वहीं बदलते हालात में टीएमसी नेता से लेकर दफ्तर तक अब निशाना साधा जा रहा है। दफ्तरों पर बुलडोजर एक्शन हो तो अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टी की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक्शन में फालता भी है, जहां कल वोटिंग है और टीएमसी का पुष्पा अब मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां दौड़ा शुभेंदु का बुलडोजर। आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर गिरा, तो कोलकाता में सड़क किनारे अवैध निर्माण को ढहाया गया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर भी चला हथौड़ा, जिनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये है शुभेंदु सरकार का बुलडोजर जो अब टीएमसी के दफ्तरों को खास तौर पर टारगेट कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र। अनुपम, ऐसे में सवाल जो जहन में लोगों के अक्सर आता है कि ये जो एक्शन बुलडोजर का देखा जा रहा है, क्या वो सियासी है या वाकई में इन सभी बिल्डिंग्स में कोई ना कोई अवैध निर्माण या कोई ना कोई अवैध बात थी?
2: जी देखिए, अभी तक जहां जहां भी बुलडोजर चले हैं उनमें से मुख्यतः जो इनक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था, जैसे हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन, इसके बाहर चले हैं। इसके अलावा तिलजला पार्क सर्कस एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, वहां पर बुलडोजर चला है। हावड़ा में एक बिल्डिंग में अवैध निर्माण की का आरोप था, वहां पर बुलडोजर चला है। जो आसनसोल में चला है वहां पर भी आरोप है कि अवैध तरीके से जमीन पर, सरकारी जमीन पर टीएमसी का पार्टी ऑफिस बनाया गया था। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जहां जहां भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, इसी वजह से बुलडोजर चलाया गया है। जबकि टीएमसी की ओर से खासतौर पर ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया था कि बिना किसी सुनवाई के नोटिस के बुलडोजर चला दिया जा रहा है, जो गलत बात है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है, लेकिन अभी तक जहां जहां बुलडोजर चलने की खबर आ रही है, खासतौर पर अतिक्रमण जो है या अवैध निर्माण का जो आरोप है, वहीं पर बुलडोजर देखने को मिल रहा है।
0: जी अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली बड़ी खबर भी वहीं से आ रही है, पश्चिम बंगाल से। तो कहां तो फलता की सीट अभिषेक बैनर्जी के लिए नाक की लड़ाई थी, और कहां टीएमसी का पुष्पा जहांगीर खान वोट से पहले ही भाग खड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि फलता में कल फिर से वोटिंग है, और फलता में ईवीएम पर टेप चिपकाने की तस्वीर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था। इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का दबदबा माना जाता है, लेकिन सरकार बदलते ही जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। जहांगीर वही शख्स है जिसने खुद को पुष्पा कहा था, न झुकने की बात भी कही थी, और शुभेंदु ने खुद ही पुष्पा को देख लेने की धमकी भी दी थी।
3: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
4: सम्माननीय मुख्यमंत्री, फलता उन्नयन जन्य স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপল আছে সেই রিপল থেকে রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।
0: তো জাহাঙ্গীর খানকে হটনে পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নে ক্যা কুছ কাহা হ্যায়, আইয়ে আবি দেখ লিজিয়ে। তো আখরি বক্ত পর জাহাঙ্গীর খান কে হটনে সে টিএমসি মে সন্নাটা হ্যায়, তো বিজেপি ওহী তনজ কস রহি হ্যায়।
5: এসা বহুত কুছ সুননে কো মিলেগা, নেতা কা ভি স্টেটমেন্ট টিএমসি কা নহীঁ হ্যায়, কোন ক্যা বোল রহা হ্যায়, কহাঁ জা রহে হ্যায়, অভি কোন হ্যায় টিএমসি কে নেতা, কিসকা স্টেটমেন্ট কো লোগ মানে, তো ইয়ে কনফিউশন দূর করে, ইয়াহাঁ সে নিকলে, সময় নিকল গিয়া হ্যায়।
6: আই এম নট হ্যাপি অ্যাবাউট দিস, ইজ নট আ good thing for the party, but the party will definitely consider the matter and give their opinion regarding. Same we have to find out if there was a atmosphere of fear created by the ruling party in the place.
0: To is pure mamle par aaj tak ne ki TMC ke pravakta Kunal Ghosh se ek khaas baat.
7: Ye jo Jahangir Khan jise Pushpa kaha ja raha tha वो अब मुखर गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे?
8: देखिए हम लोग भी सुना है, डिटेल तो अभी नहीं पता, लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए। और ये वहां पे कोई डर का महल, ये भाजपा ईसी ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया, और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों ये भी देखना होगा। तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में है हमारा, ऑनरेबल अभिषेक बैनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था, तो ऐसा क्यों हुआ अभिषेक बैनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे।
0: तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं आज तक के अनुपम मिश्र का। अनुपम, जिस तरह की बातें टीएमसी के नेता कर रहे हैं उसको सुनकर लगता है कि उन्हें भी कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा होने वाला है।
2: जी देखिए, दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ रहा है पिछले कई सालों से, और खास तौर पर फलता जैसे इलाके, यहां पर तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि टीएमसी के किले में दरार पड़ सकती है, लेकिन वो भी इतनी जल्दी इस तरह की घटनाएं होंगी। और टीएमसी का जो बाहुबली कैंडिडेट है जहांगीर खां, वो चुनाव से एक दिन पहले बोलेगा कि मैं अब रिपोल नहीं लड़ूंगा, ये जरूर बहुत सख्ते वाली बात है, सबके लिए सख्ते वाली बात थी कल जब ये अनाउंसमेंट हुआ, और टीएमसी के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि टीएमसी के नेताओं को लग ही नहीं रहा था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। और अगर आप रिजल्ट देखें तो दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी का रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो ऐसे में दक्षिण 24 परगना के फलता से टीएमसी कैंडिडेट का हट जाना ये टीएमसी के लिए बहुत बड़े मतलब ऐसे तो नुकसान है ही, लेकिन मानसिक तौर पर टीएमसी की जो कंडीशन है फिलहाल अभी, उसको पुनर्गठन में जो जरूरत होनी चाहिए थी उस पर भी एक डेंट है ये।
0: जी बिल्कुल अनुपम, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो बहुत बड़ा रहस्य है ये कि आखिर टीएमसी का पुष्पा झुका क्यों। उधर शुभेंदु सरकार एक्शन मोड पर है, ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी निशाने पर हैं। बीजेपी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका दावा है कि अभिषेक की 43 प्रॉपर्टी है और सभी की जांच होगी। वहीं अभिषेक बैनर्जी ने कह दिया है कि झुकूंगा नहीं, सरकार जो चाहे कर ले। तो ये बड़ी खबर बंगाल से आ रही है कि अभिषेक बैनर्जी और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों सभी की प्रॉपर्टीज पर नजर है और उनकी जांच की जाएगी। और रुक करते हैं बड़ी खबर का जिसका सरोकार आपसे और हमसे है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के बीच एक और परेशान करने वाली खबर आई है। आज देश भर में दवा की दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो प्रभावित हो सकती है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आज देश भर में तमाम मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगी, तो वहीं दिल्ली में 21 मई यानी कि कल से 3 दिन के लिए ऑटो टैक्सी वाले भी हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच ऑटो टैक्सी वालों ने भी किराया बढ़ाने की मांग कर दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक खत लिखा है। ऑटो यूनियन का कहना है कि 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है, तो अब वक्त आ गया है क्योंकि दाम अब ईंधन के बढ़ने लगे हैं।

पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। आज दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी।

0: तो किस तरह का असर पड़ रहा है इन हड़तालों का, ये जानने के लिए हम चलेंगे दिल्ली, अहमदाबाद और चंडीगढ़, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली से, क्योंकि वहां पर हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त मौजूद हैं और लगता है एक दवाई की दुकान के बाहर ही हैं। तो सबसे ज्यादा असर कितना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ इलाके हैं जो केमिस्ट की दुकानों के गढ़ हैं, चाहे वो एम्स के विपरीत की दुकानें हों, और वो बहुत जरूरी लाइफलाइन है, क्या वो भी आज बंद है?
1: अंजलि, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी आरएमएल अस्पताल के पास है, और आरएमएल के ठीक पीछे आपको ध्यान होगा कि इस तरह से कतारबद्ध तरीके से केमिस्ट की दुकानें और तमाम दुकानें आपको खुली दिखाई देंगी। इस तरफ आगे की भी रोज में जो दुकानें हैं वो सब भी खुली हुई है। इसका कारण ये है कि केमिस्ट शॉप ओनर्स खुद बता रहे हैं कि एक तरह से सरकार की तरफ से भी उन्हें इंस्ट्रक्शन था, क्योंकि अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास उनकी दुकानें हैं, तो उसे इमरजेंसी सर्विस के तौर पर ही ट्रीट किया जाए, पेशेंट्स को और उनके परिवार वालों को दिक्कत ना हो। लेकिन वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिक्री है दवाओं की, उसकी वजह से दो तरह की फजीहत हो रही है। एक तो क्या जो पेशेंट्स हैं उनको सही दवा मिल रही है या नहीं, या प्रिस्क्रिप्शन भी असली है कि नहीं, इसको भी जांच करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। और दूसरा
0: जी बिल्कुल, तो यहाँ तो दुकानें खुली हैं, लेकिन रुक करते हैं अब चंडीगढ़ का, जहां अमन भारद्वाज खड़े हैं और उनके पीछे का शटर डाउन है। अमन, वहां क्या स्थिति है बताएं।
2: देखिए, लाइफलाइन है मेडिकल सपोर्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि होती है, और मेडिकल शॉप्स ही चंडीगढ़ में बंद है। जो लोग चंडीगढ़ आए हैं या कभी पीजे ही हैं, वो इस मार्केट की, सेक्टर 11 कुमार मेडिकल स्टोर की, इस मार्केट की पूरी अहमियत समझते हैं, क्योंकि पीजीआई से 100 मीटर की दूरी पर सटा हुआ ये मेडिकल स्टोर है, और चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन मेडिकल केमिस्ट शॉप के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और यहां पर आप देखिए कि ये हर दवाई जो चंडीगढ़ में कहीं नहीं मिलती वो माना जाता है यहां मिल जाती है, लेकिन ये स्टोर आज बंद है। और स्ट्राइक के चलते पूरी मार्केट जो मेडिकल स्टोर्स की मार्केट है, क्योंकि पीजीआई से सटी हुई है, और 90%
0: पर जाहिर तौर पर यहां तो शटर डाउन है, मार्केट बंद है। लेकिन हाल अहमदाबाद क्या है का क्या है, ये जानने के लिए अतुल तिवारी के पास चलते हैं। अतुल, आपके शहर में स्थिति कैसी है? अतुल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है उनके साथ संपर्क टूट गया है, लेकिन वहां पे भी शटर डाउन ही नजर आ रहे हैं। तो लगभग असर पड़ता हुआ देश भर में नजर आ रहा है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके लिए कुछ और खबरें लेकर आएंगे। आप देखते रहिए आज तक,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
6: It's my music and it's my station.
5: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स।
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की डिनर पर मुलाकात। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। आज द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। अगले महीने हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात। 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। इमैनुअल मैक्रॉन ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। बीजेपी ने जारी की ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। सब पर होगा एक्शन। हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। आज देश भर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम। किराया बढ़ाने की मांग। उत्तर भारत को झुलसा रही है गर्मी। मौसम विभाग के अलर्ट ने डराया। यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट। 3 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है पारा।

इस वक्त की बड़ी खबर की, भीषण गर्मी की। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त भीषण गर्मी से उबल रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है। बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार जा चुका है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है अलग अलग इलाकों के लिए। मौसम विभाग की माने तो यूपी के 11 जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है, जिसके बाद प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से झुलसाने वाली गर्मी की खबरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले 7 से 8 दिन तक इससे कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी से उबल रहा है। पूरी एरिया का बात करें तो लगता है कि गर्मी का अलग ही कहर टूट रहा है। अगले 2 दिन के लिए यूपी में कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है कि आप सावधान रहें, लू बहुत तेज चलने वाली है। सोचिए दुनिया के 100 सबसे बड़े गर्म जो शहर हैं उनमें से 40 उत्तर प्रदेश के ही हैं और बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार चला गया है। क्या पारा इस साल 50 के पार चला जाएगा? अब सब यही सवाल पूछ रहे हैं।

0: अफ्रीका से भी गर्म क्यों हो गया उत्तर प्रदेश? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 40 शहर कैसे आ गए? यूपी में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, आगे क्या होगा? अभी तो आधा मई बीता है और आसमान से आग बरसने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। ये पूरे हिंदुस्तान में गर्मी का हाल है। मौसम विभाग के इस नक्शे में उत्तर प्रदेश अलग से लाल रंग से दर्शाया गया है, क्योंकि यूपी इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। यूपी में तो ऐसा लगता है जैसे हर शहर में सड़कों पर तंदूर लगा हो। सुबह 10 बजते ही तापमान 45 के पार पहुंच जा रहा है। आलम यह है कि दुनिया और देश के सबसे गर्म इलाकों की सूची में उत्तर प्रदेश के शहरों ने अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम है। प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर, अलीगढ़, बलरामपुर, बरेली और वाराणसी में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जौनपुर, आजमगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली और अयोध्या में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही वजह है कि यूपी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 दिनों के लिए तो कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों पर भारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। 20 मई के लिए आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और फतेहपुर के अलावा औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए भी रेड अलर्ट है।
1: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ, रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहाँ पर तपन सड़क के आसपास का जो एरिया है, बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है। जो बाहर निकल रहे हैं, जिनकी मजबूरी है वो निकले। डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे हैं बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि आप लगातार पानी पीजिए, अधिकारियों से ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए कहा है। तो वहीं जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें दिक्कतें ना हो। क्या क्या हालत है? गर्मी बहुत ज्यादा है?
2: बहुत ज्यादा भैया गर्मी यहाँ पर है। कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा
3: है। 40 डिग्री है।
2: इतना बेहाल है कि ना कुछ खाया जा रहा है, केवल पानी पी के आदमी जी रहा है।
3: पानी पीने से राहत मिल रही है?
2: बहुत राहत मिल रही है पानी से।
4: अगर दिन में इतने समय कोई चला जाए तो बहुत चावल बीमार पड़ जाएगा।
3: 30 सेकंड को खड़ा हो जाए तो पसीना, हमारे भी आप देखें एकदम
2: सामने रिजल्ट है, देख लीजिए पसीना कैसे निकल रहा है।
0: और ऐसा नहीं है कि ये भीषण गर्मी और लू सिर्फ 1-2 दिन ही हो, बल्कि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 7 से 8 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही लू चलने की आशंका है। इसीलिए तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अतिरिक्त बेड और पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था रखें। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है। हॉस्पिटल परिसर में रोगियों और तीमारदारों के लिए पीने का पानी का इंतजाम करने को कहा गया है। अस्पताल परिसर में लू, धूप व गर्मी से बचाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
5: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें, जैसे बेड्स आरक्षित करें, शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल के इंतजाम करें और गर्मी के प्रकोप से यदि कोई मरीज पीड़ित होकर के आता है तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
0: उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिले अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। आगरा में भी डीएम की तरफ से कहा गया है कि लोग बिना कारण के भीषण गर्मी में घर से बाहर ना निकलें। जगह जगह अस्पतालों में भीषण गर्मी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है।
6: अभी संख्या जरूर है कि काफी अधिक है। सभी हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं और ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि सभी मरीज जो आते हैं उनका इलाज तत्परता से किया जाए और सभी जगह पे विशेष वार्ड भी बनाए गए हैं, हीट स्ट्रोक वार्ड है, जहाँ पर इस मरीजों का अलग से उनका एक प्रोटोकॉल के तहत इलाज।
0: यही हाल झांसी का भी है, जहाँ तापमान 46 डिग्री के पार पहुँच गया है। तेज धूप और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले।
7: गर्मियों में आश्रय स्थल हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, रेडी कर लिए हैं, और मैं नगर निगम को इसमें निर्देशित भी पुनः भी करेंगे। हम लोग एक संयुक्त औचक निरीक्षण भी करेंगे कि जहाँ पर भी इस प्रकार से व्यक्ति हैं उनको आश्रय स्थल पर पहुँचाया जाए और उनको वहाँ पर जो पर्याप्त सुविधाएं जो सरकार की मंशा है वो उपलब्ध कराई जाए।
0: लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
8: तो उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, लेकिन उसके अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले 7 से 8 दिन तक इस गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

0: भीषण गर्मी से तपता हिंदुस्तान, उबलते शहर, लू से उत्तर भारत का बुरा हाल, यह है गर्मी का आपातकाल। अगले 7 दिन भीषण लू का अलर्ट, हे भगवान धरती बचाओ। पूरा हिंदुस्तान तप रहा है, उत्तर भारत में सबसे बुरा हाल है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। शहर शहर तंदूर लगा हुआ है, हर शहर का पारा 45 के पार चला गया है। रात को भी ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है। 19 मई मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। सफदरजंग और पालम में 45.1 डिग्री, लोधी रोड में 45.2 डिग्री और आयानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ये तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली में गंभीर हीट वेव यानी कि लू चल रही है। रात में भी आराम नहीं है और मौसम विभाग डरा रहा है कि अभी तो इस गर्मी से दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं मिलने वाली।
1: अभी तक जो टेम्परेचर्स हैं, जो मैक्सिमम है 47.6 तक पहुंचा है और ऑलमोस्ट आप सोचिए कि टेम्परेचर जहां तक ही 45-47 काफी जगहों में रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमने सीवियर हीट वेव दिया है। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 2-3 दिन टेम्परेचर जो है 44 से ज़्यादा हो सकता है, नियरली 45 टच कर सकता है और ऑलमोस्ट पूरा वीक ही टेम्परेचर्स आप सोचिए 45 के पास रहने का अडमीन अनुमान है। 1-2 डिग्री वेरी कर सकता है लेकिन इतना ही रहने का अनुमान है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए भी 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है।
0: दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में बुरा हाल है, भीषण गर्मी और लू चल रही है। पंजाब में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पटियाला में 45.3 डिग्री, बठिंडा एयरपोर्ट पर 45.9 डिग्री, लुधियाना में 44.2 डिग्री और अमृतसर व चंडीगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज हुआ। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली।
1: इस समय अगर आप जो मैप देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया सभी जगह में आप देख सकते हैं कि हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। अगर हम स्टार्ट करें हिमालय से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव कंडीशंस बना रहेगा। उसके बाद वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थोड़ा कमी आ जाएगी तो हीट वेव नहीं है, लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है, वो 3 दिन के लिए हमारा रेड अलर्ट है। वहाँ इवन कुछ जगहों में जो टेम्परेचर हैं वो 47 से ज़्यादा भी क्रॉस कर चुके हैं।
0: राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। पिछले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
2: राजस्थान में मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां हर एक व्यक्ति परेशान होता नजर आ रहा है और ये परेशानी हो रही है बढ़ते टेम्परेचर से और हीट वेव से। ये ऐसी जगह है अभी जहां पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी अभी बिल्कुल भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ये एरिया बिल्कुल खाली हो चुका है। असर पड़ रहा है आसपास के वेंडर्स पे, हॉकर्स पर, जिन पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे बैठने की वजह से अक्सर भीड़ हुआ करती थी, वो इस समय पे बिल्कुल खाली है। उनके बिजनेस भी नहीं चल रहे हैं, चाहे वो जूस शॉप हो जहाँ गर्मी में लोग राहत के लिए आते हो, वहाँ पर भी समय पे कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो पारा है वो 2 से 4 डिग्री तक बढ़ा है। और ये जो गर्मी है ये सिर्फ दिन के समय की नहीं रही है, ये ही गर्मी देखने को मिलती है रात में भी, जब जमीन से हीट आती रहती है और वो टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ते रहते हैं।
0: पूरे मध्य प्रदेश का भी यही हाल है, एमपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में पारा पहुंचा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक। भोपाल का बोट क्लब पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन भीषण गर्मी में यहां से भी पर्यटक गायब है। सड़कों पर सन्नाटा है, दोपहर को तो ऐसा लगता है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। यहाँ भी मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में तीव्र हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोट क्लब इलाके में मौजूद हैं। आमतौर पर ये इलाका जो है ये पर्यटकों से गुलजार रहता है। भोपाल आने वाला हर शख्स एक बार बोट क्लब जरूर आता है क्योंकि यहाँ से भोपाल की जो शान है, पहचान है, बड़ी झील, उसकी एक विहंगम तस्वीर भी दिखती है और लोग बड़ी संख्या में बोटिंग के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अभी दिन के हालात देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी बोट जो है वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। एक आदमी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये पूरा इलाका जो पर्यटकों से भरा रहता है, अगर आप देखें तो पूरा जो वॉकवे है वो खाली है।
0: आज तक देरो
4: तो इस हीट वेव में रखिएगा अपना ख्याल। हमारे इस बुलेटिन में इतना ही वक्त है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
3: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
2: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
4: You're listening to MSNBC.
2: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
3: just
5: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Sokudo.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
9: सोच बदलो और बैंक भी.
10: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
11: जहां खबर वहां खबरदार.
15: इन एसोसिएशन विद
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
18: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें.
19: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
3: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
2: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
8: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: महंगाई की मार ऐसी है जो चुपचाप जीप खाली करती है और इसका असर रसोई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक साफ नजर आता है। कभी सब्जियों के दाम चौंकाते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल जेब पर बोझ बढ़ा देता है। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक साथ कई मोर्चों से दबाव बन रहा है। देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच औसत 92% ही बारिश होगी। कम बारिश से फसल और ग्रामीण इनकम पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे खाने पीने के सामान भी महंगे हो सकते हैं। महंगाई की इस तस्वीर में तेल का खेल भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई हैं। तेल महंगा होने का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी खेती और आखिर में हर सामान की कीमत में बढ़ोतरी। इस बीच चुनौती यह है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिसका असर ग्रोथ पर पड़ सकता है। वैश्विक हालात भी इस आग में घी डाल रहे हैं। ईरान से जुड़े तनाव ने सप्लाई चेन को झटका दिया क्योंकि दुनिया का 25% पॉलीप्रोपाइलीन मिडल ईस्ट से आता है, जबकि 20% पॉलीएथिलीन की सप्लाई भी वहीं से होती है। इसके अलावा यूरिया की कीमत भी फरवरी से दोगुनी हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि प्लास्टिक, केमिकल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं और इसका असर हर इंडस्ट्री और आम आदमी पर पड़ रहा है।
1: एज प्रेसिडेंट ऑफ एपेक चैम्बर, मैं मानता हूं कि ईरान वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट MSME सेक्टर पर पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस के दाम बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लास्टिक एंड अदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में MSME सेक्टर को एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और अल्टरनेटिव सोर्सिंग पर फोकस करना होगा।
0: साफ है कि युद्ध की आज फैक्ट्री से लेकर बाजार तक महसूस हो रही है। इसकी वजह बढ़ती लागत है जो कंपनियों की कीमतें बढ़ाने को मजबूर कर रही है। वैसे हालात केवल भारत तक सीमित नहीं है, अमेरिका में भी महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया। एनर्जी महंगी होने से खाने, बिजली और ट्रांसपोर्ट सब पर असर पड़ा और यही असर धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। हालांकि भारत के पास एक राहत भी है। दरअसल देश में 602 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज भंडार मौजूद है। इसमें 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 380 लाख मीट्रिक टन चावल है। ये स्टॉक कीमतों को काबू में रखने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बारिश लंबे समय तक कम रही तो ये सहारा भी कमजोर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: जमेलो ने रोम में एक ही कार में सवार दिखे। ये मोदी के इस दौरे से भारत और इटली के रिश्तों में मजबूती की उम्मीद है और इस दौरे पर दोनों ही देशों के बीच में कई अहम समझौते होने की उम्मीद। पीएम मोदी रोम स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय का भी दौरा करेंगे और यहां पर वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद उनकी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी की अहम द्विपक्षीय बैठक। भारत इटली व्यापार 14.25 अरब यूरो पहुंच गया है और आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी। पीएम मोदी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत का 38 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वैश्विक व्यापार में पकड़ बढ़ी।
1: ट्रंप के बाद चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका रेड कार्पेट स्वागत, चीनी विदेश मंत्री ने की अगवानी। दोनों नेताओं के बीच ईरान यूक्रेन युद्ध तथा व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव जैसे मुद्दों पर बैठक होगी। चीन पहुंचने से पहले जारी वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगले महीने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है भेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। 15 से 17 जून तक होगा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ने जताई सहमति। स्वीडन और फ्रांस से बड़ा रक्षा समझौता। स्वीडन फ्रांस के नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया और जापान में ऐतिहासिक समझौता। ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति।
0: नीट पेपर लीक मामले की जांच में अब विदर्भ तक की जांच पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी करके परीक्षा रैकेट से जुड़े हुए नेटवर्क का खुलासा करने की संभावना जताई है। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर कई घंटों तक जांच की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में 2 संदिग्ध उम्मीदवारों के घरों पर पहुंचकर लंबी पूछताछ के मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स खंगाले। चंद्रपुर में भी एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन के दौरान एनएसयू पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड के बोर्ड पर काले पोत कर तोड़फोड़ करके रोष जताया गया। कोचिंग माफिया के खिलाफ नारेबाजी। नीट छात्रों की परेशानी सुन भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का मुद्दा उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़े 43 संपत्तियों की सूची जारी की। दोस्तों और परिवार के नाम पर भी मालिकाना हक का आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले अभिषेक बैनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों की होगी गहन जांच, बेनामी और साझा मालिकाना एंगल से पड़ताल।
1: पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। आरक्षण 17% से घटकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया गया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। 66 श्रेणियों को फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी में क्रमशः 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था। व्यवस्था में बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों को आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलटा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा देश बेहद कठिन दौर की ओर बढ़ रहा है। संकट के समय प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने ईंधन कीमतें, रुपए में गिरावट और एफडीआई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा। कहा पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जल्द $1 के मुकाबले ₹100 तक पहुंच सकता है। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
0: ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है। व्यापार को मिलेगा नया विस्तार। अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है। कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ के पार में पहुंचा। किसानों के लिए भी सकारात्मक संकेत। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का लगाया आरोप।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मोदी सरकार किसान, गरीब, महिला, युवाओं के लिए लगातार कर रही है काम। कृषि कर्ज में 15.7% और एमएसएमई लोन में 33% इजाफा, अर्थव्यवस्था को मजबूती का दावा। भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर पहुंचा और पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी। पटना के आईजीआईएमएस में एमबीबीएस के छात्र को मेडिकल अटेंडेंट ने पीटा, पिटाई का सीसीटीवी आया सामने, मेडिकल छात्रों का प्रोटेस्ट। एमबीबीएस छात्र से मारपीट के मामले में गुस्साए छात्रों ने अस्पताल परिसर में 2 घंटे तक हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। मोहल्ले में बच्ची को दिन दहाड़े दादा दादी ने दादा दादी के सामने किडनैप कर लिया गया, तस्वीरें आई सामने। बच्ची को बचाने के लिए आगे आए दादा दादी को कुचलने का प्रयास तक किया गया। सोनीपत में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, सीआईए इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली, एक बदमाश घायल।
1: पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में आग, दूर तक दिखा आग का धुआं। ग्वालियर कलेक्ट्रेट का ई ट्रेनिंग रूम जलकर खाक, सरकारी दफ्तर समेत कंप्यूटर सिस्टम राख। वडोदरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने से इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में आग, तीसरी मंजिल से शुरुआत, टायर ट्यूब और बैटरियों का तेजी से फैल रही आग। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह गिर गई 4 मंजिला इमारत, वायरल हुआ वीडियो। केदार घाटी में भारी बारिश से भूस्खलन, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फंसे हजारों यात्री, एसडीआरएफ ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फरार चल रहे मोहित पंडित के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। पठानकोट गुरदासपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ऑल्टो कार की अज्ञात भारी वाहन से टक्कर में 4 युवकों की मौत। कर्नाटक के शिवमोगा में विशाल मार्ग में लिफ्ट फंसने से 9 लोग फंसे, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
0: लखनऊ से दिल दहला देने वाला मामला, सगाई के 4 दिन के बाद युवती की हत्या, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, जंगल में मिला शव, पाइप से गला घोंटकर ईंट से सर कुचलने का आरोप। लखनऊ रत्ना सिंह सुसाइड केस में पुलिस को कामयाबी, 25,000 की 2 इनामी महिला गिरफ्तार, मुख्य आरोपी महिला मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर आई। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में माल खाने और उसके बाहर बने पार्किंग एरिया में भीषण आग, थाना परिसर में धुएं का गुबार। न्यू अशोकनगर थाने में माल खाने में सब गाड़ियों में 20 कारें जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। पालघर सड़क हादसे में 13 बारातियों की मौत के बाद एक ही गांव में 12 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार, पूरे गांव में मातम। महाराष्ट्र के ठाणे में नाले में पानी फेंकने पर 2 पड़ोसी आपस में भिड़े, जमकर मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के वसई में एटीएम मशीन का वीडियो वायरल, तकनीकी गड़बड़ी के चलते 100 रुपए निकालने पर 500 के नोट निकले, कैश के लिए उमड़ी भीड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने किया हमला। सूरत में जमीन दलाल की गलती की वजह से दूसरे वाहन की डिग्गी में 1,16,000 रुपए सीसीटीवी की बरामद से मिले हैं और पुलिस ने थाने बुलाकर यह रकम लौटाई।
1: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिन में 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चारधाम के दर्शन। केदारनाथ में कल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीब 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई है हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ, अब तक करीब 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगहों पर 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की दर्ज की गई, सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। दिल्ली की हवा फिर जहरीली, 208 के पार पहुंचा एक्यूआई, बढ़ते प्रदूषण से GRAP 1 लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8वीं तक स्कूल बंद, 31 मई के बाद खुलेंगे, प्रशासन लू से बचाव का एडवाइजरी जारी की। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, श्रद्धालुओं के जगह जगह ठंडे पानी और ORS की सुविधा। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घर में ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लगाए गए कूलर, बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान।
0: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, खजुराहो में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा टेम्परेचर, भोपाल में तेज धूप के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, बच्चों बुजुर्गों से दोपहर में बाहर न निकलने की अपील। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री जबकि बिलासपुर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बीच में मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई, 21 और 22 मई को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। आईपीएल के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा। आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का मैच, ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच। केकेआर के लिए करो या मरो वाला मैच, इस मैच में जीत हासिल करके खुद को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखेगी कोलकाता। मैच से पहले लगा मुंबई को झटका, विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक और ऑलराउंडर राज शंगत पावा चोट के चलते बाहर। प्लेऑफ के डे से पहले बाहर हो चुके मुंबई फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर पर।
1: इम्तियाज अली निर्देशित और दलजीत दोसांझ सारा फिल्म वापस आऊंगा का ट्रेलर लॉन्च, 12 जून को सिनेमाघर में होगी रिलीज। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार की बेटी अमन फिल्म तेरा यार हूं मैं से करने जा रहे हैं एक्टिंग डेब्यू, 31 जुलाई को सिनेमाघर में होगी रिलीज। प्रीति जिंटा 8 साल बाद फिल्म वाइट से बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी, 18 सितंबर को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। 19 साल बाद फिर साथ आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा, एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चा तेज। 5 फिल्में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन तो बार 2, द ग्रेट एस्केप, फरार में करेंगे अहम रोल। सलमान खान और संजय दत्त स्टारर इंटरनेशनल फिल्म 7 डॉग्स ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडल ईस्ट के कई देशों में फिल्म 7 डॉग्स होगी रिलीज, जबकि भारत में फिल्म 28 मई को सिनेमाघर में देगी दस्तक। भूत बंगला ने दुनिया भर में तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई को पछाड़कर किया 276 करोड़ का बिजनेस। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन। ईशा अंबानी के कपड़ों में दिखी मुगल काल की सदियों पुरानी कला, विदेश में स्कर्ट को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ किया पेश।

0: बात करेंगे प्रधानमंत्री के इटली दौरे की। 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली में इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। थोड़ी देर में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलेनी से द्विपक्षीय बैठक होगी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेल से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आज शाम को पीएम मोदी की स्वदेश वापसी होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों की यात्रा करने के बाद अब अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं। जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात भी उनकी हुई है, जिसमें उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम का स्वागत किया है और एक ही गाड़ी में घूमते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन अब द्विपक्षीय वार्ता जो सबसे प्रमुख है, जिसमें भारत और इटली के जो संबंध है वो और मजबूत करने का प्रयास होगा। अलग अलग सेक्टर में जो है बातचीत होगी। हम आपको ये भी बता रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम उनके हैं। 2:45 बजे के आसपास राष्ट्रपति सर्जियो मेटरेला से मुलाकात होने वाली है। फिर 2:45 पर पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। शाम 7 बजे खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा है। फिर 9:45 बजे रात को दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली से रवाना हो जाएंगे। तो भारत और इटली के संबंध बहुत मजबूत हैं और डेमोक्रेसी, चाहे वो व्यापार हो, रक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडो पैसिफिक रणनीति, हर मुद्दे में हम इटली के करीब आए हैं और इटली हमारे करीब आया है। और पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के दौर में रिश्तों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिली है। अब ये तस्वीरें भी बताती हैं कि दोनों की जो फ्रेंडशिप है काफ़ी अच्छी है और अब व्यापार, इन्वेस्टमेंट, रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्पेस, हर सेक्टर पर बताया जा रहा है कि चिंतन मंथन होगा। द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा सहयोग बढ़ाने, व्यापार, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, हाई टेक्नोलॉजी, AI का दौर भी है।

0: तो इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज द्विपक्षीय बातचीत होनी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस भी आ जाना। वहीं इससे पहले इटली के रोम में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, बताया कि दोनों ही देशों के नेताओं के साथ डिनर भी किया है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। और इसके बाद पीएम मोदी और मेलोनी ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया है। और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की पीएम मोदी के साथ, लिखा वेलकम टू रोम माय फ्रेंड।
1: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर दोनों कब मुलाकात करेंगे इसको लेकर अटकलों पर अब विराम लग सकता है। अगले महीने फ्रांस में मुलाकात हो सकती है, 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में G7 की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को न्यौता दिया है। G7 मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शिरकत करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात इसी बैठक के दौरान हो सकती है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस पर कई बार अमेरिका का साथ न देने का आरोप लगाया। ऐसे में ये मुलाकात न सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम।
0: तो यूरोप से खासे नाराज डोनाल्ड ट्रंप है ही, हालांकि जब से युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका के बीच में तो फोन पर बातचीत जरूर हुए लेकिन ये आमने सामने की मुलाकात होगी। G7 की बैठक जिसमें मैक्रों का न्योता आ गया है और 16 महीने के बाद एक मुलाकात होने वाली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब किसी से छुपे नहीं, बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये जो मुलाकात होगी इस मुलाकात में इन रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का मकसद होगा। जो भारत के अपने कंसर्न है उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखेंगे क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसके चलते ही पूरे विश्व में इस समय उथल पुथल मचे हुए हैं।
1: वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन का स्वागत किया। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए जिसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच ईरान यूक्रेन युद्ध समेत व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन का यह दौरा 2 दिवसीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के ठीक बाद हो रहे इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये यात्रा रूस चीन के बीच सद्भावना मैत्री और सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई।
0: तस्वीरें हैं दोनों रेड कार्पेट पर चलते हुए दिखाई दिए। चीन और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और वो मजबूती एक बार फिर से दिखाई गई है, दोनों साथ में खड़े दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूं तो चीन पहुंचे थे और अब पुतिन भी पहुंचे हैं और 25वीं वर्षगांठ इनकी अपनी सहयोग मैत्री सद्भावना संधि की इस मौके पर पहुंचे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और करार भी होने की उम्मीद है और दोनों के बीच में इस बात पर भी सहमति की जो गैस पाइपलाइन है वो रूस से सीधा चीन तक पहुंचे क्योंकि चीन भी ऊर्जा जरूरतों पर निर्भर है दूसरे देशों पर। तो ऐसे में रूस से एक बहुत बड़ा सपोर्ट चीन के लिए।
1: और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की और इस मीटिंग में ट्रंप को उनकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों की पूरी जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास डील के लिए बस कुछ दिन बचे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब दोबारा हमले को लेकर फैसला शुक्रवार शनिवार या फिर अगले हफ्ते तक हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान के साथ जारी युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौता करने के लिए बेताब है और जल्द तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जाएगी। ईरान के पास डील के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं।
2: And now we're blowing it away. We're blowing everything away and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it and it's going to happen and it's going to happen fast and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
0: और अब बात भोपाल के ट्रिशा शर्मा मौत मिस्टर की। आज भोपाल की एक अदालत में अहम सुनवाई होने वाली है। ट्रिशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहा है और परिवार ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इस मांग की वजह से अब तक ट्रिशा का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है।
1: ट्रिशा के परिवार की इस मांग पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनुदिता गुप्ता आज सुनवाई करने वाली हैं। कोर्ट ने पुलिस डायरी तलब की है और इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्रिशा के पति समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर सिंह पुलिस ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। 6 टीमें समर की तलाश में जुट गई है। पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आज ही दोबारा पोस्टमार्टम होगा?
3: जी बिल्कुल, आज पोस्टमार्टम के लिए आवेदन जो है वो कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है। और इसमें आपको बता दें कि जो कोर्ट है वो ये आज फैसला देगा कि पोस्टमार्टम दोबारा होना है या नहीं, और अगर होगा तो क्या वो मध्य प्रदेश में होगा या दिल्ली एम्स में होगा, जैसे परिवार की मांग है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक है आज सड़कों पर उतरे हैं और त्विशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तमाम भूतपूर्व सैनिक है क्योंकि त्विशा के जो भाई हैं वो मेजर है आर्मी में, और ऐसे में इन सब का कहना है कि मेजर का परिवार जब लाचार है, आप देखिए ऊपर, मेजर का परिवार जब लाचार है तो ये कैसा तंत्र, कैसी सरकार है ये। इस तरीके के बैनर लेके तमाम भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। क्या कार्यक्रम है सर आज आप लोगों का, किन किन से मुलाकात करके आप कार्रवाई की मांग करने वाले हैं?
4: सर अभी हमारा एक दल है वो गया हुआ है डीजीपी ऑफिस, वहाँ पे साहब को ज्ञापन देंगे, वहाँ से फिर हम राजभवन जाएंगे और राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे कि इंसाफ दिलाया जाए हमें, और फिर वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और सीएम हाउस पे जो है ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जो परिवार है, फौजी का परिवार है, उसको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि फौजी बॉर्डर पे है और वो रोड पे नहीं आ सकता, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है और एक कानून के तहत आता है, इन सब कारणों से वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम सब जो है उनके समर्थन में और उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम सब रोड पे निकले।
3: क्या ये जो परिवार आरोप लगा रहा है कि पावरफुल लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा, तो आपको लगता है, आप लोग भी फौज में, आपको लगता है कि ये हो सकता है एक फौजी के परिवार के साथ?
5: सर ऐसा है कि ये जो संस्था बनी हुई है हमारी, ये बहुत प्रताड़ना होने के बाद हम लोग ये वर्दी ग्रुप की संस्था बनी, तो हम तो केवल इतना ही बोलेंगे कि जो गलत है वो गलत है, इंसाफ मिलना चाहिए।
3: ताकतवर लोग आपको लग रहा है, जांच की दिशा भटका रहे हैं?
6: बिल्कुल, ये जांच क्या सही तरीके से नहीं हो रही है, इसीलिए भूतपूर्व सैनिकों और वर्दी संगठन को रोड पर उतरना पड़ा है ताकि उसको सही तरीके से न्याय मिल सके। अगर सही तरीके से न्याय मिलेगी तो भूतपूर्व सैनिक कभी भी रोड पे नहीं उतरेगा।
3: तो आप देख सकते हैं नेहा, ये तस्वीरें हैं भोपाल से। लगातार ये मामला जो है सुर्खियों में तो बना ही है, लेकिन इन सब के बीच में भूतपूर्व सैनिकों की सड़क को उतरना पड़ा है और मांग करने के लिए डीजीपी से, मुख्यमंत्री से, गवर्नर से, या आज बाहर निकले हैं रैलियों के जरिए और मांग कर रहे हैं कि एक फौजी परिवार की जो बेटी है उसके साथ जो कुछ हुआ है वो सच सामने आए, इंसाफ मिले। और इस बीच में आज अहम सुनवाई होने वाली है भोपाल की अदालत में,
0: लंबे समय से पूर्व जो हमारे सैन्य कर्मी है वो भी प्रोटेस्ट करते हुए और न्याय की मांग करते हुए सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिया। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
13: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
17: Like I said before, we better hold the sins.
18: रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
19: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप।
20: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
21: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
22: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
20: शुभेंदु अधिकारी,
19: यहां पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
23: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
24: अनुपम मिश्र,
25: अमित भारद्वाज,
26: पीयूष मिश्रा,
27: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
5: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
7: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे, कैसे होगा? हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
11: झुकने वाला आदमी नहीं हूं।
12: बकरीद का त्योहार करीब आता है और सड़क पर नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलती है, बीजेपी का राज आता है और नई सरकार की प्राथमिकताओं से पर्दा हटने लगता है। साफ हो जाता है कि निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है। यूपी में सीएम सड़क पर नमाज को लेकर कायदा बताते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु पत्थरबाजों और घुसपैठियों को हिदायत जारी करते हैं। यूपी में अवैध मस्जिदों मकबरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नए बंगाल में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में सार्वजनिक नमाज पर सख्त पाबंदी है, बंगाल में भी सड़क पर नमाज की मनाही है। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहे हैं। बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा हो रही है। जो एक्शन प्लान पहले यूपी में दिख रहा था वो अब बंगाल में दिखने लगा है। लेकिन बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद और बंगाल में बीजेपी की बम्पर विजय के बाद सीएम योगी के भी अंदाज बदले बदले दिख रहे हैं। इसलिए अब चर्चा इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या बंगाल में बीजेपी की विजय से योगी ने यूपी के लिए कोई सियासी सूत्र तलाशा है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: मेलनी की डिनर पर मुलाकात। मेलनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। आज द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा।
1: अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रों ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता।
0: बीजेपी ने जारी की ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। सब पर होगा एक्शन। हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर।
1: आज देशभर में बंद रहेंगी दवा की दुकानें। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम। किराया बढ़ाने की मांग।
0: उत्तर भारत की झुलसा रही गर्मी। मौसम विभाग के अलर्ट से डराया। यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट। 3 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है तापमान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
0: तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल बदला सा दिखने लगा है। शुभेंदु सरकार ने योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया है। अतिक्रमण पर एक्शन हो रहे हैं। टीएमसी के दफ्तर तक बुलडोजर की चढ़ाई हो चुकी है। तैयारी अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज पर एक्शन की है।
1: शुभेंदु अधिकारी की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था के मोर्चे को पूरी तरह से मजबूत करने की दिख रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि गुंडा राज के दिन अब लग चुके हैं। लेकिन शुभेंदु के हर एक्शन पर सियासी रिएक्शन भी आ रहे हैं। टीएमसी अतिक्रमण के नाम पर एक्शन को राजनीति बताकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा।
0: अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार की बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है।
1: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: सुशासन का पहला मंत्र है कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। शुभेंदु के बुलडोजर उस बड़े वर्ग में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बंगाल में बीजेपी को महाविजय दिलाई और पहली सरकार बनवाई।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही बीजेपी को वहां सियासी जमीन बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हत्याएं हुई, एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन की मजबूरी भी सामने आई। अब शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी के पार्टी कैडर को उनकी सुरक्षा की गारंटी का मैसेज है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की एक प्रॉपर्टी के खिलाफ नोटिस जारी किया है, 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। क्या ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट के जरिए, इंद्रजीत कुंडू की ये रिपोर्ट।
3: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अभी भी तृणमूल कांग्रेस चलाती है और कोलकाता के मेयर है फरहाद हकीम जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन केएमसी से ये नोटिस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी किया है। उनके घर पर ये लगाया गया था, चिपकाया गया था, ये कहते हुए कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, इसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हुआ है जो अनऑथराइज्ड है, जो ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान या सैंक्शन है उससे बाहर किया गया है, और यही कारण है कि अगर 7 दिन के अंदर वो इस नोटिस का रिस्पॉन्ड ना करे तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिमोलिशन ऑर्डर, मतलब तोड़ने का ऑर्डर जारी कर सकती है। जिस तरह का बुलडोजर कार्रवाई हमें देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी सरकार आने के बाद, कहीं इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं जहां पे एनक्रोचमेंट है रास्ते के ऊपर उसको हटाया जा रहा है, जैसे हावड़ा या सियालदह स्टेशन में हुआ है, उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पे भी इस तरह का नोटिस जारी करके केएमसी ने साफ साफ कह दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर उस नोटिस का जवाब नहीं देते तब केएमसी डिमोलिशन ऑर्डर निकाल सकती है। और जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर यहां पे किया गया है, कंस्ट्रक्शन जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है उसको तोड़ा भी जा सकता है।
2: शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा और सियालदा रेलवे स्टेशन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया है।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं अवैध रूप से कब्जा किया हुआ जमीन, तो कहीं अवैध रूप से लोग अगर सड़कों पे दुकान बनाते हैं तो उन दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। हम इस समय सियालदा स्टेशन में मौजूद है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ हर रोज आवाजाही करते हैं, लेकिन ये जो स्टेशन का इलाका रहा है यहाँ अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा तादाद में गैरकानूनी तौर पर जो वेंडर हुआ करते थे वो बैठते थे और जो दुकानें थी वो दुकानें भारी तादाद में यहाँ पर थी। यहाँ पर गाड़ियों का आवाजाही भी लगभग नामुमकिन हो चुका था और लोगों को खासा परेशानी होता था यहाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये इलाका है नया मेट्रो स्टेशन बनने के बाद यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे जो हॉकर्स बैठते हैं खासकर जो अवैध रूप से बैठते हैं उन्हें हटाने की मुहिम छेड़ी जाए, लेकिन सरकार आने के तुरंत बाद अगर 10 दिन पहले कोई सियालदा स्टेशन आया होगा तो एक चित्र देखने को मिला होगा और आज अगर सियालदा स्टेशन में हम खड़े हैं तो चित्र कुछ और आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो साफ तौर पे बहुत स्मूथली यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। दूसरे छोर पर अगर आप सड़क पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे जो ट्रॉलीज है वो रखा गया है, लेकिन यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी उन दुकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया था। और सिर्फ सियालदा स्टेशन ही नहीं बल्कि सियालदा हावड़ा स्टेशन दोनों में ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सिर्फ गैरकानूनी तरीके से दुकानें नहीं बल्कि घर जहां पर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है उन घरों को भी तोड़ने का काम बदस्तूर जारी है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस सरकार के जमाने में किसी भी सूरत पर कोई भी गैरकानूनी काम को आगे करने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5: जहां अतिक्रमण हो, अवैध अतिक्रमण हो तो हटना ही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ मिनिस्टर्स के नाम भी ले रहे हैं। अनुपम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुपम, जिन मंत्रियों के पूर्व मंत्रियों के या नेताओं के जो नाम लिए जा रहे हैं उनकी संपत्तियों पर किस तरह का एक्शन अब देखने को मिल रहा है और किस किस तरह का उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था या अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ था?
6: जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने दो दिन पहले ही चार लोगों के नाम लिए हैं जिसमें राजू नस्कर है बेलेघाटा से, इसके बाद पप्पू सोना पप्पू है जिसे ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है, जावेद खान जो पूर्व मंत्री थे टीएमसी सरकार में उसके पुत्र का नाम लिया है और अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। तो इस पर एक्शन थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कल अभिषेक बनर्जी का जो घर है वहाँ पर एक नोटिस भेजा गया जहाँ पर डिमोलिशन की बात की गई है, कुछ निर्माण किया गया है, जो नक्शा जो था उससे हटकर निर्माण किया गया है उसे तोड़ने की बात कही गई है। तो इस तरह के एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट अभी अभिषेक बनर्जी की सामने आ रही है वो फर्जी है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप भी इस पर हो रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दो दिन पहले चार लोगों के नाम लिए थे उनमें से थोड़ा बहुत एक्शन अभी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, पहले नोटिस भेजा जाता है उसके बाद कार्यवाही होती है।
5: जी अनुपम, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार यह साबित करने में लगे हैं कि हिंदुत्व ही उनके सरकार का केंद्र बिंदु होगा। वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं जिससे यह साफ हो रहा है कि उन्हें उन हिंदू समर्थकों की चिंता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था।
2: तो शुभेंदु का आज अहम दौरा उत्तर बंगाल का है जहां बीजेपी को इस बार उम्मीद से बढ़कर सीटें मिली है। शुभेंदु का सीएम के तौर पर यह पहला दौरा है और इस दौरे से उन्होंने समर्थकों को संदेश भी दिया है कि नई सरकार उनके साथ है।
1: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुआज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना एडुकेशन का अच्छा करना है? इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है? आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
0: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिनाने को कई फैसले हैं जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
2: और इस बीच आज उत्तर बंगाल का पहला दौरा है शुभेंदु अधिकारी का सीएम बनने के बाद, तो वहां पर बागडोगरा एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां उनके जबरदस्त स्वागत की कर ली गई हैं। ढोल नगाड़े की थाप आप सुन सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी का आज उत्तर बंगाल का दौरा है, जहां पर अभी वो लैंड नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही बागडोगरा एयरपोर्ट पर इस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा।
5: अनुपम भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जा रहे हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां हैं?
6: देखिए, आज है, आज ही वो वापस भी आ रहे हैं। वो अभी 11 बजे लैंड करने के बाद बीजेपी की एक मीटिंग है वो करेंगे। इसके बाद 12 बजे से जो मिनी सचिवालय है उत्तर बंगाल का, जो सचिवालय कहा जाता है, उत्तर कन्या भवन का नाम है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करेंगे। और वो मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर बंगाल ने झोली भर भर कर बीजेपी को वोट दिया है और उत्तर बंगाल अवहेलित है, इस तरह का आरोप बीजेपी की ओर से तमाम चुनाव प्रचार के दौरान जो रैलियां हुई प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेताओं ने लगाया। तो ऐसे में बीजेपी क्या उपहार दे रही है, उस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये सब आज उत्तर बंगाल में जो मीटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग, उसमें तय होगा। और इसके बाद वो शाम तक कोलकाता वापस आएंगे। शाम को बीएसएफ के साथ एक मीटिंग है कोलकाता सचिवालय में। तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
2: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद हुरपुरा दरबार शरीफ ने मुसलमानों से अपील की कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं दें। हुरपुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा कि मैं सबसे पहले यह अपील करना चाहता हूं कि गाय ना खरीदें।
5: तो पश्चिम बंगाल में हुरपुरा दरबार शरीफ की तरफ से लोगों के लिए यह अपील की गई है कि गाय ना खरीदें, बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दे। ईद की तैयारियां चल रही है और उससे पहले हुरपुरा शरीफ की तरफ से सभी से ये अपील।
7: आइन के संबंध भारतের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি হুরপুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
2: तो कहां तो फलता की सीट अभिषेक बैनर्जी के लिए नाक की लड़ाई थी और कहां टीएमसी का पुष्पा जहांगीर खान वोट से पहले ही भाग खड़ा हुआ। फलता में कल फिर से वोटिंग होनी है। फलता में ईवीएम पर टेप चिपकाने की तस्वीर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने वहां चुनाव रद्द कर दिया था। इस सीट पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का गढ़ माना जाता है, लेकिन सरकार बदलते ही जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। जहांगीर वही शख्स है जिसने खुद को पुष्पा कहा था, ना झुकने की बात कही थी और शुभेंदु ने खुद ही पुष्पा को देख लेने की धमकी दी थी।

0: तो पश्चिम बंगाल में फलता में दोबारा वोट को लेकर तनाव जरूर है, लेकिन जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया। आपको सुनाते हैं जहांगीर खान ने नाम वापस क्यों लिया, क्या कहा है।
1: सम्माननीय मुख्यमंत्री फलता उन्नयनের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে, সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপল আছে সেই রিপল থেকে রিপলের কনটেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।
2: और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी ने 2027 की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जितिन नवीन के साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल की बैठक चल रही है।
0: तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां कर ली है। कैबिनेट विस्तार को भी इस रूप में देखा गया कि ये भी 2027 की तैयारियां हैं, और अब जो एक्चुअल तैयारियां हैं संगठनात्मक रूप से अपने आप को और मजबूत करने को लेकर चिंतन मंथन, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल के समय बैठक चल रही है।
3: हम पंकज को बोले हैं वहां, पंकज
2: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। किस तरीके से तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अगला फोकस अब उत्तर प्रदेश का बड़ा और अहम चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, इस पर एजेंडा क्या है?
4: देखिए बिल्कुल नेहा, क्योंकि खुद पंकज चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के सचिव हैं वो आए हैं, और 2027 के लिए तो चुनाव एक बड़ा एजेंडा है ही है। और उसके साथ साथ क्योंकि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनकी टीम को लेकर जो है वो चर्चा होगी कि टीम को किस तरीके से टीम के अंदर नए चेहरों को रखा जाए, पुरानों को अगर तरजीह देनी है तो किन किन को तरजीह दी जानी चाहिए, एक सामंजस्य जो है युवा और एक्सपीरियंस लोगों का बने, तो वो उसको लेकर बातचीत है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि पंकज चौधरी की नई टीम बननी है, और 2027 में क्योंकि 27 के शुरुआत के अंदर ही वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो पंकज चौधरी की जो नई टीम बननी है प्रदेश के संगठन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पंकज चौधरी
0: और वहां नजर बनाए रखे हैं, अपडेट्स के आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच में उत्तर बंगाल से तस्वीर सामने आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहुंच गए।
5: উত্তরবঙ্গের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, ভারতীয় জনতা পার্টি সংকল্পপত্রে যা যা বলেছে সেগুলো পূরণ করার মধ্য দিয়ে 2009 সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে উত্তরবঙ্গে আপনারা প্রবেশের সুযোগ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সেই ঋণ শোধ করব। উত্তরবঙ্গের অভিমান, বঞ্চনা, ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। প্রত্যেক মাসে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভা সরকার উত্তরবঙ্গের কাছে পৌঁছে যাবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রত্যেক সপ্তাহে পুরো একদিন উত্তরকন্যাতে অফিস করবে, এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ যা স্বপ্ন দেখেছেন বিজেপিকে নিয়ে, বিজেপি তা পূরণ করবে।
2: ইসিকে সাথ ইয়াহ রুকনা হোগা, ফির সে ব্রেক কে লিয়ে ফরন হোগে হাজির, টিকতে রহিয়ে আজ তক।
6: প্রেজেন্টেড বাই পতঞ্জলি দন্ত কান্তি টুথপেস্ট কমপ্লিট ওরাল হেলথ কা সচ ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ
7: ভারত কি আপনি ইলেকট্রিক সওয়ারি সোকুডো।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
10: In association with
7: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
11: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
12: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
14: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है, जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के दो सबसे अहम बिंदु हैं। पहला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा, ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने का ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, जिससे ट्रंप अपने देश में ये दिखा सकेंगे कि उन्होंने कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही बाधित है, हालात तनावपूर्ण है। ईरान से सीजफायर हुए 40 दिन बीत गए हैं, डील का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। अब ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या ईरान पर फिर से बम बरसेंगे या बातचीत का रास्ता निकलने की एक आखिरी कोशिश होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर हर कूटनीति फिर फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राजीव ढांडियाल आज शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर हैं और एक खास तस्वीर सामने आई है। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को एक गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया है और मेलोडी टॉफी का गिफ्ट जो है जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया। गिफ्ट मिलने के बाद मेलोनी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। अब आपको याद होगा कि इससे पहले भी हैशटैग मेलेडी काफी चर्चित रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड करता, खासतौर पर जब भी दोनों ही नेताओं की मुलाकात होती है। अब मेलेडी में मेलेनी का MEL और ODI यानी कि मोदी का, तो ये मेलेडी बन जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे वीडियो में।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रोट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: दोनों के बीच में हल्का फुल्का अंदाज देखने को मिला है।
1: मोदी ब्रोट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रोट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: मैलट।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a...
0: अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं दोनों की, जब मुलाकात हुई है। कुछ इस गर्मजोशी के साथ मिले हैं, साथ में गाड़ी में ही गए भी हैं। एक जो है उनको प्रधानमंत्री मोदी को पीएम मेलेनी ने घुमाया भी है और जो है इटली के बारे में बताया भी है। लेकिन टॉफी जो गिफ्ट की गई है वो मेलेडी टॉफी थी। आपको याद होगा इससे पहले भी मेलेडी कहते हुए मेलेनी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जब पहले इससे पहले वो मिले थे। और इस बार जो है पीएम मोदी टॉफी का पैकेट ही लेकर गए हैं और उस पर वो मेलेडी टॉफी है, जिसमें चूंकि जब भी दोनों मिलते हैं तो ये बहुत ट्रेंड करता है सोशल मीडिया पर। और दोनों इस बात को जानते हैं, सोशल मीडिया इसका मतलब बहुत अच्छे से देखते हैं कि लोग क्या चर्चा करें, किस बारे में बात करें। तो पीएम मोदी और मेलेनी की दोस्ती के बारे में लोग बात करते हैं और इन दोनों को जो है मेलेडी करके जोड़ा जाता है और हैशटैग मेलेडी। तो अब पीएम मोदी ने वही टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया है। दोनों मुस्कुराते हुए इन पलों को एंजॉय करते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं, हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद पीएम मोदी गाड़ी में बैठकर ही एक ही गाड़ी में दिखाई दी। आपको याद होगा रूस में भी इसी तरह से पीएम मोदी अपने जो है राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में बैठकर गए थे, साथ में गए थे। और अब यहां इटली में पीएम मोदी और मेलेनी साथ में एक ही गाड़ी में घूमते दिखाई दिए।
1: A very, very good toffee.
2: Mallet.
0: तो पीएम मोदी का ये इटली का दौरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना है, मैं इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें न केवल सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, बल्कि भारत और इटली के संबंधों में भी बीते कुछ सालों के दौरान खासा इजाफा देखने को मिला है। अगर हम आंकड़ों की तस्वीर के जरिए बात करें तो ये नजर आता है कि इटली यूरोप के अंदर भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत से इटली को होने वाले निर्यात के अंदर करीब 19% का इजाफा बीते दो सालों के दौरान हुआ है और इटली से रेमिटेंस के जरिए भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा के अंदर भी 32% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा इटली भारत के साथ अपने कारोबार और अपने व्यापार को मजबूत करना चाहता है और साथ ही सामरिक और रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी पहली इटली की द्विपक्षीय यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान भारत और इटली के संबंधों में रणनीतिक साझेदारी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, रक्षा से लेकर कृषि के क्षेत्र में

0: और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और इटली का निवेश भारत में कैसे आकर्षित किया जा सकता है, साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए इटली के दरवाजे किस तरीके से खुल सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब बात बहुत चर्चित ट्विशा शर्मा केस की। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत मिस्ट्री। इस केस में भोपाल की अदालत में आज बहुत अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। ट्विशा के परिवार ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। इस मांग की वजह से अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इस बीच भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर सिंह पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। पुलिस की 6 टीमें समर्थ की तलाशी में जुटे हैं। समर्थ का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
2: त्विशा की मौत मामले में आज एक अहम मोड़ आने वाला है। त्विशा के परिवार ने भोपाल की जिला अदालत में त्विशा के सेकेंड पोस्टमार्टम का आवेदन दिया है, जिस पर आज भोपाल जिला अदालत सुनवाई करेगी। त्विशा का परिवार चाहता है कि उसका सेकेंड पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली एम्स में किया जाए, क्योंकि भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं है और अभी भी त्विशा की हत्या का ही आरोप लगा रहा है। फैसला क्या होगा, इस पर सबके नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच पुलिस ने जहां समर्थ पर पहले 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, वहीं अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुलिस को शक है कि समर्थ विदेश भाग सकता है, इसलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने की कार्रवाई भी भोपाल पुलिस ने शुरू कर दी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: ट्विशा शर्मा की तरह ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिलती जुलती घटना सामने आई है। ग्वालियर में इंस्टाग्राम क्वीन के नाम से लोकप्रिय पलक रजक की संदिग्ध मौत चर्चा में है। पलक के परिवार के मुताबिक मौत से पहले पलक ने अपने पिता को फोन करके कहा था कि उसे अपने साथ ले जाएं। पलक की शादी 1 साल पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर उसने ऐसे शब्द लिखे जो कि पुलिस की जांच का हिस्सा बन गए। 10 मई को पोस्ट की गई एक रील में जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा है। इस रील में पलक रजक ने पैनिक अटैक, एंजाइटी, नींद न आना, लगातार रोते रहना और दबाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बारह बजे 12 रिपोर्टर में बात एक और बेटी की। सैलून मैनेजर गोरखपुर की रत्ना सिंह सुसाइड केस में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी है। इस मामले में कल 2 और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने फरार चल रही 25,000 रुपए की 2 इनामी महिला आरोपियों पल्लवी जोशी और वैशाली को गिरफ्तार कर लिया है। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है, जबकि वैशाली को लखनऊ के एक होटल से दबोचा गया है। सैलून संचालक, मुख्य आरोपी शरद सिंह, प्रशांत शर्मा और मंगलनाथ यादव ये पहले ही पकड़े जा चुके हैं और बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ये मुद्दा लेता जा रहा है। मृतका की बहन प्रिया सिंह का आरोप है कि रत्ना ने आत्महत्या नहीं की बल्कि एक प्लान्ड मेंटल मर्डर है, जिसमें प्रभावशाली लोगों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई। प्रिया के मुताबिक मरने से पहले रत्ना ने एक वीडियो बनाकर शरद सिंह, पल्लवी जोशी और वैशाली और मंगलनाथ साथ साथ प्रशांत का भी नाम लिया था। परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने रत्ना पर गलत काम करने का दबाव बनाया था। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले 32 वर्षीय रत्ना लखनऊ में अकेले रहकर नौकरी कर रही थी। मामले में रत्ना के पिता सुधीर सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई थी। कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 टीमें गठित की गई।
3: लखनऊ में चर्चित रत्ना सिंह केस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन तो हुआ ही हुआ है। इसमें आरोपी शरद सिंह, इसके साथ साथ प्रशांत और मंगलनाथ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब 25,000 की इनामी फरार पल्लवी और वैशाली को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से तो वैशाली की लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी के पास एक होटल से की गई है। इन 5 आरोपियों पर रत्ना सिंह को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने वीडियो भी जारी किया था और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
1: रत्ना का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा। कल गोरखपुर में रत्ना के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
4: वो बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल लड़की थी। वो कभी ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती है, कभी नहीं। मतलब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अपनी लाइफ खत्म कर देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर, और ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई भी सुसाइड नहीं है, इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ मेंटल मर्डर। उसको बहुत सोच समझ के मारा गया है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे।
5: वही तो हमें भी जानना है ना सर, ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वो अपनी डेथ के एक दिन पहले हमसे बात कर रही है, कॉन्वर्सेशन कर रही है, वॉइस चैट कर रही है इन अ वेरी चर्पिंग मोड, देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट शी हैज टू एंड अप हर लाइफ लाइक दिस। जब उसकी डेथ हुई थी तब हमने अप्रोच किया था पुलिस को, FIR वगैरह कराई थी, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया था कुछ दिनों तक, बट 15th को जब हम CM सर से मिले उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी बदली। नहीं, वो उसी टाइम पे मिली थी जब हम पोस्टमार्टम के लिए थे वहां पे, तो लोगों ने बहुत बार हमें ये भी बताने की धमकियां दी थी, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी थी कि आप ये सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप आगे मत बढ़िए।
1: 12:12 रिपोर्टर में अब बात नीट पेपर लीक केस की, जिसके तार विदर्भ से भी जुड़ रहे हैं। CBI ने नागपुर के चंद्रपुर इलाके में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच टीम दिल्ली से नागपुर पहुंची, संदिग्ध छात्रों के अलावा उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गए। CBI को शक है कि इस मामले में बिचौलियों, कोचिंग संचालकों और डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक दो संदिग्धों से लंबी पूछताछ की गई है। इस दौरान मोबाइल फोन, इस दौरान लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड खंगाले गए, कॉल डिटेल्स, अन्य डिजिटल सबूत उनके जांच की गई है। नागपुर में छापेमारी के साथ साथ CBI की टीम पुणे भी पहुंची है। वहां पर जांच अधिकारियों ने गिरफ्तार कोचिंग मालिक शिवराज मोटे गांवकर के बेटे से लगभग 3.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। पेपर लीक कांड में जांच तेज है। इस बीच में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, एक साथ कई जगहों पर रेड हो रहे हैं। इसी बीच में कोचिंग सेंटर मालिक शिवराज मोटे गांवकर के बेटे से भी लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई, सवाल जवाब का उन्होंने सामना किया है।

0: आरसीसी के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर की सीबीआई रिमांड होने के बाद उसके बेटे की भी पुणे के इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में इंक्वायरी हुई। पूछताछ के दौरान उसे क्वेश्चनिंग की गई और सबसे अहम यह है कि उसके पिता जो डायरेक्टर है क्या उनके साथ बेटे की भी मिलीभगत है कि नहीं, इसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने कल और 4 से 5 लोग हैं जिनकी 3 से 4 घंटे तक इंक्वायरी हुई है, उनके साथ क्वेश्चनिंग हुआ, क्योंकि ये वही लड़के हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल थे और एग्जैक्टली उन्हें पेपर कैसे मिला, वो कहां से लीक हुआ और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें किस तरीके से मौजूद थी, इसकी जांच सीबीआई कर रही है।
1: एक तरफ सीबीआई की जांच तो दूसरी तरफ पुणे के गिरफ्तार कोचिंग मालिक के खिलाफ गुस्सा। मंगलवार को शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ एक छात्र संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कोचिंग के बोर्ड पर कालिक पोत दी गई, साथ ही तोड़फोड़ कर दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्र संगठनों का एक गुस्सा है जिसमें आरसीसी कोचिंग के पोस्टर्स पर कालिक पोती गई, उसके बाहर जमकर नारेबाजी की गई। एक छात्र संगठन था जो कोचिंग मालिक के खिलाफ और कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने वहां तोड़फोड़ तक की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रा से उत्पीड़न और पेपर लीक के आरोपों में घिरे असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑडियो वायरल हुआ था जिसकी जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने आईसीसी कमेटी ने छात्रा के आरोपों की जांच के लिए अपनी रिपोर्ट कार्य समिति को सौंपी थी, जिसके बाद नई अनुशासनात्मक जांच समिति गठित की गई थी और उसी कमेटी के अनुशंसा पर असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित करने का फैसला लिया गया।
2: लखनऊ यूनिवर्सिटी मामले में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुशासन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। अंतरिम रिपोर्ट में 4 बिंदुओं पर असिस्टेंट प्रोफेसर को दोषी पाया गया है। दोषी पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही अनुशासन समिति ने 15 दिनों का समय दिया है जिसमें लिखित जवाब देने की बात कही गई है। तय समय पर लिखित जवाब संतुष्ट ना होने पर बर्खास्तगी जैसी कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा को पेपर लीक कराकर उसके साथ प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसमें साफ तौर से अनुशासनहीनता पाई गई है, जिसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है।
1: 12:12 रिपोर्टर में आबाद बिहार के, जहां पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। 18 मई को सिवान में लूट के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ है तो 19 मई को पटना और समस्तीपुर में एनकाउंटर की खबर आई है और इसके बाद तमाम एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देकर आरोपियों का एनकाउंटर कर रही है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए
3: और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा?
4: बिहार में नई सम्राट सरकार के गठन के बाद पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में है और लगातार अलग अलग आपराधिक घटनाओं में जब पुलिस एक्शन ले रही है तो उसमें कई एनकाउंटर की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें सुल्तानगंज में एनकाउंटर से लेकर के जो सिवान के अंदर एनकाउंटर की घटना है वो भी शामिल है। हाफ एनकाउंटर भी कई अपराधियों का पुलिस ने किया है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सम्राट सरकार है वो अपराधियों की जाति देख करके एनकाउंटर करवा रही है और भले ही जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कह रहे हों कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख करके अपराधियों का सरकार एनकाउंटर करवा रही है। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्म हो गई है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी निशाने पर हैं। बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है। दावा किया कि अभिषेक की 43 प्रॉपर्टीज हैं, सभी की हम जांच करेंगे। अभिषेक ने दूसरी तरफ कहा, झुकूंगा नहीं, सरकार जो चाहे कर।
5: देखिए, अभिषेक बनर्जी के घर पर जब से कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस गया है, तब से एक चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की कई संपत्ति हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, बीजेपी की ओर से ऑफिशियली भी नहीं कहा गया है, लेकिन टीएमसी की ओर से कैटेगरिकली कहा गया है कि ये गलत लिस्ट है, फर्जी लिस्ट है और इस लिस्ट के बारे में कोई तथ्य सही नहीं है। ये दावा टीएमसी की ओर से आज जरूर किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केएमसी की ओर से या आधिकारिक तौर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद फुरफुरा शरीफ के मुस्लिमों ने एक अपील की है कि साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी न दें। फुरफुरा शरीफ की तरफ से ये अपील मुस्लिमों से की गई है। पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा है कि मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बार गाय ना खरीदें।
6: आईन के सम्मान जानाते हबे। भारतेर द्वितीय मुस्लिम तीर्थभूमि फुरफुरा दरबार शरीफ थेके बोलछि, आमरा एबछरे कुरबानी देब, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে। ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না। অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
1: अब बात महंगाई की नई डोज की। बड़ा पाव 5 रुपए महंगा हो गया और बड़ा पाव को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक 5 रुपए तक महंगा हो गया है। बड़े चाव से इसे खाया जाता है, बहुत फेमस भी है और अब बड़ा पाव के लिए आम लोगों को अपने जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। लोग घर से निकलते ही बड़ा पाव का ही ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच भी करते हैं, लोग तो डिनर भी करते हैं, और वो बड़ा पाव अब मुंबई में महंगा हो गया है। उसके पीछे की वजह है पेट्रोल डीजल CNG की कीमतें बढ़ी हैं और इसका पूरा इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या महंगा हो गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूरा महंगाई का डोज है और ये तो डोज अभी शुरू हुआ है। अगर यही हालात रहे तो ये बढ़ती बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे।
7: पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गैस की कीमत से लेकर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, उसके बाद से वड़ा पाव जो कि मुंबई का एक स्टेपल डाइट माना जाता है, उसकी कीमत बढ़ गई है। जहां आराम वड़ा पाव की कीमत 5 रुपए बढ़ गई है, वहीं अशोक वड़ा पाव की भी कीमत 5 रुपए। वहीं दूसरे छोटे छोटे दुकानदारों ने भी 1 से 2 रुपए का इजाफा, 3 रुपए का इजाफा देखा है अपने वड़ा पाव में। हालांकि पाव की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन तेल और गैस, खासतौर से कमर्शियल गैस, क्योंकि 1000 में कमर्शियल गैस का जो एक सिलेंडर मिलता था वो अब 3000 में मिलता है, उसके इजाफे की वजह से ये वड़ा पाव का दाम सबसे ज्यादा बढ़ा है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब बात करेंगे दवा विक्रेताओं के। देश भर में आज दवा की दुकानें बंद है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाइयों की सप्लाई प्रभावित अब हो सकती है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आज देश भर में तमाम मेडिकल शॉप्स बंद हैं। वहीं दिल्ली में 21 मई यानी कि कल से 3 दिन के लिए ऑटो टैक्सी वाले भी हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच ऑटो टैक्सी वालों ने भी किराया बढ़ाने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के LG और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है। ऑटो यूनियन का कहना है कि 15 साल से किराया नहीं बढ़ा है।
8: अहमदाबाद की 3000 समेत गुजरात में 35,000 जितने मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। एक दिवसीय बंद का ऐलान केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें अहमदाबाद के VS अस्पताल के सामने मौजूद दवाइयों की दुकानों की हैं, जो कि आज सुबह से बंद हैं। आज एक दिवसीय हड़ताल को समर्थन इन दुकानदारों की तरफ से दिया गया है। और खास करके बात करें तो ऑनलाइन दवाओं की बिक्री जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में बढ़ी है, प्रिस्क्रिप्शन बगैर जो दवाएं, जो नशीली दवाएं या ये कहें कि जो भेल से युक्त जो दवाइयां हैं वो मरीजों तक पहुंचाई जा रही हैं, इस प्रकार के आरोप लगातार केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ जो केमिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। हालांकि जो मरीज हैं उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, इसके चलते गुजरात के जो भी सिविल अस्पताल हैं, साथ में सीएचसी पीएससी सेंटर्स हैं या जो भी अस्पतालों के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर्स हैं, उन्हें चालू रखने का आदेश दिया गया है। फिलहाल देखना यही होगा कि आज एक दिवसीय बंद के ऐलान का आने वाले दिनों में क्या असर होता है, क्योंकि केमिस्ट एसोसिएशन की जो मांगे हैं वो पूरी होती है या आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की तरफ केमिस्ट एसोसिएशन बढ़ने के लिए मजबूर होगा।
1: और अब बात करते हैं गर्मी की। उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, शहर बुरी तरह से तप रहे हैं। यूपी के कई जिलों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के 75 में से 22 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। बांदा में कल अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रयागराज में 46.5 डिग्री, उरई में 45.2 डिग्री, कानपुर शहर में 44 डिग्री, मेरठ में 43.6 डिग्री, तो अलीगढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया है। 12:12 रिपोर्ट में बात करेंगे आईपीएल के वैभव सूर्यवंशी के तूफानी बल्लेबाजी की मदद से राजस्थान रॉयल्स अभी प्लेऑफ में बनी हुई है, उसकी पहुंचने की उम्मीदें भी और जिंदा है। वैभव की बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 गेंद रहते ही टारगेट को चेस कर लिया। वैभव ने मैच में क्या कमाल किया है बता रहे हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
9: लखनऊ ने राजस्थान रॉयल्स को 220 रन का लक्ष्य दिया था पीछा करने के लिए, लेकिन ये स्कोर राजस्थान के लिए छोटा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर है वैभव सूर्यवंशी। 38 गेंद की ये शानदार आतिशी पारी जिसने 93 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे, यही वजह थी कि इस पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स इस जीत के साथ अब नंबर 4 पर पहुंच गए। एक जीत और उसके बाद इनकी जगह क्वालिफिकेशन में पक्की। अब वैभव सूर्यवंशी इस सीजन इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके जो टोटल रन है वह है 589, यानी कि लगभग उन्होंने 600 का आंकड़ा वो इस सीजन के खत्म होते होते छू देंगे, और इसी के साथ उनके पास वो ऑरेंज कैप भी है। इसी फहरिस्त में एक और चीज जुड़ती है, वो है सबसे ज्यादा एक सीजन में छक्के लगाने का। क्रिस गेल के 59 और अब वैभव 53 छक्के लगाकर उनसे अब थोड़े ही पीछे रह गए। हो सकता है सीजन खत्म होते होते ये कारनामा भी वो पूरा कर ले।
1: इसी के साथ परफॉर्मेंस के साथ टीम इंडिया के लिए अब दरवाजे तोड़कर भीतर ऐसा लगता है कि एंटर करना चाहते हैं। अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
13: हॉटकेक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप। You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
16: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more. All in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
11: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
10: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के डिनर पर मुलाकात, मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी तो मिला जवाब, तोहफे के लिए शुक्रिया। द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रों ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा न्योता। बीजेपी ने जारी की ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के 43 अवैध संपत्तियों के लिए, सब पर होगा एक्शन। हावड़ा कोलकाता के बाद आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। आज देश भर में बंद है दवा की दुकानें, ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कल से दिल्ली में 3 दिन तक ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की है मांग। उत्तर भारत को झुलसा रही गर्मी, मौसम विभाग के अलर्ट से डर, यूपी में 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट, 3 से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है पारा।

0: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good talk.
1: Mallard.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट दिया है टॉफी का पैकेट। पीएम मोदी ने गिफ्ट में मेलोनी को ये मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं और मेलोडी गिफ्ट के लिए आपका थैंक यू, इसे मेलोडी ने कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने रोम की सड़कों पर साथ में कार राइड की और लगभग 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया। इससे पहले दोनों ही नेताओं ने साथ में डिनर किया, कई अहम मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, वेलकम माई फ्रेंड। दोनों ही नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की है, लिखा है कि आज होने वाली औपचारिक बातचीत में भारत इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा जारी रहेगी। दोनों ही नेताओं के बीच में व्यापार, निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है।
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रोट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
1: Mallard.
0: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
1: Mallard.
0: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
1: Mallard.
0: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: सुमित चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, भारत और इटली के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उन संबंधों पर तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इस केमिस्ट्री के बारे में बताएं, पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की, और खासतौर पर मेलोडी टॉफी ही क्यों गिफ्ट की गई?
3: देखिए बिल्कुल डोनाल्ड, अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात जानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर उनकी इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं होंगी और ये भी जानते हैं कि उन दोनों का जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके की केमिस्ट्री या फिर एक तरीके का जो जब भी इटालियन प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं तो एक तरीके का उनका एक गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। और ये तीसरी यात्रा, अगर आप दोनों पहली दोनों यात्राओं के बाद इस यात्रा को देखें तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन 2024 के बाद अगर आप देखें तो ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण भी है भारत के लिए भी, क्योंकि हम कई महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर आगे बढ़ने वाले। लेकिन जो जेस्चर था, एक कहते हैं कि जो फिजिकल डिप्लोमेसी होती है, यानी जब दो नेता आपस में मिलते हैं, हैंडशेक करने से लेकर उनके गाड़ी में बैठने तक के जो सफर होता है या फिर डिप्लोमेटिक पोस्चर्स होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये देशों के साथ साथ उन लीडर्स की आपस में एक तरीके की एक आप कह सकते हैं केमिस्ट्री दिखाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं। और शायद यही है बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री मोदी और जब इटली की प्रधानमंत्री मिल रही थी, तब ये जेस्चर दिखाया गया कि दोनों के बीच में कितने ज्यादा मजाक या कितनी ज्यादा चीजें आप कह सकते हैं कि इस लेवल पर है कि दोनों
2: ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि हैशटैग मेलोडी बहुत वायरल हुआ था, ट्रेंडिंग में था।
3: और मैं आपको वही कह रहा था राजीव, कि हमेशा जब भी मुलाकात होती है तो उसके मीम्स बहुत बनते हैं, उसके सोशल मीडिया पे डिप्लोमेसी से ज्यादा उनकी आपसी बातचीत, उनके आपसी मिलने के तरीके, इसके जिक्र ज्यादा किया जाता है। तो शायद इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी वो एक कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि एक उसका फायदा उठाया, मजाक था या एक बड़ा जेस्चर दिखाया, उन्होंने उनको गिफ्ट भी किया। तो वो टॉफी जो आपने, मैंने, हम सब ने बहुत खाई होगी देश भर के अंदर, उसके उसका नाम भी, तो उन्होंने उनको गिफ्ट किया और ये दिखाया कि देखिए कैसे आपका
2: सुमित नाम और मेलोडी पर तब लग गई थी जब जॉर्जिया मेलोनी ने खुद ही मेलोडी कहा था। आपको सुनाते हैं कि इससे पहले जब मुलाकात हुई थी तब जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा था।
4: Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team.
2: तो ये हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी और मेलनी से पहले मिले थे तो हेलो फ्रॉम द मेलनी टीम ये इशारा कर दिया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देख लिया क्या क्या चल रहा है, और उसके बाद अब आज जब मिले तो पीएम मोदी लेकर गए मेलनी, ये मेलनी के पूरे टॉफी का पैकेट और एक गिफ्ट किया जॉर्जिया मेलनी को. चले आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है. इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को उनके वरिष्ठ सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों की पूरी जानकारी दी. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास डील के लिए बस कुछ दिन बचे हैं. ट्रंप ने कहा कि अब दोबारा हमले को लेकर फैसला शुक्रवार, शनिवार या अगले हफ्ते तक हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान के साथ जारी युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौता करने के लिए बेताब है और जल्द तेल की कीमतों में भारी गिरावट दिखेगी.
1: एंड नाउ वी आर ब्लोइंग इट अवे, वी आर ब्लोइंग एवरीथिंग अवे एंड वी आर गोइंग टू एंड दैट वॉर वेरी क्विकली. दे वांट टू मेक अ डील सो बैडली, दे आर टायर्ड ऑफ दिस. शुड हैव हैपेंड फॉर 47 इयर्स, समबडी शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट. एंड It's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
2: ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका को अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा, और बड़ी खबर यह है कि इसे खुद अमेरिका की संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया है. और सुमित भी हमारे साथ, हमारे से भी लगातार जुड़े हुए. सुमित, अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया टिप्पणी है ये क्या दर्शाता? वो तो कह रहे हैं कि ईरान तैयार भी है, कीमतें भी जल्दी कम होने वाली, ये सिर्फ एक ऐसे दिया गया बयान है, इसके पीछे कुछ गहराई है?
3: देखिए, अभी अगर आप देखें कि पूरी तरीके से अमेरिका इस समय तैयार नहीं है. अब 40 दिन के इस युद्ध में जो नुकसान कांग्रेस में सार्वजनिक किए गए, खासतौर पे 42 से ज्यादा एयरक्राफ्ट गिरने की बात की गई, कहा गया कि देखिए कि ना सिर्फ उनके बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, उनके रिफ्यूलर्स सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ. अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोज डिफेंस बजट दिया था 1.2 ट्रिलियन डॉलर का था, और वो माना जा रहा कि करीबन कई कंट्रियों को मिलाकर, कई देशों को मिलाकर उतना डिफेंस बजट नहीं हुआ. तो ये सारे संभावना, ये सारे प्रेशर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर है. तो और डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस तरीके से ईरान के इस युद्ध से वापस निकले तो उनके लिए उनकी साख पर बहुत बड़ा सवाल है. तो ऐसे में वक्त लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वक्त लेकर आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी ईरान के पूरी तरीके से कंट्रोल में है. यूएई को लेकर भी ईरान सख्त अपना रवैया दिखा चुका है. तो ऐसे में यूएई, सऊदी जैसी कंट्रीज लगातार प्रेशर कर रही है अमेरिका को कि आपने हमारी स्ट्रेटजीज को तो नुकसान पहुंचाया, आपने हमारी एसेट्स को तो नुकसान पहुंचाई, आपने हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया ईरान की तरफ से, जो अब सीधे तौर पर कभी भी हो सकता है, कभी भी जंग की संभावनाएं बन सकती है. तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, और वो ऐसे लगातार बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ईरान पर डाल सके, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसी के बीच में वो अपनी तैयारियों को भी और पुख्ता कर सके.
2: बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं. तो अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है इस ईरान युद्ध में, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लड़ाकू विमानों का नुकसान है, और अब तो एक्सेप्ट किया जाने लगा है. अमेरिका की संसद, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया अमेरिका को अरबों डॉलर की कीमत के दर्जनों लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा. अमेरिका के बेहद महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन समेत 42 विमान खाक हो चुके हैं. इस बीच में ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और चर्चित F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा भी किया था. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिकी कांग्रेस के कबूलनामे के बाद चेतावनी दी है कि कहा कि अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो इसमें कई बड़े चौंकाने वाले कदम देखने को मिल सकते हैं. साथ ही कहा कि ईरान की सेना पहली ऐसी सेना है जिसने F-35 को मार गिराया. अमेरिकी समिति के सामने पेश हुए पेंटागन के महालेखाकार ने बयान दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में हुआ खर्च बढ़कर $29 बिलियन हो चुका है. अधिकतम खर्च मरम्मत और हथियारों को बदलने पर हुआ है. अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है. ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिकी सेना की ओर से 89 मालवाहक जहाजों को लौटा दिया गया है और उनका रास्ता बदल दिया गया है. ईरान के खिलाफ जारी सैन्य रणनीति के तहत अमेरिकी सेना समुद्री मार्गों पर सख्त निगरानी रख रही है, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर जहाजों का रूट बदलना पड़ा है. इतनी बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों के मार्ग में बदलाव किए जाने से अब ग्लोबल सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया ने पुष्टि की है कि ईरान की घेराबंदी के बाद से अमेरिकी सेना समुद्री सुरक्षा और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अब तक 89 कमर्शियल जहाजों का रास्ता डायवर्ट कर चुकी है। सुमित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, ये अमेरिकी मीडिया की जो है बहुत बड़ी रिपोर्ट है सुमित।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और राजीव एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि इस युद्ध के अंदर एक और युद्ध लगातार चल रहा है, भले ही 40 दिन के युद्ध के बाद सीजफायर हो गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ ईरान कुछ क्लेम करता है, उसका काउंटर क्लेम अमेरिका की तरफ से किया जाता है। अभी ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से उसकी नाकेबंदी है, उसके कंट्रोल है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि उसने 89 शिप्स को वहां से निकलने दिया और ये सारा पैसेज जो है उसके कंट्रोल में है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से जो चीजें सामने आई है उसने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका साख को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि उन चीजों को बैलेंस किया जा सके, उन चीजों को ये दिखाया जा सके कि देखिए अमेरिका ने 40 दिनों में खोया नहीं है, बहुत कुछ हासिल भी किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर लीजिए, आप मिलिट्री स्ट्रेटजिक फ्रंट की बात कर लीजिए, चारों तरफ अमेरिका को भारी नुकसान हुआ और अमेरिका उसको रिकवर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सिनेरियो चला रहा है,
2: खेल हो रहा है। बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नेटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है और अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने में नेटो की ओर से मदद ना मिलने पर तीखे बयान देते रहे, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब खुद नेटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं। आने वाले 7-8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार का सम्मेलन जो है वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक होने जा रहा है। तुर्की दूसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी है। अगर जुलाई की शुरुआत तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा तो नेटो वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नौसैनिक बेड़ा भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप ने पुष्टि की है कि यह सैन्य विकल्प पूरी तरफ से मेज पर है और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस जैसे देश पहले से ही समुद्री सुरक्षा योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। अगर यह मिशन शुरू होता है तो यह नेटो के इतिहास का एक बड़ा आउट ऑफ एरिया यानी कि तय क्षेत्र से बाहर का ऑपरेशन होगा जो कि गठबंधन की सैन्य भूमिका को सीधे मिडिल ईस्ट तक बढ़ा देगा। हालांकि इस मिशन पर अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, कई यूरोपीय देश डर रहे हैं कि नेटो को सीधे उतरना चाहिए या नहीं, ईरान के साथ तनाव में उलझना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे और ज्यादा युद्ध बढ़ा सकता है। स्थिति गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए नेटो इस समिट में खड़े देशों यानी कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है ताकि एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति बनाई जा सके। इस सम्मेलन से पहले नेटो ट्रंप की ओर से भी आग्रह करके अपना फैसला टाल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय चीन के दौरे पर हैं और बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया पराक्रम जोशी के साथ। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बातचीत हुई, दोनों ही नेताओं के बीच में ईरान यूक्रेन युद्ध समेत कई व्यापार वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। पुतिन का यह दौरा 2 दिनों का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बीजिंग पहुंचे थे, अपने कई कंपनीज के सीईओस के साथ पहुंचे थे। बीजिंग यात्रा के ठीक बाद अब दुनिया भर की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है, इस मुलाकात पर टिकी है। यह यात्रा रूस चीन की सद्भावना मैत्री और सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मुलाकातों की चर्चाएं हैं और फ्रांस में अगले महीने मुलाकात संभव है। 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में G7 की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। इसी G7 मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात में बैठक भी हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और आपको ये बता दें कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस पर कई बार अमेरिका का साथ ना देने का आरोप लगाया और पूरे यूरोप से नाराजगी जाहिर की। ऐसे में यह मुलाकात न सिर्फ पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से भी यह मुलाकात बहुत अहम है। और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, We wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Most tech programs teach theory. WGU teaches what gets you hired. Get industry certs with your degree, work on real-world projects, and develop skills employers actually want. Career ready by design. That's the WGU difference. Learn more at WGU.edu.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
16: सोच बदलो और बैंक भी.
17: Like I said before, we better hold the sins.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: At WTU, flexibility is our foundation. With a learning model that lets you set your own schedule, one-on-one mentorship, and flat rate tuition, WGU helps you become a great teacher on your terms. Learn more at wgu.edu.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ संविधान की आजादी, और इनके बीच खड़ा है भारत का सबसे कठोर कानून यूएपीए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है बड़ा सवाल, अगर मुकदमा सालों साल चले, अगर दोष सिद्धि बेहद कम हो, तो क्या आरोपी को बिना सजा के ही बरसों जेल में रखा जा सकता है। इसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी को दोहराया, कहा है कि यूएपीए में भी बेल नियम है, जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट की यह सिर्फ एक लाइन नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा है। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 और 22 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी पर यूएपीए लगा है उसका संवैधानिक संरक्षण खत्म नहीं हो जाता। यानी अदालत ने साफ कर दिया, संविधान किसी भी कठोर कानून से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की ऐसी व्याख्या पर सवाल उठाए जिसके बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे मामलों में राहत नहीं मिल पाई थी, जहां मुकदमे सालों से चल रहे हैं, चार्जशीट मोटी होती जा रही है, लेकिन फैसले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातों का निचोड़ यह है कि यूएपीए में भी बेल सामान्य सिद्धांत है, मुकदमे में देरी यानी जमानत का आधार, लंबी कैद सजा जैसी नहीं हो सकती, बड़ी पीठ के निर्णय को छोटी पीठ कमजोर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब फैसले का हवाला दिया है, जहां तीन जजों की पीठ जिनमें जस्टिस एनवी रमना, आज की सीजीआई और तत्कालीन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे, साफ कहा था कि अगर मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है तो जमानत दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने अब कहा कि बाद के कुछ फैसलों में सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को नहीं अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी चेतावनी देता दिखा। और फिर अदालत ने वो आंकड़ा रखा जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, यानी एनआईए की दोष सिद्धि दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये दर 1% से भी कम बताई गई है। सोचिए, अगर सजा इतनी कम तो फिर वर्षों की कैद किस लिए। अदालत ने साफ कहा कि ऐसी हिरासत मुकदमे से पहले दंडात्मक कैद बन जाती है। दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बहस फिर तेज कर दी है। क्या कठोर कानूनों में प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है। इसी सुनवाई में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से गिरफ्तार नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल इफ्तिकार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। लोकतंत्र सिर्फ कठोर कानूनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय के संतुलन से, जहां राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक की स्वतंत्रता भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संतुलन की याद दिलाई है और शायद यही कहा है कि अगर मुकदमे अंतहीन हो जाएं तो जेल न्याय नहीं व्यवस्था की विफलता बन जाती है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम मेलनी के डिनर की पर मुलाकात, मेलनी को गिफ्ट की टॉफी तो मिला जवाब, तोहफे के लिए शुक्रिया। द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में G7 बैठक के दौरान हो सकती है मीटिंग। मैक्रॉन ने पीएम मोदी और ट्रंप को भेजा।

चरण में इटली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलनी ने साथ में डिनर किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के प्रसिद्ध कोलोजियम का दौरा किया। प्रधानमंत्री इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। बोले, भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत करने पर दोनों देशों का फोकस रहेगा। इससे पहले जॉर्जिया मेलनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक खास सेल्फी शेयर की। कैप्शन में लिखा, मेरे दोस्त, रोम में आपका स्वागत है। इस दौरे पर एक बार फिर मोदी की कार डिप्लोमेसी देखी गई। पीएम मोदी और मेलनी रोम में एक ही कार में सवार दिखाई दिए। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और इटली के रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद। पीएम मोदी रोम स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय भी वहां का दौरा करेंगे। यहां वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। इसके बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी की अहम द्विपक्षीय बैठक। भारत इटली व्यापार 14.25 अरब यूरो पहुंचा। आर्थिक सहयोग में लगातार तेजी। पीएम मोदी आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर के दर्जनों लाखों विमान का नुकसान हुआ है। अराक्ची का एक और दावा, कहा युद्ध के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। अराक्ची ने नए हमले के खिलाफ पलटवार की चेतावनी देते हुए कहा, दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को और भी सरप्राइज देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को 42 फाइटर जेट और कई ड्रोन का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अमेरिका का खर्च बढ़कर करीब $29 बिलियन तक पहुंचा। हथियारों की मरम्मत पर सबसे ज्यादा खर्च। ट्रंप के बाद चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट स्वागत। चीनी विदेश मंत्री ने की अगवानी। दो नेताओं के बीच ईरान यूक्रेन युद्ध तथा व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव जैसे मुद्दे पर बैठक में प्रमुख रहेंगे। चीन पहुंचने से पहले जारी वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। संप्रभुता और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देश सहमत। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना। फ्रांस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है दोनों के बीच भेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। 15-17 जून तक रहेगा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत। हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ने जताई सहमति। स्वीडन और फ्रांस से बड़ा रक्षा समझौता। स्वीडन फ्रांस के नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया और जापान में ऐतिहासिक समझौता। ऊर्जा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब विदर्भ तक पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैक से जुड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने नागपुर में दो संदिग्ध उम्मीदवारों के घर तक पहुंचकर लंबी पूछताछ की। मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खंगाले। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज जब्त। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज मुडगांवकर के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने बोर्ड पर कालिक पोतकर और तोड़फोड़ में जताया रोष। कोचिंग माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीट छात्रों की परेशानी से भावुक हुए केजरीवाल। एग्जाम पेपर पंजाब में फ्री बस चलाने का भरोसा दिलाया। केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का मुद्दा उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की सूची जारी की। दोस्तों और परिवार के नाम पर मालिकाना हक का आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले, अभिषेक बैनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों की होगी गहन जांच। बेनामी और साझा मालिकाना एंगल पर पड़ताल। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव। 17% से घटकर 7% किया गया। शुभेंदु सरकार ने जारी की ओबीसी आरक्षण की नई सूची। कई मुस्लिम उपजातियों को हटाया। ममता सरकार के फैसले को पलटा। 66 श्रेणियों को होगा फायदा। पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी के तहत क्रमशः 10% और 7% आरक्षण दिया जाता था। व्यवस्था में हुआ है बड़ा बदलाव। कई उपजातियों के नाम सूची से हटने के बाद कुछ समुदायों को आरक्षण लाभ में कमी की आशंका। फलता उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी का आज दूसरा दिन। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
तीन चार महीने में महंगाई आएगी जिससे मोदी सरकार अपने आप को नहीं बचा पाएगी। पीएम मोदी का हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया। आने वाले आर्थिक तूफान से युवा किसान मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा, कहा पेट्रोल

डीजल गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। खड़गे का दावा, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जल्द एक डॉलर के मुकाबले 100 रुपए तक पहुंच जाएगी कीमत। रायबरेली और अमेठी दौरे पर राहुल गांधी आज जनता कार्यकर्ताओं और प्रतिमंडल को से मुलाकात करेंगे, साथ ही वीर पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। त्रिशा मामले में बड़ी खबर, पुलिस ने परिवार को शव ले जाने के लिए दिया पत्र, बॉडी डीकम्पोज होने की आशंका को बताई वजह। फिलहाल एम्स भोपाल में शव 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, लेकिन एम्स के मुताबिक अगर सेकंड पोस्टमार्टम करवाएं तो शव को -80 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा, जिसकी सुविधा भोपाल एम्स में नहीं है। त्रिशा शर्मा मामले में दूसरी पोस्टमार्टम की याचिका पर सुनवाई आज, परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को सीडीआर की मांग की। त्रिशा शर्मा मामले के इंसाफ के लिए भोपाल में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक, वर्दी वेलफेयर सोसाइटी ने शौर्य स्मारक से मार्च निकाला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और परिवार को न्याय दिलाने की शपथ, डीजीपी सीएम और गवर्नर से करेंगे मुलाकात। भारतीय नौसेना की इंडियन ओशन शिप सागर पहल का दूसरा चरण समाप्त, इस अभियान में 16 मित्र देशों के नौ सैनिकों के साथ आईएनएस सुनैना को तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना, इस पहल के माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ विश्वास आधारित संबंध विकसित कर रहा है। भारतीय रक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का नाइब ने किया सफल परीक्षण, सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन से हमला करने में सक्षम। ओमान के साथ एफटीए 1 जून से लागू हो सकता है, व्यापार को मिलेगा नया विस्तार, अगले 5 साल में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कृषि निर्यात 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, किसानों के लिए सकारात्मक संकेत, वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। टिहरी गढ़वाल में पटला बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, हाई टेंशन लाइन से टकराया था हेलीकॉप्टर, खेतों में कराई गई लैंडिंग, प्रशासन ने 6 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। देहरादून के एक अस्पताल में एसी ब्लास्ट में लगी आग, इमरजेंसी वार्ड में मची अफरा तफरी, मरीज सुरक्षित निकाले गए। अस्पताल में आग से हड़कंप, मरीजों को किया गया शिफ्ट, एक महिला की मौत की पुष्टि, जांच जारी। गोवा के पैंजिम में डोना पावला सर्कल में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की कई वाहनों से टक्कर के बाद इलाके में हड़कंप। पटना के आईजीआईएमएस में एमबीबीएस के छात्र को मेडिकल अटेंडेंट ने पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। एमबीबीएस छात्र से मारपीट मामले में गुस्साए छात्रों ने अस्पताल परिसर में 2 घंटे तक किया हंगामा और विरोध प्रदर्शन। मोहाली बच्चे को दिन दहाड़े दादा दादी के सामने किया गया किडनैप, लाइव तस्वीरें आज सामने, बच्ची को बचाने के लिए आ गया है दादा दादी को भी किया कुचलने का प्रयास। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सीआई इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली, एक बदमाश घायल। पटना की मरीन ड्राइव पर बीएमडब्ल्यू में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट का ई ट्रेनिंग रूम जलकर खाक, सरकारी दफ्तर समेत कंप्यूटर सिस्टम राख। वडोदरा में कबाड़ में गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने से इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में लगी आग, तीसरी मंजिल से शुरुआत, टायर ट्यूब और बैटरियों की वजह से तेजी से फैली आग। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई 4 मंजिला इमारत, वायरल वीडियो में सामने आया हादसा। केदारघाटी में भारी बारिश से भूस्खलन, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फंसे हजारों यात्री, एसडीआरएफ ने रात भर चलाया रेस्क्यू अभियान। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फरार चल रहे मोहित पंडित के पैर में लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। पठानकोट गुरदासपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ऑल्टो कार के अज्ञात भारी वाहन से टक्कर में 4 युवकों की मौत। कर्नाटक के शिवमोग्गा में विशाल मार्ट में लिफ्ट फंसने से 9 लोग फंसे, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला। मेरठ में शमशान घाट से चिता की राख और अस्थियां निकालने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अकोला में भीषण जल संकट, 46 डिग्री गर्मी के बीच 6 दिन बाद मिल रहा है पानी, काटेपूर्णा डैम में सिर्फ 29% जल भंडार। अकोला में नगर निगम की सप्लाई बाद है, झुग्गी बस्तियों से लेकर मध्यम वर्ग तक परेशान। 12 के गोविंदपुरा गांव में ठहराया पेयजल संकट, 70% आबादी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर, हर घर नल योजना फेल। अलवर के रामगढ़ में भीषण पेयजल संकट, महिलाओं का हाईवे जाम कर प्रदर्शन, जल जीवन मिशन पर उठे सवाल। रायसेन के कोकलपुर गांव में भीषण जल संकट, 3 कुएं सूखे, सरकारी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरसे। दिल्ली की हवा जहरीली, 208 के पार पहुंचा AQI, GRAP1 लागू। कानपुर में गर्मी के चलते 8 दिन तक स्कूल बंद, 31 मई के बाद खुलेंगे, प्रशासन लू के चलते जारी किया फरमान। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और ORS की व्यवस्था की गई है। हापुड़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली घरों के ट्रांसफॉर्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर, बढ़ते लोड के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश। गुजरात में भी गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 42 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिन में 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन,
केदारनाथ में कल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। अब तक 7,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए पूजा पाठ। अब तक करीब 4,50,000 से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर 5,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए पूजन। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की गई दर्ज। सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। आईपीएल के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत। राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस का मैच। ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। केकेआर के लिए करो या मरो वाली स्थिति। इस मैच में जीत हासिल कर खुद को प्लेऑफ की रेस से बनाए रख सकेगी कोलकाता। मैच से पहले लगा मुंबई को झटका। विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक और ऑलराउंडर राज अंगद बावा चोट के कारण बाहर। प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है मुंबई। फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर पर। इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ सारा फिल्म में वापस आऊंगा का ट्रेलर लॉन्च। 12 जून को सिनेमाघर में होगी रिलीज। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार की बेटी अमन फिल्म तेरा यार हूं मैं से करने जा रहे हैं एक्टिंग डेब्यू। 31 जुलाई को सिनेमाघर में होगी रिलीज। प्रीति जिंटा 8 साल बाद फिल्म वाइब से बड़े पर्दे पर कर रही वापसी। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 19 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा। एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चा तेज। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप, फरार में करेंगे अहम रोल।

0: और अब बात राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है। और वहां के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
1: फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहेंगे।
0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी पर विवाद बयान। राहुल गांधी का दो दिवसीय रायबरेली का दौरा है। इस दौरान उन्होंने इस भाषण में कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, किस परिपेक्ष में वो गद्दार बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: नहीं, देखिए इस वक्त हम रायबरेली में हैं और रायबरेली से अब राहुल गांधी अमेठी की ओर रुक कर चुके हैं और रायबरेली में वो पहुंचे थे एक मूर्ति के अनावरण के लिए, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने जिस तरीके से जिस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है या जिस तरीके से सोने का चांदी का रेट बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो भारत का स्वाभिमान है उसे बेचा गया है। कुल मिलाकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और यहां की जनता से ये कहते राहुल गांधी नजर आए कि जब भी आपके खेमों में चौपालों में बातें हों प्रधानमंत्री की या गृहमंत्री की, तो आप इस शब्द का उपयोग उनके लिए करें। अपनी चौपालों में जहां बैठते हैं, गांव में, नुक्कड़ में, जिन मोहल्लों में आप चर्चाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लेकर आप आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करें जब भी आपसे कोई उनके बारे में पूछे या उनके बारे में बात करे। कुल मिलाकर ये रायबरेली का एक मौका था जहां पर ये पूरी जनसभा हुई और महंगाई को लेकर कल भी कटघरे में सरकार को राहुल गांधी ने लिया और आज भी लिया। लेकिन सवाल तब उठ रहा है और सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की तब से शुरू हुई जब से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गृहमंत्री को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इसको लेकर जो बीजेपी की यूनिट है रायबरेली और अमेठी की, उनमें काफी रोष है। अमेठी में एक जगह प्रदर्शन भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ महिला कार्यकर्ता कहीं राहुल गांधी का आज जो है रास्ता भी रोक सकते हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने की है, कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आकर या रायबरेली अमेठी में आकर जो आम लोग हैं उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं और देश के जो संविधान है या जो एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, उस पद को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी, एक आपत्तिजनक शब्द लोगों के मुंह से बुलवाने का या उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे एक संवैधानिक पद को लेकर लोग आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करें या आपत्तिजनक उस शब्द का प्रयोग करें जो खुलकर कई दफा राहुल गांधी ने अपने आज के रायबरेली के पूरे पब्लिक एड्रेस में बोला है। तो यूं तो यूपी चुनाव के अब कुछ महीने शेष है, उसको लेकर राहुल गांधी यूपी में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने कहीं ना कहीं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कटघरे में बीजेपी को लेते वो नजर आए। उनका मुख्यतः मुद्दा पेट्रोल था, डीजल था, उसके जो दाम बढ़े हैं। उनका कहना है कि जो है भारत सही से अपना रुख नहीं स्पष्ट कर पा रहा है। तो वहीं जो बीजेपी है उसका एक कहना है कि राहुल गांधी तो खुद ही इतना लंबा काफिला लेकर चल रहे हैं तो वो किस तरीके से यहाँ इस क्राइसिस के दौर में भारत के प्रति एक वफादार नजर आते हैं। मनोज पांडे जो कि यहाँ ऊंचाहार से विधायक भी हैं और यूपी के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने कल राहुल गांधी की रायबरेली की विजिट को लेकर सवाल उठाया कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप पेट्रोल का यूज कम करें, तो वहीं राहुल गांधी 20 से 30 गाड़ियों का काफिला लेकर रायबरेली अमेठी में चल रहे हैं। और अगर कैमरामैन गौरव
0: सर, पहले भी कई मामले आपत्तिजनक शब्दों और बयान को लेकर राहुल गांधी पर दर्ज हैं, इसके बावजूद उन्होंने आज आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृहमंत्री के खिलाफ किया है। क्या लगता है बीजेपी इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगी या क्या एक्शन लेगी?
2: देखिए एक्शन तो बाद में होगा, लेकिन रिएक्शन फिलहाल यहाँ रायबरेली अमेठी में आना दिखना शुरू हो चुका है। अमेठी की कुछ जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किए हैं।
0: मैं लौटूंगी आपके पास। मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर जी, ये जो आपत्तिजनक शब्द राहुल गांधी ने खासतौर पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या है इसके पीछे की वजह? ये यूपी चुनाव के मद्देनजर है या फिर ऐसा करना उनकी फितरत है और हमेशा से वो ऐसा ही करते आए?
3: देखिए, उनकी फितरत का ये एक नमूना है, ये बताता है कि उनके संस्कार क्या हैं, उनके पारिवारिक संस्कार क्या हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, वो किसी एक पार्टी के नहीं रह जाते, वो पहले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे ना आप करते हैं, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपकी पहली बात मानसिकता क्या है। दूसरी बात, आप एक प्रधानमंत्री जी को गदार वर्ड यूज कर रहे हैं, इससे गंदी सोच आपकी मानसिकता क्या हो सकती है? और तीसरी बात, आप खुद एक लेगेसी के कारण यहाँ पे पहुंचे, आपकी कोई काबिलियत नहीं है। आपको देश के अंदर कोई छोटे से क्लर्क की काबिलियत भी नहीं, अगर आप टेस्ट पास करें तो क्लर्की का टेस्ट भी नहीं आप पास कर सकते। आप एक अपनी लेगेसी के कारण यहाँ पे पहुंचे हैं, परिवारवाद के कारण यहाँ पे पहुंचे हैं, नेहरू का नाम और गांधी चुरा कर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपकी हैसियत ये बताती है, आपकी काबिलियत ये बताती है कि आप जैसे घटिया मानसिकता के लोग यही शब्द यूज करेंगे। अगर आप अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुंचे होते तो आपकी सोच कुछ और होती, आपके दिमाग में पता होता कि आप कौन है, आपको सामने वाले की हैसियत के बारे में पता होता और देश कैसे चलता है और देश का संविधान क्या कहता है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच के साथ जो प्रधानमंत्री चुना जाता है उसको कैसे एड्रेस करना है आपको यकीनी तौर पर पता होता, क्योंकि आप आए परिवारवाद के कारण है, आपकी कोई काबिलियत ही नहीं है। और जिस आदमी के पास कोई काबिलियत ना हो उससे आप ऐसे शब्दों के चयन के अलावा और क्या उम्मीद कर सकते?
0: मंजिंदर जी, कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चुनाव से ठीक पहले या उसके दौरान किया जाता है, ये दांव ही कई बार उल्टा पड़ जाता है, कांग्रेस पार्टी इससे सबक क्यों नहीं लेती है?
3: कैसे सबक लिया आप बताइए? आप आज टीवी चैनल पर बैठे तो अपनी काबिलियत से बैठे हैं। अब किसी जिस आदमी की काबिलियत ही ना हो, जिसको खबर पढ़नी ना होती, जब आप उसको लाकर यहाँ बिठा दोगे तो क्या करेगा? वो बेवकूफ से ही तो करेगा। बंदर के हाथ में जब तलवार दोगे तो क्या करेगा? जो करेगा वही राहुल गांधी कर रहा है। और क्या वो सीख जाएगा तलवार चलानी? नहीं, कतई भी कभी भी बंदर नहीं सीख पाएगा तलवार चलानी। तो आप बंदर के ऊपर जितना मर्जी अपना एफर्ट लगाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी जी अनाड़ी हैं, उनको राजनीति की समझ ही नहीं है, वो राजनीति की किताब पढ़ी नहीं है उन्होंने, वो परिवारवाद के कारण आए हैं। इसलिए जितना मर्जी उनको समझाते रहे कांग्रेस, जितना मर्जी उनको पढ़ाती रहे कांग्रेस, राहुल गांधी जी कभी बदल ही नहीं पाएंगे। हमें पहले बेसिक बात समझनी होती है कि जिस काबिलियत के बिना आप कहीं पे भी पहुंचते हैं, फिर आप यही करते हैं जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
0: मनजिंदर जी, जिस तरीके से आज ये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या कोई एक्शन बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा? क्योंकि पहले भी कई मामले मानहानि के चल रहे हैं राहुल गांधी पर इसी तरह के।
3: देखिए, एक्शन तो एक पार्टी की बड़ी सोच के उसके ऊपर पार्टी विचार करेगी, चर्चा करेगी, क्योंकि बात इंडिविजुअल की नहीं है। हमारी पार्टी को उस पर एक्शन लेगी वो विषय नहीं है, देश क्या इस पर एक्शन लेगा विषय ये है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो आज बाहर किसी विदेश टूर पे तो ऐसा प्रधानमंत्री है, अगर उनको सम्मान मिलता है तो भारत के 140 करोड़ लोगों को सम्मान मिलता है, वो किसी पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा। आज अगर वो दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी के कोई आशीर्वाद लेता है तो वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण, बीजेपी के कारण नहीं है, वो देश के 140 करोड़ लोगों की मेहनत के कारण होता है। तो ऐसे में पार्टी क्या लेगी वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन देश के लोग इस पे स्टैंड देंगे। आप देखना, देश के लोगों ने इसलिए राहुल गांधी जी को और उनकी एक मानसिकता को बार बार बार बार निकाला है। अब बताइए, जिस इंसान ने जो लेगेसी में उसको चीज मिली अपने पिता से, अपनी माता से, उतने सूबे भी अपने, उतने स्टेट भी ना अपने पास जीत पाए, तो उसकी अपनी काबिलियत के बारे में तो समझ में आता ही है कि जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो कम से कम इनको 16 स्टेटों में सरकार देके गए थे, 16 स्टेटों में, आज वो 2 स्टेटों पे ले आए हैं। तो ये तो पता ही चलता है कि जिस आपने अनाड़ी को अपने परिवारवाद के कारण पार रखा है, हम नहीं, यही हमारा नेता है, सारी पार्टी ने कह दिया जी ये नहीं चल सकता, नहीं यही हमारा नेता है। तो परिवार को जब आप पालेंगे, बिना काबिलियत के लोगों को आगे कुर्सी पे बिठाएंगे, तो फिर यही पाएंगे जो पा रहे हैं। तो देश भुगत रहा है, पार्टी की बात ही कहां है, ये देश की बात है, ये देश के सम्मान की बात है। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देश के साथ जुड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिलता है वो देश को सम्मान मिलता है, वो प्रधानमंत्री का इंडिविजुअल नहीं होता, किसी पार्टी का इंडिविजुअल नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को कौन समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकता इस धरती के ऊपर। मैंने वही कहा, जब अनाड़ी आदमी है जिनकी काबिलियत ही नहीं है इस कुर्सी पे बैठने की, उसको पार्टी ने उस बिठा रखा है, तो यही देखना पड़ेगा रोज रोज। पार्टी के लोग भी रोते होंगे।
0: ठीक है सिरसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना किशोर से ब्रेक के लिए। आरएसएस से रतन शारदा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतन जी, इस तरह का शब्दों का बार बार इस्तेमाल कैसी मानसिकता दर्शाता है, और अगर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको लगता है नहीं कि विपक्ष को कुछ मजबूत चीजों के साथ सामने आना चाहिए? ये शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपका बड़प्पन तो कहीं से नहीं दिखाता बल्कि आपकी सोच दिखाता है।
4: देखिए, राहुल गांधी जी को पता नहीं कौन गाइड करता। मैं मानता हूँ जेएनयू वाले झोला टाइप लोग उनको गाइड कर रहे हैं। गद्दार जैसा शब्द कहाँ उपयोग करना? जो लोग चीन के साथ खड़े रहते हैं, जो पाकिस्तान की बात को सच मानते हैं, जो चिकन ने काट डालो कहने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, भारत तेरे टुकड़े में उनका सपोर्ट करते हैं, वो गद्दार है? जो देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए तैयार है, जिन्होंने देश को नए स्थान पर पहुंचाया, वो गद्दार है? गद्दार शब्द से हल्का उपयोग नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी के पास आइडियाज खत्म हो गए, संघ छोड़ के कुछ मिल नहीं रहा। जब उनको पता होना चाहिए कि आरएसएस के ऊपर हमले करके तब उनके परदादा से लेकर सभी एक एक करके हार गए। आरएसएस जड़ से जुड़ी, भारत की जमीन में जुड़ी हुई एक संगठन है। उसके ऊपर हमला करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप नई नीतियां लाइए, अच्छी नीतियां लाइए। आप नए सिरे से सोचे कि आपको लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे, क्यों आपको मुस्लिम लीग बनना पड़ रहा है, क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि हम नई मुस्लिम लीग है। वो जब तक नहीं सोचेंगे उनका कल्याण नहीं होगा, बाकी बोलते रहे उनकी।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
8: I have no idea how this election is going to play out,
6: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
6: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
7: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: Character, the taste of success.
8: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी,

0: नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। इंसाफ मांगती बेटियों पर हमारी खास पेशकश आधारित है। उन बेटियों की बात करेंगे जिनकी सांसें समाज के राक्षसों ने छीन ली हैं। कहीं दहेज के नाम पर, कहीं सपनों को कुचलने के नाम पर, कहीं सनक के नाम पर, तो कहीं आवाज उठाने के नाम पर। भोपाल में ट्विशा की मौत सवालों के घेरे में है। वहां तो सास जज रही है, पति कानून का सर्टिफिकेट रखता है। गोरखपुर की बेटी रत्ना को उसके सलों के संचालकों ने इतना परेशान किया कि उसने मौत को गले लगा लिया। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में फॉर्चुनर मांगने का आरोप लगा। जब बेटी के पिता सक्षम नहीं रहे तो दीपिका की मौत छत से गिरने से हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल की ट्विशा मौत मामले में इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ट्विशा के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और इस मांग की वजह से अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। भोपाल की अदालत इसे लेकर अहम सुनवाई करेगी। दूसरा, पुलिस ने घर वालों से अपील की है कि मोर्चरी से शव ले जाएं, उसके खराब होने का वहां खतरा है। भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पिता समर्थ सिंह के खिलाफ उसके पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समर्थ सिंह पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस की 6 टीमें समर्थ की तलाशी में जुट गई हैं। समर्थ का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आखिरकार क्यों ट्विशा की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों उन सीसीटीवी को संदिग्ध बताया जा रहा है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
1: चाह रहे हैं कि समर्थ जेल चला जाए, चाह रहे हैं कि मेरी बेल एंटीसिपेटरी खारिज हो जाए।
2: हम तड़प रहे हैं न्याय के लिए। PM2 हमारी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट बिफोर बॉडी डिकम्पोज हो।
3: क्या ट्विशा ने खुदकुशी की? क्या उसकी हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया गया था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? सस्पेंस गहरा है। ट्विशा के पिता को न तो सुसाइड थ्योरी पर भरोसा है, न ही ससुराल वालों पर। वो उनके रसूख की बातें कर रहे हैं, वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 12 मई की दो तस्वीर से सस्पेंस गहरा गया। एक तस्वीर में रात के 10 बजे ट्विशा रस्सी लेकर छत पर जाती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में उसके पति समर्थ सिंह उसे CPR देते दिख रहे हैं। ये दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। कैमरा दिखा रहा है अकेली छत पर जाती है ट्विशा और फिर अनहोनी होती है और उसके पति उसे बचाने की कोशिश करते हैं, फौरन अस्पताल ले जाते हैं।
4: ये हमारी लड़ाई यहाँ के।
3: लेकिन ट्विशा के पिता इस कहानी पर भरोसा नहीं करते, उसकी वजह भी है। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वो फोन पर अक्सर रोती थी, जलील करने की बात करती, प्रताड़ित करने की बात करती। 12 मई की रात को भी उसने अपनी माँ को फोन किया था, रात 10:05 पर। उसने कहा था कि अब वो टूट चुकी है और अब सहा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन कट गया और करीब 15 मिनट बाद सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्विशा फंदे से लटकी मिली है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है।
5: हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में। 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई, यानी सिर्फ फांसी नहीं शरीर पर और भी जख्म थे। यही वजह है कि परिवार अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसका शव अब भी भोपाल की मॉर्चरी में रखा है।
6: सर, बॉडी हैंडओवर क्यों लिया जाए जब केस डूबीएस है, जब सरासर PM रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है और जो सामने दिख रहे हैं साक्ष्य वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं सर। उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने PM2 के लिए अप्लाई किया है और PM2 के अप्लाई के लिए पहले कमिश्नर साहब ने उसको ओके कर दिया था। बाद में जो है जुडिशरी, उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं था, ये आपको जुडिशरी से परमिशन लेनी। जुडिशरी का मतलब इन्हीं के द्वारा जो सारा सिस्टम है उसी के नीचे हमको भटकना पड़ेगा ताकि ये मैक्सिमम टाइम ले पाए और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो मेरा चिंता ये है, यही हमारा निवेदन है कि संज्ञान ले सरकार।
3: इस केस में एक और सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे कथित तौर पर ट्रिशा ने फंदा लगाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उस बेल्ट को फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा, हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बेल्ट जब्त कर ली गई थी और उसकी जांच कराई जा रही है। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि रसूखदार सास की वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। कटारा हिल्स थाने से लेकर सीएम हाउस तक परिवार लगातार चक्कर लगा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया, एसआईटी बनाई गई है। लेकिन इसी बीच ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत भी मिल गई और अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अपनी जमानत अर्जी में ट्रिशा की सास ने ट्रिशा को ड्रग एडिक्ट बताया, कहा है कि वो नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी, जब ड्रग्स नहीं मिलती तो उसका व्यवहार बदल जाता था। लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मौत के बाद चरित्र हनन बता रहा है। अब सवाल यही, क्या ट्रिशा ने सचमुच खुदकुशी की या फिर 5 महीने पहले शुरू हुई शादी मौत की साजिश में बदल गई?
7: ट्रिशा का परिवार चाहता है कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली एम्स में किया जाए, क्योंकि भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं है और अभी भी ट्रिशा की हत्या का ही आरोप लगा रहा है। फैसला क्या होगा, इस पर सबके नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच पुलिस ने जहां समर्थ पर पहले 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, वहीं अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुलिस को शक है कि समर्थ विदेश भाग सकता है, इसलिए उसके पासपोर्ट को जब्त करने की कार्रवाई भी भोपाल पुलिस ने शुरू कर दी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आप शुरुआत से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, वो सामान, वो उपकरण कहाँ है जिससे ट्रिशा ने अपने आप को फंदे से लटकाया था, वो बेल्ट थी या कुछ और था, वो इस वक्त कहाँ है? और दूसरी बात ये कि क्या सेकेंड पोस्टमार्टम को मंजूरी मिल गई है?
7: देखिए, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूं नेहा। जो वो लिगेचर था, जो कि एक बेहद अहम सबूत होता है जिससे कथित रूप से ट्रिशा ने फांसी लगाई है, वो दरअसल ट्रिशा के ससुराल की छत पर लगा हुआ एक इलास्टिक बेल्ट था, रबर का बना हुआ, जो जिमनास्ट करने के इस्तेमाल में आता है, फिजिकली एक्सरसाइज करने के लिए उस बेल्ट का इस्तेमाल होता है। और FIR के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, उसी बेल्ट से ट्रिशा लटकी हुई थी जब पहली बार उसे समर्थ और गिरिबाला की तरफ से देखा गया था, उसी से उसने कथित रूप से फांसी लगाई। लेकिन सवाल यही था कि ये लिगेचर, जो कि पुलिस के IO को, जिसके पास ये जांच का जिम्मा था, उसे तुरंत ये लिगेचर पोस्टमार्टम के समय एम्स को दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया। 12 मई को ट्रिशा का निधन होता है, लेकिन लिगेचर सौंपा जाता है 16 या 17 मई को। तो इसके पीछे की वजह क्या थी आखिरकार? इतने दिनों बाद लिगेचर, जब पोस्टमार्टम हो चुका है उसके बाद सौंपा गया, जबकि ये पहले सौंपा जाता है ताकि गले पे जो निशान है उसका मिलान किया जा सके कि क्या ये इसी चीज से बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि बाद में पुलिस ने जब लिगेचर दिया, उसकी रिपोर्ट आई, वो आज तक निकल एक्सेस की, और बताया भी कि लिगेचर की रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि इसी से ट्रिशा ने फंदा लगाया था, इसी से उसने फांसी लगाई थी, ये तब तक साफ हो गया। लेकिन अभी लिगेचर जो है फिलहाल एम्स के पास मौजूद है, क्योंकि एक और पोस्टमार्टम होने की संभावना है जिस पर सुनवाई चल रही है कोर्ट में। सुनवाई के आपको बताया कि शाम तक इस पर फैसला आ सकता है। इस बीच में बड़ी खबर यह है नेहा कि भोपाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। भोपाल पुलिस ने परिवार को एक चिट्ठी सौंप दी है और उस चिट्ठी में भोपाल पुलिस ने बताया है कि जो शव है उसके गलने की संभावना है भोपाल एम्स में। ऐसा भोपाल एम्स प्रबंधन ने पुलिस को बता दिया है कि शव जो है वो -4 डिग्री तापमान में रखा हुआ है, लेकिन अगर शव को सुरक्षित रखना है सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए तो इसके लिए -80 डिग्री तापमान की जरूरत होगी, जिसकी सुविधा भोपाल एम्स समेत फिलहाल मध्य प्रदेश के शायद ही किसी अस्पताल में।
0: रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पुलिस परिवार वालों से अपील कर रही है कि वो ट्रिशा का शव ले जाएं, लेकिन परिवार एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहता है।
8: सर, सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि 13-12 तारीख को घटना घट जाती है, 13 तारीख को जैसा बता रहे हैं शॉर्ट PM हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, लिगेचर नहीं दिया, ये खुद एम्स बोल रहा है। मान लिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एम्स ने क्यों नहीं मांगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की लिगेचर दीजिए हमें दें, वो हम पे 13 तारीख से सभी लोग ये दबाव बना रहे हैं हर जगह प्रशासन से लेके कि आप बॉडी क्रिमिनेट कर दो। अगर ये परिवार इनका आके नहीं लड़ता, जो कि बाहर का है, बॉडी क्रिमिनेट कर दी होती और आप 15-16 के बाद जब भी आपने दिया FIR के बाद मैडम की बेल हो चुकी है, उसके बाद जाके आप लिगेचर जमा कर रहे हैं, तो आप किससे मैच करते? बॉडी तो क्रिमिनेट हो चुकी होती। तो आपने ये सारी कमियां, बहुत बड़ी कमियां हैं, जिनको शुरू से ही अच्छे से करते तो आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। बॉडी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। पुलिस ने आज प्रतिवेदन दिया है, उनने एम्स को पत्राचार करा, एम्स ने कहा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इतनी अच्छी कि हम बॉडी लंबे प्रिजर्व करें।
0: तो त्रिशा शर्मा की मौत सुसाइड थी या फिर मर्डर से लेकर चर्चा तेज है। त्रिशा के परिवार वाले त्रिशा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि त्रिशा का मानसिक इलाज चल रहा था। आज तक डॉक्टर मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
7: त्रिशा की मौत का मामला देश भर की सुर्खियों में है और उसी तरह सुर्खियों में एक नाम और है और वो नाम है भोपाल के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का। गिरिबाला सिंह जो कि त्रिशा की सास है, उन्होंने अपने बेल ऑर्डर में इसका जिक्र किया है कि त्रिशा जो है वो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी की क्लिनिक में गई थी। उन्होंने आज तक से बात करते हुए भी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का नाम लिया। आज एक्सक्लूसिव आज तक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी कोशिश हमने की आपसे बात करने की, लेकिन अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सुर्खियों में है, दावा किया जा रहा है कि त्रिशा यहाँ पे आई थी, आपसे कंसल्ट भी उसने किया था और आपने ही काउंसलिंग के लिए भी आगे डॉक्टर्स के नाम उन्हें दिए थे, क्या है सर इन दावों में सच्चाई?
9: देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि निश्चित तौर पर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन पेशेंट की फाइन डिटेल्स देना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देना, उनकी दवा के बारे में जानकारी देना, और खासकर जब ऐसा कोई मामला चल रहा हो तो वहाँ पर हम पब्लिकली इस बात को कहीं पर भी नहीं बोल सकते। जहाँ पर भी जो न्याय प्रक्रिया है उसका, अगर जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर मैं उस बारे में बात कर सकता हूँ जो भी मेरे पास जानकारी है।
7: न्यायिक प्रक्रिया का आपने नाम लिया, इसका मतलब कोर्ट और पुलिस अगर वो आपके पास आए तो आप उनसे साझा कर सकते हैं जानकारी?
9: तौर पर जो न्याय प्रक्रिया का जब मैं हिस्सा होऊंगा उसमें जो भी मुझसे पूछा जाएगा तो वहां पर हम जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली किसी भी पेशेंट के बारे में ऐसे बात करना, उनकी डिटेल्स देना, उनकी दवा की जानकारी देना, उनकी बीमारी की हिस्ट्री की जानकारी देना कहीं ना कहीं से मतलब अनएथिकल है।
7: सिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट था क्या सर?
9: देखिए, मैं उनके बारे में मतलब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता।
0: और अब बात दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की बेटी दीपिका के इंसाफ की। दीपिका की मौत भी ससुराल में हुई। पति का आरोपी है कि दीपिका को दहेज के दानव ने मार दिया, वो छत से गिरी नहीं, उसे धक्का दे दिया गया। परिवार का यह कहना है कि छत से धक्का देकर दीपिका को मारा गया।
10: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था।
11: आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की बेटी को जान गंवानी पड़ी? घर वालों ने नाजों से पाला, बड़े अरमानों से शादी की, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, स्कॉर्पियो कार तोहफे में दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ससुराल वाले राक्षस बन जाएंगे, दहेज के लिए बेटी को सताने लगेंगे, फॉर्च्यूनर कार के लिए मारने पीटने लगेंगे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर का आरोप है कि बेटी की शिकायत के बाद वो उससे मिलने ससुराल भी गए थे और लौटते ही बेटी के छत से गिरने की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है, 3री मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की मौत गिरने से हुई। उनका आरोप है कि बेटी को छत से धक्का देकर मारा गया। वो चोटों के निशान का हवाला देते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि दीपिका के चेहरे, कोहनी, चांग, घुटने, कमर, पेट सब जगह गहरे निशान मिले।
12: पिटिया ने कभी पहले हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया, उसे लगा कि शायद छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। चोटों के निशान देख के आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है, उसके ऊपर कट के निशान हैं, कहीं पे पेचकस के निशान हैं।
11: मामला इकोटेक थाना इलाके का है। दीपिका के घर वाले कुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में है। घर वालों का कहना है कि दीपिका के ससुराल वाले लगातार उनसे फॉर्चूनर समेत लाखों रुपए की मांग कर रहे थे।
10: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था।
13: आपने क्या दिया था पहले शादी में?
10: 1 स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर, फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था, 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा काढ़े पे हमने जन क्या क्या दिया था, हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी।
11: फिलहाल पुलिस ने दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋत्विक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और बात एक और बेटी की, जो सैलून मैनेजर थी गोरखपुर की रत्ना सिंह, सुसाइड मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी। इस मामले में कल दो और गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने फरार चल रही 25,000 रुपए की इनामी महिला आरोपी पल्लवी जोशी और वैशाली को कल गिरफ्तार किया। पल्लवी की गिरफ्तारी मुंबई से हुई जबकि वैशाली को लखनऊ से गिरफ्तार किया। सैलून संचालक, मुख्य आरोपी शरद सिंह, प्रशांत शर्मा और मंगलनाथ यादव पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इस मामले में यूपी में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, क्या किया था इन्होंने?
13: बिल्कुल, देखिए नेहा, जो रत्ना सिंह पूरी मामला था जिसमें उसने वीडियो भी जारी किया था इस सुसाइड से, उस दौरान कहीं ना कहीं प्रताड़ना का आरोप है और यही वजह है कि इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने वीडियो भी अपना जारी किया। उनके पिता ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद एक गंभीर एक्शन शुरू हुए जिसमें जो आरोपी था शरद सिंह वो, और इसके बाद प्रशांत शर्मा और मंगलनाथ यादव, और साथ ही साथ जो दो महिलाएं थी जिसमें एक पल्लवी और दूसरी जो वैशाली थी, सभी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ये सभी, इसमें से पल्लवी और वैशाली, एक तरीके से फरार चल रहे थे और 25,000 रुपए का इनाम था इनके ऊपर। ये सभी इतना प्रताड़ित कर रहे थे कि उसने वीडियो में रत्ना ने बात की थी और बार बार ये कही थी कि इस तरीके से नाम लेकर कि ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजर थी। और कहीं ना कहीं इन सभी ने ग्रुप बनाकर लगातार उसके मानसिक प्रताड़ना दी और हालात इस तरह के बिगड़ गए कि उसको सुसाइड करना पड़ा, ये तक कहा गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन भी लिया, शरद सिंह के जो गेस्ट हाउस था वहां पर लिया, इसके अलावा जो उसने और प्रॉपर्टीज कर रखी उस पर लिया। फाइनली आज 25,000 की इनामी पल्लवी को और वैशाली को लखनऊ से एक होटल में गिरफ्तार किया गया जब वहां छुपकर बैठी थी, और पल्लवी को मुंबई से गिरफ्तार किया जब वह भागने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे मामले ने ये तो जरूर कर दिया है कि किस तरीके से रत्ना को एक गिरफ्तार किया, एक तरीके से परेशान किया गया, और उसके बाद इन सभी आरोपियों ने जिसमें महिलाएं खुद शामिल थी प्रताड़ना की इस हद को पार कर दिया कि रत्ना को मौत के गले लगाना पड़ा।
0: आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रत्ना के परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल गोरखपुर में रत्ना के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया।
14: वो बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल लड़की थी। वो कभी ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती है, कभी नहीं। मतलब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अपनी लाइफ खत्म कर देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर। और ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई भी सुसाइड नहीं है। इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ मेंटल मर्डर। उसको बहुत सोच समझ के मारा गया है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे।
15: वही तो हमें भी जानना है ना सर, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि वो अपनी डेथ के एक दिन पहले हमसे बात कर रही है, कॉन्वर्सेशंस कर रही है, वॉइस चैट कर रही है, इन अ वेरी चर्पिंग मोड। देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट शी हैज टू एंड अप हर लाइफ लाइक दिस। जब उसकी डेथ हुई थी तब हमने अप्रोच किया था पुलिस को, FIR वगैरह कराई थी, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया था कुछ दिनों तक। बट 15th को जब हम CM सर से मिले उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी बदली। नहीं, वो उसी टाइम पे मिली थी जब हम पोस्टमार्टम के लिए थे वहां पे, तो लोगों ने बहुत बार हमें ये भी बताने की धमकियां दी थी, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी थी कि आप ये सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप आगे मत बढ़िए।
0: प्रभात, नागपुर की फाजिला की मौत मामले की, जिसमें ससुराल में मौत हुई थी महिला की, शादी के 4 महीने बाद ही मौत की खबर आई, हार्ट अटैक की बातें कही गई। पिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पिता के आरोप के बाद शव को कब्र से निकाला गया, पति और देवर को गिरफ्तार किया गया है। अब ससुर भी सवालों के घेरे में। फाजिला जमीन शेख, इसी महिला की जान ससुराल में गई है, नागपुर की ये फाजिला, अब जिसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, मामले की तफ्तीश की जा रही है। कब्र से शव को निकाला गया पोस्टमार्टम के बाद, पति समेत 3 पर आरोप लगे, पति और देवर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ससुर फरार बताए जा रहे हैं। आखिरी कॉल इसने मुझे बचा लो जैसी बात कही थी इस कॉल में, चार महीने बाद ही फाजिला की शादी के उसकी मौत हो गई। वक्त एक ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
20: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
21: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की डिनर पर मुलाकात, मेलोनी को गिफ्ट की टॉफी तो मिला जवाब, तोहफे के लिए शुक्रिया। द्विपक्षीय बैठक में ट्रेड और इन्वेस्ट

0: खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो आज हम बता देते हैं आपको कि आज वो कौन कौन सी खबर है जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल से लेकर हर एक जगह की बात करेंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि नीट के नेटवर्क लाल पर किस तरह से एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही वो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे एनटीए के नेटवर्क लाल, जैसे आप देख रहे हैं पीला बुलडोजर, शिकंजा अब कसने लगा है और अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना महंगा पड़ेगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह से विवादित बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने क्या कहा, गद्दार वाली भाषा जिस पर अब पलटवार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुंबई में बांद्रा पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कल भी आपको यह खबर बताई थी कि 400 से 450 से ज्यादा जो बस्तियां हैं उनको वहां पर तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी सांसद, अब हेमा मालिनी का एक अलग अंदाज दिखाई दिया है और अब हेमा मालिनी तेल बचाओ अभियान में शामिल हो गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी, अब उस अभियान में शामिल हो गई हैं और बैटरी वाली गाड़ी से अब चलती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात कर लेता हूं। बड़ी खबर, जैसा आपको बताया था कि नीट के नेटवर्क लाल पर शिकंजा कस रहा है, अब बुलडोजर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पंजा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन इस वक्त देखा जा रहा है और पुणे से बड़ी खबर, शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी के बाद पुणे नगर निगम ने उनसे जुड़ी दो संपत्तियों को सील कर दिया। इसके बाद आरसीसी क्लासेस के पुणे स्थित परिसर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बकाया संपत्ति कर और अनाधिकृत इस्तेमाल के आरोप में कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने बताया कि 3,20,00,000 रुपए की संपत्ति कर बकाया है, जिसके बाद कार्रवाई का आदेश दिया गया। अवैध पार्किंग में बदलाव, अनाधिकृत निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर चला। ये पीला पंजाब देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत देखा है, अब आपको महाराष्ट्र में भी ये दिखाई दे रहा है। पुणे से ये खबर आपको बता रहे हैं। और ओमकार वाबले नीट के नटवर लाल पर जो शिकंजा कसा है, उस पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपके सामने।
1: शिवराज मोटेगांवकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहां ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो ये ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
2: इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
1: ये समझ में आ रहा है कि मोटेगांवकर यहाँ उनके क्लासेस कोचिंग क्लासेस भी चलाते थे, तो क्या पीएमसी के साथ कुछ इससे पहले उनकी बात वगैरह हुई थी?
2: मोटेगांवकर और हमारा कोई भी
1: ओनर के साथ इशू है?
2: जो ओनर है वो हमारे यहाँ आते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, मोटेगांवकर हमें मालूम नहीं है कौन है, क्लासेस चलाते यही हमारा कंसर्न है, बाकी कोई नहीं है।
1: तो कितना टैक्स पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी पर अभी?
2: ये हमको टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा टैक्स डिपार्टमेंट इसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है। हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए, कंप्लीशन लिया नहीं है, इसकी वजह से हम सील करने के लिए।
1: तो ये एक प्रॉपर्टी हुई, इस बिल्डिंग में ऐसे कितने हैं जहां पर आपने कार्रवाई कर रहे हो?
2: ये जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है उसमें हमने सील लगा दिया है।
0: तो देखिए ओमकार बाबले की रिपोर्ट आपने देख ली, अब सीधे ओमकार हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। ओम, ये बताइए कि अब जो नीट के ये नटवर लाल हैं, इन पर किस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है, ये कार्रवाई कितना आगे बढ़ी है और प्रशासन क्या यहाँ पर रुक जाएगा या आगे भी कुछ प्लान बनाया हुआ है?
1: प्रशासन तो यहाँ रुकने वाला है नहीं, ये क्लियर दिख रहा है कि प्रशासन कर रहा है। अभी हम नालंदा कैंपस है, वही ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगांवकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है, उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगांवकर की कोई प्रॉपर्टीज हुई या फिर उससे लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी।

0: आप सीधा देख सकते हो, पीएमसी के अफसर यहाँ जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया इलीगल था, यहाँ बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहाँ मोटेगांवकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है और लगभग ये जो सेकंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है वहाँ का 3,20,00,000 का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक पेंडिंग है। हालांकि
1: हाँ जी ठीक है, यानी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बात पुणे महाराष्ट्र की करते हैं और बांद्रा में जिस तरह की कार्रवाई, कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की जमीन जिस पर अतिक्रमण किया गया था अब वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए झुग्गी बस्तियों को हटाया जा रहा है मुंबई के बांद्रा में, बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है और अभी ये खबर सामने आ रही है कि अभी एक दो दिन और आगे चल सकता है। इस कार्रवाई में 400 से 450 घरों को तोड़ा जा रहा है, जो 100 झुग्गियां ऐसी थी जिनको लाइसेंस दिया गया था और बाकियों को विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और ये भी स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ घरों को ही, कुछ घरों को ही स्थानांतरित किया जा रहा है और उन्हें नोटिस दिया गया, बाकी सबको कोई जानकारी ना देते हुए सीधे घर तोड़ा जा रहा है। और वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएं क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, ऐसे में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
2: मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में लगातार दूसरा दिन है जब रेलवे की तरफ से ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है। 400 से 450 घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। कई सालों से रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से घर बनाकर ये लोग रह रहे थे, कोर्ट के निर्देश के बाद आखिरकार रेलवे ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। कई सालों से यहाँ पर इस तरीके के घर यहाँ पर बने थे, कई सालों से मामला कोर्ट में था और आखिरकार कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये तोड़क कार्रवाई जो है वो रेलवे की तरफ से की जा रही है। 4 दिनों तक ये तोड़क कार्रवाई की जाएगी जिसमें से आज दूसरा दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक नहीं कई मंजिल तक, 3 से 4 मंजिला घर बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे थे। हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की जिनका कहना है कि वो कई सालों से रह रहे हैं, वो यहीं के हैं, उनके पास 90 या उससे पहले के भी डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन फिर भी उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लोगों से बात की गई थी, उन्हें बताया गया था इस कार्रवाई के बारे में और उन्हें पहले ही नोटिस भी दिया गया था और जो भी कार्रवाई यहां पर हो रही है वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए और कोर्ट के निर्देश द्वारा ही ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस दल भी यहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहां पर मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैनात ना हो, क्रिएट ना हो, लोगों में शांति का माहौल बना रहे, इसीलिए बड़े पैमाने पर 4 दिन तक पुलिस का बल जो है एक तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद रहेगा। छावनी में इस जगह को तब्दील कर दिया गया है और आने वाले और 2 दिनों तक ये कार्रवाई जो है वो शुरू रहेगी।
3: 50 साल हो गए हम लोग को इधर आना और 50 साल तो ज्यादा दिन गया लेकिन मैं 50 साल बोल रही हूँ, अल्लाह का खड़ा कर दिया रोड पर, कोई पूछने वाला हम लोग को, देखो कैसे रो रही है, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, पैसे न पानी है, सब तो चले जाएगा, बुढ़ा इंसान कहाँ जाएगा।
4: 92 का हमारे पास वो वोटर आईडी सब है, हम लोग इतने सालों से वोट दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है। हाँ सुमैया बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग बांग्लादेशी, बांग्लादेशी हम लोग कहाँ से है, यहाँ पे सब औरत लोग सब लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चे
3: हैं, कोई नहीं है, एक ही बच्चा हैंडीकैप, मेरा घर था, घर तोड़ दिया है, हमको घर के बदले हमारा घर कोई है नहीं कमाने वाला सर, हमारे पास में कोई नहीं, घर के बदले घर दे दे सर, शाम दे दे हमको।
5: रेलवे की, रेलवे कौन है, रेलवे अपने इंडिया सरकार है ना, हम लोग कौन है, इंडिया सरकार के अंदर में आते हैं ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, आप खाली करो बाकी हमको घर तो दो, हमको आप बोले थे कि हम सब घर को सर्वे करूंगा, सिर्फ 100 से 150 घर को सर्वे किया, बाकी हम लोग को बोला तुम लोग का बाद में होगा, अब बाद में हमको बांग्लादेशी हाईकोर्ट का ऑर्डर ये सब डाल करके हम लोग बेघर कर रहे हैं, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे सर।
1: और अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं, बीच बीच में ऐसा बयान दे जाते हैं कि चारों तरफ से सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन का दौरा है रायबरेली का उनका और रायबरेली के दूसरे दिन के दौरे में राहुल गांधी पहुंचे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बोलते बोलते आपत्तिजनक भाषा बोल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए।
6: दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर आप आपसे बात घर जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहिए।
1: अब राहुल गांधी को आपने सुन लिया, राहुल गांधी इसी तरह के बयान देते हैं जैसे चारों तरफ से सवाल खड़े हो जाते हैं। अब बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, और अब वो सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी की इस भाषा पर।
7: राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है, और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं, लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है, और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
1: ये तो राहुल गांधी की बात होगी, अब अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे आरक्षण को दूसरे तरीके से खत्म किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि आरक्षण तो अधिकार है, पीडीए की बात वो करते हैं अखिलेश यादव, और कह रहे हैं आरक्षण को लेकर बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरीके से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं कि आरक्षण भीख नहीं अधिकार है, आरक्षण पीडीए की आवाज है।
8: भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है, भाजपा को भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है, ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं, इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले, वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया, भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है।
1: तो अखिलेश यादव के बाद अब आपको पश्चिम बंगाल लिए जाते हैं, बड़ी जीत मिलती है शुभेंदु अधिकारी को, मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद पहला उनका दौरा होता है उत्तर बंगाल का, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और वहां कई फैसले लेने की बात भी कही जा रही है, बैठक हुई शुभेंदु अधिकारी की अधिकारियों के साथ, और अब ये बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पांच जिलों को लेकर एक अहम बैठक कर रहे हैं, उत्तर बंगाल का पहला दौरा है शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री के तौर पर, बहुत बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली है, और उसके बाद और आइए आपको सीधे इटली लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आ रही है वो हम आपको दिखा देते हैं, और यहां पर देखिए पांच देशों की यात्रा आखिरी पड़ाव इटली, जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई थी, और अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं, और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, ये देखिए सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी हुआ। भारत इटली के संबंधों में जो मिठास घुली वो सभी ने देखी, मेलोडी टॉफी वो सभी ने देखी, और उसके बाद अब यहां पर रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की तैयारी यहां पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिले थे, वो तस्वीरें सभी ने देखी थी, और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें कल की भी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब धमाल मचा रही है, काफी चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। और दूसरी तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कई डेलीगेट से बातचीत करते हुए, और इसके साथ ही साझेदारी बढ़ानी है, कई मुद्दों पर बातचीत करनी है, रणनीति को मजबूत करना है, तो वो भी यहां पर अब स्पष्ट देखा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पांच देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे, अब आज बुधवार। और अब पहले तो वो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, और उसके बाद अब देखिए वैश्विक साझेदारी पर यहां पर बात होगी, व्यापार, रक्षा, वैश्विक साझेदारी, और कैसे भारत और इटली के संबंध को और मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते पश्चिम बंगाल। जैसा आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उनका दौरा उत्तर बंगाल का, और वहां पर उन्होंने पांच जिलों के लिए एक अहम बैठक कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। मतलब जो वादा उन्होंने किया था, अब उस वादे को जनता तक डिलीवर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई फैसले भी ले रहे हैं। सिलीगुड़ी में शुभेंदु अधिकारी की एक अहम बैठक, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है उनका उत्तर बंगाल का।
9: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
10: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिनाने को कई फैसले हैं जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिपोंग इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
1: बंगाल की जब बात की जा रही है तो बंगाल में मौसम बदला दिखाई दे रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी के कई लोग शुभेंदु अधिकारी अब जो फैसले ले रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन भी अब दिखाई देने लगा है, और बुलडोजर के साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी जगह है जहां पर कार्रवाई अब देखने को मिल सकती है।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई, तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया।
1: रुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार के बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है।
1: पहले घाटा का राजू नस्कर 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं तेल बचाने की, और उसका बाद असर अलग अलग जगह देखा जाता है। हेमा मालिनी भी अब गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में जाते हुए दिखाई दिया। अब ये देखिए वो तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद हेमा मालिनी
3: और हम सब दोनों
2: हेमा मालिनी की तस्वीर, और उसमें वो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। हेमा मालिनी के साथ राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह और बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश भी ऑटो रिक्शा में ही मीटिंग के लिए पहुंचे। हालांकि जिस ऑटो रिक्शा में हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट पहुंची उसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा रही, क्योंकि ऑटो रिक्शा बेहद स्पेशल दिख रहा था और इस पर विधायक का नेम प्लेट भी लगा हुआ था और हुटर भी। राहुल गांधी ने आज एक आपत्तिजनक बयान दिया था, नितिन नवीन अब उसका जवाब दे रहे हैं।
4: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ, और कहीं ना कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से अखंड में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीज़ों पर पूर्ण रूप में लगाम लगाने का काम किया, और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं ना कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है, क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है, क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, लेकिन शायद आप पुराने चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है।
2: रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
5: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
9: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Prime Minister Modi wrote as a gift a very, very good coffee.
1: Mallory.
2: जैसा आप समझ गए होंगे कि भारत और इटली के रिश्तों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तक। जैसा आप समझ गए होंगे कि भारत और इटली के रिश्तों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तस्वीर पर, जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। उस पर राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं।
3: के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर उनको डराकर उन आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट चढ़वा दो, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दे, कहेंगे आप देखना।
4: आपकी चढ़ा दिया जाएगा।
3: तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी, भैया भैया गर्मी है डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा, वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, पिछले 12 साल में देश की रक्षा हमारा संविधान करता है, हमारी संस्थाएं करती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। मैंने मीडिया के बारे में मजाक उड़ाया, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी।
2: राहुल गांधी ने कैसे निशाना साधा ये आपने देख लिया, लेकिन बात अब करेंगे भारत और इटली के नए रिश्तों में जो इबारत लिखी जा रही है उसकी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं इटली, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होता है और वो तस्वीरें भी देखी गई जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की कई तस्वीरें साथ में आई। देखिए कोलिसियस का भी दौरा किया, जहां पर कभी ग्लैडिएटर्स लड़ाई करते थे उस जगह भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर तस्वीरें भी खिंचवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट दिया जॉर्जिया मेलोनी को, मेलोडी चॉकलेट, तो वो भी अब काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड मेलोनी और मोदी ट्रेंड किया था, तो काफी सेल्फीज भी ली गई, गिफ्ट्स भी दिए गए, साथ में कार में सवारी भी की गई और कार में भी सेल्फी ली गई और अब ये तस्वीरें सभी जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत और इटली की बात की जा रही है और यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा गया है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या उसमें जानकारी दी गई है। अब आप ऐसे समझिए पीएम मोदी और मेलोनी का एक साझा ब्लॉग है, अब उसमें भारत इटली संबंध अब निर्णायक मोड़ पर हैं, ये दोनों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। हमारी साझेदारी एक नया उच्च आयाम हासिल कर रही है और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी मेलोनी, इनका साझा ब्लॉग जिसमें वो कहा गया कि रक्षा, एरोस्पेस, प्रौद्योगिकी, केमिकल और जैसे क्षेत्रों पर अब फोकस किया जा रहा है और 2029 तक 20 अरब यूरो के व्यापार का लक्ष्य, जो कि अभी तकरीबन 14 से 15 बिलियन है, 14 से 15 अरब है, लेकिन इसको 20 अरब यूरो 2029 तक ये व्यापार का लक्ष्य रखा गया, यानी भारत और इटली के संबंधों की बात की जा रही है। अब दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही, तस्वीरें, सेल्फी, कल से काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, कार में सेल्फी, कोलिसियस में सेल्फी, उसके बाद मेलोडी वाला गिफ्ट, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, इस पर क्या बातें हो रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: पीएम मोदी के इटली दौरे का ये सबसे स्वीट मोमेंट है।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melt.
0: ये अपनी दोस्त के लिए पीएम मोदी का खास तोहफा है। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को भारतीय कंपनी पार्ले की मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया। इस खास चॉकलेट की ऊपरी परत पर कॉफी और अंदर मीठी चॉकलेट का स्वाद मिलता है। इस खास चॉकलेट को गिफ्ट कर मोदी ने इटली और भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय वार्ता से पहले ही अपनी मजबूत दोस्ती का परिचय दिया।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: पांच देशों के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे खास मित्र देश इटली पहुंचे। दोस्ती मजबूत है तो वहां से आई तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये पहला मौका नहीं जब मोदी और मेलोनी की मुलाकात हुई हो। पहले भी दोनों कई बार मिले हैं। हर बार राजनयिक रिश्ता और मजबूत हुआ है। दुनिया भी भारत और इटली के मजबूत होते संबंधों का गवाह बना है। अब एक बार फिर पीएम मोदी रोम में है और वहां इटली में उनकी जबरदस्त खातिरदारी हो रही है। बीती रात प्रधानमंत्री मोदी रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी सेल्फी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मेलोनी ने पोस्ट में लिखा कि वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी खुद पीएम मोदी को लेकर रोम की उस जगह पर पहुंची जो वहां सबसे फेमस और ऐतिहासिक है। इसके बाद फेमस कोलोसियम का दौरा किया। दोनों नेताओं ने साथ में डिनर भी किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक कार में सफर भी किया। पीएम मोदी की आवाभगत में जुटी मेलोनी उन्हें इटली के खूबसूरत नजारों को दिखाती रही। मेलोनी की ऐसी मेहमान नवाजी की कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि रोम में उतरने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का मौका मिला। इसके बाद मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। जॉर्जिया मेलोनी 22 अक्टूबर 2022 से ही इटली की प्रधानमंत्री हैं। वो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नेता हैं। उन्हें टाइम और फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल किया है। वो पारंपरिक और पारिवारिक मूल्यों की समर्थक रही है। वो भी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों का पालन करती हैं और यही विचार भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत करता है। 2022 में मेलोनी के पीएम बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी और उनकी मुलाकात 8 बार हो चुकी है और अब एक बार फिर दोनों रोम में मिले हैं जहां भारत और इटली के बीच कई समझौते हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं और अब ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार मुलाकात हुई। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हो चुकी है। हालांकि मेलोनी जब प्रधानमंत्री बनी थी उसी के कुछ महीनों बाद वो भारत आई थी और वो मुलाकात भी बहुत खास थी। जैसे कि आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, नवंबर 2022 बाली इंडोनेशिया में मुलाकात हुई, दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी, मार्च 2023 की वो बात है और आज की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही नई दिल्ली में 2023 की सितंबर 2023 की वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहुंची और इटली की भी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब भारत पहुंचे थे। और देखिए अहम मुद्दों की बात की जा रही है, जब भारत और इटली की बात की जाती है, रिश्ते मजबूती की बात की जाती है, तो चलिए वो हम यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। भारत इटली में द्विपक्षीय वार्ता, अहम मुद्दे क्या, रणनीतिक सहयोग, एक दूसरे देशों का रणनीतिक सहयोग, इसके साथ ही रक्षा और व्यापार। अब इसको बढ़ाना है, इसको 20 बिलियन तक पहुंचाना है तो वो बात हो चुकी है 2029 तक के लिए। अब अहम मुद्दे क्या, स्वच्छ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और इटली की जब बात की जाती है तो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, एआई की बात की जाती है, तो तकनीकी साझेदारी ये भी बहुत अहम हो जाती है। तो भारत इटली में द्विपक्षीय वार्ता, आने वाले वक्त में क्या कुछ योजनाएं हैं और भारत का इससे क्या कितना फायदा हो सकता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बेहतर समझ पाए।
4: रोम में हिंदुस्तान और इटली के राजनयिक संबंधों में नए पन्ने जुड़े हैं। करीब 7 दशक पुराने रिश्तों को नया पंख मिला है। 2022 में सत्ता मेलोनी ने संभाली थी और अगले ही साल वो भारत की खास मेहमान थी। मौका था 8वें रायसीना डायलॉग का उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि थीं और तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इटली की पीएम बनने पर बधाई दी थी।
2: प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
4: अपने पहले दिल्ली दौरे पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मेलोनी ने उन्हें दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता भी बताया था। उसी साल सितंबर में भी मेलोनी दिल्ली पहुंची। ये उनका दूसरा दौरा था। मौका था G20 शिखर सम्मेलन का। तब से अब तक पीएम और मेलोनी कई बार मिल चुके। दोस्ती का ये दौर अब रोम तक पहुंचा है। मेलोनी के देश में पीएम मोदी बीती रात पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत में पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही मिनी इंडिया की झलक दिख रही थी। भारतीय नृत्य संगीत और लोक संस्कृति रोम रोम में बस गई। जैसे ही पीएम वहां भारतीयों के बीच पहुंचे, मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे की गूंज सुनाई दी। हर कोई पीएम मोदी से मिलना चाहता था। कोई हाथों में तिरंगा लिए उनका स्वागत कर रहा था तो एक बच्चा प्रिय प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाकर उनसे मिलने पहुंचा था। पीएम मोदी ने देखा तो उसकी बनाई तस्वीर पर ऑटोग्राफ दिया और उसका हौसला भी बढ़ाया। होटल में पीएम के सम्मान में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम को देखने भी मोदी पहुंचे। वाद्य यंत्रों के साथ कलाकारों ने भी पीएम मोदी का स्वागत अपने अंदाज में किया।

0: उसके बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से पीएम मोदी की अलग अलग मौकों पर मुलाकात हुई। अब दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फिली में भारत इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बात हो रही है। एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाना है। मोदी मेलोनी की बातचीत के केंद्र में व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी जैसे मुद्दे हैं। साथ ही मध्य पूर्व में जारी तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे गंभीर मसले पर भी चर्चा की पूरी उम्मीद है।
1: अगर हम आंकड़ों की तस्वीर के जरिए बात करें तो यह नजर आता है कि इटली यूरोप के अंदर भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत से इटली को होने वाले निर्यात के अंदर करीब 19% का इजाफा बीते दो सालों के दौरान हुआ है और इटली से रेमिटेंस के जरिए भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा के अंदर भी 32% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा इटली भारत के साथ अपने कारोबार और अपने व्यापार को मजबूत करना चाहता है और साथ ही सामरिक और रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी पहली इटली की द्विपक्षीय यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान भारत और इटली के संबंधों में रणनीतिक साझेदारी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, रक्षा से लेकर कृषि के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और इटली का निवेश भारत में कैसे आकर्षित किया जा सकता है, साथ ही भारतीय पेशेवरों के लिए इटली के दरवाजे किस तरीके से खुल सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी।
0: इटली के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी पीएम मोदी मिलने वाले हैं। उनसे निवेश और मैन्युफैक्चरिंग और भारत में नई औद्योगिक पार्टनरशिप पर चर्चा होने की संभावना है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
2: अभी कुछ देर पहले की बात है, राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा गया था और अब एक बात फिर से वो कह रहे हैं कि देश की जनता से कह रहे हैं कि विदेश में जाइए, पेट्रोल कम खर्च कीजिए और अब खुद विदेश गए, इटली गए, टॉफी लेकर गए और रील बना रहे हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा गया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की किल्लत हो रही है, 20% तेल मार्केट से हट गया, लेकिन मोदी जी मेलोनी को टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं।
3: मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
2: और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर तुषा शर्मा मौत मामले में कमिश्नर से आज तक की बातचीत हुई है और पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि आत्महत्या का मामला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तुषा शर्मा मौत मामला, क्योंकि एक सस्पेंस बना हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी तक अंतिम संस्कार तुषा का हुआ नहीं है। अब पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि मामला आत्महत्या का है, पोस्टमार्टम और लिटरेचर की रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने और ये भी कहा कि ये जांच का विषय है कि किन हालात में तुषा ने खुदकुशी की है। हालांकि परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है।
4: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी किस दिशा में चल रही है, किस एंगल से जांच हो रही है?
5: नहीं, अभी तक की जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमार्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है।
4: तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना?
5: नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है।
4: परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के।
5: नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमार्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट FSL द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी।
2: तो फिलहाल अभी यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे न्यूज रूम लाइव में।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
9: After multiple assassination attempts, they can't even get...
10: They're reliable.
11: Always when I need them.
8: To live sports action.
12: One-hand jam by LeBron on the break.
13: That's another three, Steph Curry.
8: And your favorite music.
14: Well, the dawn begins to crack.
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
17: Sokudo.
18: Like I said before, we better hold the sins.
19: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर।
20: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
21: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
22: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
23: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
24: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
22: शुभेंदु अधिकारी,
21: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
25: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सेन गुप्ता,
26: अनुपम मिश्र,
27: मोहित भारद्वाज,
28: पीयूष मिश्रा,
29: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान। भारत में 100 बिलियन डॉलर निवेश का ऐलान। समंदर में भी दोनों देश मिलकर करेंगे काम। नॉर्वे दुनिया के खुशहाल और बेहद खूबसूरत देशों में से एक। अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो भारत के सम्मान में एक अध्याय और जुड़ गया। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नॉर्वे के राजा हेरल्ड पांचम ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे तो बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर शुरू हुआ मेल मुलाकातों का सिलसिला। कारोबार से लेकर पर्यावरण और तकनीक से लेकर ताकत तक के पहलुओं पर बात हुई और कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगी। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के साथ बिजनेस और रिसर्च समिट में शिरकत की। पिछले साल ही भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। बातें शुरू हुई तो उन दो महायुद्धों तक जा पहुंची जिसमें एशिया और यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। सालों से मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं, लाखों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ किया कि शांति से ही इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और नॉर्वे के बीच कारोबार करीब 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में 28 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार करीब 19 बिलियन डॉलर आंका गया है। 2 साल पहले हुए भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात को EFTA देशों में 99% से ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। जाहिर है स्पेस से लेकर समंदर तक अब न सिर्फ भारत सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ उभर रहा है बल्कि कारोबारी रिश्ते मजबूत कर वो बड़ी आर्थिक ताकत भी बन रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सरकार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की, उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं।
1: राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा किसानों को खाद नहीं मिलने वाला, अब हिंदुस्तान का मजदूर, युवा और किसान देश को बचा सकता है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, 3 से 4 महीने में ऐसी महंगाई आएगी जिसे मोदी सरकार जिसे आपको बचा नहीं पाएगी। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया, आने वाले आर्थिक तूफान से युवा किसान मजदूर वर्ग को सबसे बड़ा झटका लगेगा। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग और मजबूती पर जोर, IMEC पर भी दोनों ही देशों में सहमति। इटली दौरे में पीएम मोदी और मेलोनी की बेहद मजेदार तस्वीर आई सामने, पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया मेलोडी ट्रॉफी पूरा पैकेट, और इटली के पीएम ने वीडियो शेयर करते हुए कहा थैंक यू। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे जहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और मेलोनी ने साथ में किया डिनर, इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर, बोले कि भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने पर दोनों देशों का रहेगा फोकस। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर की शेयर, कैप्शन में लिखा कि मेरे दोस्त रोम में आपका स्वागत है। इस दौरे पर एक बार फिर मोदी ने कार डिप्लोमेसी दिखाई और पीएम मोदी और मेलोनी रोम में ही एक कार में सवार दिखाई दिए। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और इटली के रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद है और इस दौरे पर दोनों ही देशों के बीच में कई अहम समझौतों की भी उम्मीद। पीएम मोदी रोम स्थित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय का भी दौरा करेंगे, यहां पर वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद आज रात को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का, दर्जनों लड़ाकू विमानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब्बास सराकची का एक और दावा, कहा कि युद्ध के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। अब्बास सराकची ने नए हमला और उसका कहा कि नए हमला होता है तो चेतावनी दी, अगर दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को और भी सरप्राइज देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बैलिस्ट फाइटर जेट्स और कई ड्रोन्स का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अमेरिका का खर्च बढ़कर $29 बिलियन पहुंचा, हथियारों की मरम्मत पर सबसे ज्यादा खर्च। ट्रंप के बाद चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग एयरपोर्ट पर, उनका रेड कार्पेट पर स्वागत, चीनी विदेश मंत्री ने की अगवानी। दोनों नेताओं के बीच में ईरान, इसके साथ साथ यूक्रेन युद्ध, व्यापार समेत वैश्विक मुद्दों पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत में रूस चीन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दिया गया जोर। पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव के बीच में ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। चीन पहुंचने से पहले जारी किया गया वीडियो संदेश में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगले महीने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होने की संभावना फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दोनों के बीच भेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। 15 से 17 जून तक होगा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सभी भारतीय अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की गई और होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ने सहमति जताई। स्वीडन और फ्रांस में बड़ा रक्षा समझौता, स्वीडन फ्रांस को नेवल ग्रुप से खरीदेगा 4 नए युद्धपोत। दक्षिण कोरिया और जापान में ऐतिहासिक समझौता, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर दोनों में सहमति बनी। नीट पेपर लीक केस में मोटेगांवकर के RCC पुणे कैंपस में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। पुणे नगर निगम ने शहर में मोटेगांवकर के से जुड़ी हुई संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बकाया संपत्ति कर और अनधिकृत इस्तेमाल के आरोप में यह कार्रवाई की गई है और इन संपत्तियों पर 3.25 करोड़ का संपत्ति कर बकाया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच में अब विदर्भ पहुंची टीम। CBI ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी करके परीक्षा रैकेट से जुड़े हुए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई है।

सीबीआई की विशेष टीम ने नागपुर और चंद्रपुर में संदिग्ध छात्रों और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर कई घंटों तक की जांच। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। आज देशभर में बंद है दवा की दुकानें, ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल। केमिस्ट शॉप स्ट्राइक पर का चंडीगढ़ में दिखा इंपैक्ट, मेडिकल स्टोर बंद होने से लोग परेशान। केमिस्टों की हड़ताल का नागपुर में बड़ा असर, दवा दुकानदारों ने ऑनलाइन मेडिसिन कंपनीज के खिलाफ खुला मोर्चा। ई फार्मेसी के विरोध में करनाल के केमिस्टों की 24 घंटे की हड़ताल, 1200 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, कोचिंग सेंटर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड के बोर्ड पर कालिक पोत कर तोड़ फोड़ करके रोष जताया गया, कोचिंग माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीट छात्रों को की परेशानी सुन भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, एग्जाम डे पर पंजाब में फ्री बस सेवा देने का भरोसा दिलाया। अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, वीडियो में केजरीवाल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों का मुद्दा भी उठाया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी से जुड़े 43 संपत्तियों की सूची जारी की है, दोस्तों और परिवार के नाम पर मालिकाना हक का आरोप। शुभेंदु अधिकारी बोले अभिषेक बैनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्ति की जांच होगी और गहन जांच बेनामी और साझा मालिकाना एंगल से भी पड़ताल जारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि ये लोग हार से उबर नहीं पाए इसीलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताया कि डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हुआ। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बताए विदेश नीतियों क्यों फेल, बीजेपी नहीं चाहती कि सबको बराबरी का मौका मिले। शरद पवार का विपक्ष की आलोचना के बीच बड़ा बयान, बोले कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह लेकिन राष्ट्रीय हित से ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। त्रिशा मामले में बड़ी खबर, पुलिस ने परिवार को शव ले जाने के लिए दिया पत्र, बॉडी डिकम्पोज होने की आशंका को वजह बताई। फिलहाल एम्स भोपाल में शव 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, लेकिन एम्स के मुताबिक यदि सेकेंड पोस्टमार्टम करवाना है तो शव को -80 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा, जिसकी सुविधा भोपाल एम्स में नहीं। त्रिशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम की याचिका पर सुनवाई आज, परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबर के CDR की मांग की है। त्रिशा शर्मा केस में इंसाफ के लिए भोपाल में सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक, वर्दी वेलफेयर सोसाइटी ने शौर्य स्मारक से निकाला एक मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और परिजनों को न्याय दिलाने की शपथ, DGP CM और गवर्नर से करेंगे मुलाकात। भारतीय नौसेना की इंडियन ओशन शिप सागर पहल का जो है दूसरा चरण हुआ समाप्त, और इस अभियान में 16 मित्र देशों के नौसैनिकों के साथ INS सुनयना का तैनात किया गया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इस पहल के माध्यम से भारत अन्य देशों के साथ विश्वास आधारित संबंध विकसित कर रहा है। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का NIB ने किया सफल परीक्षण, सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी हमला करने में सक्षम है। ओमान के साथ FTA 1 जून से लागू हो सकता है, व्यापार को मिलेगा नया विस्तार, अगले पांच सालों में $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया। कृषि निर्यात भी 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, किसानों के लिए सकारात्मक संकेत, वित्त मंत्री ने विपक्ष पर डर फैलाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा टल गया, तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हाई टेंशन लाइन से टकराया था हेलीकॉप्टर, खेतों में करवाई गई आपात लैंडिंग, प्रशासन ने 6 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। देहरादून के एक हॉस्पिटल में AC ब्लास्ट में आग लग गई और इमरजेंसी वार्ड में मची अफरातफरी, मरीज सुरक्षित निकाले गए बाहर। अस्पताल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गई, परिजन है और जो मरीज है उन्हें शिफ्ट किया गया और एक महिला की इसमें मौत की पुष्टि भी हुई है। गोवा के पणजी के डोना पावला सर्कल में तेज रफ्तार BMW की कई वाहनों के साथ टक्कर, इलाके में मचा इससे हड़कंप। पटना के आईजीएमएस में MBBS के छात्र को मेडिकल अटेंडेंट ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल, घटना CCTV में कैद हुई है। MBBS छात्र से मारपीट के मामले में गुस्साए छात्रों ने अस्पताल परिसर में 2 घंटों तक हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। बौली में बच्ची को दिन दहाड़े दादा दादी के सामने किया गया किडनैप, लाइव तस्वीरें आई सामने। बच्ची को बचाने के लिए आगे आए दादा दादी को भी कुचलने का प्रयास किया गया।
सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से आई इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली, बदमाश घायल। पटना के मरीन ड्राइव पर लगी बीएमडब्ल्यू कार में अचानक लगी आग और दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट का ई ट्रेनिंग रूम जलकर खाक, सरकारी दफ्तर समेत कंप्यूटर सिस्टम भी मार राख। वडोदरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लाखों का नुकसान। रेवाड़ी में बैटरी फटने से इलेक्ट्रिक स्कूटी फैक्ट्री में लगी आग, तीन मंजिला ये इमारत में लगी आग और टायर ट्यूब और बैटरी से आग तेजी से फैलती चली गई। उल्लासनगर में ताश के पत्तों की तरह गिरी चार मंजिला इमारत, वीडियो वायरल सामने आया। केदार घाटी में भारी बारिश और भूस्खलन, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फंसे हजारों यात्री, एसडीआरएफ ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फरार चल रहे मोहित पंडित के पैर में लगी गोली, अब गिरफ्तार। पठानकोट गुरदासपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ऑल्टो कार की अज्ञात वाहन से बड़ी टक्कर, चार लोगों की मौत। कर्नाटक के शिवमोगा में विशाल मार्ट में फंसने से 9 लोग फंस गए, दमकल विभाग ने रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। मेरठ में शमशान घाट पर चिता की राख और अस्थियां निकालने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अकोला में भीषण जल संकट, 46 डिग्री की गर्मी के बीच में 6 दिन के बाद मिल रहा है पानी और काटेपूर्णा डैम में सिर्फ 29% ही जल भंडार बचा। अकोला में नगर निगम की सप्लाई बाधित, झुग्गी बस्तियों से लेकर मध्यम वर्ग तक परेशान, महिलाएं टैंकर से पानी भरने को मजबूर। 12 के गोविंदपुरा गांव में गहरा है पेयजल संकट, 70% आबादी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर, हर घर नल जल योजना फेल। अलवर के रामगढ़ में भीषण पेयजल संकट, महिलाओं को हाईवे जाम करके करना पड़ा प्रदर्शन, जल जीवन मिशन पर गंभीर सवाल खड़े हो। रायसेन के कोगलपुर गांव में भी भीषण जल संकट है, 3 कुएं सूख गए, सरकारी योजनाओं के बावजूद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा, 32 दिनों में 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की। केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा भक्तों ने कल किए दर्शन पूजन, अब तक लगभग 7 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक दिन में की पूजा और अब तक 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों ही जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, सबसे ज्यादा 54,832 वाहन बद्रीनाथ धाम पहुंचे। आईपीएल चौंक के 64 रुपए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का मैच, ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा यह मुकाबला। केकेआर के लिए ये करो या मरो वाला मैच और इस मैच में जीत हासिल कर खुद को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखेगी अभी कोलकाता। मैच से पहले लगा मुंबई को एक बड़ा झटका, विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक और ऑलराउंडर राज अंगद बाबा चोट के चलते बाहर। प्लेऑफ की रेस से पहले ही मुंबई हो चुके हैं बाहर, फिलहाल अंक तालिका में 90 नंबर की टीम है। इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा ट्रेलर रिलीज, 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, एआर रहमान ने दिया न्यूज़। से दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंदु कुमार के बेटे अमन फिल्म तेरा हूं में एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं, 31 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। प्रीति जिंटा 8 साल के बाद फिल्म वाइप से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 19 बाद फिर से साथ आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा, एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चाएं भी तेज। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म एक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन तुम्बाड 2, द ग्रेट एस्केप फरार में अहम रोल करेंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: और अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी सोनल मेहरोत्रा का, जिन्होंने उस कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके से बातचीत की, जिन्होंने चीफ जस्टिस के बयान के बाद ये पार्टी बनाई जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है।
2: अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत। अभिजीत को आप एक ओरिजिनल कॉकरोच बुला सकते हैं। इन्होंने अभी लॉन्च करी है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी निकलकर आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कैसे कमेंट से, जिन्होंने कहा कि यूथ को उन्होंने कंपेयर करा कॉकरोचेस से। उनका ये कमेंट इतना ट्रोल वर्दी था कि जेन जी ने बैठकर एक कॉकरोच जनता पार्टी ही लॉन्च कर दी। तो अभिजीत जो हैं वो इसके पीछे हैं। इन्होंने पूरी ये लॉन्च करी है, बॉस्टन में बैठकर इन्होंने लॉन्च करी है। इनके हिसाब से असली कॉकरोच यही है, क्योंकि इनके पास डिग्री है, एजुकेशन है, पर जॉब नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताइए अभिजीत जी कि इतना कैसे टीस लग गई सीजीआई के कमेंट से कि पार्टी लॉन्च हो गई।
3: हमारे इंस्टाग्राम पर अभी 3.3 मिलियन आ चुके हैं, जो मतलब लगभग 33 लाख के बराबर है, और ये बस पिछले 3-4 दिन में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फॉलोइंग इतने कम टाइम में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मूवमेंट को आज तक मिली होगी पूरी दुनिया में।
2: तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है?
3: एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, क्योंकि ट्रेंड होता तो हमारे वेबसाइट पर 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर नहीं करते सोनल। ट्रेंड होता तो वो सोशल मीडिया के आउटरीच तक लिमिटेड रहता, और ट्रेंड सोशल मीडिया में हम देखे जाए ना तो दे डोंट लास्ट बियॉन्ड 24 to 48 आवर्स। आज चौथा दिन है और हमारे साइनअप्स बढ़ते जा रहे। कल 1.5 लाख थे, आज 2 लाख से ऊपर हो गए।
1: और सीधा इटली आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी की जो तस्वीर है वो सामने आ रहे हैं, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और दिन भर से सोशल मीडिया पर भी ये मुलाकात लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, और दोनों के जो वीडियोस हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। देश में सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को देखेंगे तो जो दोनों के कपड़े हैं वो काफी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेड कार्पेट पर आप देखेंगे और मिशन इटली पर प्रधानमंत्री मोदी और एक जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। दोनों की ये मुलाकात की हैंडशेक करते हुए तस्वीर है। भारत और इटली के संबंध बहुत अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों की केमिस्ट्री भी काफी चर्चा में रहती है। मेलोडी ट्रॉफी आज पीएम मोदी ने पैकेट उनको गिफ्ट किया है, लेकिन इस बीच में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, और ये रोम में उनका शानदार स्वागत हुआ है। भारत और इटली के संबंध, इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत व्यापार भी हो रहा है, और आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद हम लोग इटली को निर्यात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण, लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बड़ा पार्टनर है भारत का इटली, और द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता रहे, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का। और कई देशों के दौरा करने के बाद अंत में प्रधानमंत्री इटली पहुंचे, और इटली से प्रधानमंत्री आज रात को फिर वापस दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन उससे पहले इटली में द्विपक्षीय मुलाकात, कुछ अहम समझौते होने की उम्मीद है। दोनों ही देश रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को अपने लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो नौसैनिक अभ्यास हो, चाहे रक्षा तकनीक साझेदारी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, समुद्री सुरक्षा हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खासतौर पर चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो रणनीतिक सोच काफी हद तक भारत और इटली की मिलती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो इटली में है, और उनको जब सम्मान दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये उस समय की तस्वीर है। तो मिलिट्री ऑनर से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, ये उसी की तस्वीर है मिलिट्री ऑनर की। सांस्कृतिक संबंध भी, क्योंकि इटली में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है, और ये तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो यूरोपीय देश में पहुंचे, खासतौर पर जो ग्लोबल उथल पुथल मची है, जो सप्लाई चेन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Oh hey friends, this sales for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: Character, the taste of success.
10: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
11: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
12: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
13: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
14: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: presented by Patanjali Gai Ka Ghee.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Your Saturday nights will never be the same.
3: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
4: The Tailgate Block Party.
2: The Tailgate Block Party.
3: 6 hours non-stop. Non-stop.
4: The best DJs from around the world.
2: The Tailgate Block Party.
3: Saturday night.
2: 8 p.m. Eastern.
4: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
3: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
0: लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने
6: जीके मैक्स
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। कैसे होगा? हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
2: झुकने वाला आदमी नहीं हूं।
3: बकरीद का त्योहार करीब आता है और सड़क पर नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलती है, बीजेपी का राज आता है और नई सरकार की प्राथमिकताओं से पर्दा हटने लगता है। साफ हो जाता है कि निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है। यूपी में सीएम सड़क पर नमाज को लेकर कायदा बताते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु पत्थरबाजों और घुसपैठियों को हिदायत जारी करते हैं। यूपी में अवैध मस्जिदों मकबरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नए बंगाल में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी में सार्वजनिक नमाज पर सख्त पाबंदी है, बंगाल में भी सड़क पर नमाज की मनाही है। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहे हैं, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा हो रही है। जो एक्शन प्लान पहले यूपी में दिख रहा था वो अब बंगाल में दिखने लगा है। लेकिन बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद और बंगाल में बीजेपी की बम्पर विजय के बाद सीएम योगी के भी अंदाज बदले बदले दिख रहे हैं। इसलिए अब चर्चा इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या बंगाल में बीजेपी की विजय से योगी ने यूपी के लिए कोई सियासी सूत्र तलाशा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: मोदी मिलिट्री ऑनर से सम्मानित। गिफ्ट पर राहुल बोले, देश संकट में और पीएम टॉफी देकर रील बना रहे हैं। पीएम मोदी शाह को राहुल के गद्दार वाले बयान पर भड़की बीजेपी। नितिन नवीन का पलटवार, यह हार की हताशा है। नीट पेपर लीक मामले में पुणे में मुख्य आरोपी के कोचिंग संस्थान पर चला बुलडोजर। एनटीए में सेंधमारी मॉड्यूल का अहम हिस्सा है मोटे गांव का। भोपाल पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान, ट्विशाने की आत्महत्या, दोबारा पोस्टमार्टम से एतराज नहीं, हर एंगल से जांच जारी। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर बड़ा एक्शन, बीजेपी ने जारी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ मैं नेहा बाकर। 5 दिन में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, आगे और भी दाम बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 10 मई को देश में सबसे अपील की कि तेल बचाया जाए। खुद 2 कार का काफिला लेकर दिल्ली में पीएम निकले, उसके बाद देश भर के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री हो, मंत्री, सांसद, विधायक, सब या तो 1 या 2 कार से चलने लगे या फिर मेट्रो ई रिक्शा का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन क्या ये सब लगातार मंत्री विधायक करेंगे? बिहार का हाल देखेंगे तो सच समझ जाएंगे, जहां मंत्री काफिला लेकर कार्यक्रम में जाते दिखाई दिए।
2: गिनते जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हूटर की हूं और मंत्री जी का भौकाल। इसी हूटर की आवाज में प्रधानमंत्री की नसीहत कहीं दब गई है, किनारे हो गई प्रधानमंत्री की सलाह बचत वाली। करने वाले भी कौन, जिनके जिम्मे बिहार में सरकार ने शिक्षा विभाग सौंपा। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री है, सहरसा के प्रभारी मंत्री भी सहयोग शिविर में पहुंचे, लेकिन 10 गाड़ी का काफिला लेकर चलना नहीं भूले। ये बिहार के कैसे शिक्षा मंत्री है जनता भी देखे। ई तो होना ही था वाला डायलॉग याद आ जाएगा, काहे कि प्रधानमंत्री ने तेल बचाने की अपील की तो मंत्री बिहार के वो भी शिक्षा वाले एकदम क्लास के गुड बॉय की तरह ई रिक्शा पर बैठकर पटना में चले थे। फोटो वोटो खिंच गई तो इनको भी लगा संदेश जनता तक पहुंच गया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह को 2-3 दिन मानकर मंत्री जी को लगा भक्त रोज रोज थोड़े ना वही करेंगे। जितना तेल बचाना था बचा लिया, लिहाजा छोड़ छाड़ के पीएम की नसीहत वाली गली, मंत्री जी पतली गली से किनारे निकले और 10 गाड़ी लेकर सहरसा पहुंच गए। लगा कि अब तो गुरु फंस गए, तो कहने लगे हम तो 2 गाड़ी लेकर ही आए थे, बाकी का हमें पता नहीं।
3: पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैदल गए सचिवालय और हम भी ई रिक्शा से दिन भर हमने अपना काम किया, और साथ ही साथ अब हम मंत्री के रूप में पटना से आए हैं तो मात्र 2 गाड़ी लेके आए हैं। तो हम सभी लोग अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और ईंधन बचाएंगे, डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेंगे तो वैश्विक संकट से बच पाएंगे।
2: बिहार में यही हाल समस्तीपुर में भी नजर आता है। ले काफिले पर काफिले, इतनी गाड़ियां कि गिनना क्या, कैमरे पर सब कुछ कैद, साफ साफ नजर आता है। लगता है क्या सिर्फ राजधानी में एक दिन के लिए बचत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वाला नारा लगा नेताओं ने बाकी अब जनता के हवाले बचत साथियों वाला मोड ऑन कर लिया। ये काफिला वाला दौरा करने दामोदर रावत बिहार के परिवहन मंत्री पहुंचे। इनकी भी दलील गाड़ियों के लाव लश्कर पर सेम टू सेम शिक्षा मंत्री वाली निकली।
4: हम तो स्वयं अकेले आए हैं, लेकिन अब माननीय विधायक हैं तो इनकी गाड़ी है, उनका भी गाड़ी है, हम तो स्वयं कटौती किए हैं और सब लोग कटौती कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसको बिहार सरकार अक्षरशः पालन कर रही है, कोशिश कर की जा रही है कि कैसे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, और इसके लिए हम लोगों ने अपने काफिले में भी भारी कमी की है। मैं तो स्वयं अकेले आया हूँ, सिर्फ एक हमारा एक गाड़ी था, एक पुलिस का था, तो वो तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया जाता है।
2: हाँ, सब कटौती कर लिए, लेकिन बाहर जो गाड़ियां है वो तो गरीब जनता की है जो मान ही नहीं रही। आज तक संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर में कहने को डीएमएसपी एक गाड़ी में आए थे, फिर भी एसपी की गाड़ी पीछे खाली चलती रही। वीडियो के साथ सीओ एक गाड़ी में थे, लेकिन सीओ की गाड़ी खाली पीछे पीछे चलती रही। बस ऐसे ही गाड़ियां जुड़ती गई और काफिला तेल फूंक कर बनता गया।
0: तो बिहार में यह हाल एक दो मंत्री तक सीमित नहीं है, तमाम मंत्री 8-10 गाड़ियां लेकर ही इस वक्त काफिले में चलते मिल रहे हैं। बिहार के सहकारिता, राजस्व और पर्यटन मंत्री के भी किफायती काफिले का सच देखिए।
2: यही हाल बेगूसराय में भी नजर आने लगा, जहां सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे। कितनी गाड़ी इनके काफिले में, आप भी देखिएगा।
5: जो आपको नजारा दिखाएंगे, देखिए जो काफिला में गाड़ी है उसकी संख्या कितनी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, देखिए मंत्री की गाड़ी है, मंत्री जा रहे हैं और उसके पीछे जो गाड़ियों की कतार है वह कितनी लंबी है यह आप देख सकते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस काफिले में है, विधायक है, स्थानीय जो भाजपा की टीम है, एनडीए की टीम है वह है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो नारे प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया कि काफिला में कम गाड़ी हो, लेकिन उसका कोई असर बिहार के मंत्रियों पर नहीं है।
2: लेकिन मंत्री जी भी दलील वही देते हैं, हमारी 2 गाड़ी है, बाकी का बाकी जाने।
6: प्रधानमंत्री ने अपील किया कि काफिला कम हो, पेट्रोल बजाया जाए, आपके काफिले में 15-20 गाड़ियां देखी गई।
7: मेरे काफिले में मात्र 2 गाड़ी है।
8: सब लोग अलग अलग विधायक हैं,
7: यहाँ पर हमारे जिला के माननीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, अन्य दूसरे हैं, मैं 2 ही गाड़ी लेके चलता हूँ। अब मैं जब जाऊँगा तो आप उसको बारीकी से वॉच कर लीजिएगा, 2 गाड़ी है, मैं कहिएगा मैं दिखा देता हूँ। दूसरा से तीसरा गाड़ी होगा तो जो आप सजा दीजिएगा मैं मान लूंगा। जो मैं कहता हूँ हमारी जो सरकार कहती है उसको करती है। तेल बचाना है देश के लिए, हम लोग सब लोग तेल बचा रहे हैं।
2: सवाल है कि ऐसे कार्यक्रम में क्यों नहीं एक साथ मंत्री, अफसर, विधायक साथ पहुंचते, सब अलग अलग गाड़ी लेकर ही जाएंगे तो काहे की किफायत, काहे की बचत। मुजफ्फरपुर में यही हाल दिखता है, जहां दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री 8 गाड़ी लेकर दावा है कि पहुंचे।
9: मंत्री मुजफ्फरपुर आए हुए और इनके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं वो आपको हम दिखाएंगे कि पहली गाड़ी है जो सबसे आगे लगी हुई है, दूसरी गाड़ी है, ठीक इसके पीछे तीसरी गाड़ी है, अब चौथी गाड़ी जिस तरह मंत्री हैं वो गाड़ी है, उसके पीछे 2 गाड़ियां और है, तो कुल मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 गाड़ियों का कार्केट है।
2: इन 8 गाड़ी को लेकर जब सवाल हुआ तो मंत्री जी कन्नी काट कर चल दिए।
10: एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है लोगों से,
2: सिवान का हाल देख लीजिए, केदार प्रसाद गुप्ता बिहार के पर्यटन मंत्री हैं, अब इनके काफिले में आई गाड़ियां गिनिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गाड़ी से मंत्री उतरे, बाकी तो पीछे पूरा और लंबा काफिला है ही। ये सारा काफिला मंत्री के साथ दिखा, लेकिन मंत्री जी कहते हैं हमारी 2 ही गाड़ी है। हो सकता है कि यह सच हो कि सारे मंत्री 2-2 गाड़ी लेकर ही चले हों, लेकिन फिर इतनी गाड़ियां एक कार्यक्रम में क्यों जरूरी है? क्या यह कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं हो सकता था? ये वो नेता है जिनकी गाड़ी का तेल इनकी जेब से नहीं जनता की जेब से भराया जाता है, लेकिन फिर भी बिहार में पीएम की नसीहत पर कान देते मंत्री लोग दिखते नहीं और जनता तेल के दाम बार बार बढ़ने से अलग परेशान होने लगी है।
0: बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल हुई और अब शुभेंदु अधिकारी सीएम के तौर पर पहला दौरा करने उत्तर बंगाल पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी आज सिलीगुड़ी में हैं, जहां 5 जिलों को लेकर अहम बैठक होने वाली है। तो शुभेंदु अधिकारी लगातार ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदुत्व ही उनकी सरकार का केंद्र बिंदु रहेगा, वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं, जिनसे ये साफ हो रहा है कि उन्हें उन हिंदू समर्थकों की चिंता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया है। शुभेंदु आज अहम दौरा उत्तर बंगाल का कर रहे हैं, जहां बीजेपी को इस बार उम्मीद से बढ़कर सीटें मिली हैं। शुभेंदु का सीएम के तौर पर यह पहला दौरा है और इस दौरे से भी उनके समर्थकों को संदेश दिया गया है कि नई सरकार उनके साथ है।
11: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना एडुकेशन का अच्छा करना है? इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है? आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
12: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिनाने को कई फैसले हैं जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिपोंग इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
0: तो बंगाल में माहौल बदला सा दिखने लगा है। शुभेंदु सरकार ने योगी का बुलडोजर मॉडल अपना लिया है, अतिक्रमण पर एक्शन हो रहे हैं, टीएमसी के दफ्तर तक बुलडोजर की चढ़ाई हुई है, तैयारी अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी पर एक्शन की है।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई, तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार के बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है।
1: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पोपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: सुशासन का पहला मंत्र है कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। शुभेंदु के बुलडोजर उस बड़े वर्ग में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बंगाल में बीजेपी को महाविजय दिलाई और पहली सरकार बनवाई।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही बीजेपी को वहां सियासी जमीन बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हत्याएं हुई, एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन की मजबूरी भी सामने आई। अब शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी के पार्टी कैडर को उनकी सुरक्षा की गारंटी का मैसेज है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
2: देश में तेल बचाने का मिशन चल रहा है। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी अपने अंदाज में तेल बचाने निकली। हेमा मालिनी को आपने फिल्मी पर्दे पर तांगा चलाते हुए देखा होगा, लेकिन मथुरा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से पहुंची। हेमा मालिनी के साथ राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह और बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश ऑटो रिक्शा में ही मौजूद थे। मीटिंग के लिए पहुंचे, हालांकि जिस ऑटो रिक्शा से हेमा मालिनी कलेक्ट्रेट पहुंची उसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा बेहद स्पेशल दिख रहा था। इस पर विधायक का नेम प्लेट लगा था और हूटर भी।
3: ऑटो ही रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा हमारे विधायक जी पूरन प्रकाश जी जो बलदेव के विधायक हैं उनका है, और हमारे साथ तेजवीर जी हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, और हम सब दोनों हम लोकसभा और राज्यसभा सब मिलके इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हम सबको इलेक्ट्रिक कार यूज करना चाहिए।
2: कई बार नेता सांसद ये भूल जाते हैं कि कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, दिखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। Your Saturday nights will never be the same.
6: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
7: The Tailgate Block Party.
5: The Tailgate Block Party.
6: 6 hours nonstop. Nonstop.
7: The best DJs from around the world.
5: The Tailgate Block Party.
6: Saturday night.
5: 8 p.m. Eastern.
7: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
6: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Sokudo.

गर्मी इतनी कि सड़कें सूनी पड़ने लगी हैं। सूखते गले को तर करने के लिए शरबत की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। जरूरी काम से निकले लोग लू के थपेड़ों के बीच कुछ पल राहत पा सके, इसके लिए कूलिंग सेंटर खुल गए हैं। ये यूपी का बांदा है जो इन दिनों सूरज की तपिश में जल रहा है। बांदा का तापमान बताएंगे तो आप भी पसीने से भीग जाएंगे। बांदा में कल अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बांदा ही नहीं, यूपी के तमाम शहरों पर सूरज इन दिनों अंगारे बरसा रहा है। प्रांत के 75 से 22 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। कई शहर गर्मी में बांदा से होड़ कर रहे हैं। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस और राय में 45.2, कानपुर शहर में 44 डिग्री, मेरठ में 43.6 और अलीगढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। भयंकर गर्मी को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ने सभी अस्पतालों को लू पीड़ितों के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी तड़पा रहा है। वाराणसी में भीड़ से भरे रहने वाले गंगा घाट सूने पड़ गए हैं। गर्मी भयंकर है तो आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए। जरूरी हो तभी घर से निकलें। जान है तो जहान है। आज तक ब्यूरो।

0: भीषण गर्मी से तपता हिंदुस्तान, उबलते शहर, लू से उत्तर भारत का बुरा हाल, यह है गर्मी का आपातकाल। अगले 7 दिन भीषण लू का अलर्ट, हे भगवान धरती बचाओ। पूरा हिंदुस्तान तप रहा है, उत्तर भारत में सबसे बुरा हाल है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। शहर शहर तंदूर लगा हुआ है, हर शहर का पारा 45 के पार चला गया है। रात को भी ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है। 19 मई मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। सफदरजंग और पालम में 45.1 डिग्री, लोधी रोड में 45.2 डिग्री और आया नगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ये तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली में गंभीर हीट वेव यानी कि लू चल रही है। रात में भी आराम नहीं है और मौसम विभाग डरा रहा है कि अभी तो इस गर्मी से दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं मिलने वाली।
1: अभी
0: दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में बुरा हाल है, भीषण गर्मी और लू चल रही है। पंजाब में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पटियाला में 45.3 डिग्री, बठिंडा एयरपोर्ट पर 45.9 डिग्री, लुधियाना में 44.2 डिग्री और अमृतसर व चंडीगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज हुआ। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। पिछले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश का भी यही हाल है, एमपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में पारा पहुंचा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक। भोपाल का बोट क्लब पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन भीषण गर्मी में यहां से भी पर्यटक गायब हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, दोपहर को तो ऐसा लगता है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। यहां भी मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
1: Bharat ki apni electric sawari Sokudo Akajay the number one Korean skincare brand now in India

पीएम मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के बीच डील की मिठास। इटली के साथ 2029 तक 20 अरब यूरो के व्यापार का विश्वास। राहुल गांधी का वार। देश में आर्थिक तूफान। पीएम बांट रहे हैं टॉफी, बना रहे हैं रील।

गिरवी रख दिया देश का आर्थिक सिस्टम, बीजेपी का चौतरफा वार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेता विपक्ष। नीट पेपर लीक में पुणे के मुख्य आरोपी के कोचिंग संस्थान पर चला बुलडोजर, एनटीए में सेंधमारी मॉड्यूल का अहम हिस्सा है मोटे गांवकर।

0: साथियों की लिस्ट, आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो।
3: Prime Minister Modi wrote us a gift.
4: Man.

0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे के आखिरी चरण में इटली के दौरे पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकीय स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर हो रही है। यह मुलाकात रिश्तों में एक और नई मिठास खोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी अच्छी ट्रॉफी लेकर आए हैं और वह है मेलोडी, और गिफ्ट के लिए थैंक यू। इस दौरान दोनों ने खुलकर हंसे भी। पीएम मोदी अपने 5 देश के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी से उनका स्वागत किया। शाम को रोम की खूबसूरती भी दिखाई। दोनों रोम की सड़कों पर एक ही कार में घूमे और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलिजियम का दौरा भी किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया और कई अहम मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की गई। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए लिखा कि वेलकम माई फ्रेंड। दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये दौरा कितना ज्यादा ऐतिहासिक के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वहीं पीएम मोदी के इटली दौरे पर
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भारत में बरसों से पूछा जाने वाले इस विज्ञापन के सवाल का जवाब अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर मिल गया है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: इटली के रोम से आई इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया।
1: वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: पीएम मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को कोई कीमती गहना या प्राचीन कलाकृति नहीं बल्कि भारत की मशहूर पार्ले मेलोनी टॉप

0: दोनों नेताओं के बीच की शानदार बॉन्डिंग और गर्म जोशी को जॉर्जिया मेलोनी ने भी सहर्ष स्वीकार किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भी इस खूबसूरत मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि रात के डिनर के बाद दोनों नेताओं ने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया और कई वैश्विक विषयों पर चर्चा की। लेकिन जहां एक तरफ इस मेलोडी डिप्लोमेसी की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस पर सियासी चुटकियां भी शुरू हो गई।
1: मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूँ।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट।
0: विपक्ष भले ही इसे मजाक का हिस्सा मान रहा हो, लेकिन राजनीति की जानकारी से पीएम मोदी का एक स्मार्ट कनेक्टिंग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीति के साथ साथ एक दोस्ताना मिठास भी खोल दी है। भारत इटली की ये दोस्ती दुनिया को एक नया स्वाद देती दिख रही है।
2: वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: आज तक ब्यूरो।
3: ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा इटली का दौरा है। हालांकि अगर बायलैटरल टॉक्स की बात करें तो ये पहला ऐसा दौरा होगा जहां पर इटली और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की सीधे तौर पर बातचीत होगी। कई द्विपक्षीय बातचीत यानी कई समझौते हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये मेलोडी, आप कह सकते हैं कि चॉकलेट ही बनी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर कई बार मीम्स बने, कई चर्चाएं रही, और अक्सर जब भी वो मिलते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाती है।
2: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Melt.
2: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Melt.
3: आपको दिखा रहे हैं खुद इटली की प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया और लिखा, थैंक यू माय फ्रेंड मोदी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनको मेलोडी चॉकलेट का गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कई बार जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि जब भी उनकी मुलाकात होती है तो अक्सर उनकी मुलाकात को लेकर चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी चर्चा के अंदर कई मीम्स सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किए जाते हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मिलोनी की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, कई समझौते भी होंगे, कई समझौतों का ऐलान भी किया जाएगा। और देखिए जब वो कल पहुंचे तब उनको वहां पर रोम की यानी इटली की राजधानी रोम के अंदर वो दिखाती हुई एक सड़कों पर उन्होंने उनको लेकर चली गई, एक ही गाड़ी में लेकर गई और उनके साथ उनको रोम की सुंदरता और उसके इतिहास के बारे में समझाती हुई, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद उनका डिनर भी हुआ जिसमें द्विपक्षीय बातचीत की अनौपचारिक बातचीत को लेकर कई मुद्दों को लेकर डिस्कस भी किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, देखिए वैसे तो हमेशा उनकी जो डिप्लोमेसी है, कभी कार्ड डिप्लोमेसी का जिक्र किया जाता है, कभी दूसरी डिप्लोमेसी का जिक्र किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और चैप्टर जुड़ गया जिसमें मेलोडी डिप्लोमेसी जुड़ गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
5: निश्चित रूप से ये न केवल महत्वपूर्ण है, मगर आप ये देखें कि ये आखिर मेलोडी की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल कनाडा के अंदर जब जून में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी तब उस समय सेल्फी लेते हुए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था हेलो टीम मेलोडी। तो इस मेलोडी की का जो है की अहमियत वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और इनफैक्ट इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उस समय जो मेलोडी कहा था तो भारत के संदर्भ में भी आप देखें तो लोगों को जैसे ही आप मेलोडी कहते हैं तो उससे एक ही जो शब्द है वो याद आता है और वो इस कैंडी के टर्म्स में है, और इसीलिए इस कैंडी को का उन्होंने इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने रेसिप्रोकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर केवल एक चॉकलेट के टर्म में जो है या किसी कैंडी के टर्म में मिठास की बात नहीं है। अगर हम ठोस आंकड़ों की बात करें, अगर हम इन ऑप्टिक्स से अलग हटके भारत और इटली की दोस्ती के अंदर क्या वाकई में कोई मिठास है इसके आकलन की कोशिश करें तो भी जवाब सकारात्मक में आता है। सुमित, इसलिए आता है क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण ट्रेड डेस्टिनेशन है। इटली यूरोप के अंदर चौथा सबसे बड़ा भारत का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और बीते दो सालों के दौरान भारत का जो निर्यात है इटली के लिए वो 19% बढ़ा है। साथ ही इटली से भारत में जो रेमिटेंस मनी आता है यानी भारतीय पेशेवर जो वहां से डॉलर या यूरो भेजते हैं उस रेमिटेंस मनी के अंदर भी 32% का इजाफा बीते दो सालों के दौरान हुआ है। तो ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फिगर है जो बताता है कि भारत और इटली के बीच की जो दोस्ती है ये केवल जो है इन तस्वीरों के अंदर या ऑप्टिक्स में नहीं है बल्कि ये वाकई में जमीन पर भी उतरती हुई नजर आ रही है, और इसी चीज को आगे बढ़ाने

0: के लिए कैसे भारत और इटली मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे इस दोनों की साझेदारी का जो फायदा है उसकी जो मिठास है वो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में पहुंचाई जा सकती है, इसकी भी कोशिश हो रही है।
1: बिल्कुल, और प्रणय एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम इटली की बात करते हैं मुझे याद है कि 2023 के बाद जब रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी अपने काउंटर पार्ट से इटली, तो नया डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बढ़ाया जा सके, और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हम करते हैं, देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के हिसाब से बढ़ेगी 40% तक, उसमें टैरिफ कम हो जाएगा, लगातार जो समय कम हो जाए, वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है खासतौर पर इस मुलाकात का।
0: निश्चित रूप से आपने दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया सुमित। अगर हम रक्षा साझेदारी की बात करें, आपको याद होगा हमने वो घटनाक्रम भी रिपोर्ट किया है जब भारत और इटली के संबंधों के अंदर इटालियन मरीन की घटना के कारण बेहद कड़वाहट थी,
1: इटालियन
0: मरीन से, और
1: आपका रुख करते रहेंगे पढ़े उपाध्याय, हमारे साथ बने रहिए लगातार इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर तमाम पहलुओं के बारे में जिक्र करते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में, अब पीएम मोदी के इटली दौरे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। मोदी ने कम पेट्रोल के इस्तेमाल की बात कही, उन्होंने कहा कि विदेश दौरे पर लेकर लेकिन खुद वो करीबन करोड़ों रुपए के प्लेन में इटली गए और टॉफी ले गए। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की किल्लत हो रही है और 20% तेल मार्केट से हट गया है। इसके अलावा मोदी जी मिलोनी को टॉफी खिलाकर रील बनवा रहे हैं, बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मोदी टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं का मजाक चल रहा है। अब हिंदुस्तान का मजदूर युवा किसान किसको बचा सकता है?
2: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
1: और देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल 19 मई 2026 को कल रात करीबन 11 बजे इटली में पहुंचे थे और उसके बाद ऐतिहासिक राजधानी रोम उन्होंने लगातार उसका दौरा किया, वहां पर इटली की प्रधानमंत्री के साथ वो घूमे। इस यात्रा की शुरुआत जितनी भव्य रही उतने ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी इसमें नजर आई। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कल रात से ही दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहे हैं। आपको ये तस्वीरें और ये वीडियोज भी हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार ये वीडियोस और ये पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
3: रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात बेहद खूबसूरत अंदाज में हुई। दोनों नेता रोम के एक शानदार टेरेस पर मिले, जहां दोनों ने सूर्यास्त के समय यानी गोल्डन आवर के मनमोहक दृश्य को देखा। इस दौरान मेलोनी उन्हें रोम के अहम इलाकों के बारे में बता रही थी और पीएम मोदी उत्सुकता से सवाल करते नजर आ रहे थे। दोनों की मुलाकात बेहद सहज अंदाज में हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पोस्ट किया। मोदी और मेलोनी की इस जोड़ी को 2023 के सितंबर में तब मेलोडी नाम दिया गया था जब मेलोनी G20 समिट के लिए भारत आई थी। दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये जोड़ी चर्चा का विषय बन गई। इस बार पीएम मोदी रोम पहुंचे तो दोनों नेताओं ने एक विशेष डिनर पर मुलाकात की, जहां भारत इटली सहयोग और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा हुई। डिनर के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम का दौरा करने पहुंचे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 70 से 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था, जिसका उपयोग ग्लैडिएटर की लड़ाइयों और सार्वजनिक तमाशों के लिए किया जाता था। दोनों एक साथ एक ही कार से निकले और सेल्फी इन कार वाला मोमेंट वायरल हो गया। रात की रोशनी में नहाए दुनिया के इस अजूबे यानी ऐतिहासिक कोलोसियम के सामने मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक मुस्कुराती हुई सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। वहीं आज सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रोम में उतरने के बाद डिनर में प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने और उसके बाद ऐतिहासिक कोलोसियम जाने का अवसर मिला। इससे पहले भारतीय समय के अनुसार कल रात करीब 11 बजे पीएम मोदी का विमान रोम में लैंड हुआ, जहां हवाई अड्डे पर उनका रेड कार्पेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया। इटली के डिप्टी पीएम और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। डिनर और कोलोशियम के दौरे के बाद जब पीएम मोदी देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अपने होटल पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। इतनी देर रात भी भारी संख्या में भारतीय प्रवासी उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से बात की, ऑटोग्राफ दिए और भारतीय समुदाय की ओर से पेश की गई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुति का आनंद लिया।

0: ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਫੋਟੋ ਇਧਰ ਮੂਰਤੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੂੰ।
1: ਮੁਝੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਐਸਾ ਲਗਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ।
2: ਮੋਦੀ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਲਈ ਉਸਕੋ ਥੈਂਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਕ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਮਮਤਾ ਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤਾਨਾ ਚੁਕੀ ਥੀ, ਵਹੀਂ ਸੇ ਮੁਕਤ ਮਿਲਾ।
3: पीएम मोदी को रोम पहुंचने पर एक पेंटिंग भेंट की गई। ये पेंटिंग उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के घाटों की है। ये पीएम मोदी की इटली की पहली स्टैंड अलोन यानी स्वतंत्र द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले मोदी 2024 में अपुलिया में हुए G7 शिखर सम्मेलन में इटली आए थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और डिफेंस के क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। इटली प्रधानमंत्री मोदी के इस महत्वपूर्ण विदेश दौरे का अंतिम पड़ाव है। उन्होंने 15 मई से शुरू हुई अपनी कूटनीतिक यात्रा में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा किया और अब इटली में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो आज रात भारत के लिए रवाना होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री मोदी की जब भी विदेश यात्रा होती है वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों के लिए लगातार लोग उस पर नजर बनाए रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अब अगले महीने भी एक महत्वपूर्ण बैठक या फिर एक महत्वपूर्ण यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दोनों की मुलाकात अगले महीने फ्रांस में हो सकती है। खबर यह आ रही है कि अगले महीने 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में G7 की बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। इसी G7 मीटिंग के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शिरकत कर रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता स्वीकार किया और फ्रांस गए तो माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात इस बैठक के दौरान हो सकती है। आपको बता दें कि 16 महीने बाद दोनों नेता आमने सामने होंगे। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे पर दोनों नेता मिले थे आखिरी बार। उसके बाद दोनों की कई बार फोन पर बातचीत हुई है लेकिन आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। इस बीच टैरिफ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर को लेकर कड़वाहट पैदा करने वाली हाल के घटनाक्रम के बाद यह पहली मुलाकात होगी। तो फोन पर करीबन 40 मिनट बातचीत आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुई थी। ऐसे में इस बार दोनों मिलेंगे तो क्या बात होगी, इस पर यह हमारी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं।
3: फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियन ले बैन 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन तक युद्ध और ऊर्जा संकट से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बीच आयोजित इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उस मुलाकात को लेकर बनेंगी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। अगर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है तो ये पिछले 16 महीनों में उनकी पहली इन पर्सन यानी आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों शीर्ष नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC स्थित व्हाइट हाउस में मिले थे। लेकिन 16 महीने की दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, भले ही फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा के बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ी द्विपक्षीय इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद फोन कॉल्स के जरिए लगातार होते रहे। साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रिकॉर्ड 8 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही कम से कम 3 से 4 बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल्स दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के तुरंत बाद सहयोग बढ़ाने और मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद सुरक्षा, व्यापार और इमिग्रेशन पर सकारात्मक चर्चा हुई। 2025 में पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने संवेदना जताने के लिए फोन किया, लेकिन सीजफायर का श्रेय लेने वाले उनके बयानों ने बेवजह की कड़वाहट पैदा की। हालांकि हालिया हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात पर चिंता जताई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप का रुख बेहद दोस्ताना और व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी भरा रहा। अगर दोनों नेता फ्रांस में मिले तो इसी गर्मजोशी को बहाल करने और टैरिफ के अलावा मध्य पूर्व संकट पर बात हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
4: ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान और अफगानिस्तान पर प्रभाव डालने के लिए, उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए पाकिस्तान को अपनी तरफ करना चाहते हैं, यहां तक कि चीन को संतुलित करने के लिए भी, लेकिन दुनिया में शांति संतुलन के लिए या शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार भारत और अमेरिका की ये जो आप जो कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो कितने ज्यादा मजबूत, और आखिरकार भारत की जरूरत अमेरिका को क्यों क्यों और कहां कहां पढ़ सकते हैं आप, अमेरिका के लिए भारत क्यों जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें, चीन को संतुलित करने के लिए क्वाड और कॉम्पैक्ट, यानी ये दो बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि बिंदु है, जिसमें क्वाड और कॉम्पैक्ट जैसे आप कह सकते हैं दो संगठन है जिनके अंदर भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। अब ट्रस्ट जैसी पहल से तकनीकी क्षेत्र में चीन पर निर्भरता खत्म, यानी चीन और ताइवान को लेकर तकनीक को लेकर निर्भरता खत्म करने के लिए भी ट्रस्ट जैसी एक पहल भारत और अमेरिका के बीच में है। तीसरी बड़ी बात क्या है ये आपको दिखाएं, मिशन 500 के तहत द्विपक्षीय व्यापार पर 500 अरब खर्च करने का लक्ष्य है 2030 तक के अंदर। ये बताया जाता है कि ये पैक्ट है, यानी ये रकम है जिसको अरब डॉलर की, 500 अरब डॉलर की, जिसका लक्ष्य भारत और अमेरिका ने रखा है। इसके बाद अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन अभी ये टैरिफ पहले के मुकाबले ज्यादा, लेकिन ये जरूर है कि भारत और अमेरिका के लिए जो ट्रस्ट फैक्टर था, डेफिसिट था, वो धीरे धीरे जरूर कम करने की कोशिश की जा रही है और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। रूस से तेल खरीदने के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा पर साझा तालमेल दोनों के बीच में बरकरार है। देखिए कई महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ सके कि अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों इस इलाके में सबसे ज्यादा है। अब पांचवी अगर बात करें, दो लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरी रणनीतिक व्यवहारिक निर्भरता, यानी आप डिपेंडेंसी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं वहां पर जो भारतीय मौजूद हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक देशों के बीच में जो समन्वय बनता है उसमें अमेरिका और भारत की मौजूदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब हम आपको ये तमाम चीजें बता रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका के लिए भारत इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। भारत, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिप्लोमेटिक चीजों को बदला हो, लेकिन अब भी भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में अगले महीने जब ये मीटिंग होगी तब कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो खटास या जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। चलिए रणभूमि में अब इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
9: So they were disallowed from speaking their language.
8: In-depth conversations with A-list celebrities.
10: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
8: True crime podcasts you just can't stop listening to.
11: Others escape justice to live and die in infamy. These
8: plus the news and sports content you crave in podcast form.
12: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
8: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
13: Sokudo.

0: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

गहलोत की डिप्लोमेसी के बीच डील की मिठास, इटली के साथ 2029 तक 20 अरब यूरो के व्यापार का विश्वास, राहुल गांधी कबार, देश में आर्थिक तूफान, पीएम बांट रहे हैं टॉफी, बना रहे हैं रील।

देश का आर्थिक सिस्टम, बीजेपी का चौतरफा वार का, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। नीट पेपर लीक पर पुणे के मुख्य आरोपी के कोचिंग संस्थान पर चला बुलडोजर, एनटीए में सेंधमारी मॉड्यूल का अहम हिस्सा है मोटे गावनकर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद भारत।
2: आपका एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में ट्रंप ने उनकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों पर पूरी जानकारी ली। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास डील के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब दोबारा हमले को लेकर फैसला शुक्रवार या शनिवार या अगले हफ्ते तक हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान के साथ जारी युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौता करने के लिए बेताब है और जल्द तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जाएगी।
3: And now we're blowing it away. We're blowing everything away and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
2: देखिए, राष्ट्रपति के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कह दिया है कि अमेरिका के पास दो विकल्प हैं। अगर ईरान समझौता कर लेता है तो ठीक है, वरना अमेरिका के पास हमले का रास्ता भी खुला है।
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
2: देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति एक बार फिर से हमलों की बात कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस ने ही डोनाल्ड ट्रंप के इन बड़े बोलपन को या फिर उनके युद्ध में हुए नुकसान की पोल खोल दी है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका को अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि खुद अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद या कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका को अरबों डॉलर की कीमत वाले लड़ाकू विमानों का नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के बेहद महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन करीब 42 विमान खाक हो गए, यानी 42 विमान लगातार या तो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए या उनको भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक और चर्चित F-35 विमान लड़ाकू विमान को मार गिराने का पहले दावा किया था, अब अमेरिकी कांग्रेस ने उसे नुकसान पहुंचने का दावे को स्वीकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिकी कांग्रेस के कबूलनामे के बाद बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो इससे ज्यादा कई बड़े चौंकाने वाले कदम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की सेना ऐसी पहली सेना है जिसने F-35 को मार गिराया। अमेरिकी समिति के सामने पेश हुए पेंटागन के महालेखाकार ने बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में हुआ खर्च बढ़कर $29 बिलियन तक पहुंच चुका है। अधिकतर खर्च मरम्मत और हथियारों की बदलने को लेकर ही किया गया है। आपने इन दावों को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार कौन कौन से विमान हैं जो करीबन 40 दिनों के युद्ध के दौरान, संघर्ष के दौरान बर्बाद हो गए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स के बारे में, यानी 24 MQ-9 रिपर ड्रोन्स बर्बाद कर दिए गए, मार गिराए गए। अभी हाल ही में हूतियों ने भी एक बार फिर दावा किया था कि उन्होंने एक और MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका का मार गिराया। अब यह संख्या अमेरिकी कांग्रेस में बताया गया है करीबन 24 थी। अब चार F-15E स्ट्राइक ईगल्स को भी, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने का दावा खुद अमेरिकी कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया है कि ये बर्बाद हो गए, नष्ट हुए और डैमेज हुए। ये दोनों का आंकड़ा हम बता रहे हैं, 34 के करीबन बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद दो KC-135 जो टैंकर से रिफ्यूलर्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, और ये आप देखिए कि करीबन ये 34 विमानों में हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इसके बाद करीबन 8 विमान ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान। अब तो MC-130J यानी जो कमांडो को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर विमान होता है, एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी नुकसान पहुंचा, ये भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए। यानी ट्रांसपोर्टर विमान को भी कैसा नुकसान पहुंचा, MC-130J यानी ट्रांसपोर्टर हैवी लिफ्ट ये ट्रांसपोर्टर विमान। अब A-110 थंडरबोल्ट को भी नुकसान पहुंचा है, इसकी संख्या एक है। यानी आप मानिए कि एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट नुकसान पहुंचे। MQ-4C टाइटन, यानी आपको याद होगा कि ये नेवल वर्जन था जिसके समुद्र में गिरने की बात की गई थी, इसको भी ये भी नष्ट कर दिया गया है। और ये खुद अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया है कि ये नुकसान अमेरिका को हुआ है। अब KC-135 आपको बता रहे थे रिफ्यूलर्स की हम बात कर रहे हैं, वो पांच आपके और जो है आप इनको भी टैंकर्स को नुकसान पहुंचा। और अब हम आपको आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं आप समझिए कि क्षतिग्रस्त होने वाले आठ विमान कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा जिसने साख पर नुकसान पहुंचा है वो है ये F-35A एयरक्राफ्ट। आप कह सकते हैं कि ये इस समय अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। दुनिया में अब तक किसी ने दावा नहीं किया कि उसने ऐसा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया, लेकिन अमेरिकी संसद ने खुद माना है क्या नुकसान पहुंचा। अब E-3 सेंट्री अवॉक सिस्टम यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भी नुकसान पहुंचा, उसको भी नष्ट किया या फिर आप उसको कह सकते हैं उसको डैमेज हुआ है। अब इसके अलावा HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर, यानी ये एक आप कह सकते हैं ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो लगातार ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स के तौर पर या फिर इनको कॉम्बैट रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नष्ट हुए हैं। अब हम आपको वो आंकड़े बता रहे हैं जो करीबन आठ विमान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं यानी जिनको नुकसान पहुंचा है, इनके डैमेज को लेकर भी अमेरिकी संसद में इसका बयान जारी किया गया। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की नौसेना ने नाकेबंदी शुरू होने में से अब तक अमेरिकी सेना ने करीबन 89 मालवाहक जहाजों को लौटा दिया है, ये उनका रास्ता बदल दिया गया है। ईरान के खिलाफ जारी सैन्य रणनीति के तहत अमेरिकी सेना समुद्री मार्गों पर सख्त निगरानी कर रही है जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर जहाजों का रूट बदला गया। इतनी बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों के मार्ग में बदलाव किए जाने से ग्लोबल सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। अमेरिकी मीडिया की पुष्टि की है कि ईरान की घेराबंदी के बाद से ही अमेरिकी सेना और समुद्री सुरक्षा और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अब तक 89 कमर्शियल जहाजों को रास्ता डाइवर्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर नाटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने के लिए नाटो से लगातार मदद की उम्मीद करते आए हैं और लगातार कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में या फिर अपनी नीतियों में बदलाव करेगा। आप खुद नाटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं आने वाली 7 और 8 जुलाई को तुर्की के अंदर खासतौर पर अंकारा के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और आपको बता दें कि सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। तुर्की दूसरी बार इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, इससे पहले ये मीटिंग बहुत जल्दी हो रही थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये 7 और 8 जुलाई को होगी, यानी नेटो देशों ने कुछ और वक्त ले लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति की उस मांग को या फिर वो जो लगातार वो शर्त रख रहे थे उनको एक बार फिर से आगे पोस्टपोन कर दिया गया। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी पर कैसे नेटो देश अमेरिका की मदद कर सकते हैं।

0: और देखिए अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान ने महिलाओं को जहां AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी, यहां तक कि उनके मीडिया हाउसेस के अंदर, उनके चैनल्स के अंदर भी ये ट्रेनिंग दिखाई गई। वहीं अब युवाओं को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फाइटर फायर करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ईरान में युवाओं को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करने की अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई है एक खाली तस्वीरें, जिन तस्वीरों के अंदर जो वहां के लोग हैं, वो जो ऐसे ग्रुप्स हैं, उनको इनके फायर करने का मिसाइल, यानी जो शोल्डर लॉन्चर्स हैं, इनके इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में से एक वॉलंटियर्स आंखों पर अपनी पट्टी बांधता है, और खास तौर पे पट्टी की जगह उसको आप कह सकते हैं कि जो उनको नाइट विजन गॉगल्स हैं उनको दिए जाते हैं, ताकि रात के अंधेरे में भी इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, ये वो कर सके। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आप कह सकते हैं को थामे हुए आपको लोग नजर आ जाएंगे। इनको लगातार इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो जाए तो फिर कैसे हथियारों के इस्तेमाल के लिए आम लोगों को तैयार किया जा सके। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि इससे पहले AK-47 की ऐसी तस्वीर आई थी कि राइफल को लिए हुए आम लोगों को, खासतौर पे महिलाओं को, टीवी स्क्रीन के ऊपर भी जो आप कह सकते हैं प्रेजेंटर्स से, वो लगातार समझा रहे थे कि कैसे इसको हैंडल करना, आप जो मैन पावर से या फिर आप कह सकते हैं जो लॉन्चर्स है, जो शोल्डर लॉन्चर्स है, उसके इस्तेमाल की तैयारियां की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल को आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, और दिन ही नहीं रात में भी जो इसके नाइट विजन गॉगल्स हैं उसके इस्तेमाल से आपको इसको कैसे हैंडल करना है। और एक और बड़ी खबर, मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के कमांडर एडमिरल कूपर की अमेरिकी संसदीय समिति के सामने जमकर खिंचाई हुई है। ब्रैड कूपर के डेमोक्रेट सांसद सेंट मॉल्टेन के सामने पेश किए गए। सेंट मॉल्टेन ने कहा कि ईरान को लेकर दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान को बेहद कमजोर कर दिया गया है, फिर यह कहा जा रहा है कि उसे नष्ट कर दिया गया है। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? अगर ईरान बेहद कमजोर हो गया या फिर नष्ट हो गया, तो फिर हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया? और इसके बाद ये भी सवाल किया गया कि एडमिरल ब्रैड कूपर ने के पास कोई जवाब नहीं था। ईरान के खिलाफ बेहद मुश्किल जंग के बाद देखिए कैसे संसदीय समिति के सामने एडमिरल कूपर की बोलती बंद हो गई। लगातार उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार आपने ईरान को क्या नुकसान पहुंचाया है, तो फिर उनका जवाब सुनिए।
1: एडमिरल कूपर, यू कीप यूजिंग द टर्म significantly degraded. Last summer, we were told that Iran's nuclear weapons program was obliterated. Can you clarify the distinction between obliterated and significantly degraded?
2: Congressman, again, I think appropriate to talk about anything regarding the Iranian nuclear program.
1: No, I'm not asking you to talk about the Iran nuclear program. I'm asking you to talk about English language. What's the difference between obliterated and significantly degraded? Are they the same? Well, President Trump's own national security strategy, which he signed in December, 5 months ago, used the exact same phrase, significantly degraded. So if this was true back then, 5 months ago, then why did we start this war? Was he lying to us then?
0: देखिए सबसे खास बात यह है कि अमेरिका बार बार ये कहता है कि उसने ईरान को पीछे धकेल दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी संसद द्वारा या फिर उनकी समितियों द्वारा ही ये पूछा जा रहा है उनके कमांडर से कि आखिरकार जब पहले ही कर दिया गया था, तो फिर दोबारा से जंग को शुरुआत करने की आपने ये कोशिश की। चलिए, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चीन के दौरे पर है। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, और इसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों नेताओं के बीच ईरान यूक्रेन युद्ध समेत व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। पुतिन का ये दौरा दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद ये दौरा हुआ है। और आपको बता दें कि इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ये यात्रा रूस चीन के बीच सद्भावना, मैत्री और सहयोग के संधि की 25वीं वर्षगांठ के तौर पर की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने शानदार स्वागत के लिए शी जिनपिंग का आभार भी जताया, और कहा कि रूस चीन के संबंध आज अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं और लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने आज की बातचीत को बेहद दोस्ताना, गर्मजोशी और रचनात्मक बताया। इसके बाद पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस और चीन वैश्विक मंच पर एक स्थिरता लाने वाली भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देश एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दोनों देश ने साझा बयान में कहा कि चीन और रूस हर तरह से एकतरफा दादागिरी और इतिहास को पीछे धकेलने वाले कदमों को मिलाकर विरोध करना चाहते हैं, और आर्थिक मोर्चों पर सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग पूरा व्यापार अब रूबल और युआन में सेटल किया जाएगा, यानी अपने लिए दोनों देशों ने आप कह सकते हैं कि अपने व्यापार, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अपने सप्लाई चेन के साथ साथ अपने डिप्लोमेसी को लेकर भी बड़े संकेत दिए। चले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जमीत उल उलेमा के हिंद के नेता फजल रहमान ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। दरअसल फजल रहमान ने कबूल किया है कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को अपनी जमीन दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही जमीन पर तालिबान को ट्रेनिंग कैंप चलाने की मदद भी कर रहा है। यानी आप मानिए कि कैसे पाकिस्तान का दोहरा रवैया एक बार फिर से सार्वजनिक हो गया। और आपसे इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर भी कैसे पाकिस्तान एक तरफ मध्यस्थता की बात करता है ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों में, और वहीं दूसरी तरफ सऊदी को अपने सैनिक, अपने हथियार, साजो सामान मुहैया भी कराता है।
3: हमें तलाश थी इस बात की अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत वजूद में आए कि जो प्रो पाकिस्तान है। अब अगर हम शिकायत करते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी से, फिर हम तालिबान को, वहाँ के अफगान तालिबान को अपना प्रो पाकिस्तानी समझते हैं, फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं, फिर जब उनकी हुकूमत आती है तो हम उनको तस्लीम भी करते हैं और बतौर सफीर भी उनको जगह देते हैं, और फिर जब 9/11 होता है तो हम अमरीका के इत्तेहादी बनकर उस पर हमलावर भी होते हैं, पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे भी देते हैं, फजाएँ भी देते हैं, वहाँ बम्बारमेंट भी होती है, और दूसरी तरफ हम गिलाफ के नीचे पाकिस्तान में उनको जगह भी देते हैं।
0: दरअसल पाकिस्तान का कोई दोहरा चरित्र नहीं है, पाकिस्तान का एक ही चरित्र है, वो है आतंकवाद। और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के अंदर से एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे पाकिस्तान पूरे इलाके में यानी अपने पूरे देश के अंदर आतंकवाद को पालता पोसता। आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे के साथ दिखे हैं पीएम के सलाहकार राणा सनाउल्ला। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और वैश्विक आतंकवादी संगठन के बीच का सांठगांठ अब बंद कमरों से निकलकर सरेआम मंचों पर दिखाई देने लगी। हाल ही में पाकिस्तान के फैसलाबाद में आयोजित एक बड़े सम्मेलन की तस्वीर और रिपोर्ट सामने आने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी और सहयोगी रहे उनके राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्ला को लश्करे तौयबा से जुड़े आतंकवादियों के साथ एक ही मंच पर बैठे हुए मंच साझा करते हुए देखा गया। राणा सनाउल्ला ने ठीक 7 संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। तलहा सईद खुद भी लश्कर के आतंकी नेटवर्क का एक मुख्य चेहरा देखा जाता है और लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त भी रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो भारत से। भारत के रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी कामयाबी सामने आई। निजी क्षेत्र की प्रमुख सुरक्षा कंपनी नीवे लिमिटेड ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डीआरडीओ की तरफ से साझा की गई, और ये बताया गया कि ये परीक्षण भारतीय सेना की ओर से कंपनी को दिए गए खरीद ऑर्डर के तहत किया गया। इस रॉकेट की कुछ खास बातें आपको बता दें कि इसमें 300 किलो तक सटीक मार करने की क्षमता है, किलोमीटर माफ कीजिएगा 300 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता है, और परीक्षण के दौरान सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले वेरिएंट का सफल फायरिंग प्रदर्शन भी किया गया। इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी रॉकेट मिलने से भारतीय सेना की मारक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक पहल और ज्यादा मजबूत होगी। इसका निशाना अचूक है, केवल 1.5 से 2 मीटर तक का अंतर होता है, और इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता रही। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चलिए आपको ब्रेक पे ले जाएं, उससे पहले आपको सीधे इटली लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए आपको वहां दिखाते।
4: दोनों देशों में
5: visibile, sono visibili i segnali del rapporto dei rapporti fra i nostri due popoli.
6: Media che sathiyo namaskar. Buongiorno. Mere aur mere delegation ke bhavya swagat ke liye main Prime Minister मेलानिया हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया ईयू एफटीए के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खानपान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की जीवंत कड़ी है। उनकी देखरेख के लिए प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और इटली के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 3 साल पहले किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ी है। हम यह विन विन सहयोग जारी रखेंगे। एक्सलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
4: जिस तरह से ज्वाइंट स्टेटमेंट

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल जोशी। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी इटली में बात कर रहे थे और इटली और भारत के साझा धरोहर की भी बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद के असर से भारत भी अछूता नहीं बचा है। एक के बाद एक हर नए दिन के साथ चीजें महंगी होती जा रही है और इन्हीं सबके बीच प्रधानमंत्री के इटली दौरे से आई एक तस्वीर से देश में सियासी बवंडर आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो इटली की पीएम मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारतीय टॉफी तोहफे में दे दी, जिस पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए इस देश के साथ भद्दा मजाक बता दिया। विपक्ष का कहना है कि जब भारत में महंगाई आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में टॉफी बांटना क्या हास्यास्पद नहीं है। हालांकि यहां समझने की जरूरत है कि कई बार चीजें विदेशी कूटनीति का भी हिस्सा होती है। वैसे सियासत में विपक्ष को मुद्दे की तलाश होती है, जिसे कांग्रेस ने बखूबी तैयार कर लिया है, जिसे कुंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अब खुद सामने आ गए हैं। और तो और, इंडिया गठबंधन के भीतर भी इस पर अलग अलग बयान सामने आना शुरू हो चुका है। आज दंगल में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बहस करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की मेलोडी नीति के बढ़ते महंगाई के दौर में सही है या विपक्ष का सवाल जायज है। लेकिन पहले पूरी खबर के लिए यह रिपोर्ट देखिए।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
4: अपने इटली दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान प्रधानमंत्री मेलोनी को भारत से लेकर गई टॉफी का मीठा तोहफा दिया, तो हिंदुस्तान में इस पर राजनीति का कड़वा स्वाद चढ़ते देर नहीं लगी। भारत में कांग्रेस ने इस तस्वीर को अपना हथियार बनाया। राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री पर धावा बोल दिया, हवाला दिया महंगाई का और मोदी की मेलोडी को सियासत का मुद्दा बना दिया।
5: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
4: 5 दिन के अंदर देश में 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। ऊपर से इटली से आई इन तस्वीरों पर सियासी हंगामा और बढ़ गया। राहुल के वार को प्रभावहीन करने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सामने आए।
6: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं।
4: तेल के साथ साथ अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में इजाफा किया, तो अब मुंबई में ब्रेड की कीमत में 5 रुपए प्रति पैकेट बढ़ोतरी हुई है। और तो और, मायानगरी में आम लोगों का खाना वड़ा पाव भी महंगा हो गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में तेल और सीएनजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुरुवार से कमर्शियल गाड़ियों ने 23 मई तक हड़ताल का ऐलान किया है।
7: ईरान अमेरिका के वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों की बढ़ोतरी, अब उसका असर भारत में तेल की कीमतों पर पड़ रहा और निश्चित रूप से आम आदमी की जेब पर एक तरह से जोड़ का झटका जोर से ही लग रहा है।
8: इस तरह से गैस सिलेंडर, जो कमर्शियल गैस मिल रहा है, उसका भाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, 1,000 से 3,000 हो गया। उसकी वजह से वड़ा पाव की इन दुकानों पर अब जो वड़ा पाव मिल रहा है वो तकरीबन 5 रुपए बढ़ा दिया गया है।
4: पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद के हालातों के असर से अब भारत भी अछूता नहीं रहा। हालांकि बाकी देशों की तुलना में यहाँ तेल गैस की कीमत में बाद में और कम इजाफा हुआ, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को गंवाना नहीं चाहता है।
9: अभी डीजल पेट्रोल और महंगा होगा और डॉलर 100 रुपए से ऊपर जाएगा। जब 100 रुपए ऊपर जाएगा तो सोचना आपका मोबाइल कितना महंगा होगा, बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा आपको, आपकी हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी।
4: मोदी के विरोध में विपक्ष की एकजुटता भी सवालों के घेरे में। राहुल पीएम के विरोध का सुर अलापते हैं, वहीं शरद पवार ने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री का सम्मान जरूरी है।
10: नरेंद्र मोदी जिसे तो प्रधानमंत्री आज भारत का सब है देशा 25

0: justicia. Dice राज्य मंत्री
1: हालांकि कुछ आंकड़े जरूर हैं जो परेशान करने वाले हैं, जैसे जनवरी 2026 में महंगाई दर 2.73% थी जो अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% हुई। जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 711 अरब डॉलर था जो आज की तारीख में घटकर 696 अरब डॉलर हो गया। उसी तरह 2 फरवरी 2026 में एक डॉलर की कीमत 91.64 रुपए थी जो 20 मई में 96.84 रुपए हो गई। सवाल बड़े हैं जिनकी जवाबदेही सरकार की है, सवाल पूछना भी विपक्ष का हक है, लेकिन साथ ही साथ उन हालातों को भी समझना जरूरी है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: तो अब मेलोडी पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि महंगाई पर सरकार काबू पाने में नाकाम रही है। सरकार का ये कहना है कि जो विदेशों में चीजें हो रही है, खास करके खाड़ी युद्ध के वजह से महंगाई दर बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इससे निपटने के लिए तैयार है। क्या सचमुच में सरकार तैयार है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मेलोडी राजनीति पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मेरे सहयोगी सिद्धार्थ जरावी बिजनेस टुडे के एडिटर वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, युद्ध के कारण दरअसल जो महंगाई दिख रही है, क्या वो सरकार की विफलता का नतीजा है या विपक्ष का जो आरोप है क्या वो सही है? दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक दल महंगाई को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं? फिर राजनीतिक दल कोई भी हो, जो भी विपक्ष में महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन क्या सचमुच में उनके पास कोई दीर्घकालिक समाधान भी मौजूद है या नहीं? और तीसरा अहम सवाल, अब तक सिर्फ बचत की अपील की गई है, अब बचत की अपील से क्या हासिल होगा? क्या महंगाई पर काबू पाने में कोई ठोस उपाय भी करने होंगे? यह भी एक सवाल अहम रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस पैनल में राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं वो इस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता को तो उससे मतलब है आज की स्थिति में। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आज आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा मुझे समझना है कि ये जो मेलेडी है वो आपको इतनी खट्टी क्यों लग रही है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई जब विदेशों में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री है या प्रमुख है उनसे बात करते हैं, तो इस तरीके से कूटनीतिक बातों में इस तरीके की हल्की हल्की चीजें होती भी रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सब चीज में खट्टी चीज नजर आ रही है।
3: साहिल भाई, आप तो जिम्मेवार पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं, आप एक चीज देखिए, मेलोडी हमको भी मीठी लगती अगर हमारे यहाँ पर महंगाई चरम पर ना होती, मेलोडी हमको भी मीठी लगती अगर हमारे सामने आर्थिक तूफान हमारे सर पर नहीं होता, युवा डिप्रेशन में नहीं होता, नीट का पेपर कैंसिल या लीक नहीं हुआ होता, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े होते, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े होते, कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा नहीं होता, दूध ब्रेड और बड़ा पाव के दाम नहीं बढ़े होते, ट्रांसपोर्टर अगर हड़ताल पर नहीं होते, तो हमें मेलोडी मीठी लगती। हमें मेलोडी तब भी मीठी लगती, मैं आपको बताऊं, वो मेलोनी साहिबा को देते, अगर दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में, पहले जहां हमारी 10-10 कंपनियां बड़ी क्या नाम दुनिया की कंपनियों में वो होती थी, आज वो भी हमारे सामने नहीं है कि एक भी कंपनी दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में हमारी कंपनी नहीं है। इसलिए हमें मेलोडी कड़वी भी लग रही है, मेलोडी जो है खट्टी भी लग रही है। आज की डेट में आप भ्रष्टाचारी आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव देखिए, आपके सामने है कि क्या नाम कृषि औद्योगिक उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, भारत का शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, बैंक नीचे जा रहे हैं, बीमा नीचे जा रहा है, मार्केटिंग नीचे जा रही है, मैनेजमेंट नीचे जा रही है, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, एमएसएमई और एफएमसीजी सारी कंपनियों के जो शेयर है वो सारी की सारी चीजें जब अगर नीचे जाएंगी तो मेलोडी हमें तो कड़वी लगेगी। नरेंद्र मोदी जी को मेलोडी इसलिए मीठी लग सकती है कि नरेंद्र मोदी जी अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों के साथ में कभी नॉर्वे में जाते हैं तो वहां पर क्या नाम लोग कहते हैं कि उनको पेंशन फंड से रिलीफ दिलाने के लिए जाते हैं, कभी जो है यूएस ट्रेड डील होती है तो यह बताया जाता है कि साहब अडानी के केस वापस लेने के लिए अपमानजनक यूएस ट्रेड डील की गई है। तो मेलोडी, अगर मेलोडी आपको मीठी लगे या भाजपा को मीठी लगे, देश के प्रतिपक्ष को और देश की जनता को तो मेलोडी इस वक्त कड़वी लग रही है। जी,
2: नहीं, मुद्दा यहाँ पर अलग है। हालांकि सिद्धार्थ यादव इसका जवाब देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर तरीके से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए हुए हैं जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर रहता है क्योंकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो भी मैं देख रहा था उनका

0: ये कहना है कि जब भारत में महंगाई की मार झेली जा रही है, ऐसे समय पे प्रधानमंत्री रील बना रहे मेलोडी बांटते हुए, सिद्धार्थ यादव, नेता विपक्ष इस तरीके से गंभीर आरोप एक तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा वो ट्वीट भी दिखा दीजिएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं, किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव,
1: देखिए साहिल जी, राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के सभी नेताओं के मन में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि मेलोडी क्या, कोई भी मीठी से मीठी चीज आप उनको खिलाएंगे उनको मीठी लग नहीं सकती। शायद हार की निराशा है, जनता का बार बार नकारा जाना है, मन की कड़वाहट है जो इस प्रकार की बातें आज निकल करके आ रही है। पर मैं चूंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं आपके दर्शकों को एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है, इन्फ्लेशन और हमारी विदेश की कूटनीति, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। पहले इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, जहां पूरी दुनिया के अंदर 50% 60% 70% 80% प्राइसेस को बढ़ा दिया गया हो, वहां भारत जितना रिस्ट्रेन कर पा रहा है, जितना कंज्यूमर को बचा पा रहा है, देश के लोगों तक बर्डन को पास ऑन नहीं कर पा रहा है, 3% 4% हमने बढ़ाया हो, वो भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। जहां पूरी दुनिया और खासकर इनके समय में यूपीए वाले तो अच्छे से जानते हैं, जहां 14-15% इन्फ्लेशन हमारे देश में हो, अंदर कुछ साल पहले 11% चला गया था, 4% से कम इन्फ्लेशन को मेंटेन कर रहा है, यह भारत की आर्थिक नीति की सच्चाई है। अब इसको राहुल गांधी झुटलाना चाहे, नहीं देखना चाहे, अपने समय को भूल जाना चाहे, भारत की कमजोर स्थिति को एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाना चाहे, उससे नहीं होता है। आज $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, तो यह भारत की ताकत है। यह यूपीए समय का नहीं है, जहां 300 को भी क्रॉस नहीं कर, पेट्रोलियम रिजर्व नहीं था। तो यह हुई पहली बात। रही दूसरी बात, अब आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, भारत कोई रिश्ते ना बनाए, भारत कोई जाकर के संबंध ना बनाए, भारत को हम इटली के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, हम इटली के साथ हमारी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम इटली के साथ 20 बिलियन यूरो के ट्रेड को ले जाने की बात कर रहे हैं, आज वो 14 बिलियन यूरो पर है। ये बड़ी चीजें हैं देश के लिए। राहुल गांधी की इच्छा क्या है, मुझे तो कुछ आता नहीं, कोई और कुछ करे नहीं, इस नीति के साथ देश को नहीं चला सकते आप। आपको कूटनीति में भी आगे जाना पड़ेगा, आपको
0: सुरेंद्र राजपूत बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है, आप दोनों चीजें संबंध भी बनाने पड़ेंगे, आप दोनों चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ विदेश नीति है, किसी एक राष्ट्र प्रमुख से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और उन्हें कोई गिफ्ट किया जाता है, उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री उसका रील डालती है सोशल मीडिया पर और उसको लेकर भारत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए ये तो रील बनाने के लिए वहां पर गए थे। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे रिश्ते हमको मजबूत करने हैं। मुद्दा महंगाई का है,
2: दो
0: क्या महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए इस तरीके की मेलेडी का सामना कर का सहारा लेना जरूरी है।
2: दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, जिस समय देश में आपात स्थिति हो, जैसा प्रधानमंत्री, और यह आपात स्थिति प्रधानमंत्री स्वयं की पैदा की हुई हो, देश इस वक्त बड़ी मजबूती में हो सकता था, देश की आर्थिक विदेश नीति का भी और अर्थनीति का भी नाश मार दिया हो जिस शख्स ने, और जो शख्स बंगाल के इलेक्शन से पहले कह रहा हो कि देश में कोई कमी नहीं है और बंगाल के इलेक्शन के बाद यह कहे कि देश में तो कमी ही कमी है, पेट्रोल भी संयम से खर्च करो, और पेट्रोल संयम से खर्च करने के जब भाषण दे रहा हो तो उस वक्त दो दो रोड शो कर रहा हो और 100-100 प्राइवेट एयरक्राफ्ट के साथ जाकर के बंगाल के स्वेरिंग इन में शामिल हो रहा हो और 100-100 एयरक्राफ्ट से जाकर के बंगाल क्या नाम आसाम की स्वेरिंग इन में शामिल हो रहा हो, ऐसे शख्स के लिए आप क्या कह सकते हैं? ऐसे शख्स के लिए तो आप यही कहेंगे ना कि पर उपदेश कुशल बहुदेर है, या इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। किरदार के गाजी ने जिसने स्वयं कहा कि आप विदेश मत जाइए, तो ये मीटिंगें जितनी मीटिंगें 5 राष्ट्रों में हुई हैं क्या नाम साहिल भाई, ये क्या जूम से नहीं हो सकती थी? जैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था मीटिंग वर्क फ्रॉम होम करिए, जूम से करिए, जैसे कोरोना काल में मीटिंगें होती थी। और इसके बाद अगर आपकी मीटिंग ज्यादा जरूरी थी तो आप मुझे ये बता दीजिए इन देशों की यात्रा से
0: आप सब कुछ सुरेंद्र जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके वजह से विदेश के दौरे नहीं करने चाहिए प्रधानमंत्री को किसी भी देश के? अब ब्रिक्स का समिट होगा, अब ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है, ये सारी चीजें तो होती रहती है ना, ये कैसे रोका जाएगा? कोविड का काल तो नहीं है ना कि आप पूरी तरीके से बंद हो जाए।
2: नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, एकदम सहमत हूं।
0: मतलब लेकिन मतलब आपको तो याद होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि एक ही समय का खाना खाना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि हमें बचत करनी चाहिए, तब भी तो विदेश दौरे किए थे, दोनों चीजें अलग है। यही तो बड़ी दिलचस्प बात है ना कांग्रेस पार्टी की भी।
2: मैं दोनों चीजें बताता हूं सर, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। बहुत बढ़िया बात कही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब कहा था कि एक समय खाना खाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं एक समय का खाना छोड़ा था, नंबर एक। नंबर दो, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि कोरिया युद्ध की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर और महंगाई पर फर्क पड़ेगा, तब ये जो बहुत ज्ञानवान प्रधानमंत्री और ज्ञानवान भारतीय जनता पार्टी, ये कह रही थी कि बताइए कोरिया युद्ध से हिंदुस्तान का क्या मतलब है। ये देश को जो भ्रमित करने की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, इससे हम बचने की बात करते हैं, बचने की सलाह देते। प्रधानमंत्री ने जो सलाह
0: मुझे समझ में आ रहा है, अगर
2: लोग सुनिए ना सर,
0: कांग्रेस पार्टी जैसे को तैसा करने की कोशिश कर रही है, और उसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक उदाहरण सुरेंद्र राजपूत ने यहां पर रखा हुआ है कि कोरिया के युद्ध के समय पे प्रधानमंत्री ये कहते थे, तब वो विपक्ष में थे, कि देखिए कोरिया युद्ध का बहाना बनाया जा रहा था और यहां पर ये किया जा रहा था। अब रुपया डॉलर के बदले अगर हम देखें तो 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है, तो सरकार कहने की कोशिश करी कि अच्छी बात है, लेकिन एक वक्त था जब रुपया गिर रहा था, तब कह रहे थे कि देखिए भारत की प्रतिभा कहीं ना कहीं गिरने की कोशिश हो रही है। तो जो विपक्ष के में होते हुए कहा गया था, वो सूद समेत वापस करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यही बात है ना, मतलब राजनीति है कुल मिलाकर। सिद्धार्थ यादव जी,
1: नहीं नहीं इसमें साहिल जी ये कोई बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 2013 के अंदर पी चिदंबरम ने आकर के, मनमोहन सिंह जी ने आकर के बोला कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को कम इस्तेमाल करिए, कौन सा युद्ध चल रहा था, कौन सा आर्थिक संकट था दुनिया में, तब तो 2G CWG और कोलगेट की स्कैम की लूट मचा रहे थे, तब तो देश में कॉमनवेल्थ का नाम मुंह काला करवा करके थोड़े दिन पहले ही हटे थे, कौन सा युद्ध चल रहा था, आर्थिक संकट आ चुका, हमारी इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 बोल दिया गया था 2013 में, हमारे ऑयल कंपनीज के पास 1,34,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज उनके सर पर चढ़ गया था, कौन सा वैश्विक संकट था, कौन सा युद्ध था, बिना कुछ हुए आपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन और 5% से कम का ग्रोथ रेट, यह था भारत, और आज 4% से नीचे हमारी इन्फ्लेशन, और हम प्रॉमिसिंग इकोनॉमी, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, तब इनको आर्थिक संकट है, देश की ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऑन रिकॉर्ड लीजिए आप सुरेंद्र राजपूत का बयान, देश की विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं, जहां भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील को साइन कर रहा है भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, वहां भारत के प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए, जूम पे कर लीजिए, अरे जूम पे आप सोरोस से कर लीजिएगा, देश ऐसे चलता है क्या, कूटनीति ऐसे चलती है क्या, आज देश के प्रधानमंत्री जाकर के डील साइन करके आ रहे हैं, रिश्तों को संबंधों को गहरा कर रहे हैं, और मैं हैरान हूं इनके आर्गुमेंट को सुन के, ये कह रहे हैं जूम पे मीटिंग कर लेते, अरे यूएई के साथ हमने $30 बिलियन का स्ट्रेटेजिक
2: पेट्रोलियम साइन की है,
1: स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप के साथ साइन करी है, नॉर्वे के साथ साइन करी है, आप जानेंगे नहीं,
2: बताइए ना, कमाल है
1: सुरेंद्र राजपूत जी, आप और आपके नेता दिवालियापन हो चुका है आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का दिवालियापन हो चुका है, भारत के लिए नफरत इतनी ज्यादा मन में बैठ चुकी है कि आप लोग हर चीज को छोड़ करके चले जाएंगे, आप लोग पीछे हट जाएंगे, और आप लोग चाहेंगे देश को गाली देते जाएं, अरे दिवालियेपन से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए दिवालियेपन से,
2: और
1: देश के लिए जो अच्छा है उसको अच्छा कहना सीखिए,
0: ठीक है,
1: नफरत मन में हो गई है,
0: लेकिन दो चीजें, चलिए
1: इतनी नफरत,
0: चलिए मेलोडी कुछ लोगों के लिए मीठी साबित हो जाएगी, और इस डील से जो निकलेगा उसके बाद जो होगा उस पर तो हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि खट्टी भी हो सकती है या तीखी भी लग सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे उस पर उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ यादव जी, आपने सही कहा कि आज की स्थिति में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 3.48% है, और RBI ने जो 4% का जो स्लैब रखा हुआ है उससे कम है, यह बात तो बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आंकड़े देखें तो जनवरी से लेकर लगातार पिछले 4 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जनवरी में 2.73% था, फरवरी में 3.21% था, मार्च महीने में 3.4% था और अब अप्रैल में जाकर 3.48% तक जाकर पहुंचा हुआ है। यही सबसे बड़ी चिंता आज की स्थिति में लोगों के सामने सबको सता रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम कई राज्यों में 110 रुपए से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसमें सभी राज्य दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य भी दिखाई देंगे और आपके शासित राज्य भी दिखाई देंगे, उसका नंबर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दूसरी तरफ रुपया 96.84 रुपीज तक यहां पर पहुंच चुका है। ये सारी चीजों को देखते हुए अगर विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अनुराग भदौरिया, यही सवाल है ना विपक्ष का आज की स्थिति में?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष तो महंगाई को लेकर तो सवाल पूछ रहा है ना, और महंगाई पे ही बात कर रहा है वो, तो इनके लिए तो एक बड़ी अच्छी लाइनें इनके लिए सूट करती हैं। धीरे

0: हंसी खुशी होगी, इतना दर्द दूंगा जनता को यहाँ। तेल पानी कम होगा, चारों तरफ गम होगा, झूठ की बारिश होगी, होगी झोली खाली यहाँ। झूठ की बारिश, ये झूठ की बारिश कर रहे हैं इनके, और जनता की झोली खाली है, इनको कोई चिंता नहीं है। और चिंता करो तो ये बातें करते, महंगाई पे बात करो तो इनका मुंह एकदम सूखने लगता है, फिर चले जाएंगे 1970 में, 1940 में। अरे प्रभु, महंगाई की बात विपक्ष कर रहा था आपसे जब आप चुनाव लड़ रहे थे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, जब चुनाव लड़ रहे थे असम में, तो विपक्ष आपसे कह रहा था कि जिस तरह ईरान का वॉर चल रहा है, यहाँ पे तेल डीजल महंगा होगा, विपक्ष बोल रहा था। तो आप क्या बोल रहे थे, क्या बढ़ा क्या? और कुछ एंकर मुझे ऐसे बोलते थे, बताइए अनुराग भदौरिया जी, आप बताइए तेल का दाम बढ़ा क्या, तेल का दाम बढ़ा क्या, चुनाव में चैलेंज करते थे। तब मैं कहता था तेल का दाम बढ़ेगा, बढ़ा ना। आज क्या है, आज कहां भाग गए वो लोग, वो पत्रकार आप दिखाई नहीं पड़ते, मैं उनसे पूछता हूं भाई, तब तो चैलेंज करते थे। आज तेल डीजल सभी का दाम बढ़ा ना, जिससे सीएनजी का दाम बढ़ाना, एलपीजी का दाम बढ़ाना, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। इस पर बात नहीं करना चाहते, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, ये मुद्दों को ले जाएंगे पता कहां पे। अभी मैं कल परसों देख रहा था, कभी नमाज पे चर्चा करवा रहे हैं ये बीजेपी वाले, कभी धर्म के नाम पे चर्चा करवा रहे हैं। अरे लोगों के घर में चूल्हे बंद हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, तनख्वाह बढ़ी नहीं, आपने तनख्वाह उनकी बढ़ाई नहीं, उनकी डेली मजदूरी बढ़ी नहीं, लेकिन उनकी महंगाई बढ़ गई, वो कैसे जिएंगे बताइए। 10 रुपए की चाय 20 रुपए बिकेगी तो कैसे चाय पिएंगे आप बता दीजिए मुझे।
1: तो आपको लगता है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? मजदूर तो रोड पे, खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, वो जिम्मेदार नहीं है
0: पूरी।
1: आपको लगता है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा है, जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, जिसके वजह से पूरे दुनिया में महंगाई का संकट बना हुआ है।
0: अरे भाई, आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दे दीजिए, क्या रुपया कमजोर है? ये यहां पे जब से युद्ध हुआ तब से हुआ है क्या? रुपया एक साल में 12% गिर चुका है, किस वजह से गिर चुका जरा पूछिए। इनका यहां पे व्यापार घाटा $240 अरब हो गया, कैसे हो गया जरा बताइए तो। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युद्ध तो अभी शुरू हुआ, अगर युद्ध शुरू हुआ तो आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए ना, विदेश नीति अच्छी होती ना, आप रशिया से अच्छे संबंध रखते ना, आपने तेल खरीदना क्यों कम किया, क्यों अमेरिका के पिछले ग्रुप में यहां पे बन गए, क्यों आप जाके इजराइल में तो मिलने चले गए, तो आप इराक भी चले जाते, तो आज हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप तो आ रहे होते ना, तब तो आपने ईरान से रिश्ते
1: रखे। कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपकी नीतियों की वजह से हो रहा है, जो वैश्विक स्थिति की वजह से जो होता, 3 महीने आपने महंगाई को रोक के रखने की कोशिश की है, लेकिन 3 महीने के बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है आपने हाथ छोड़ दिए। कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप राजनीतिक भी है, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं उंगली दिखाने की कोशिश चल रही है उनकी।
2: देखिए साहिर जी, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और मानसिक दिवालियापन, एक ही काम है विपक्ष का आज। रशिया से तेल लेना कम कर दिया, किसने कर दिया?
0: क्या झूठ है?
2: 10 मिलियन बैरल ले रहा है भारत, 10 लाख, 10 लाख बैरल आप मान रहे हैं? आप 10 मिलियन बैरल समझते हैं आप क्या होता है?
0: आप 20 लाख बैरल लेते थे, आप 10 लाख पे आ गए थे,
2: कि जब झूठ बोलने लगेंगे,
0: भूल गए, झूठ मत बोलिए जनता को।
2: मैं आपके बीच में नहीं बोला था,
0: 20 लाख बैरल ले रहे थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं,
1: सुन लीजिए, सुन लीजिए भदौरिया जी, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, मैं आपके बीच में जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, आपके बीच में आप सवाल उठाइए लेकिन जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए पहले, प्लीज।
0: अमेरिका के पीछे घूम रहे थे, अमेरिका के पीछे लोग लगे थे,
1: अनुराग जी प्लीज उनको जवाब देने दीजिए,
2: अभी हो गया,
0: अमेरिका मदद कर रहा है,
1: उनको जवाब देने दीजिए।
0: अरे जवाब नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं।
1: अनुराग जी,
2: एक मिनट,
1: इस तरीके से बहस नहीं होगी, जरा जवाब सुन लीजिए, आपको दोबारा मौका मिलेगा ना, उनका जवाब सुन लीजिएगा। चलिए सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिए।
2: देखिए साहिद जी, समस्या क्या है, अभी देखिए कैसे, किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जाता है। ये एक वैश्विक संकट है, पूरी दुनिया पर इस संकट का समान प्रभाव है, यह भारत द्वारा उत्पन्न किया हुआ संकट नहीं, भारत का इस संकट से कोई लेना देना नहीं। दुनिया के अंदर बड़े देश, आप नाम उठाइए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूएस, साउथ अफ्रीका, जिस देश का आप नाम उठाएंगे, वहां कहीं 60% बढ़ा, कहीं 70% बढ़ा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 80% बढ़ा, और भारत में 3% बढ़ा। पर जो भारत का विपक्ष 3% पे कर रहा है, आप वहां के विपक्ष से तुलना करेंगे, आपको मिलेगा नहीं ऐसा विपक्ष। मैं नहीं कहता कि आप यह प्रश्न मत पूछिए और बिल्कुल बात करिए, पर समस्या दूसरी है। अगर भारत सरकार ने देश में, दुनिया में आए हुए संकट का प्रभाव देश के लोगों पर 2.5 महीने 3 महीने तक सस्टेन किया, क्या गलत किया? जब तक सस्टेन हो सकता, यह पहली बात साहिब जी। दूसरी बात, क्या आज पूरा इफेक्ट पास ऑन किया जा चुका है? बिल्कुल नहीं। 11-12 रुपए का डेफिसिट है, 3 रुपए बढ़ाए गए, आज भी भारत सरकार सस्टेन कर रही है उसको। जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं फिर डॉलर की बात करेंगे। मैं आपको
1: लेकिन क्या ये बात सही नहीं है सिद्धार्थ यादव?
2: साल के अंदर सिद्धार्थ यादव एक
1: ये सवाल नहीं, आप अभी आंकड़ों पर बात हो रही है तो आंकड़ों पर पूछा जाएगा। रशियन ऑयल का मुद्दा ना बार बार निकलता रहता है और पिछले 6 महीने में कई बार हम लोग इस पर डिबेट कर चुके हैं, आप भी कई बार उस डिबेट में आ चुके हैं। आपको भी पता है कि 2022 में हम जितना रशियन ऑयल खरीदते थे उसमें कितना हमने कम कर दिया है, वो 21% तक आके हमने हमारे जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें रशिया का हिस्सा रह गया था जनवरी 2026 तक। यानी कहीं ना कहीं हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया था। आज की स्थिति में अब हमको लग रहा है कि रशिया से लेना चाहिए, इसीलिए एक बार फिर बातचीत उसकी शुरू हो चुकी है। अमेरिका बार बार स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है कि देखिए हमने 1 महीने के लिए छूट दी है करके।
2: साहिल जी कोई आंकड़ों का फेर नहीं होना चाहिए। हम कभी लेते थे 30-35%, कभी हम 25 भी लेने लगे, कभी हम 40 भी ले, हमारी इच्छा है ना। भारत ने कहा जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से लेंगे, इन्होंने तो कहा कि यूएस ने मना कर दिया आप एक तेल नहीं ले रहे, हमने तो लगातार लिया। मुझे वो दिन बताइए जब भारत ने रशिया से तेल नहीं लिया, वो तिथि बताइए, एक दिन। और ये रोज टीवी पे बैठ करके हल्ला मचाते थे यूएस ने ऐसा दबाव बना दिया, ऐसा कर दिया, तेल लेना बंद कर दिया।
1: अनुराग भदौरिया आपको जवाब देने का मौका इसके बाद मिलने वाला है, लेकिन ये मेलेडी को लेकर जितनी चर्चा हो रही थी ना, वो पार्ले प्रोडक्ट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है उस कंपनी को बड़ा मजा आ रहा है उस मेलेडी को लेकर। उसके वाइस प्रेसिडेंट है मयंक जी, उनसे हमने बातचीत की, जरा एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, क्योंकि मेलेडी ज्यादा चर्चा में आ गई है आज की स्थिति में। जरा एक बार सुन लेते हैं क्या बोला उन्होंने। तो चलिए, मयंक शाह तो यहां पर कह रहे हैं कि वो बड़े खुश है जिस तरीके से एक भारतीय कंपनी का प्रोडक्ट वहां पर चर्चा में आ रहा है। जल्दी से अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे जरा सिद्धार्थ जराबी के पास जाना है, क्योंकि राजनीतिक बातें होती रहेगी लेकिन सचमुच में इसका कोई सोल्यूशन है क्या? दीप्ति तनेजा भी यहां पर बैठी हुई है। अनुराग भदौरिया जी,
0: और देखिए अगर इनकी बात को हम मान लें कि चलिए अभी वैश्विक समस्या है, तो इनसे पूछिए जब गेल का इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, LIC की हिस्सेदारी बेची थी, कोल की हिस्सेदारी कोल इंडिया की बेची थी, NTPC की बेची थी, ONGC की बेची थी, तब कौन सी देश में आफत थी जो आपने उनकी हिस्सेदारी बेची थी? सवाल तो ये उठता है, तो उसके तो कोई जवाब आप देंगे नहीं। दूसरी बात, अरे कहां कहां मत बोलिए, पोल खोल रहा हूं तो सुन लीजिए, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जब से आपकी सरकार आई है, जब से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 100 रुपए इसके पहले भी हुआ था वैश्विक, अभी तो युद्ध हुआ, इसके पहले भी 100 रुपए डीजल पेट्रोल गया था, तब आपने क्यों बढ़ाया था जरा बता दीजिए, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। और उस समय 2016 2017 2018 2020 में 2022 में बीच में 52 रुपए यहाँ पे डॉलर प्रति बैरल भी था, यहाँ पे 42 रुपए भी था, 44 भी था, तब तो कंपनियां फायदा उठा रही थी, तब तो कंपनियां जब फायदा उठा रही थी तो आपने जनता को लाभ नहीं दिया, आपने डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं किया था, तब कंपनियां लाभ कमा रही थी। आज कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ है तो आप कह रहे हो कंपनी को नुकसान हो रहा है, आपको कंपनी की चिंता रहती है, आम जनता की चिंता नहीं रहती है? इसलिए आपसे सवाल यह है कि जब कंपनी फायदा कमाती है
1: आज की स्थिति में,
0: तब आप जनता को फायदा
1: आज की स्थिति में। सिद्धार्थ जरा भी, आपने कई बार इस बात को सुना होगा, उस दिन हरदीप पुरी भी जब CII में बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब तक तो कंपनियों ने घाटा सहन कर लिया, 3 महीने तक उन्होंने किसी भी तरीके से प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कहीं ना कहीं, जैसे जापान के भीतर कैप लगा दिया गया, इस बारे में हमने चर्चा की थी आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हो चुका था। क्या अलग कोई और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल सिर्फ बचत की अपील की गई है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, ये बात तो साफ यहां पर नजर आ रही है, कोई और उपाय भी सोचने पड़ सकते हैं क्या?
3: नहीं, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, तो उसका डायरेक्ट एक प्रभाव पड़ता है, ये तो पहली बार ही नहीं हो रहा है, परंतु हमें ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब संभव था तो 4 साल तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे, एक बार ही घटाया गया। ये बीजेपी के प्रवक्ता को ये विषय रखना चाहिए। और रशियन ऑयल की जहां तक बात रही साहिल, रशियन ऑयल का डिस्काउंट खत्म हो गया, और अगर इंटरनेशनल परिपेक्ष में सैंक्शन आ रहे हैं तो क्या भारत बाकी देशों से और जो डॉलर में ट्रांजैक्शंस करने हैं उस पर सारा लॉकडाउन करवा दे क्या? तो कहीं ना कहीं पे ये राजनीतिक बातों में जो गंभीर विषय है और जो टेक्निकल इश्यूज हैं, कमर्शियल और इंटरनेशनल खरीद फरोख जिस प्रकार से होती है उस पर इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां करने से कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। वस्तु स्थिति यह है कि जहां से संभव जब संभव सस्ता तेल आज नहीं हर सरकार ने लिया है, वो कोई भी पार्टी की सरकार देश में रही हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर वो तेल महंगा हो रहा है तब भी लिया गया है। अभी सबसे बड़ी समस्या सप्लाईज की है। सबसे बड़ा विषय आज की डेट में जो हमारी आर्थिक स्थिति को लेके ये है कि जो रुपए को लेके निवेशकों में कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा सवाल आया है, और उस कॉन्फिडेंस को टॉफी जैसे मुद्दे पे लाके टेक देना साहिल, अगेन मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय को एक बहुत ही लाइट तरीके से रखने वाली बात हो जाएगी। आज कॉन्फिडेंस रुपये की और जितना बदलाव हम रोज प्रतिदिन देख रहे हैं इसको लेके जो संभावित कदम हैं उन पे सरकार और आरबीआई दोनों से एक्सपेक्टेशन है। एक आखिरी बात, 2013 में जो रुपये के साथ हुआ उसी प्रकार की प्लेबुक आज फिर से 13 साल बाद रिपीट हो रही है, और इस प्लेबुक से ज्यादा खतरा महंगाई को है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करेंगे अगर कहीं ना कहीं ये स्थिति लगातार चलती रही। साहिल,
1: लेकिन क्या कोई और उपाय जो आपको लगता है कि हो सकता है, या आज की स्थिति में सब लोग हेल्पलेस है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, क्या ये हम मानकर चले?
3: साहिल, रुपये की डिफेंस आपके मेरे हाथ में नहीं है, शायद पार्टियों के हाथ में भी नहीं है। रुपये की डिफेंस, अगर हम शब्द डिफेंस इस्तेमाल करें, एक्चुअली सही शब्द होगा कि रुपये को एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है, वो डिफेंस केंद्र सरकार के पास है और रिजर्व बैंक के पास
1: कर रही थी इससे पहले, जिस तरीके से आरबीआई कर रही थी इसके पहले, और आज की स्थिति में अब वो हो पाना मुश्किल नहीं है?
3: नहीं, देखिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 2013 की तुलना में काफी ज्यादा हैं। पिछले दिनों में जो रिजर्व बैंक ने एक प्रकार से रुपये में ऑर्डरली एक स्थिति रहे उसको लेके काफी विदेशी मुद्रा को बाजार में उतारा है, परंतु ये लगातार नहीं किया जा सकता है। कुछ कदम पिछले दिनों में लिए गए हैं केंद्र से भी और रिजर्व बैंक द्वारा। मेरा ये केवल एक छोटी सी बात कहना है कि आज कॉन्फिडेंस स्प्रेड करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पे जो एक्सपेक्टेशंस का माहौल थोड़ा नेगेटिव हो गया है साहिल, ये बड़ा विषय है। लोगों में डर पैदा हो गया और जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आवश्यकता है।
1: आप सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं डर जरूर यहां पर पैदा हुआ है लोगों के बीच में, लोगों के मन में, खास करके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिस तरीके से स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहे। और जब हम बात कर रहे हैं, केरलम से भी खबर आ रही है कि 4 रुपए से प्रति लीटर दूध वहां पर महंगा हो चुका है। इससे पहले अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत बढ़ा दी थी, अब केरलम में भी दूध की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 5 रुपए से ब्रेड महंगा हो गया था, जिसके वजह से वड़ा पाव भी महंगा हो गया है 3 रुपए से कम से कम। और केरल सहकारिता दूध मार्केटिंग संघ ने यह फैसला लिया है और 4 रुपए से केरल में दूध की कीमत में भारी बढ़ोतरी यहां पर आई हुई है। आज की स्थिति में जिस तरीके से स्थिति जा रही है उसको देखते हुए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 जून से दरअसल ये सारी कीमतें लागू यहां पर हो जाएगगी। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ में जुड़ी है, उनके पास जाने से पहले, लेकिन सिद्धार्थ जरा भी आपने कहा कि मेलेडी को लेकर आपने बात किया कि भाई इस मुद्दे पर क्या चर्चा करना, क्या ये जरूरी है इस पूरे मामले पर, कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी तो होता ही है ना कि आपको याद होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, 2 बार कपड़े बदले, उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, उस पर भी सवाल उठाए गए थे उस वक्त। तो कई बार ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हो जाती है, स्थिति क्या बनी हुई है और उस वक्त किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा रही है। ऑस्टेरिटी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती है कि 3 दिन के बाद चीजें कैसे बदल रही है वहां पर, ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा ना सिद्धार्थ?
3: देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पे 2 बातें हमें समझनी पड़ेंगी, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये पार्टी और राजनीतिक जो गतिरोध है नेचुरल है, हमारी डेमोक्रेसी में इस प्रकार से होना भी चाहिए। बेसिक बात है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था के अगर 4 पहिए किसी अर्थव्यवस्था के हों तो 3 टूट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं पे पिछले 10-15 दिनों में एक्सटर्नल शॉक को हम अननेसेसरली इंटरनलाइज कर रहे हैं, परंतु एक बहुत बड़ी बात है, कई ऐसे स्टेप्स सरकार द्वारा, कुछ जुडिशियल ऑर्डर्स और कहीं ना कहीं पे पिछले दो साल में हमने अपनी नजर भारत में विदेशी मुद्रा आती रहे, बड़ी मात्रा में आती रहे, इससे थोड़ी सी वो नजर एक प्रकार से धूमिल हो गई है, हट चुकी है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है
1: कि सरकार, हम जब चर्चा कर रहे थे एक डेढ़ हफ्ते पहले, सिद्धार्थ आप मेरे शो में बैठे हुए थे, तब आपने प्रेडिक्ट किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, और उस वक्त हम सरकार के प्रवक्ता से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरा प्रेडिक्शन आपका यह था कि आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जाएंगे, और उसी का इंतजार होगा कि उसके बारे में क्या फैसला होता है। सुनील राजपूत को कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर तनेजा, कोई और उपाय? राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाती रहेंगी। एक वक्त था कि विपक्ष के लोग सिलेंडर लेकर सड़क पर नजर आते थे, फिलहाल तो टेलीविजन स्टूडियोज में प्रवक्ता यहां पर उस बारे में सवाल उठा रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सिलेंडर हाथ में लेकर सड़क पर कब नजर आएगी इस सारे मुद्दे को लेकर, लेकिन फिलहाल क्या कोई और उपाय है, या वैश्विक स्थिति के चलते और कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा है? प्रोफेसर तनेजा।
4: नमस्कार साहिल जी, आपको भी, सभी को, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी मेरी बहुत गुजारिश है कि मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद बोली हूँ, मुझे अपने तर्क रखने दीजिएगा, उसके बाद बाकी जिसको भी बोलना हो बीच में नहीं इंटरफेयर कीजिएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपका जो सवाल है उस पर आने से पहले शुरुआत करूंगी, अनुराग भाई ने बहुत बढ़िया एक गाने से शुरुआत किया, एक गाना सर मैं भी अर्ज कर देती हूँ, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, तो आसपास अगल बगल में देख लीजिए आप भी, सुरेंद्र भाई भी, कहीं कोई कौवा वगैरह तो नहीं है। खैर, दैट्स अ जोक, कमिंग बैक टू द सीरियस मैटर्स नाउ। सर मैंने कहा था टोकिएगा नहीं, मैं नहीं टोकी थी जब आपने अपने गाने से शुरू किया, मैंने बहुत
1: बोले, समय खत्म हो जाएगा वरना, चलिए बोलिए।
4: सुनिए जी सर, आपने जो जो झूठ बोले, मैं पहले तो ये कि नरेटिव आप लोग क्या क्या चलाते हैं, बड़ी बखूबी कोरियन वॉर की बात की गई और बीजेपी ने तब कहा, सर बड़ा क्लियर फैक्ट चेक है, कोरियन वॉर्स हुए थे 50-53 और 66-69, बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था, कौन सी बीजेपी, कौन सा विपक्ष, किसने क्या बोला था मैं समझी नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी इसी की बात कर रहे थे तो कौन सी बीजेपी थी, ये आपका सबसे पहला झूठ। दूसरा सुरेंद्र भाई, आपने बोला कि टॉप 100 कंपनीज में बाय वैल्यूएशन कोई इंडियन कंपनीज नहीं है, मैं आपको वो 6 कंपनीज गिनवा देती हूं जो टॉप 100 में है।
1: रिलायंस जी, इसका फैक्ट चेक करा दे, प्रोफेसर तनेजा जो बोल रही है उसका, उन्हें शायद रेफरेंस नहीं पता होगा, प्रोफेसर तनेजा आपको रेफरेंस शायद नहीं पता होगा, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, वो जो आप बात कर रही है ना, वो उस वक्त की बीजेपी की बात नहीं है, इस वक्त की बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था, अगर चाहे तो मैं रेफरेंस आपको दिखा सकता हूं, लेकिन छोड़िए, आप अपने मुद्दे पर आगे बढ़िए, चलिए
4: जी बिल्कुल ठीक है। और आपने जो टॉप 6 कंपनीज की बात करी, मैं वही आपको, मतलब आपने टॉप 100 की बात करी, टॉप 6 कंपनीज उसमें भारत की है, रिलायंस, एचडीएफसी, भारती, स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई। नाउ कमिंग बैक टू, आपने मेलोडी की बात करी, तो सर ये मेलोडी जो इसका मेलोडी और मोदी और मेलेनी से जो बना है इसका मेम, ये सबसे पहले मेलोनी की तरफ से आया था। आज के भारत में जब आईएमएफ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स होती है, जिसमें थर्ड लार्जेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे ईयू में इटली है, तो इस समय पे हम क्या इक्वेशंस कर रहे हैं? इससे पहले थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने ये देशों का दौरा शुरू किया था, तो आपने यूएई में भी यही सवाल पूछे थे, जब वो नॉर्वे पहुंचे आपने तब भी यही सवाल पूछे, आम आदमी के ऑस्टेरिटी मेजर्स को देश के जो नेता प्रमुख है, अगर उनकी तरफ से
0: तो बता दीजिए,
4: मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि स्ट्रेटेजिकली सर काम खोल के सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा।
0: क्या चाह रही है?
4: मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आईएमएफ कॉरिडोर की डील हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स की बातें हो रही हैं। सर आपने, सर आपको क्योंकि फैक्ट चेक में प्रॉब्लम होने लग गई तो अब आप अपना नैरेटिव शुरू कर दोगे। सर आपको प्रॉब्लम होगी,
1: झगड़ा नहीं, चलिए महंगाई है, जरा इकोनॉमिक्स पे बात कर लेना। चलिए ठीक है, राजनीति बहुत हो गई, प्रोफेसर तनेजा जरा इकोनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स की बात बता दीजिएगा, क्या महंगाई कंट्रोल करने का कोई और मुद्दा नहीं है आपके पास?
4: नहीं बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ सर की बात मैं ऐड करूंगी। सिद्धार्थ सर ने कहा कि जो रुपए को लेकर 2013 से जो सर ने कंपैरिजन किया, सबसे पहले सर आपने कहा कि हमने अपने रिजर्व्स को रिलीज किया है, जो अभी भी भारत के पास वो बहुत बड़ा कुशन है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बहुत स्ट्रांग हालत में है। उसके अलावा सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेडरल ट्रेजरी रेट वो 2013 में तकरीबन 2.5% तक ही बढ़ा था, इस समय जो फेड ट्रेजरी रेट है वो 5% पे चल रहा है, नो दैट इज समथिंग दैट इज
1: राजनीति में सबसे ज्यादा समय जाता है और इकोनॉमिक्स पर सबसे कम समय मिलता है। यही बात है देश की कि जब कीमतें बढ़ने लगती है तभी ये सारे मुद्दे राजनीतिक बनते जाते हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ने का समय आता है उससे पहले उस पर इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। क्या इस बार अब महंगाई को लेकर इकोनॉमिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, इस पर भी नजर रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स. बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स.
3: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स.
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
6: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिनाने को कई फैसले हैं, जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई, तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया। अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार की बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है। सुशासन का पहला मंत्र है कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। शुभेंदु के बुलडोजर उस बड़े वर्ग में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बंगाल में बीजेपी को महाविजय दिलाई और पहली सरकार बनवाई। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही, बीजेपी को वहां सियासी जमीन बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हत्याएं हुई, एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन की मजबूरी भी सामने आई। अब शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी के पार्टी कैडर को उनकी सुरक्षा की गारंटी का मैसेज है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
1: मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में लगातार दूसरा दिन है जब रेलवे की तरफ से ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है। 400 से 450 घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। कई सालों से रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से घर बनाकर ये लोग रह रहे थे। कोर्ट के निर्देश के बाद आखिरकार रेलवे ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। कई सालों से यहाँ पर इस तरीके के घर यहाँ पर बने थे, कई सालों से मामला कोर्ट में था और आखिरकार कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये तोड़ा कार्रवाई जो है वो रेलवे की तरफ से की जा रही है। 4 दिनों तक ये तोड़ा कार्रवाई की जाएगी जिसमें से आज दूसरा दिन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक नहीं कई मंजिल तक, 3 से 4 मंजिला घर बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे थे। हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की जिनका कहना है कि वो कई सालों से रह रहे हैं, वो यही के हैं, उनके पास 90 या उससे पहले के भी डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन फिर भी उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। लोगों से बात की गई थी, उन्हें बताया गया था इस कार्रवाई के बारे में और उन्हें पहले ही नोटिस भी दिया गया था। और जो भी कार्रवाई यहां पर हो रही है वो पूरी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए और कोर्ट के निर्देश द्वारा ही ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस दल भी यहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहां पर मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैनात ना हो और क्रिएट ना हो, लोगों में शांति का माहौल बना रहे। इसीलिए बड़े पैमाने पर 4 दिन तक पुलिस का बल जो है एक तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद रहेगा। छावनी में इस जगह को तब्दील कर दिया गया है और आने वाले और 2 दिनों तक ये कार्रवाई जो है वो शुरू रहेगी।
0: तो क्या बंगाल में अभूतपूर्व विजय ने बीजेपी को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि सार्वजनिक नमाज पर चेतावनी देते देते सीएम योगी संख्या नियंत्रित करने की सलाह देने और सामर्थ्य बताने तक आ गए? पहले योगी ने क्या कहा ये जानिए। सड़क चलने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट में की जाए। संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो। प्यार से मानोगे बात तो ठीक है, नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि योगी सड़कों पर नमाज को लेकर तल्खी के इस हद तक क्यों गए।
2: पहली वजह तो 27 मई को होने वाली बकरीद है।
0: बकरीद पर सड़कों पर नमाज की इजाजत मुस्लिम समाज मांगता रहा है और दूसरी बड़ी वजह 2027 का चुनाव है जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। बकरीद इसलिए क्योंकि ईद और बकरीद में ही मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज की इजाजत मांगता रहा है। लेकिन बात सिर्फ बकरीद की नहीं है, बात 2027 की ज्यादा है क्योंकि बीजेपी जानती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जीत का सबसे आसान फॉर्मूला है और बंगाल में बीजेपी की आसमानी जीत की मिसाल उसके सामने है। याद करिए, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला। शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम कहा मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं। तो यूपी में सीएम योगी भी बंगाल में जीत के सुपरहिट फॉर्मूले के आसरे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: ये तस्वीरें हैं यूपी के बिजनौर के रहने वाले उस नाबालिग लड़के की जिसका जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मस्जिद में धर्म परिवर्तन कराया गया।
4: किसी किचन काम पर दबाव है जो यहाँ जामे मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं, अगर इसमें किसी ने आप पे दबाव डाला है
5: लालच
4: का या कुछ लालच दिए चलो हाँ, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। जो मेरी कायनात को देख के मेरी कुदरत को देख के ईमान लाएगा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसके लिए किसी किस्म का दुनिया में न कोई खौफ होगा न आखिरत में कोई डर होगा।
3: मस्जिद कमेटी ने यह वीडियो नाबालिग के परिवार को भेजकर दावा किया था कि 17 साल के नाबालिग ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसका जबरन धर्मांतरण कराकर बाद में ये वीडियो बनवाया गया है।
6: मर्जी से कलमा पढ़ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने 4 साल में ये सीखा, पढ़ा मैंने मुस्लिम धर्म, तो आज मेरे को यकीन आया इस पे कि मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। मेरे को किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, मेरे दिल को अच्छा लगा इस्लाम, तो मैंने इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ।
7: माशाल्लाह माशाल्लाह।
3: बिजनौर जिले के रावली रोड इलाके का ये लड़का कुछ समय पहले काम की तलाश में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा गया था। वीडियो में लड़का बिना किसी दबाव के इस्लाम धर्म कबूलने की बात कर रहा है। परिवार का आरोप है कि जिस नंबर से कॉल आई थी उसने कहा कि अब अपने लड़के को भूल जाओ क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है।
8: वसीम अहमद काजीवाड़े से हमारे भाई को लेके गया, ठीक है, काम के लिए, लेकिन वहाँ पे ले जाके उन्होंने जबरदस्ती उसको इस्लाम कबूल कराया।
3: आज तक ने ये खबर दिखाई जिसके बाद योगी सरकार ने संज्ञान लिया। अब यूपी पुलिस की 3 टीमें नाबालिग का रेस्क्यू करने कुपवाड़ा जा रही हैं। ऋतिक राजपूत, बिजनौर, आज तक।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

मेलेडी डिप्लोमेसी के बाद पीएम मोदी का ऐलान, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद से साथ लड़ने का वादा कहा, ये दो महान देश के सांस्कृतिक विरासत का मेल है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बोल बताया गद्दार, मेलेडी गिफ्ट करने पर भी कसा तंज, बीजेपी का चौतरफा वार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग।

0: बांद्रा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, विरोध करने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा है अभियान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
3: ये लगातार हो रही हार निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है।

0: आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आर्थिक तूफान आने की आशंका देश के लिए एक चुनौती है, लेकिन आर्थिक तूफान से पहले राजनीति का बवंडर चलने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिसे कम से कम राजनीतिक विरोधी के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो भी जब एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ नेता विपक्ष। गद्दार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, हालांकि इससे पहले भी चौकीदार चोर है जैसे तमाम भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम के लिए किया गया है। राहुल गांधी ने एक सांस में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, आरएसएस पर हमला किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी इटली में मौजूद है, वहां उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी ट्रॉफीज गिफ्ट की।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
0: तो जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री पर राहुल गांधी ने यह कहकर तंज किया कि मोदी रील बनाने में व्यस्त है। ये बात और है कि जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के मेलोडी ट्रॉफी वाले गिफ्ट पर प्रहार किया तो राहुल को 2025 के बिहार चुनाव के पहले कोलंबियाई कॉफी बनाने के वीडियो को बीजेपी के नेता याद दिलाने में पीछे नहीं रहे हैं, क्योंकि जब कोलंबिया पहुंचे थे राहुल गांधी तो वहां पर भी वहां की कॉफी का लुत्फ लेते हुए वो एक शख्स के साथ दिखाई दे रहे थे। इस सारी राजनीति से सवाल उठा कि क्या वाकई देश की राजनीति आर्थिक संकट से निपटने पर गंभीर है। सुनिए राहुल गांधी का बयान क्या है।
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
4: नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले तीन महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है,

0: आ रही है इस आर्थिक संकट से देश को उबारने की, असल मुद्दा यह है।
1: देखिए, भारत के इतिहास में सर्वाधिक विश्व भ्रमण करने वाले, विदेश भ्रमण करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो विगत 22 वर्षों की अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान के संतुलन के सवाल पर फंस गए हैं, और उससे मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। कांग्रेस को तो असंतुलित कर ही दिया है, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और इसलिए अनाप शनाप ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है ये उनकी आदत सी हो गई है। एक बात यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो पहले शब्द का प्रयोग किया, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी चुनाव में खड़गे जी क्या बोले थे कि मोदी टेररिस्ट है। खड़गे जी क्या बोले थे, नमाज पढ़ रहे हो तो जैसे सांप दिखता है वैसे जा रहा हो तो आरएसएस वाले को मारना। मतलब मैं दर्शकों से कहूंगा, नमाज पढ़ते शब्द का यानी क्या, पूजा कर रहे हो और सांप दिख जाए। फिर कह रहा हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलते हैं, मोदी भस्म हो जाएगा नहीं बोलते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, ये इनके पार्टी के नेताओं का ऑफिशियल बयान है, अफजल गुरु हालात का मारा है, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है, और मणिशंकर अय्यर सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में कहते मोदी को हटाने में आपकी मदद चाहिए, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और मोदी और अमित शाह गद्दार है। मुझे लगता है भारत की करोड़ों करोड़ जनता जब इस बैकग्राउंड में इसको देखती है तो उसे बस एक ही मैं वाक्य कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। लेकिन और वो गद्दार कौन है जो हर बार विदेश,
0: ऑडियो चला गया आपका, ऑडियो चला गया,
1: घनघोर भारत विरोधी। अब मैं कहना चाहता हूं तूफ
0: नहीं, लेकिन आपने इशरत जहां बेटी कहा, मैं वही कंफर्म कर रही थी, इशरत जहां को बेटी तो नीतीश कुमार ने कहा था। सुधांशु जी, आवाज जा रही,
1: नीतीश कुमार ने नहीं, हाँ। उस समय यूपीए की सर, हाँ जी आवाज आ रही है,
0: आ रही बोले,
1: यूपीए की सरकार ने कहा था, किसकी सरकार थी, नीतीश कुमार ने नहीं बोला था, उस नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री ने बोला था जो यूपीए सरकार के थे।
0: ठीक है, चलिए अब आप आपके पास आते हैं, हाँ, जल्दी तो बात पूरी कीजिए, दो लाइन में पूरी कीजिए,
1: हाँ। और पूरी बात एक लाइन में, और हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वैश्विक तूफान आया हुआ है भारत में नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां 3% पेट्रोल के दाम भरे हैं, एक देश बताइए यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस से लेके इजिप्ट, साउथ अफ्रीका से लेके यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका तक, जहां मिनिमम 10-15% से लेके 50-60% तक ना बढ़े हो, चैलेंज करके बता रहा हूं, बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं, फिर कहिएगा कि कहां पे तूफान आ रहा है, तूफान नहीं है, हकीकत में भारत में राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषाई और जातिगत संघर्ष पैदा करने में, अराजकता पैदा करने में असफल रहने के बाद यह माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस अब आर्थिक और ऊर्जा के मामले पे अव्यवस्था उत्पन्न करने में लगी हुई है। सिंपल सी बात है, जो जिन्ना करता था वो अब ये कर रहे हैं, जो माओवादी लोग करते थे वो अब ये कर रहे हैं।
0: ठीक है अखिलेश जी, अब आप अखिलेश जी को दिखाइए, अखिलेश जी किसी और की बात ना माने, और कई बीते दिन जब हमने दिखाया कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा था, कई लोगों के पेट में दर्द हुआ, लेकिन शरद पवार भी कह रहे हैं, शरद पवार की तो सुनिएगा ना, ये सच है कि कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी उन्होंने बनाई, लेकिन वो अभी भी इंडिया गठबंधन में आपके साथी हैं, वो तटस्थ रहे, बाकी लोग निकल गए उनकी पार्टी से, हम नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पर अलग राय रख सकते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये शरद पवार ने कहा है, और ऐसे मौके का भी इस्तेमाल करके मजाक उड़ाना, क्या आपको लगता है कि ये सही है, ये शोभा देता है?
2: अंजना जी, पिछले 12 वर्षों से ये देश देख रहा है

0: कि जब भी मोदी जी या बीजेपी से किसी ने भी असहमति व्यक्त की या मत भिन्नता की या विपक्ष की भूमिका निभाई तो पूरी बीजेपी या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उस पूरे ऐसा कहने वाले समाज को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, चीनी, गद्दार शब्दों से नवाजा है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिला पहलवान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे मतदाता हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, इन शब्दों से नवाजा है बीजेपी के लोगों ने। यहां तक कहा है कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान में पटाखे दगेंगे। ये बीजेपी वाले किस मुंह से बात करते हैं? हम देखिए, मोदी जी इस देश के लिए नहीं, दोस्त के लिए काम करते हैं, सिर्फ दोस्त के लिए। हमारे यहां पेट्रोलियम संकट है ना, अभी आप लोगों को भी पता है कि भारत के नाम पे विदेश से क्रूड ऑयल लाने वाले इनके मित्र ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने आधे से कम 40% तेल विदेश बेच दिया। क्या बिना सरकार की, मोदी जी की मर्जी के बेचा है? इनका जो आइडियोलॉग है आरएसएस, उसका नेता अमेरिका के हॉस्टल में बैठ करके बोलता है अमरीकियों से कि मैंने तो आपकी सारी बात मानी, हमने आपके कहने पे ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, विपक्ष की हम जलाल से डांस झेल रहे हैं, हमें विरोध देखना पड़ रहा है, आपका हमने 50% टैरिफ भी स्वीकार कर लिया, आपका हमने 18% स्वीकार कर लिया, आपकी हर बात तो हम मानते हैं, फिर भी आप और कितना हमसे क्या चाहते हैं? ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, जब सेना अध्यक्ष नरवरे कहते हैं कि चीन की सेना देश में घुस रही थी, हम परमिशन मांग रहे थे, मांगते मांगते थक गए, चीन की सेना देश में घुस गई, मोदी जी के तरफ से परमिशन नहीं आई, अंत में कहा गया कि आप अपने स्तर पे देख लीजिए। जिनका विदेश मंत्री कहता है चीन हमारे देश में घुस आ रहा है, उससे सवाल करने पे आप लोगों ने सवाल किया था, वो कहता है क्या करूं, चीन बड़ा देश है, मैं उससे क्यों लड़ूं? अरे भाई, इनका जो आरएसएस का नंबर 2 है, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं अभी 10 दिन पहले। आईएसआई के चीफ को ये भारत बुला करके हमारी सेना की जांच कराते हैं। ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। सुधांशु जी का भी रुक जाइए, सुधांशु जी ने कहा कि जाते जाते बता जाइएगा कि तेल के दाम कम बढ़े। सुधांशु जी जब $30 पर बैरल पर खरीदे थे ना, जब हिंदुस्तान तेल खरीद रहा था कई साल, तो आपने 3 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा के 11 सालों में 44 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाया है। उन देशों का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां जब क्रूड सस्ता हुआ तो वो लाभ उस देश की जनता को दिया गया था,
1: ठीक है।
0: आपने ये लाभ इस देश की जनता को न दे करके अपने मित्रों का कर्जा माफ करके दिया है। 40 लाख करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का कर्जा माफ करके दिया,
1: ठीक है, ठीक है। छोटा छोटा रिएक्शन एक और आप दोनों से ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी सुनिए ना, इसके लिए चोर कहिएगा, गद्दार कहिएगा देश के प्रधानमंत्री को। यही तो आप लोग कहते थे कि वो जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, अरे सुना हो, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको ये देश विरोधी कहते हैं। और आज आप वही काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा।
0: आपको किसानों को जब गद्दार कहा गया, याद है कि नहीं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल कहा गया, याद है कि नहीं आपको?
1: अगर किसी किसान को कहा गया तो तब भी हमने बोला कि गलत था। नहीं, इसको घसीटिए मत, इसको दूसरी तरफ मत ले जाइए। जब किसान के लिए किसी बीजेपी नेता ने ऐसा कहा, हमने उसका खुलकर विरोध किया, हमने उनको टोका भी। लेकिन आपके नेता सोच समझ के कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ही पे छोड़ देते हैं। शरद पवार की बात मानने की जरूरत नहीं है सर, छोड़ दीजिए, सब गलत कह रहे हैं। सुधांशु जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स, जब तेल कंपनियों को फायदा हुआ तब तो वो फायदा पास ऑन नहीं किया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई थी, वो फायदा तो लोगों को नहीं पास ऑन किया इन ऑयल कंपनीज ने। लेकिन अब जब कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हैं और विरोध करने जैसा भी नहीं कर रहे हैं, एक बार 3 रुपया बढ़ा देते हैं, एक बार 90 पैसा बढ़ा देते हैं, क्या ही लोग सड़कों पर निकलेगा? सुधांशु जी,
2: देखिए सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिरी बार भारत सरकार ने 4 साल पहले दाम बढ़ाया था। और दूसरा, झूठ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। जो भी पेट्रोलियम के दाम होते हैं, पेट्रोलियम उन दो चीजों में से एक है, शराब और पेट्रोलियम, जो जीएसटी में नहीं है। एक तिहाई उसकी कीमत होती है, एक तिहाई राज्य सरकार लेती है और एक तिहाई केंद्र सरकार। यानी 100 रुपए में समझिए 33-35 रुपए की कीमत, 33-33 रुपए का टैक्स राज्य केंद्र सरकार का और 35-40 रुपए का टैक्स राज्य सरकार का। जब इनकी राजस्थान में सरकार थी, भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, जब इनकी महाराष्ट्र में सरकार थी, सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र में। हमारी राज्य सरकारों ने 4 साल पहले बहुत सारे दाम कम किए थे, आपने कम किया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, वो जो कई लाख करोड़ रुपए आप ऑयल बॉन्ड्स लेके छोड़ गए थे, जो 2026 में चुकाना था, मगर इसमें भी वो तो फिर हम ही को चुकाना था, तो उसके लिए बचा के रखना था। और मैं अंजना जी, कांग्रेस की दूरदृष्टि की तारीफ कर रही हूं,
1: ठीक है।
2: उन्होंने 2026 के लिए ऑयल बॉन्ड रखे थे, चूंकि उन्हें यह पता था कि 2026 तक ये सत्ता में नहीं आने वाले। इनको पता था ना 14 में आएंगे, ना 19 में आएंगे, ना 24 में आएंगे, इसलिए जो 26 में होगा वो निपटेगा। इसके अलावा जो विकास के कार्य हुए अपनी जगह, मगर एक बात मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूं, भाई साहब गद्दार गद्दार की बात कर रहे हैं, हम गलत बोलते हैं क्यों भैया? आसाम में 19 MLA में कांग्रेस के कितने मुसलमान? 18। और जिन्ना की वो मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन किया, उस केरल में मुस्लिम लीग के साथ इनका समझौता, इनके मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने चुनाव के दौरान बोला कि मैं जमाते इस्लामी से सहयोग लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वो जमाते इस्लामी जिसने कहा शरिया के अनुसार शासन होना चाहिए, कोई जाके चेक कर सकता है, चुनाव के दौरान इन्होंने बोला था। अरे वो गद्दारी थोड़ी है, वो तो दिल की यारी है, उसमें तो सेकुलर यारी दिखाई पड़ती है। इसीलिए हर भार, और जिस नेता ने मार्च 2023 में लंदन में खड़े होकर कहा वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंडिया, मतलब भारत के आंतरिक मामलों में हाहाकार करके याचना की अमेरिका और इंग्लैंड से, वो गद्दारी थोड़ी है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, देश के लोगों को कह रहा हूं, देश की जनता खुद समझ रही है कौन गद्दार।
1: आशुतोष जी, आशुतोष जी, अच्छा ठीक है, अखिलेश जी अब जवाब बोलेंगे, मतलब गद्दारी पर भी बोली ऐसा शब्द बोलना सही है क्या? और शरद पवार जी ने जो कहा है वो सुनाएंगे, ठीक है, एक बार अखिलेश जी जवाब दे ले। अखिलेश,
0: हाँ सुनिए अंजना जी,
1: बोलिए।
0: इस देश को भली भांति पता है कि जंग आजादी से लेकर आज तक गद्दारी का किसका इतिहास है, किसका अतीत, भविष्य, वर्तमान सब गद्दारी से रंगा पुता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलने वाला, कितना झूठ बोला अभी गिना रहा हूं। जो बॉन्ड था वो मात्र साबित कर रहा हूं, जो बताया है कि बॉन्ड लिया था वो मात्र 3 लाख करोड़ था, और वो भी कांग्रेस ने चुकता क्या 1-1.5 साल में चुकता हो गया, हर सरकारें बॉन्ड लेती रही हैं। और आपने, केंद्र ने 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके 11 सालों में, चुनौती के साथ बोल रहा हूं, 44 लाख करोड़ रुपए आपने उससे कमाए हैं, और वो लाभ जनता को नहीं दिया है,
1: ठीक है। और दूसरी और इत्तेफाकन वही ग्राफिक्स इस वक्त चल रहा है, एक सेकंड सुधांशु जी, ये हमने नंबर्स कल ही ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था, जब तेल कंपनियों का 4 साल का मुनाफा था इतना, तब तो देखिए ये मुनाफा है उनका और ये करोड़ रुपए में है, नीचे का टिकर हटाई, हाँ ये देखिए, तब तो आपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया ना, ये सवाल तो आज बन रहा है ना।
0: इसकी जो
1: 3,63,209 करोड़ रुपए,
0: वही तो मैंने बताया, 3 लाख करोड़, 42 लाख करोड़
1: सुधांशु जी से पूछ रही हूँ ना कि इसका हिसाब भी आप ही दीजिएगा।
0: मुझे समय दी सुधांशु को, सिर्फ समय देंगे क्या?
1: अच्छा, दे रहे हैं,
0: मुझे समय दीजिए, नहीं
1: दे रहे हैं, चलिए इस बार बाद में बोलिए।
0: मैंने तो वो बता दिया आपको अंजना जी, की मात्र 3 लाख,
2: ठीक है इनको अरमान निकालने दीजिए,
0: मैंने तो आपको बता दिया आदमी कितना झूठा, आपने भी साबित कर दिया कि वो बॉन्ड मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का था।
1: नहीं, मैंने ये कहा साबित किया,
0: एक्स्ट्रा कमाए हैं,
1: जो एक्स्ट्रा कमाई है वो बताया
0: ना, ग्राफिक्स में एक्स्ट्रा,
1: तेल कंपनी का 4 साल का मुनाफा
0: देखिए। अब देखिए, जिस मुस्लिम लीग की बात करते हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई थी और फ्रीडम फाइटरों के मुखालफत की थी, अच्छा इतिहास याद दिलाया खुद को, ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। हमारे पार्टी में 664 MLA हैं, जिसमें मात्र 12% अल्पसंख्यक हैं, मात्र 12%, सिर्फ 12%। तीसरी बात जो आप बताते हैं कांग्रेस को बोलना कि माओवादी है, मुस्लिम लीगी है, अरे आपके अभी आरएसएस के नंबर टू ने क्या कहा पाकिस्तान को, क्लीन चिट दिया ना, भूल गया सारा कुछ। आपके रक्षा मंत्री ने विदेश में जाके किसको क्लीन चिट दिया, क्या बोला था, क्या बोला था?
1: अरे सर आप बहुत टाइम लेते हैं, इतना सवाल क्यों नहीं कर देते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए ना अपनी बात। अखिलेश जी आप लोग सेकंड राउंड में, नहीं अब सुधांशु जी नेक्स्ट राउंड में, सुधांशु जी नेक्स्ट राउंड में बोल देंगे। आशुतोष जी और संगीत जी के पास आ रहे हैं। आशुतोष जी, गद्दार बोलना क्या ठीक है? शरद पवार जो कह रहे हैं एक बार सुनाने को कहा जा रहा है, सुन सुन लीजिए क्या कहा है शरद पवार।
3: राष्ट्रीय विचार से संबंधित आंशिक सचिव होने का मेरी ऐसी शक्ति है, फिर आज भारत का सब है देशा की प्रतिष्ठा दफने से काम मोदी करता ही गोष अवसर सुनता नहीं इसका देशा की प्रतिष्ठा
1: चलिए आशुतोष जी इसी पर शुरुआती रिएक्शन में लेना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब पीएम के खिलाफ आपको ये करना है तो इस सारी की सारी भद पिटवाने के लिए पूरा सोशल मीडिया पर जो जो लिख सकते हैं अनाप शनाप सब लिखना है इसी में जब पीएम बाहर है।
2: पीएम कहीं भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह के बारे में क्या बोला था, वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए बोला, तो उस डिबेट में नहीं जाए तो अच्छा है। हमने तो वो दिन भी देखा है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते उनको अर्बन नक्सल बोला था और जंगल में जाना चाहिए,
1: और केजरीवाल ने साइकोपैथ लिखा था,
2: बिल्कुल बोला था, लेकिन उसके पहले शुरुआत कहीं और से हुई थी। खैर इस डिबेट मत जाए क्योंकि भाषा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, कोई पार्टी उससे छूती नहीं। अगर संसद के पटल पर किसी मुस्लिम सांसद अगर कटुआ बोला जा सकता है, माफ करिएगा इस्तेमाल कर रहा हूं ना, माफ, बट ये बोलना चाहिए। और उसके उस सांसद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो फिर कुछ कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं ऑयल बॉन्ड की बात हो रही थी, कितना ऑयल बॉन्ड का टोटल कितना था, 3,23,000 करोड़ इतना ही था ना, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1,53,000 करोड़ और उसका इंटरेस्ट भी इतने तरीके के आसपास था। तो आप 4,00,000 करोड़ वसूल लेते, 5,00,000 करोड़ वसूल लेते, 44,00,000 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे सिर्फ, और उसके बाद ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया जा रहा। मुझे लगता है कि सरकार को जो सबसे बड़े सवालों का जवाब देना चाहिए वो ये है कि जब $30 पेट्रोल मिल रहा था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तब भी हिंदुस्तान का नागरिक 90 रुपए पेट्रोल क्यों दे रहा था? दूसरा सवाल, अगर देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ चंगा सी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि पिछले 2 महीनों में कहा गया क्योंकि चुनाव था, तो फिर रुपया आपके 97 रुपए तक क्यों आ रहा डॉलर के मुकाबले? आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्यों स्टैग्नेंट है? आपका इंपोर्ट क्यों रिकॉर्ड लेवल में बढ़ता चला जा रहा है? आपकी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो लगातार क्यों घट रहा है? नेचुरल गैस का प्रोडक्शन लगातार क्यों घट रहा है? रिफाइनरी प्रोडक्ट का लगातार क्यों घट रहा है? फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है उसमें भी स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को इन सब चीजों से अलग हटके गंभीरता से बात करनी चाहिए। और सबसे चिंता की बात क्या है कि अभी ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के दबाव में आके भारत ने हमसे पेट्रोल लेना बंद किया, नहीं तो 20,000 करोड़ का हमारा बिजनेस चलता था। तो अब अगर जब यह काम विपक्ष कहता था तो आपको तकलीफ होती थी, अब ईरान के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको अपनी विदेश नीति को संभाल के चलना चाहिए था, क्योंकि आज की तारीख में जो ग्लोबल ट्रेड है उससे अफेक्टेड होता है। अगर यह परसेप्शन जाएगा कि अमेरिका कहेगा ईरान से तेल मत लो तो नहीं लेंगे, रूस से तेल मत लो तो नहीं लेंगे, वेनेजुएला से तेल नहीं लो तो नहीं लेंगे, और उसके बाद कहेगा आप रूस से तेल ले लो तो ले लेंगे, फिर कहेगा कि ईरान से तेल ले लो तो ले लेंगे, ऐसी विदेश नीति नहीं बननी चाहिए। भारत एक संप्रभु देश है,
1: ठीक है,
2: और भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर, उसका सम्मान हो। जहां तक भाषा का स्तर है, कोई पार्टी इससे छुपी नहीं।
1: तेल वाला डेटा भी दिखा दीजिए, क्योंकि 23-24 में इजाफा ही हुआ है, जो रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं उसमें इजाफा हुआ है। सुधांशु जी, संगीत रागी जी जल्दी से कमेंट आपका, वो कह रहे हैं कि इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है गद्दार शब्द पर, क्योंकि अब हर पार्टी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, बीजेपी ने भी कई बार किया है विपक्ष के नेताओं के।
4: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी को पढ़ करके आना चाहिए था कि अमेरिका को भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, और ईरान को कितना एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा इनको ठीक से जरा पढ़ करके आना चाहिए, तब इनको पता लगेगा कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है ईरान के रिस्पेक्ट में। मूल मुद्दे पर मैं आता हूं, गद्दार कौन है ये देश के आपका दर्शक को जानना चाहिए। कश्मीर के एक हिस्से को लेडी माउंटबेटन और माउंटबेटन के कहने पर पाकिस्तान को सौंप दिया। अब गद्दार कौन था, वो जवाहरलाल नेहरू थे या कौन था मुझे नहीं मालूम है। चीन को 38,000 किलोमीटर प्लस 5,180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर।
5: आप ये सबूत देंगे क्या कि माउंटबेटन कहने पे किया था? आप सबूत देंगे संगीत रागी? आप झूठ बोलेंगे बैठ के? आप सबूत देंगे? इतिहास का एक एक किताब बता दिए जहां ये लिखा हो, एक किताब। एक किताब पूछ रहा हूँ आपसे संगीत रागी, आप पढ़े लिखे आदमी, आप प्रोफेसर हैं, एक किताब बता दिए जान लिखा, एक हिस्टोरियन बताइए जिसे लिखा है, या सिर्फ राष्ट्रीय चैनल पे आके सिर्फ झूठ बोलेंगे आप? एक किताब बताइए, कोट वन हिस्टोरियन
4: 1948,
5: कोट वन हिस्टोरियन, हवा में बातें मत कीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी है।
1: अच्छा वही बता रहे हैं, सुनिए, बोलिए बोलिए, किताब का नाम बताइए, हिस्टोरियन का नाम बताइए।
4: 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन का लेटर है।
5: अरे किताब बताइए भाई, लेटर वेटर कुछ मत बताइए हमको, हिस्टोरियन का नाम बताइए जिसने ऐसा कहा है।
1: उस पे ज़ूम पे है,
4: दीजिए आगे बोल देने दे
1: जल्दी,
5: नहीं बता पाए ना आप।
4: 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को हाथों में जाने देना, देश के साथ गद्दारी किसने किया ये बताने की जरूरत। सिक्योरिटी काउंसिल भारत में परमानेंट मेंबरशिप भारत के
5: 2026 में आइए महाराज,
4: बहन विजया लक्ष्मी पंडित और नेहरू
5: 2026 में आइए भाई,
4: गद्दार कौन है?
5: अरे 2026 में आइए,
1: आप स्टूडियो में बैठने का फायदा ना उठाएं।
5: अरे किस देश को जान, वो कौन नेता था जिसने जिसको मुखबिरी के आरोप में पकड़ा गया था, मालूम है ना आपको? नाम बताऊं मैं
4: साथ बैठ का
5: नाम बताऊं मुखबिरी के आरोप में जो पकड़े गए थे?
1: ज़ूम पे उनकी आवाज,
4: देश को पता होना चाहिए कि गद्दार कौन है। उन लोगों के साथ चाइना के साथ एमओयू साइन करना 2008 के अंदर, और वो भी कॉन्फिडेंशियल,
5: चाइना के साथ झूला कौन झूला रहा था?
4: गद्दारी कौन
5: झूला कौन झूला रहा था?
4: एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, तुमने तो हमसे,
5: अरे भाई झूला कौन झूला रहा था उनको?
4: अरे भाई मित्र हमसे पूछ रहे थे ना कि लेटर,
5: मैं पूछ रहा हूँ आपसे कौन झूला झूला रहा था?
4: 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पत्र लिखा नेहरू को कि मेरे
5: दिखाइए, आप लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है।
4: अरे भाई नेशनल आर का यदि झूठ बोलता हूँ
5: रंजन जी, दिखाइए ना चिट्ठी मुझे,
4: करता हूँ मैं टेलीविजन पर आना बंद कर दूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ उसको।
1: सुधांशु जी को दिखा दीजिए, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, उनका ऑडियो कट रहा है, एक बार फिर से रीकनेक्ट कीजिए, आवाज उनकी दब जा रही है, आप स्टूडियो में रहने का ना खूब फायदा उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुधांशु जी
5: झूठ बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना, अभी सुधांशु जी ने कह दिया नीतीश कुमार ने बोला नहीं था।
2: देखिए अब झूठ बोलने की बात, आशुतोष जी अब आप कह रहे हैं सोर्स, तो अब भाई साहब अब मैं आपको गद्दारी का सोर्स बताता हूं सर, विद डेट और विद सोर्स बताता हूं। अब सारे लाखों दर्शकों का दो भैया सब लोग कान खोल के सुनो, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा जॉन एफ कैनेडी को कि आप हमको B2 बॉम्बर्स का स्क्वाडन दीजिए, पायलट आपके होंगे, रेडार आपका होगा, टेक्नीशियन आपकी होगी, कमांड आपकी होगी, सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2। आशुतोष जी और से निपोरिए सुनिए, जो जेएफके लाइब्रेरी ने 2010 में जो उसको डीक्लासिफाई
5: किया, अक्सर ब्लफ मार देते हैं, ऐसा थोड़ी देर पहले उन्होंने ब्लफ मारा नीतीश कुमार को लेकर, अभी ब्लफ मारा,
1: लेट हिम स्पीक ऐसे मत
2: सुनिए,
5: अभी ब्लफ मारा नीतीश कुमार ने,
1: या तो फिर हम लोग चले जाते हैं, आप बोलते रहिए थोड़ा बारी बारी बीच में,
2: जवाहरलाल नेहरू,
1: सुधांशु जी बोलिए।
2: देखिए बेटे अब देखिए जैसे ही लेटर कोट होने लगा बिलबिलाने लगे, सर अपने मिनट पे बोलिए फिर अपने अरमान निकालिएगा, मेरा फैक्ट गलत हो, अभी तक अखिलेश प्रताप सिंह जी ने एक फैक्ट नहीं बोला। अब सुनिए ये जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किए गए जवाहरलाल नेहरू के लेटर में पैरा नंबर 7 और 9 में है। दूसरा, उस समय भारत के अमेरिका में राजदूत BK नेहरू, जो नेहरू जी के सगे भतीजे थे यानी चाचा जी के असली भतीजे थे, उनकी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है कि साहब ये इतना बड़ा सरेंडर था कि जब मैं ये लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइजर को देने गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बैठ के रोने से अपने को नहीं रोक पाया कि हम अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे थे। नहीं नहीं, ये कोई गद्दारी थोड़ी थी। और सुनिए, अंग्रेजों के द्वारा दोनों बार शपथ लेके बने ब्रिटिश हुकूमत में यूनियन जैक झंडे के नीचे क्राउन की निष्ठा की शपथ लेकर, वेवेल के द्वारा शपथ लेकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के चीफ बने जवाहरलाल नेहरू। अरे वो
1: ठीक है, हम लोग वर्तमान पर जरा आ जाते हैं।
2: वो तो ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे। अब आज की बात पे आते, छोड़िए अब आज की बात पे आते, वर्तमान पे इनको बताना चाहता हूं। भाई साहब, आपने जो बात कही कि 3.25 लाख करोड़ के वो थे ऑयल बॉन्ड्स, तो मैं अंजना जी ये भी कहूंगा, जरा अपनी टीम से कहिए पूरा डाटा दिखाया करें, क्योंकि 35% तो राज्य सरकारों को मिला है। राज्य सरकारें 14 से लेकर अब तक कितने राज्य सरकारों ने कितने लाख करोड़ रुपए कमाया बताना चाहिए पूरा।
1: ठीक है,
2: सिर्फ ऑयल कंपनियों ने नहीं कमाया, लेकिन सरकार ने कमाया।
1: और अखिलेश जी, अब तो सहमति इस पर बनाइए कि जीएसटी में लाना है, कांग्रेस पार्टी भी कमिटमेंट करे।
2: सुनिए पूरी बात,
1: अच्छा पूरी कीजिए सुधांशु जी,
2: पूरी बात तो सुन लीजिए
1: जल्दी
2: पूरी। हाँ, और आशुतोष जी को नहीं बोलना चाहिए, भाई साहब इस दौर में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट हुआ है जो $660 बिलियन था, यानी इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जो आपको नहीं पता होगा। और रही बात इसकी कि अगर उस समय सरकार ने लिया तो 6% था फिस्कल डेफिसिट, यानी भारत का वित्तीय घाटा जो 6.5% था 2014 में आज 4% आया है, तो वो कैसे आया है? अगर 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है तो पैसे कहां से आ रहे हैं ये बताइए। अगर इस समय भारत ने डिफेंस में इतना मैन्युफैक्चरिंग किया वो पैसे कहां से आ रहे हैं? 75 एयरपोर्ट बने वो पैसे कहां से आ रहे हैं? रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो पैसे कहां से आ रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है वो पैसे कहां से आ रहे हैं? मगर इन्हें शायद लगता होगा, मनमोहन सिंह जी ने कहा था पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं, तो जो जो काम हुआ है उन सारे पैसों में, सारे लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, चाइना के बॉर्डर पर जहां पर बहुत भारी कीमत लगती है सड़क बनाने की, वो सड़कें भी बनी है, इसीलिए आज वित्तीय घाटा 4% है। महंगाई की दर दिसंबर में 1.33% थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और हमारी ग्रोथ रेट 7.4%।
5: बस बस
2: भाई सब तब जाके बैलेंसिंग हुई है।
5: मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं कह दूं कि आप अक्सर ब्लफ मारते हैं। नीतीश कुमार ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होके ये कहा था कि
1: मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि उसके बाद वो बाइक नहीं मिली थी, एक सेकंड, और उन्होंने इनकार किया था कि मैंने नहीं बोला। लेकिन मुझे भी यही याद था इसीलिए मैंने उनको टोका।
5: मैं करेक्ट कर देता हूं, गिरिराज सिंह ने 2016 में, सुशील मोदी ने रविशंकर प्रसाद, एक मिनट सिद्धांत जी प्लीज,
1: उन्होंने डिनाई किया था,
5: गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी ने रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा कहा था नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात,
1: बीजेपी ने माफी की मांग की थी,
5: बिल्कुल माफी मांगनी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपका एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, डेटा तो कहता है $442 बिलियन पिछले दिनों से एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है। आपका जो इंपोर्ट है वो 17% की गति से बढ़ रहा है, रिकॉर्ड हाई है इस वक्त, $775 बिलियन। और सबसे बड़ी बात ये बता दीजिए भाई कि क्यों रुपया 97 जा रहा है, सब चंगा है ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब देते नहीं, इसका जवाब क्यों 97 रुपया हो गया है, इसका कोई कारण हो तो बता दीजिए मुझे आप।
1: ठीक ठीक है, अब आप एंकर नहीं है तो अब आप चुप बैठेंगे, स्टूडियो में बैठे हैं, ठीक है,
5: इतना कसम मत डांटिए,
1: नहीं थोड़ा सा बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं,
2: बोल सकता
1: अखिलेश जी बोल ही नहीं पा रहे हैं आपके चक्कर में। हाँ सुधांशु जी, इस पर डायरेक्ट जवाब, रुपया जो कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले,
2: बिल्कुल डायरेक्ट जवाब
1: उसके
2: रुपये बता रहा हूँ, रुपये का डॉलर के मुकाबले जो स्थिति है उसका कारण यह है कि अमेरिका में पहली बार उसको डीडॉलराइजेशन का खतरा हो रहा है, इसलिए अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए।
1: हमारा
2: 2 साल पहले अमेरिकन कांग्रेस में डीडॉलराइजेशन पर बहस हुई है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर अमेरिकन हिस्ट्री में कभी डीडॉलराइजेशन पर बहस हुई हो तो बताइए। उसका कारण यह है कि सब देश डॉलर में से पैसा निकाल रहे हैं, चाइना का पहले डॉलर्स में रिजर्व 84% था, वो 44% पे आ गया, जब से $300 बिलियन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो यूरोप में रशिया के थे, रशिया अमेरिका ने कॉन्फिस्केट कर लिए, उसके बाद डर लग गया सारे देशों के, सबने डॉलर में से पैसा
1: हटाना। डीडॉलराइजेशन पर सीधा सवाल व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रशिया से मैंने पूछा था, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, इस पर चर्चा जरूर हो रही है लेकिन डिसाइडेड कुछ नहीं है। अब रूबल तेल बेच के युद्ध का फायदा उठाकर मजबूत हो गया है डॉलर के मुकाबले, कई देशों की करेंसी घटी है, कमजोर हुई है, लेकिन हमारा रोडमैप क्या है ये मैं पूछ रही हूं।
2: नहीं अंजना जी सुनिए, अंजना जी आपने शायद सुना नहीं, अंजना जी आपने सुना नहीं, मैं आपको भी चैलेंज करके कहता हूं, मैंने कहा यूएस कांग्रेस पे डीडॉलराइजेशन पे बहस हुई है जून
1: 14 तभी तो मैंने पूछा
2: मैं कांग्रेस बात कर यूएस कांग्रेस में यानी अमेरिका में डर हो गया डीडॉलराइजेशन का, इसलिए वो डॉलर को बचाने में लगे हुए हैं। और ये प्रॉब्लम पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है जब से अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड
1: आपको टोक रही है। एक सेकंड, खबर आ रही है राहुल गांधी की टिप्पणी लोकतंत्र के प्रति अनादर है, ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश का ये अपमान है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अब एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए और अखिलेश जी को बोलने दीजिए उसके बाद। सुधांशु जी एक लाइन में।
2: हाँ, मैं सिर्फ इतना, बस एक लाइन, मैं सिर्फ कह रहा हूं इस समय पूरे विश्व में जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका के लिए डॉलर की डोमिनेंस का संकट उत्पन्न हुआ है। अमेरिकन कांग्रेस में इसमें बाकायदा बहस हुई है, इसलिए अमेरिका डॉलर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाकर दुनिया में से डॉलर विड्रॉ करने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भारत आज वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग है और आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने 16 अप्रैल 2026 यानी एक महीना पहले कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट वर्ल्ड की ग्रोथ रेट की डबल होगी चूंकि भारत की इकोनॉमी बेस स्ट्रांग है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा चीफ ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 16th of April 2026 एनीबॉडी कैन गो एंड चेक।
0: अंजना जी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले का ज्ञान जो है, आप क्यों देश को गुमराह कराने में इस आदमी को इतना समय देती हैं? ये आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है। अरे रुक जाओ मेरे झूठे भाई, दिन भर झूठ बोलते हो। आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है, बता रहे थे सड़कें कहां, बीच में बोलता हूँ परेशान मत हो। अरे परेशान मत हो झूठे आदमी, प्लीज।
1: अखिलेश जी देखिए ना, आप लोग अपने नेताओं पर बोलते ही हैं। मेरे शो में मैंने तो नहीं देखा कि आपको सुधांशु जी ने झूठे या कुछ भी कहा हो। थोड़ा एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, वरना आप लोग इसको भी ऐसे ही बना देंगे जैसा इधर उधर की भाषा है। प्लीज आप बोलिए कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि फिर उधर से भी आएगा, फिर मेरे लिए नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज
0: अंजना जी,
1: गलत बोल रहे हैं बोल के आप अपनी बात रखें।
0: प्लीज सुनिए, डिफेंड मत करिए उस आदमी ने। तीन
1: अपशब्द नहीं बोलेंगे मेरे शो में, आप मेरे शो में अपशब्द नहीं बोलेंगे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, डोंट ट्राई दिस कार्ड विद मी मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह। अपशब्द नहीं बोलेंगे आप, तो नहीं बोलेंगे, बोलिए।
0: लेकिन जब कोई ये कहे कि मैंने पेट्रोलियम बॉन्ड दिए हैं और उसमें यह छुपाए कि मात्र 3 लाख करोड़ रुपया था, जब पोल खुलती है तो उसे क्या बोला जाएगा? देखिए मोदी जी ने कहा था जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री देश की साख गिरती है। मैं नहीं कह रहा, आज 100 के करीब जा रहा है, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं है कि प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। और ये जो काल चल रहा है यह आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल है। अब गिना रहे थे सुधांशु जी, ये बनाया सड़क बनाया वो बनाया, 230 लाख करोड़ रुपया कर्जा कहां गया? किसने लिया? किस काम के लिए लिया? 10 वर्षों में आपने 190 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया और 35 किलोमीटर पर डे सड़क बना रहे हो। जिस दिन गडकरी जी आए थे तुरंत उन्होंने पहला जीओ जारी किया था कि अगर 6 लेन सड़क जो 6 लेन की सड़क एक साथ बन रही है तो 1 किलोमीटर गिना जाता था, उन्होंने कह दिया ये 6 किलोमीटर गिना जाएगा। ये किस मंत्रालय ने जारी किया था? आप लोग इसी विदेश उप मंत्री अमरीका का दिल्ली में बोल के जाता है कि भारत को हम मजबूत नहीं होने देंगे, चीन वाली गलती नहीं करेंगे। मुंह में दही जमा था राष्ट्रभक्तों को। मैं अभी आगरा नहीं जा रहा हूं कि किसके गवाही पे आगरा में सजा हुई थी फ्रीडम फाइटरों को, पता कर लेना। और दूसरी बात, किस तरह से अमेरिका हमको कंट्रोल करता है हमारे देश में, हम लोगों को भी हमारा प्रधानमंत्री पे गर्व होने की अधिकार है, लेकिन अमेरिका उठ जा, बैठ जा, खड़े हो जा, झूम जा, नाच जा, ले बंद कर दे खरीदना शुरू कर दे, अब उसके पास चला जा। ये क्यों करता, क्यों उसके इशारे पे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो बोला गया ना कि कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों करते हैं? भारत क्या किसी से कमजोर राष्ट्र है? उसमें से आप देश भर का ज्ञान बघारेंगे। ये सब चीजें बंद करिए, आप देश के साथ रहिए, आप देश के साथ वफादारी करिए। आपको जब कहा जाता है विपक्ष की बात नहीं माननी, आपको उसका सुझाव भी नहीं मानना है। पिछले 12 वर्षों में विपक्ष ने जितने भी सुझाव दिया है अंजना जी, इन लोगों ने उसका उपहास किया है, उसको गंभीरता से नहीं लिया। वो जीएसटी से शुरू करिए, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन से लेकर के और ये पश्चिम एशिया के संकट तक एकदम स्पेसिफिक तरीके से राहुल जी और विपक्ष ने बताया है और हर मौके पर साथ खड़ा रहा है। जब ये हमला हुआ था, हमने स्ट्राइक किया था, उस वक्त सबसे पहले विपक्ष ने, राहुल गांधी ने विपक्ष ने कहा आइए हम आपके साथ हैं। ऑल पार्टी मीट में राहुल मोदी जी चले गए, नहीं आए, चले गए बिहार भाषण करने। सबसे ज्यादा मजबूती से देश के मुद्दे पर चट्टान के साथ विपक्ष खड़ा रहा है।
1: संगीत राजी जी जल्दी से कमेंट।
0: आप शब्दों के साथ
4: अंजना जी, मुझे नहीं मालूम है कि आशुतोष कहां से डेटा लेकर के आते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट 2020-21 से लेकर के अब तक हमेशा अपराइज रहा है, ग्रोथ रहा है, मर्चेंडाइज सेक्टर में भी और सर्विस सेक्टर के अंदर भी। पता नहीं ये भाई साहब कौन सा कांग्रेस के दफ्तर से लाते हैं या जॉर्ज सोरेस के आजकल दफ्तर से ये भी आना शुरू गया। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा को कोट कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं। यदि मिनिस्ट्री पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन हर बात का मजाक में उड़ा देना कि आप गलत बोल रहे हैं सोर्स से। अरे मैंने तो कहा था आपको कि 15 अगस्त 1948 का लॉर्ड माउंटबेटन का लेटर पढ़ लो, फिर पता लगेगा कि नेहरू ने कैसी गद्दारी की थी, फिर पता लगेगा कि उस समय किसके सलाह पर उन्होंने युद्ध जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
1: में। 26
4: का ही डेटा बोल रहा हूँ भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा 26 का ही बोल रहा हूँ।
1: वैसे ही उनकी आवाज थरथरा के आ रही है।
4: बात कर रहा हूं।
1: ठीक है, अब बोलिए, अब बोलिए, अब जवाब दीजिए।
5: पहली बात तो संगीत रागी के पास कुछ डेटा वेटा होता नहीं है। मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट 2025-2026 रिकॉर्ड लेवल पे 333 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है।
1: ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? आशुतोष, ये काउंटर क्वेश्चन है ना?
5: हाँ, सुनो,
1: देखिए दोनों आप लोग अपनी जगह पर सही है। एक्सपोर्ट में भी इजाफा है लेकिन इंपोर्ट में भी इजाफा है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है, इसलिए दोनों सही है अपनी जगह।
5: पता नहीं, बता रहा हूँ
1: विषय पर आई।
5: आपका जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड 7% की गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, रिकॉर्ड।
1: और एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है?
5: 775 बिलियन डॉलर स्टैगनेंट है।
1: नहीं, एक्सपोर्ट भी 4.5% है, 6.5% इंपोर्ट बढ़ा है और 4.5% एक्सपोर्ट, जो एवरेज बताया जा रहा
5: है ना,
1: तो डेफिसिट है पर एक्सपोर्ट में भी इजाफा है।
5: इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ,
1: सही बताना।
5: एक मिनट सुनिए,
1: स्टेबल नहीं,
5: सुन लीजिए मेरी बात। अब ये जो आपका एक्सपोर्ट कहाँ है, इंपोर्ट कहाँ पे, ये इंबैलेंस क्यों है?
1: ये इंबैलेंस क्यों है? ये सवाल बनता है, बट एक्सपोर्ट में
5: इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हालत खराब है। आपने 2014 में
1: कहा सेक्टर और वही करके चीन जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। जल्दी से सिद्धांशु जी, सिर्फ 2 लाइन का समय।
2: मैन्युफैक्चरिंग का बस एक उदाहरण देता हूँ, एक लाइन में। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति यूज करता है, मोबाइल। हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर 2014 में भी थे, हमारी फैक्ट्रियां केवल 2 थी, आज 340 है, सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अब दूसरी बात बताना चाहता हूं भाई साहब, आप अखिलेश जी, आप डाटा नहीं बोल पाते और झूठ झूठ बोलने लगते हैं। ये बताइए, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है भारत का? 80%, चाइना का 100%, अमेरिका का 125% और जापान का 250%।
1: समय इतने की इजाजत देता है, मुझे सबको रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे जरूर रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको बताएंगे कि विपक्ष के लिए मोदी और मेलेनी की मेलेडी इतनी तीखी क्यों लग रही है। भारत के सपेरों का देश कहने वाले विदेशी मीडिया के फन में भारत के लिए कितना जहर। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन और शी जिनपिंग की यारी ट्रंप की डील पर पड़ रही है भारी। और आखिर में बताएंगे कि मंदिर में दान धर्म से कब तक होगी सरकारों की जेब गर्म। देखते रहिए।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
14: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
15: विक्रम, एक हिंट तो देते।
16: विक्रम!
15: हिंट।
14: बड़े आराम से।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
9: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
12: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं
11: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: Character, the taste of success.
16: Like I said before, we better hold the sins.
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকে গানি।
9: पुष्पा झुकेगा नहीं, ये फिल्मी डायलॉग मारने वाले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान न सिर्फ झुके बल्कि फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खुद को चुनावी दौड़ से बाहर भी कर लिया।
10: सम्माननीय मुख्यमंत्री फलता उन्नयन जन्य स्पेशल पैकेज दिच्छे, सेई जन्य आमी आगामी 21 मे जे रिपोल आछे से रिपोलेर कांटेस्ट थे के, आमी निजे के दूरे सरिये निलाम।
9: इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो। फलता और जहांगीर खान का रिश्ता सीधा अभिषेक बनर्जी से है। अभिषेक बनर्जी को हार्बर मॉडल पर इतना भरोसा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने सीधे अमित शाह को चुनौती दी थी। अब सवाल ये है कि अगर अभिषेक को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना ही भरोसा था तो वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहाँ प्रचार के लिए क्यों नहीं आए। BJP का दावा है कि TMC ने यहाँ अभी तक डर और अपने सिंडिकेट के जरिए चुनाव जीता, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका डायमंड हार्बर मॉडल दरक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: बंगाल में बुलडोजर की धमक अब खुलकर सुनाई दे रही है। संदेश साफ है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण सहन नहीं होगा, कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों को यूं ही तोड़ दिया जाएगा, जैसे आसनसोल में टीएमसी के इस दफ्तर को तोड़ दिया गया। शुभेंदु नई लकीर खींच रहे हैं, नए बंगाल में अगर अतिक्रमण होता है तो एक्शन होगा, जैसे हावड़ा में इस 5 मंजिला इमारत पर हो रहा है। 1 मंजिल के निर्माण की इजाजत थी, अवैध तरीके से 5 मंजिल बना दी गई, तो प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा चला आया। अब बंगाल में एक बात की जबरदस्त चर्चा है कि क्या शुभेंदु सरकार की बुलडोजर ममता के सबसे विश्वस्त और टीएमसी का भविष्य माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के घरों पर भी दौड़ेंगे। अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर शुभेंदु ने ट्रेलर तो दिखा ही दिया है। सुशासन का पहला मंत्र है कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। शुभेंदु के बुलडोजर उस बड़े वर्ग में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर बंगाल में बीजेपी को महाविजय दिलाई और पहली सरकार बनवाई। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही, बीजेपी को वहां सियासी जमीन बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हत्याएं हुई, एक इलाके से दूसरे इलाके में पलायन की मजबूरी भी सामने आई। अब शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी के पार्टी कैडर को उनकी सुरक्षा की गारंटी का मैसेज है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
1: भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी, रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है।

0: कूटनीति में मेलेडी, राजनीति में गद्दार शब्द का इस्तेमाल। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अब देखिए संपूर्ण समाचार मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: आज शाम के 7 बजने वाले हैं। आपको मालूम है कि अब 7 बजे खबर दिखाने का अंदाज बदल गया है। आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में अभी तक की सभी बड़ी खबरें आप देखेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। मेलोडी डिप्लोमेसी के बाद बोले पीएम मोदी, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद के साथ लड़ने का वादा। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को कहा गद्दार, मेलोडी गिफ्ट देने पर भी तंज, नितिन नवीन बोले चुकानी पड़ेगी कीमत। नीट री एग्जाम पर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, सोशल मीडिया पर खास नजर, मेटा गूगल टेलीग्राम के एग्जीक्यूटिव से चर्चा। केरलम पर महंगाई की मार, सहकारी डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, प्रति लीटर 4 रुपए महंगा, 1 जून से लागू होंगी नई दरें। मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन से एनक्रोचमेंट हटाने पर हंगामा, विरोध करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा अभियान। राहुल गांधी का एक बयान जिसने भारतीय राजनीति में बवंडर ला दिया है। आज राहुल गांधी अमेठी में थे, वहां वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, लेकिन संवाद के बाद जब वो मंच पर आए तो आक्रोश की आग ऐसी भड़की कि उनके मुंह से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ के लिए अपशब्दों की ज्वाला निकली।
1: अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी पहुंचे तो अंदाज अलग था। दलित और पिछड़ों को अपने पाले में लाने का इरादा लिए राहुल ने शहीद वीरापासी की मूर्ति का अनावरण किया। राहुल की तस्वीरें देखकर यही लग रहा था कि वो 27 के रण की शुरुआत कर रहे हैं, मगर इस शुरुआत में ही राहुल के भीतर के आक्रोश ने ऐसी कुलांचे भरी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के लिए उनके मुंह से अपशब्दों की आंधी निकली।
2: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
1: राहुल के इस अभद्र बयान ने राजनीति में बवंडर ला दिया। किसी ने राहुल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, किसी ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए।
3: उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: हैरानी की बात यह है कि राहुल के बयान से उनके सहयोगी दल इत्तेफाक नहीं रखते। शरद पवार ने कहा कि राजनीतिक मतभेद भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के आड़े नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी दल से राहुल को समर्थन भले न मिला हो, मगर राहुल पीएम पर हमलावर रहे। उन्होंने देश की मौजूदा समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा, सवाल किया और पीएम पर तंज कसे।
4: महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट चढ़वा दो, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना,
1: सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के बाण तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी तलखियां जो अब शब्दों में बदल जाएं वो कहां तक वाजिब है। समर्थ श्रीवास्तव, अमेठी, आज तक।
0: यूपी में राहुल गांधी दलितों को साधने की तैयारी में है, तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव भी पिछड़ों को जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अखिलेश ने फिर एक बार पीडीए आरक्षण का दांव चला है। उन्होंने कहा है कि पीडीए की ये लड़ाई 5% बनाम 95% की है। इसके साथ ही अखिलेश ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाने साधे।
1: 27 के समर के लिए अपनी राहों के कील कांटों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं अखिलेश यादव। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले

0: भाजपा बुलेट से दिया गया।
1: बीजेपी कहती है कि सूबे में पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, मगर इन एनकाउंटर्स पर अब सियासत भी सर उठाए हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है।
2: केवल और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा?
1: तेजस्वी सवाल कर रहे हैं, मगर सीएम बनने के साथ ही सम्राट चौधरी यूपी मॉडल पर चल रहे हैं। पहले धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन और अब फटाफट एनकाउंटर। पटना से शशि भूषण और प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पश्चिम बंगाल में भी योगी का बुलडोजर मॉडल हिट दिख रहा है। मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने लीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ बुलडोजर को खुली छूट दे दी है। तो बुलडोजर की चपेट में आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर भी नहीं बच पाया। अब शुवेंदु के बुलडोजर का अगला टारगेट अभिषेक बैनर्जी की कथित रूप से अवैध संपत्तियां हैं।
1: पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो डेढ़ दशक में पहली बार दिखी है। 15 साल बाद टीएमसी के विधायक विपक्ष का धर्म निभाते हुए शुभेंदु सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से उनके पार्टी दफ्तरों और नेताओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है।
4: यहाँ देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, वो यहाँ पर बीआर अंबेडकर के स्टैचू के नीचे बैठकर कई सारे इश्यूओं के खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं। चाहे वो जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके तरफ से आरोप है कि जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, वैसे में सरकार या पुलिस तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ खड़े नहीं है, उन्हें घर वापसी के लिए मदद नहीं कर रहे हैं।
1: दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली है, तब से बुलडोजर की गरज लगातार सुनाई दे रही है। बंगाल में बुलडोजर की धमक का संदेश साफ है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
5: डरने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
1: अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजी और टीएमसी के सबसे आक्रामक नेता अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाने के संकेत दे दिए हैं। शुभेंदु ने अभिषेक की 43 संपत्तियों की लिस्ट जारी कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।
5: भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी।
1: शुभेंदु का बुलडोजर एक्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की गारंटी मानी जा रही है। अनुपम मिश्रा के साथ तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
3: अब बात इंसाफ मांगती बेटियों की, उन बेटियों की जिनकी सांसें समाज के गुनाहगारों ने छीन ली। कहीं दहेज के नाम पर, कहीं सपनों को कुचलने के नाम पर, कहीं सनक के नाम पर, तो कहीं आवाज उठाने के नाम पर। भोपाल में ट्विशा की मौत सवालों के घेरे में है। वहां तो सास जज रही हैं, पति कानून का सर्टिफिकेट रखता है। गोरखपुर की बेटी रत्ना को उसके सलून के संचालकों ने इतना परेशान किया कि मौत को उसने गले लगा लिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर मांगने का आरोप लगा। जब बेटी के पिता सक्षम नहीं थे तो दीपिका की मौत छत से गिरने से हो गई। अब एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री में इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ट्विशा के पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी, मगर भोपाल कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया है। रवीश पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, किस ग्राउंड पर वो पोस्टमार्टम फिर से दोबारा कराने पर रिजेक्ट किया गया है इस अपील को? रवीश, ट्विशा के पिता ने, अगर आपको याद हो, कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि बहुत सारे जो चोट है शायद त्विशा के जो बॉडी पर वो

0: जो पहले पोस्टमार्टम है उसमें काउंट नहीं किया गया था, इसीलिए दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और ये पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो, भोपाल में या मध्य प्रदेश में नहीं हो। और उनकी ये याचिका भोपाल कोर्ट में थी और भोपाल कोर्ट ने अब उस मांग को रिजेक्ट कर दिया। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रवीश, किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है?
1: देखिए, कोर्ट का यहाँ पे साफ तौर पर मानना था कि जो घटना हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है और फिलहाल मध्य प्रदेश से बाहर नहीं, ये पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश में ही अगर संभव हो तो होना चाहिए। इसीलिए जो याचिका थी, जो पहली मांग थी परिवार की कि भोपाल या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली एम्स में ये पोस्टमार्टम हो, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही शव को सुरक्षित रखने के निर्देश भी लोकल SHO और एम्स प्रबंधन को दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि संभव हो तो एम्स प्रबंधन, जो कि फिलहाल मना कर रहा है कि उसके पास -80 डिग्री तापमान की सुविधा नहीं है जिसमें शव को सुरक्षित रखा जा सके, तो कोर्ट ने लोकल SHO यानी कटारा हिल्स थाने के जो SHO हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो मध्य प्रदेश के जो और दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उनसे चर्चा करें, उनसे बात करें और बिना देरी किए कोर्ट को ये बताए कि एम्स के अलावा क्या किसी और संस्थान के पास वो सुविधा उपलब्ध है जहां पर इस शव को -80 डिग्री तापमान में रखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो यही है कि कोर्ट ने फिलहाल इस शव को भोपाल या मध्य प्रदेश से बाहर ले जाने पर तो आज की तारीख में रोक लगा दी और साफ कर दिया है कि दिल्ली एम्स में त्रिशा का जो पोस्टमार्टम है जिसकी मांग परिवार ने की थी सेकंड पोस्टमार्टम की, वो डिसअलाउ कर दी गई है।
0: चलिए रवीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मोहाली में दिन दहाड़े 4 साल की बच्ची के अपहरण की तस्वीर आई है। बाइक और कार से आए बदमाशों ने पहले बच्ची का अपहरण किया और फिर उसके दादा दादी को कार से कुचलने की कोशिश भी की।
2: एक 4 साल की बच्ची की दिन दहाड़े किडनैपिंग की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। दिन के उजाले में बदमाश आए और बच्ची को उठा ले गए। तस्वीरें मोहाली के कुराली की है। यह एक स्कूटी पर ये शख्स अपनी पत्नी और पोती के साथ आते हैं। महिला स्कूटी से उतरती है, इनके ठीक पीछे बाइक पर सवार 2 नकाबपोश आते हैं और वो बच्ची को अपनी ओर खींचते हैं। इसके तुरंत बाद पीछे से एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार आती है। इस कार में 3 लोग सवार हैं। तीनों नीचे उतरते हैं और बच्ची को अपनी ओर खींचते हैं। बच्ची के दादा दादी शोर मचाते हैं लेकिन ये बदमाश बच्ची को कार में खींच लेते हैं। दादा दादी कार को रोकने का प्रयास करते हैं तो बदमाश उन्हें कार से कुचलने की कोशिश भी करते हैं। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर निकलते हैं लेकिन तब तक बदमाश बच्ची को लेकर भाग जाते हैं। बच्ची के पिता बताते हैं कि उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है, उन्हें शक है कि उनकी बच्ची को उनकी पत्नी ने ही किडनैप कराया है।
3: मेरे मदर फादर ही रोज बच्ची को स्कूल तो लेके आते हैं, वही छड़ के आते हैं ते जदों घर पहुंचे हैं ते उत्थे 7-8 जने अनपछाते सीगे।
2: अब पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। बायलैटरल से पहले मेलोनी ने पीएम मोदी को दोस्त कहकर संबोधित करते हुए इटली पहुंचने पर स्वागत किया। दोनों राजनेताओं ने अपनी मुलाकात में बताया कि भारत और इटली के बीच संबंध कितना बेहतर और मजबूत है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉपिक।
2: पीएम मोदी के इटली दौरे की ये सबसे प्यारी तस्वीर है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉपिक।
2: ये अपने दोस्त के लिए पीएम मोदी का खास तोहफा है। मोदी ने मेलोनी को भारतीय कंपनी पार्ले की मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया। इस खास चॉकलेट को गिफ्ट कर मोदी ने इटली और भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय वार्ता से पहले ही अपनी मजबूत दोस्ती का परिचय दिया। जब जब मेलोनी और मोदी मिले हैं हर बार राजनयिक रिश्ता और मजबूत हुआ है। दुनिया भी भारत और इटली के मजबूत संबंधों की गवाह बनी है। बीती रात पीएम मोदी रोम पहुंचे तो प्रधानमंत्री मेलोनी ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी सेल्फी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मेलोनी ने पोस्ट में लिखा कि वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। मेलोनी खुद रोम पहुंची। मेलोनी पीएम मोदी के साथ कोलोसियम पहुंचे। दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक कार में सफर भी किया। मेलोनी की ऐसी मेहमान नवाजी की कुछ तस्वीरें पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात 8 बार हो चुकी है और अब एक बार फिर दोनों रोम में मिले हैं जहां भारत और इटली के बीच कई समझौते हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: उधर मेलोनी और मोदी की तस्वीरें सामने आई तो इधर कांग्रेस ने टॉफी को मुद्दा बना दिया।
5: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
0: अब बात क्रिकेट जगत की। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की जंग है। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बता दें कि आईपीएल के इस सीजन में केकेआर 8 नंबर पर है जबकि मुंबई इंडियंस 9 नंबर पर।
2: एक टीम 8वें पायदान पर, एक टीम 9वें पायदान पर। प्लेऑफ का सपना तो पहले ही टूट चुका है, अब बारी बची कुछ साख बचाने का है। पहले 5 बार की चैंपियन मुंबई की बात, कभी रोहित शर्मा बाहर बैठे तो कभी हार्दिक पांड्या, कभी निजी वजह से सूर्य कुमार यादव मैदान में नहीं उतरे। नतीजा ये हुआ कि सितारों से भरी मुंबई इंडियंस की टीम 10 टीमों में इस वक्त 9वें पायदान पर फंसी हुई संघर्ष कर रही है। वैसे अगर इस टीम के हाल बेहाल है तो इसमें जसप्रीत बुमराह जैसे स्ट्राइक गेंदबाज की नाकामी भी बड़ी वजह है। 12 मुकाबलों में सिर्फ 3 शिकार, आईपीएल के इतिहास में जसप्रीत बुमराह का ये सबसे खराब रिकॉर्ड है। अब 3 बार चैंपियन बन चुकी कोलकाता की कहानी सुनिए। बिल्कुल सपनों सरी थी इस सीजन शुरू के 6 मैचों में एक भी जीत न हासिल करने वाली कोलकाता की टीम बाद में 6 में से 5 मैच जीत गई। देखना दिलचस्प होगा कि अजिंक्य रहाणे की टीम आज अपने मैदान पर क्या कमाल करती है। उनके तूफानी बल्लेबाज फिनलन और अंग क्रिस चल निकले तो उनके रनों की बरसात में मुंबई के अरमान बहने तय है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां।
2: कारोबार के दौरान खरीदारी के सकारात्मक माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 117 अंक मजबूत होकर 75,318 और निफ्टी 41 अंक चढ़कर 23,659 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए पर दबाव बना रहा। डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी निकासी के चलते रुपया आज फिर नए निचले स्तर पर पहुंच गया। आखिर में डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.83 पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में भी आज गिरावट का रुख देखने को मिला। 10 ग्राम सोना 946 रुपए सस्ता होकर करीब 1,58,000 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 5,269 रुपए टूटकर लगभग 2,65,000 रुपए प्रति किलो रह गई। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
9: somebody save me,
8: to timeless favorites,
9: and life is like a song,
8: and new discoveries.
9: So much more than a history. Wake up.
8: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
11: है। अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
10: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
12: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते,
14: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
15: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
16: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
17: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
18: विक्रम, एक हिंट तो देते।
19: विक्रम!
18: हिंट।
17: बड़े आराम से।
20: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
21: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
22: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
23: नहीं,
22: और म्यूचुअल फंड से
23: सही।
24: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
25: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
26: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
27: सोच बदलो और बैंक भी।
28: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: Director, the taste of success.
3: Like I said before, we better own the sins.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप ने सीधा काम करने को टाल दिया।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
17: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊँ।
18: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
19: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
20: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
21: का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए। ओके,
19: शुभेंदु अधिकारी।
18: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
22: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
23: अनुपम मिश्र,
24: अमित भारद्वाज,
25: पीयूष मिश्रा,
26: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।
27: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
28: ये सब जानते हैं कि CM योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी CM योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो बकरीद से एन पहले सड़क पर नमाज बयान, वो भी चेतावनी के साथ, क्या सोच समझ कर आया है? जैसे ही अखिलेश यादव ने सड़क पर नमाज के समर्थन में आवाज उठाई, तुरंत बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट कैसे निकालें, क्योंकि 2027 के चुनावी रण में अखिलेश के सामने सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। इंडिया वाले इस वक्त भीषण गर्मी में जल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आग बरस रही है। शहर, गांव, कस्बे सब जैसे तंदूर की भट्टी बन गए हैं। पारा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब तो लगता है कि 50 डिग्री के पार चला जाएगा। और इसमें भी सबसे बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। यूपी तो एक हीट आइलैंड बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस साल इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: क्या यूपी में इस साल पारा 50 डिग्री के पार चला जाएगा? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर कैसे आए? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 41 शहर क्यों हैं? आसमान से आग बरस रही है, शहर तंदूर की भट्टी हो गए हैं, कई जगहों पर तापमान 48 डिग्री के पार चला गया और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म इलाका बना हुआ है। दुनिया में और किसी भी देश में इतने गर्म इलाके नहीं है जितने इस वक्त यूपी में है। उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग का लू का रेड अलर्ट जारी है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है AQI.in। ये पूरी दुनिया का मौसम और हवा की गुणवत्ता दर्ज करती है। इस वेबसाइट पर हमने बुधवार दोपहर का 2 बजे का डेटा देखा तो हम ये जानकर हैरान रह गए कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों के लिस्ट में सारे शहर हिंदुस्तान के। आप भी देख सकते हैं, ये सारे भारत के शहर हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म है। AQI.in के अनुसार बुधवार दोपहर में 2 बजे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 शहर भारत के हैं। सबसे गर्म है ओडिशा का बालांगीर और कटक, जहां 48 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। सिर्फ 3 शहर दूसरे देशों के हैं। 41वें नंबर पर है नेपाल का धनगढ़ी, 66वें नंबर पर है पाकिस्तान का लाहौर और तीसरा शहर है 99वें नंबर पर नेपाल का नेपालगंज। और इसमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 100 शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के शहर शामिल हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं, 48 डिग्री, 47 डिग्री, 46 डिग्री और 45 डिग्री तापमान वाले शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के हैं। AQI.in के अनुसार दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से 41 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। 48 डिग्री तापमान वाले शहरों में मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी है। 47 डिग्री तापमान वाले शहरों में फतेहपुर, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बांदा, रायबरेली, बिजनौर, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, सीतापुर, औरैया, एटा, बदायूं, संभल, मैनपुरी और अलीगढ़ शामिल है। इसके अलावा 46 डिग्री तापमान वाले शहरों में इटावा, बलरामपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, फिरोजाबाद, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, शामली, मथुरा और अयोध्या शामिल है। फिर आते हैं 45 डिग्री तापमान वाले शहर, इनमें आगरा, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, झांसी और गाजीपुर शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर यूपी के ये शहर इतने गर्म क्यों हैं? यूपी में गर्मी और लू इस बार रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? गर्मी तो वैसे हर साल ही पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपने ये भी बात नोट की होगी कि अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही हैं और इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी के प्रमुख कारणों में गर्म पछुआ हवाएं हैं। थार मरुस्थल से आने वाली तेज शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इस मौसम में बादलों के न होने की वजह से भी आसमान साफ होता है। सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती को तपाती हैं। सबसे ज्यादा गर्मी का शिकार बुंदेलखंड के इलाके हैं और इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि बांदा, झांसी और प्रयागराज जैसे दक्षिणी जिलों में पथरीली और कठोर जमीन है जो धूप को जल्दी सोखती है और बहुत धीमी गति से ठंडी होती है। और इसके अलावा जंगलों की कटाई, अंधाधुंध खनन और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने से पारिस्थितिकी खराब हुई है, जिससे गर्मी का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है।
1: ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री में तप रहा है, तब आप अंदाजा लगाएं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। बात चाहे पूर्वांचल की करें या बुंदेलखंड की करें, असल बात तो यह है कि यूपी के लिए इस वक्त दोपहर का समय दूभर हो गया है और ये दूभर होती दोपहर से कब शांति मिलेगी इसका कोई समय नहीं है। मौसम विभाग का मानना है अगले 10 से 15 दिन भीषण गर्मी रहेगी।
0: यूपी में इस साल जब भी गर्मी की बात हो रही है तो बांदा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बल्कि बांदा तो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। बांदा में मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। बांदा में अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर बांदा अचानक से इतना गर्म क्यों हो गया है। बांदा जिला कर्क रेखा के पास है, तो इन दिनों सूरज की किरणें सीधे जमीन पर आ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक के अलावा कुछ इंसानों के लालच से पैदा हुए कारण भी हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तुलना में बांदा में केवल 3% के आसपास सबसे कम वन आवरण यानी हरा क्षेत्र है, और इसको भी लोग काट रहे हैं। केन और यमुना नदी के किनारों पर बेलगाम रेत खनन और पहाड़ों की ब्लास्टिंग ने प्राकृतिक जल प्रणालियों और चट्टानों को प्रभावित किया है। खनन के कारण वनस्पति हटने से सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। वनों की कटाई, सूखती नदियां और पानी की कमी के कारण बांदा एक लोकल हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है। यहां दिन भर गर्म रहने वाली चट्टाने रात में भी ठंडी नहीं हो पाती और लगातार गर्मी का एक चक्र बना रहता है। बांदा जैसा हाल ही प्रयागराज का भी है। संगम नगरी में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा से पहले ही मई के महीने में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। संगम नगरी में बुधवार को तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो उठे।
2: संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45-46 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रयागराज में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और यहां लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और यहां पर जो कुछ लोग हैं उनको ट्रेन पकड़नी है या पेपर है, इस वजह से भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जाम से लोग परेशान हैं।
0: यूपी में एक और जिला गर्मी में इस साल टॉप पर बना हुआ है, इटावा। यहां भी तापमान 45 के पार चला गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। दोपहर में लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग खुद ये मान रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अगले 1 से 1.5 हफ्ते इस भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली।
3: 1-2 दिनों में जो IMD से जो अलर्ट प्राप्त हुआ है, उसमें ये जो हीट वेव का जो 45.05 हमारी जनपद का जो टेम्परेचर है, और संभवतः आज उसको भी क्रॉस करने की ऐसी हालत हमारी जनपद में देखी जा सकती है।
0: सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में अगर भट्टी के अंदर कांच पिघलाना पड़े तो क्या हाल होगा। यह है यूपी का चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद। भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पूरा का पूरा चूड़ी उद्योग प्रभावित हो गया है, क्योंकि मजदूरों के लिए इस भीषण गर्मी में काम करना मुश्किल हो रहा है। फिरोजाबाद में तापमान 44 डिग्री के पार चला गया और ऊपर से चूड़ी की भट्टी का तापमान तो 1200 डिग्री रहता है। कभी कांच पानी की तरह पिघलता है। कारीगर इस पिघले हुए कांच से अपने हाथ से चूड़ी बनाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी से चूड़ी उत्पादन में 30-40% की कमी हो गई है।
4: निकल गया, काम तो करने ही है, मजदूर तो मजदूरी करते ही है। गर्मी बढ़े या सर्दी बढ़े, कि बस गर्मी में ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो
0: आज तक ब्यूरो।
5: हालात पूरे हिंदुस्तान के ही खराब हैं, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले 7 से 10 दिन यही हालात रहने वाले हैं। राहत के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। यूपी का हाल आपने देख लिया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस वक्त सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के 10 राज्य भीषण हीट वेव की चपेट में हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग।

0: पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भयानक लू चल रही है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भी इस लू से अछूते नहीं है। यहाँ भी भयंकर गर्मी है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है।
1: लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया हीट वेव की ग्रिप में है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय रीजन हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव कंडीशंस परवेल कर रहा है, हिमाचल में भी कर रहा है, उत्तराखंड में भी कर रहा है, और इसके अलावा पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो भी हीट वेव की ग्रिप में है। और अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें वहाँ भी हीट वेव परवेल कर रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना रहेगा। जो हीट वेव कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में रहने का अनुमान है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में आज और कल रह सकता है, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से वहाँ हीट वेव वेट हो जाएगा, लेकिन प्लेन्स पे ये कंटिन्यू रहने का अनुमान है।
0: दिल्ली में तो और बुरा हाल, यहाँ 45 से 46 डिग्री तक तापमान पहुँच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को सड़कों पर उतारा है। दावा है कि ये यूनिट्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को तुरंत राहत देंगे।
2: सरकार की तरफ से कूलिंग जोन बनाने की बात की गई थी और इस तरीके के मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स जो है वो दिल्ली के तमाम 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि लोग गर्मी से अगर हो सके तो उनको किस तरीके से बचाया जाए उसके लिए तैयारियां जो है वो की गई थी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर आपको तमाम लोग जो है वो लाइन में खड़े नजर आएंगे, जिनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनके साथ साथ ORS की जो घोल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गमछा और एक कैप की सुविधा भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से जो है वो बचाव मिल सके।
0: यही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का भी, जहाँ तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी में रात को भी राहत नहीं मिल रही, रात को भी गर्मी और उमस है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने को कहा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्यास ना भी हो तब भी पानी पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें।
3: प्रतिदिन टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी की अधिकता होती जा रही है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने ग्रुप गाँव वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस गर्मी की अधिकता को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का यूज़ करें, चाहे वो पेय पदार्थ सिंपल पानी हो या गन्ने का रस हो या और कोई जूस मात्रा हो, नारियल पानी हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें।
0: वैसे तो भारत एक गर्म देश है, हर साल ही गर्मी पड़ती है, लू चलती है, गर्म हवाएं जीना दूभर करती हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से ये हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग इसे और खतरनाक बना रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो 45 से 50 डिग्री की हीटवेव सामान्य हो जाएगी। IMD के हालिया शोध बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ रही है। 2020 से 2025 के अध्ययनों में पाया गया कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और ये हाल किसी एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों का यही हाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 20-21 मई और 24 से 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
4: इस गर्मी में निकलना भी पड़े तो आप पूरी वहाँ के कपड़े पहन के निकलें, छाता लेके निकलें, जिससे स्किन पर टाइम जो है कम से कम धूप पड़े। पानी खूब पिए, हाइड्रेशन के लिए प्लेन वाटर, नींबू पानी, सॉल्टेड वाटर, नारियल पानी जो भी पी सकते हैं पिए, और जब पीक गर्मी हो उसमें बाहर निकलना एक्सर्शन अवॉइड करें।
0: आज तक भी
5: एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली में डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तेजी से बदलते तापमान के कारण लोग हीट स्ट्रेस और मौसमी जो चेंज हो रहा है उसके वजह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो खबर यह है कि दिल्ली में तापमान अब 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और डिहाइड्रेशन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
3: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
7: नहीं,
6: और म्यूचुअल फंड से
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड दिस इन।
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

फ्रांस का खूबसूरत शहर इवियन ले बैन। 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन तक युद्ध और ऊर्जा संकट से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बीच आयोजित सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उस मुलाकात को लेकर बनेंगी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। अगर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है तो ये पिछले 16 महीनों में उनकी पहली इन पर्सन यानी आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों शीर्ष नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC स्थित व्हाइट हाउस में मिले थे, लेकिन 16 महीने की दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, भले ही फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा के बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ी द्विपक्षीय इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद फोन कॉल्स के जरिए लगातार होते रहे। साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रिकॉर्ड 8 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही कम से कम 3 से 4 बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल्स दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के तुरंत बाद सहयोग बढ़ाने और मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद सुरक्षा, व्यापार और इमिग्रेशन पर सकारात्मक चर्चा हुई। 2025 में पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने संवेदना जताने के लिए फोन किया, लेकिन सीज फायर का श्रेय लेने वाले उनके बयानों ने बेवजह की कड़वाहट पैदा की। हालांकि हालिया हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात पर चिंता जताई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप का रुख बेहद दोस्ताना और व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी भरा रहा। अगर दोनों नेता फ्रांस में मिले तो इसी गर्मजोशी को बहाल करने और टैरिफ के अलावा मध्य पूर्व संकट पर बात हो सकती है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: विशेष में इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मेलोडी डिप्लोमेसी के बाद पीएम मोदी का ऐलान, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद के साथ लड़ने का वादा, कहा ये दो महान देशों की सांस्कृतिक विरासत का मेल। प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर राहुल के आपत्तिजनक बोल, बताया गद्दार, मेलोडी गिफ्ट करने पर भी कसा तंज, बीजेपी का चौतरफा वार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे नेता विपक्ष। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग। केरलम में नई सरकार बनते ही कांग्रेस ने लोगों को थमाया महंगाई का बिल, दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर किया महंगा, 1 जून से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, विरोध करने पहुंचे लोगों पर लाठीचार्ज, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहा अभियान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
2: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा पूरा करके कल सुबह भारत लौटने वाले हैं। आने के महंगाई के मोर्चे पर अहम बैठक करने वाले हैं। इस अहम मुद्दे पर आज हम आपको खबरदार करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम मेलेडी डिप्लोमेसी से खबरदार करेंगे, जिसकी चर्चा आज पक्ष अलग तरीके से कर रहा है और विपक्ष अलग नजरिए से। लेकिन आपको तथ्यों के साथ बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत से इटली के रिश्ते कितने मेलेडी वाले हैं। इसके बाद महंगाई का नए संकट से खबरदार करेंगे, जहां रोज कुछ नया महंगा हो रहा है, तो आज किसका दाम बढ़ा। महंगाई पर आज राजनीति बहुत हुई। फिर पश्चिम बंगाल चलना जरूरी है, जहां बकरीद से शुभेंदु सरकार से राहत की मांग वो लोग करने लगे जिन्होंने गाय को कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पाला। बंगाल में कुर्बानी पर सियासी जंग से खबरदार करेंगे। और फिर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आपने हाल में ट्रेन की बोगी में लगी आग की खबर देखी हो तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आशंका है कि आग के पीछे साजिश थी। तो कौन है वो लोग, हम खबरदार करेंगे। सबसे पहले खबर मेलेडी डिप्लोमेसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर 15 मई को यूएई गए और वहां से वो नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे। 6 दिनों में 5 देशों के विदेश दौरे से पीएम मोदी देश के लिए क्या ला रहे हैं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन व्यूज के पार चला गया है। पीएम मोदी और मेलेडी की मुलाकात ने पहली बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां नहीं बटोरी हैं। इससे पहले जब मेलेडी 3 साल पहले भारत आई थी, तब भी दोनों की मुलाकात की खासी चर्चा हुई थी और मेलेडी और मोदी को मिलाकर ही मेलेडी सोशल मीडिया पर एक शब्द के रूप में प्रकट हुआ था, जिसको इस ट्रॉफी के रूप में अब आप देख रहे हैं।

0: Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
1: रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भी इस खूबसूरत मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि रात के डिनर के बाद दोनों नेताओं ने मशहूर कोलोजियम का दौरा किया और कई वैश्विक विषयों पर चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा एआई, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे तमाम सेक्टर में एक साथ काम करने और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश करने के अलावा इस मेलोडी मोमेंट के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें मोदी और मेलोनी की दोस्ती और केमिस्ट्री का गवाह सारी दुनिया बनी है।
2: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
3: Melt.
4: भारत और इटली ने अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। राहुल गांधी पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर हमलावर हैं, कह रहे हैं मोदी सबको बचत का संदेश देकर खुद विदेश चले गए। सवाल यह है कि पीएम मोदी के पांच देशों के दौरे से क्या मिला। इसे समझने के लिए सिर्फ इटली ही काफी है, जिसकी चर्चा भले ही मेलेडी मोमेंट की वजह से हो रही हो, लेकिन दोनों देशों में आती मिठास भारत के बहुत काम की है।
5: नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले तीन महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
1: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये तंज इस गिफ्ट की वजह से है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को दिया। सवाल यह है कि क्या यही सच है। ईरान युद्ध की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। भारत को इस वक्त डॉलर की जरूरत है और वो सिर्फ निर्यात से मिल सकता है। इस लिहाज से इटली भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच 1,60,000 करोड़ का कारोबार हुआ। भारत इटली को 96,045 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जो साल 2024 की तुलना में 9.42% ज्यादा है। वहीं इटली से भारत 64,028 करोड़ का आयात करता है। दोनों ही देश इस कारोबार को 2029 तक 2,25,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाना चाहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा भारत की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी के हमलों को उनकी कुंठा करार देती है।
6: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं।
1: इटली में पीएम मोदी ने वहां के बड़े कारोबारियों से भी मुलाकात की, जिसमें निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और भारत में नई औद्योगिक पार्टनरशिप पर चर्चा की गई। सर्विस सेक्टर के लिहाज से इटली भारत के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। साल 2025 में सेवाओं का व्यापार करीब 15,000 करोड़ रुपए हुआ, जो 2024 की तुलना में 19.94% ज्यादा है। इटली में रहने वाले भारतीयों ने साल 2025 में 6,672 करोड़ रुपए भेजे, जो पिछले साल के मुकाबले 32.8% से ज्यादा है। अगर बात भारत में इटली के FDI की करें, तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच इटली 19वें नंबर पर रहा, जिसका 41,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जिनमें सबसे ज्यादा 29.8% ऑटोमोबाइल, 17.1% ट्रेडिंग और 5.6% औद्योगिक मशीनरी में निवेश है।
7: इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
1: इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से भी इटली काफी अहम है। भारत और इटली इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और व्यापार कनेक्टिविटी मजबूत करना चाहते हैं, जिससे भारत खाड़ी देशों के जरिए यूरोप।

0: Further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East and India, which was established during the G20 summit. It is an initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential and wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations.
1: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे को भले ही एक तस्वीर तक सीमित करने की कोशिश कुछ लोग करें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिहाज से इटली की अहमियत बहुत ज्यादा है।
2: पाकिस्तान और इटली के बीच रक्षा संबंध काफी गहरे हैं। पाकिस्तान अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए इटली से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो से पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करने के लिए कहा था। बड़ी बात यह है कि भारत और इटली ने अपनी इस करीबी को रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देश मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भी भारत को इटली का साथ मिला है।
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: तो पांच देशों का पीएम मोदी का विदेश दौरा कारोबार से लेकर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से अहम रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पीएम के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करते हुए राहुल गांधी ने आज पीएम और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करार दिया।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राहुल गांधी को राजनीति का राहु कहते हैं।
4: मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है।
1: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहते हैं,
5: देखिए राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी आग बबूला है और उन पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं।
6: राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं।
7: और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है।
8: राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है।
1: राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को गद्दार कहा, जिसने एक नए राजनीतिक तूफान को पैदा कर दिया।
9: दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर आप आपसे बात भर जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहिए।
1: राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी महंगाई और पीएम मोदी के विदेशी दौरे को लेकर अटैक करते हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
10: हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है, तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं मचाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों?
1: पीएम मोदी पर राहुल का अटैक, लेकिन इस हमले के बीच इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शरद पवार पीएम मोदी के बचाव में उठ खड़े हुए हैं।
11: नरेंद्र मोदी जिसे तो पसंद थे, कई राष्ट्रीय विचारों से सबने आंशिक चिंतित होने का कि मेरी ऐसी सकते फिर आज भारत का सब है देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट अवसर दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा दिसायचे तिथं राजकीय मंदिर हे करायचे नाही।
1: शरद पवार ने इतिहास का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सभी नेताओं ने हमेशा देश के भविष्य और वैश्विक प्रतिष्ठा को राजनीति से ऊपर रखा है, इसलिए जब भी देश की स्थिति को मजबूत करने का मौका मिले सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। इस तरह शरद पवार ने राहुल की तरफ से की जा रही आलोचना को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिससे सवाल उठता है कि शरद पवार का बयान इंडिया गठबंधन में दरार दिखाता है या फिर देश सबसे पहले की नीति के तहत दिया गया बयान है।
2: ईरान युद्ध की वजह से महंगाई का संकट जब भारत समेत पूरी दुनिया में है, तब देश में महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से लौटकर बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री गुरुवार यानी कल मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री शासन, बड़े नीतिगत फैसले और भविष्य की कार्य योजनाओं पर अपडेट देंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और भारत पर इसके आर्थिक असर की भी समीक्षा होने की उम्मीद है। सरकार ने पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रखा है, जो इस संकट पर नजर रखता है और भारत को किसी भी रुकावट से बचाने के लिए उपाय सुझाता है। आम आदमी इस वक्त दो तरह का पारा बढ़ने से परेशान है, त्रस्त है। एक पारा गर्मी का, दूसरा पारा महंगाई का। पेट्रोल 98 पार है, रुपया 96 पार है, डीजल 91 पार है, महंगाई दर रिकॉर्ड तोड़ पार है। गर्मी गला सुखा रही है, महंगाई जेब गला रही है। गर्मी से छाता लगाकर पानी पीकर बचने की कोशिश है, महंगाई की गर्मी से बचने के लिए बचत का छाता है फिलहाल एक रास्ता। इस बीच आज देश में महंगाई का नया झटका केरलम में जनता को लगा, जहां सहकारी डेयरी संस्था का दूध सीधे 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेल की कीमत में अभी और बढ़ोतरी की आशंका है। युद्ध की वजह से महंगाई केवल जेब पर ही नहीं, कई तरह से आम आदमी पर असर डाल रही है।
1: सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ी जनता, कहीं सिलेंडर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार, कहीं सिलेंडर लाइन में लगाकर खुद जमीन पर लेटे लेटे अपने टोकन आने का इंतजार। कैमरा आगे बढ़ता जाता है, लंबी लाइन नजर आती है, महिलाएं पुरुष सब खड़े अपना अपना सिलेंडर रखकर। और तब नजर आता है एक सिलेंडर लिया आम आदमी, बाकायदा मच्छरदानी लगाए हुए। तो क्या मच्छर से तो मच्छरदानी लगाकर यहाँ पर लाइन लगाकर जनता बच सकती है? लेकिन युद्ध के संकट के बीच जब दावा है कि गैस की कमी नहीं, तो फिर गोरखपुर में गैस की किल्लत से बच नहीं सकते। किल्लत का दावा इसलिए क्योंकि रात से लोग लाइन लगाए यहाँ मिले।
12: कितने दिनों से लाइन में लग रहे हैं?
13: अरे होगा 5-6 दिन ले,
12: पूरी रात ऐसे लगे?
13: हाँ रात से।
12: आप लोग रात के 12 बज रहे हैं, सिलेंडर लेकर बैठी है,
13: क्या करा ले? जब परेशानी बात ले बैठा एक पड़े, जिन जिन लाइके पढ़े जाने चूल्ही खाना बनाते लेट हो जात बा, तो लेकर ही पड़ी दौड़ाई पड़ी, क्या करें?
14: हम 5 बजे से लाइन में लगे हैं, समस्या यही है कि हम 5 बजे आ गए, मगर मिला नहीं है। हम आदमी के साथ आते, आज भर हम अकेले आए हैं, उसका धूप में रहने से और इसी से आने जाने से गैस बन गया रात भर में, तो उसका पेट भी खराब हो गया है, बुखार हो गया है, उनका घर पर हम छोड़ के अकेले आए हैं।
1: गोरखपुर में रात में सिलेंडर लेकर इंतजार करना पड़ा है, तो महाराष्ट्र के बुलढाणा में पिछले कई दिन से दावा है किसान उतना भी डीजल नहीं पा रहे जितना खेती के लिए जरूरी है, लंबी लाइन यहाँ भी लगानी पड़ती है।
15: 11 बजे से खड़े हैं सुबह से हम, और परेशानी है कि डीजल मिलता ही नहीं, अभी दो तीन दिनों के बाद एक दिन में मिलता है, दो दिन का गैप होता है और तीसरे दिन में मिलता है।
16: 4-4.5 घंटे से यहाँ खड़े है।
17: कितने दिन से परेशानी हो रही
16: है? ये तो मानो कि ये 2 महीने से यही चल रहा है।
17: क्या डीजल मिल रहा है? क्या
16: डीजल मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा कि जितना किसानी के लिए चाहिए।
1: अब तीसरे संकट में जूझते आम आदमी को भी देखिए, हॉर्मूज युद्ध के कारण बंद है। महाराष्ट्र के धाराशिव में 1 रुपए किलो प्याज का भाव मिलने से नाराज किसान ने 600 बोरी प्याज की जला दी। यही हालत बहुत से किसानों की देख सरकार ने तय तो कर लिया कि किसानों की प्याज अब खरीदी जाएगी, लेकिन तब तक बहुत से किसान लाचार हो चुके थे। युद्ध का ये वो असर है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में लोगों को जला रुला और परेशान कर रहा, लेकिन एक सच ऐसा भी है जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, ऑटो वाले दाम बढ़ाने की मांग करते हुए दिल्ली में हड़ताल करते हैं, ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा पड़ सकता है, तेल की कीमत बढ़ने से सब्जी दूध सब पर असर आना है, उर्वरक महंगी हुई तो फिर किसान भुगतेगा, किसान ने झेला तो शहर तक महंगाई का असर होगा। उधर ईरान अलग धमका रहा है, युद्ध हुआ तो लाल सागर भी बंद कर देंगे, मतलब संकट का वो विकट चेहरा साफ होता जा रहा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने आगाह किया था।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: इसी का असर ऐसा कि पहले 5 दिन में 2 बार तेल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, 3.90 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लेकिन एक्सपर्ट दावा करते हैं कि 2 बार में तेल की कीमत बढ़ाने से भी तेल कंपनियों का घाटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दावा है कि अभी पेट्रोल पर करीब 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का घाटा तेल कंपनियां उठा रही हैं, तो क्या आगे तेल का दाम फिर बढ़ेगा? अब दूसरा दावा, डीजल की महंगाई से माल ढुलाई महंगी हुई है, जिससे फल सब्जी के दाम 15% तक आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले ही गैस और तेल की महंगाई, फिर अब ब्रेड की कीमत महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि वड़ा पाव, जिसे आम लोगों का खाना कहा गया, वो 2 रुपए से 5 रुपए तक महंगा हो गया।
18: मुंबई वासियों का स्टेबल डाइट माना जाता है वड़ा पाव। अक्सर लोग यहाँ पे सवेरे हो, शाम हो, रात हो, वड़ा पाव खाते हुए दिखते नजर आते हैं, लेकिन वड़ा पाव का जो कॉस्ट है वो अब बढ़ गया है। दरअसल जो वड़ा पाव, अगर आप देख लीजिए, जो वड़ा पाव के जो स्टॉल्स होते हैं उसमें समोसा पाव या फिर कह लीजिए भजिया पाव, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन वड़ा पाव जो एक स्टेपल है वो थोड़ा सा महंगा हो गया। आखिर वजह क्या, ये जानते हैं?
15: तेल का रेट बढ़ा हुआ, बेसन का रेट बढ़ा हुआ, गैस का रेट बढ़ा हुआ, आप जान ही रहे रेट का, गैस का क्या स्थिति है अभी।
18: जो गैस का है वो तो तकरीबन 1000 सीधे बढ़ गया है, और वो भी 3000
15: का गैस अभी हम लोग को 3000 में मिल रहा है।
18: आपने कितना बढ़ाया?
15: लगभग 1-2 रुपए ऐसे करके बढ़ा हुआ है रेट,
18: कॉस्ट बढ़ गया है। इसके बावजूद आपको लग रहा है कि अवेलेबल ऑप्शन है?
19: वैलिड है, क्योंकि कॉस्ट पीछे से बढ़ा हुआ है, अभी कोई नया नहीं बढ़ा है, और सब जगह बढ़ा है, ऑल ओवर इंडिया बढ़ा है, खाली इधर नहीं बढ़ा है।
1: हर एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मूज जब तक नहीं खुलता तब तक यूं ही महंगाई धीरे धीरे फैलती जाएगी, और तब विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलता है।
20: अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया।
21: अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है? हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी, 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है।
1: राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन जिस केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है, वहां दूध 4 रुपए प्रति लीटर एक साथ बढ़ा दिया गया। केरलम में सहकारी डेयरी संस्था मेलमा ने दूध की कीमत एक झटके में 4 रुपए तब बढ़ा दी, जब दूसरी जगहों पर निजी कंपनियों ने भी 2 रुपए प्रति लीटर ही दाम बढ़ाया है।
2: महंगाई के बीच एक चीज ऐसी है जिसका दाम पहले बंगाल में बकरीद के दौरान अचानक बहुत बढ़ जाता था, वो है गाय। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जब 1950 के नियम को सख्ती से लागू कराने का फैसला कर लिया, तो गाय पालने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले बकरीद से पहले आर्थिक संकट की दुहाई देने लगे। खबरदार करता सवाल है कि क्या कुर्बानी के लिए गाय ही खरीदना जरूरी है?
0: गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
1: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
4: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बट
0: गाय का ही सब लोग पीते हैं।
1: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
4: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा, हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा।
1: गो माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा।
4: ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
1: और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे।
22: सरकार से हमारा निवेदन है कि जैसे चल रहा था इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे।
1: असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशुवध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
23: हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं।
1: अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके और टीएमसी विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है।
5: হিন্দুদের উপরে এটা খুব খারাপ একটা প্রভাব পড়েছে, কারণ যারা এর সাথে যুক্ত তারাও তো এই ফেস্টিভ্যালকে সামনে রেখে এই ক্যাটেটাকে রিয়ার করেছে, খাইয়েছে। মহিলারা যারা এদের সাথে যুক্ত তারা নিজের সোনা বন্ধক রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে লোন নিয়ে, বন্ধন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা এটা করেছে। তাই এই এত কম টাইমের মধ্যে এই নোটিফিকেশনটা এক আমাদের গ্রামীণ যেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটার মধ্যে ঘা লাগছে।
1: स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले पुरपुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दे।
6: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব কিন্তু গরু কুরবানি দেব না, অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
1: लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है।
7: तो पहले से था, अदालत का फैसला था, यहाँ मान्य नहीं होता, सरकार जानबूझकर सुन नहीं मानती थी और लोगों को उकसा दिया जाता था नहीं मानने के लिए, उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, सांविधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीजें उसी को हमने लागू किया है, लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए।
1: इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं।
8: और हम सरकार से अपील करते हैं कि गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए और इसका मुकम्मल खरीद फरोख्त, जो इसको जबा करके हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और ये खास करके यूपी में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस है जिसका 99% मालिक हिंदू भाई है।
1: बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है।
2: और अब सियासत में लगते झटके की खबर से खबरदार करते हैं। शुभेंदु सरकार के खिलाफ आज टीएमसी का पहला प्रदर्शन था, इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के इस प्रदर्शन में 80 में से 35 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। 45 विधायक क्यों नहीं आए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद पार्टी एकजुट नहीं दिख रही। तो इतनी बड़ी संख्या में आखिर वो जीते हुए विधायक क्यों नहीं पहुंचे हैं, जबकि पहली बार प्रदर्शन किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ टीएमसी के द्वारा। तापस सेन गुप्ता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। तापस, क्या कारण दिया जा रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर अब लग रहा है कि बीजेपी से अभी क्या भिड़ना? टीएमसी को कुछ डर है, कुछ आशंकाएं हैं उनकी?
24: जी देखिए, आशंकाएं तो भरपूर है और खासकर इस हार से अभी तक तृणमूल कांग्रेस उभर नहीं पाई है और समीकरण जो है पश्चिम बंगाल राजनीति का वो भी बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक ममता बनर्जी एक ऐसी बड़ी नेता मानी जाती रही है इतने सालों से, दशकों से, जिनके सामने उनके पार्टी के जो सीनियर नेता थे वो कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर की कुछ इंटरनल मीटिंग्स में अभिषेक और ममता बनर्जी के सामने कुछ नेताओं ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि उनके स्ट्रैटेजी को लेकर और क्यों नहीं अभी तक तृणमूल कांग्रेस सड़कों पे आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, एविक्शन ड्राइव किया जा रहा है, इसको लेकर छोटे छोटे राजनीतिक दल, खासकर अगर लेफ्ट की बात की जाए तो वो भी सड़कों पे आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे वो डेपुटेशन दे रहे हैं। तृणमूल क्यों नहीं सड़कों पे आ रही है, क्यों तृणमूल पूरी तरीके से खुला छूट दे चुकी है बीजेपी को, इसको लेकर भी सवाल उठा है। ऐसे भी खबरें आ रही है कि कुछ तृणमूल के नेता बीजेपी के साथ संबंध रख रहे हैं, वो बातचीत पर है। काकुली घोष दोस्तीदार जो ममता बनर्जी के बेहद करीब जाने जाते थे, उन्होंने कुछ दिन पहले जब उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटाया गया, उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया में लिख दिया कि 1984 से संबंध थे, लेकिन शायद उन्हें उनका जवाब आज मिला है। उन्हें उसके बाद वाई कैटेगरी सेंट्रल सिक्योरिटी दिया गया है, तो इसको लेकर
9: सही बात है। ये सारी चीजें, पहले फालता के कैंडिडेट का वो निर्णय, उसके बाद आज प्रदर्शन में इतने लोगों का नाना। बहुत शुक्रिया तापस इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर टीएमसी को चिंतित होना चाहिए कि आखिर उसके विधायक यहां पर इस प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं पहुंचे। पर इसी बीच आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद काकुली घोष को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। क्या चर्चा हुई या आप जाने, उससे पहले खबर बताते हैं। टीएमसी नेता और सांसद काकुली घोष को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी सुरक्षा दी, जिसमें सीआईएसएफ के कुल 8 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी महिला सांसद काकुली घोष दस्तीदार को हाल ही में लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह कल्याण बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब टीएमसी ने जिन सांसद को चीफ व्हिप के पद से हटाया, उन्हें ही केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, वो भी तब जबकि टीएमसी के ही कई दूसरे नेताओं की हाल में सिक्योरिटी घटाई गई है। काकुली घोष दस्तीदार की सुरक्षा बढ़ी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखने लगे कि बीजेपी का बंगाल में खेला जारी है। ऐसा सोचने वालों की दलील ये रही है कि जिस विपक्ष की विपक्षी नेता की सिक्योरिटी बढ़ती है, वो कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे हाल में राघव चड्ढा को 15 अप्रैल को जेड सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी, इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने कमल थाम लिया। झारखंड में चंपई सोरेन को अगस्त 2024 में जब जेड प्लस सिक्योरिटी केंद्र ने दी, 3 दिन बाद चंपई बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह यूपी में जब मनोज पांडे को वाई सुरक्षा केंद्र ने दी, तो कुछ दिन बाद राज्यसभा से जुड़े चुनाव में बीजेपी का साथ देते दिखे, अब तो खैर मंत्री बन चुके हैं। वहीं इससे भी पहले याद करिए, शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने 2020 में 18 दिसंबर को जेड श्रेणी सुरक्षा दी, 19 दिसंबर को वो तब बीजेपी में शामिल हो गए थे। भारत में हर रोज करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। इन यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिसे लेकर बहुत बड़ी बात पता चली है। रेलवे ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में ट्रेन में आग लगने की घटनाओं के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है।
10: जिस वक्त देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के डिजाइन और रंग पर लोग बात कर रहे हैं, तब भारतीय रेल के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बंगाल से राजस्थान तक क्या कोई साजिश के साथ ट्रेन में आग लगा रहा है? रेलवे को आग की घटनाओं के पीछे साजिश की आशंका है। रेलवे ने मुसाफिरों को खबरदार किया है। पिछले कुछ दिनों में कई ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसमें रतलाम में हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा में मिथिला एक्सप्रेस और सासाराम में पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन, और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद जयपुर स्पेशल ट्रेन में अचानक आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। भारतीय रेलवे ने इन घटनाओं की जांच की, जांच में पाया कि कई मामलों में असामाजिक तत्वों का हाथ सामने आया, मतलब मामला तोड़फोड़ का है, जानबूझकर साजिश रच के रेल में आग लगाई गई। हावड़ा में ट्रेन में आग अचानक धधकी, रेलवे की तरफ से की गई जांच में उसे बाथरूम में पेट्रोल में भीगा हुआ कपड़ा बरामद हुआ। मतलब आग जानबूझकर लगाई गई ताकि रेलवे को नुकसान हो, मुसाफिर रेल का सफर करने से डरे। ट्रेन के मुसाफिरों ने भी आग लगने से पहले ट्रेन से अजीब महक आने की शिकायत की थी। मतलब क्या लोगों को जलाने की भी तैयारी थी?
11: हम लोग बोगी में बैठे थे जी, एक बाइक अचानक ने धुआं उठने लगा, एक बाइक धुआं उठने लगा है तो सब बोगी में के लोग डर गए कि अचानक क्या धुआं उठने लगा है।
2: और अब खबर बिहार की, जहां के पुल जर्जर हालत में है, इसीलिए जरूरी है कि सम्राट सरकार आज तक की यह रिपोर्ट देखकर बड़ा अभियान जनता की सुरक्षा के लिए चलाए।
10: एक पुल की कीमत समझनी है तो ये दो वीडियो देखिए। पत्नी को लाचार पति गोद में उठाकर चलते हैं, बुजुर्ग पिता को किसी तरह बेटे उठाकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भागलपुर का वो पुल टूटकर गिर गया जिसके सहारे अब तक गंगा नदी पार होती थी। इसी महीने बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला ब्रिज का 30 मीटर का स्लैब ध्वस्त हो गया। 2001 में बने पुल के हिस्से का अचानक यूं पानी में नमक की तरह घुल जाना चौंकाता है, जिसकी जांच शुरू हुई। तब तक जनता नाव बोट के सहारे नदी के उस पार जाने को मजबूर हो गई। फिलहाल अब इस विक्रमशिला ब्रिज पर बेली ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी लोहे का वो ढांचा जिसे टूटे हुए स्लैब वाले हिस्से की जगह रखकर इस पुल को वापस जनता के इस्तेमाल लायक बनाया जा सके।
12: पुल पर आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है। ये पहला जो स्पैन है 34 मीटर लंबा, पहले इसको बनाया जाएगा, फिर 24 मीटर है और फिर 12 मीटर, यानी तीन बेली ब्रिज के कॉन्सेप्ट में तीन बेली ब्रिजेस लगेंगे इस 4.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज को फिर से शुरू करने में।
10: खबरदार करता अब सवाल है, आखिर बिहार में और कितने पुल टूटने की कगार पर खड़े हैं? सवाल है कि बिहार के पुलों में ऐसी क्या कमी है कि साल दर साल पुल ढहते जाते हैं? सवाल की वजह है आईआईटी पटना की ऑडिट रिपोर्ट, जहां 85 पुलों की जांच होनी थी, 47 पुल की जांच के बाद 9 पुल आईआईटी पटना की रिपोर्ट में जर्जर हालत में बताए गए। इसीलिए आज तक ने बिहार की सम्राट सरकार को खबरदार करने वाली रिपोर्ट तैयार की। लखीसराय, हाजीपुर, गया और मुजफ्फरपुर में उन पुलों तक आज तक संवाददाता पहुंचे जिनकी हालत कहती है कि जल्द इन पर ध्यान नहीं दिया तो भागलपुर की तरह ये भी गिर सकते हैं। सबसे पहले लखीसराय की पुल की हालत देखिए। पुल में लगा सरिया और बाकी लोहा दिखने लगा, नीचे बीम और पिलर का हिस्सा टूटा हुआ दिखता है। लखीसराय का ये रेलवे ओवरब्रिज 146 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन 6 साल में इसकी हालत ये हो गई कि प्रशासन को अब यहाँ बैनर लगाकर लिखना पड़ा कि भैया भारी वाहन ना लेकर चलो, पुल की हालत गड़बड़ है।
13: सर्वे किया जा रहा है और इसको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाए।
10: आईआईटी पटना की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के स्कूल को लेकर भी गंभीर खतरा जताया गया। हकीकत भी दिखी, जहाँ सीमेंट झड़ चुका है, सरिया गलने लगा है, पता नहीं स्कूल पर गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, जहाँ कभी भी डर है हादसा हो सकता है।
14: रियलिटी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, हमारी मौजूदगी मारीपुर पुल के पास है, ओवरब्रिज के पास है, जहां पूर्व में भी कई वर्ष पहले हादसा हो चुका था। आप देख सकते हैं पुल की क्या दयनीय स्थिति है, या कभी भी बड़ी हादसा हो सकती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर।
2: वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।
17: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
25: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC,
3: AC/DC,
25: Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
15: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
16: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
15: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
3: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
11: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
12: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
13: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
14: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
13: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
16: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
16: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
19: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
20: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
21: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
22: Vikram, ek hint to dete.
23: Vikram!
22: Hint.
21: Bade aaram se.
24: Director, the taste of success.
25: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
26: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
27: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
28: Like I said before, we better hold this in.
29: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
30: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
31: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
30: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
32: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
33: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
34: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
35: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
34: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
2: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
3: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
8: In association with
9: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
10: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
8: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
11: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आखिर में आपको मौसम से जुड़े अपडेट दे देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट है, तो दिल्ली में भी पारा जो है वो अब 45 डिग्री को छू रहा है। गर्मी से जुड़े हुए एहतियात लेने के लिए डॉक्टरों की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलेडी की चर्चा है, कई जगह इसका स्टॉक खत्म हो गया है। इससे जुड़े वीडियो के व्यूज कुछ ही घंटों में 100 मिलियन को पार कर गए हैं और इसकी पेरेंट कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर का अपर सर्किट लग गया है। सोचिए, असल कंपनी नहीं जो मेलेडी बनाती है, लेकिन उसी के जैसा नाम रखने वाले कंपनी का शेयर जो है वो ऐसा बढ़ा कि अपर सर्किट लग गया। और इसकी वजह थी प्रधानमंत्री मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया गिफ्ट। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के लिए मेलेडी का इस्तेमाल, हैशटैग मेलेडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने आज मेलेडी डिप्लोमेसी को रियल कर दिया, लेकिन विपक्ष को मेलेडी की मिठास रास नहीं आई और उसे इससे तीखी आलोचना वो इसकी कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिमी मीडिया के मन में और फन में भारत के लिए इतना जहर क्यों भरा है। बीते दिन जब हमने इस रिपोर्टर की सच्चाई दिखाई थी तो कई लोगों के पेट में गंभीर दर्द हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करने की एक बड़ी योजना का वो एक हिस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी इटली से पहले नॉर्वे के दौरे पर थे, जहां एक पत्रकार ने सवाल के नाम पर तमाशा किया और उसके बाद एक अखबार ने हदें पार की। उसे प्रधानमंत्री मोदी का एक विवादित कार्टून बनाते हुए भारत को सपेरों के देश जैसा दिखा दिया। आज सवाल यह है कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ इतना रेसिस्ट, इतना नस्ल भेदी क्यों है। वो आज भी सपेरों का ही देश बनाना चाहता है भारत को। और आखिर में आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग दौरे के बारे में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताएंगे। ट्रंप को चाइना से लौटे एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि पुतिन जिनपिंग से मिलने पहुंच गए। आज आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन शी जिनपिंग की यारी ट्रंप की डील पर भारी पड़ रही। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि साल 1983 में बनी एक साधारण टॉफी, 1983 में बनी एक सिंपल सी टॉफी 2026 में भारत इटली के रिश्तों का ग्लोबल सिंबल कैसे बन गई। इटली के रोम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट के रूप में दिया, तब कूटनीति की दुनिया में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई। ऐसा ट्रेंड जिसमें सॉफ्ट पावर का एक नया मॉडल छिपा था। अब तक ज्यादातर देशों की सॉफ्ट पावर उनकी फिल्में, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनके पुराने स्मारक, उनकी भाषा, ये सब हुआ करती थी। लेकिन कूटनीतिक संबंधों में एक टॉफी भी किसी देश की सॉफ्ट पावर बन सकती है, ये पहली बार दुनिया ने देखा। और इस टॉफी डिप्लोमेसी की हर तरफ खूब चर्चा होने लगी। देखिए,

मेलेडी शब्द मोदी और मेलेनी के नाम से बनाया गया है जोड़कर, और शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये टर्म कॉइन किया, जिसे कहते हैं ये शब्द बनाया गढ़ा। साल 2023 में जब दुबई में COP28 का शिखर सम्मेलन हुआ था, तब जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी जिसका कैप्शन था गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोडी। इसके बाद 2024 के G7 समिट में भी प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी सेल्फी को #मेलोडी लिखकर पोस्ट किया था, और यहीं से ये शब्द भारत और इटली के नए रिश्तों का प्रतीक बना। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तो इंटरनेट पर यह तस्वीरें छाई हुई हैं। आज शाम तक जॉर्जिया मेलोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को 136 मिलियन यानी 13 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि एक्स पर भी इस वीडियो को 94 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। ये व्यूज भी तब है जब एक्स पर जॉर्जिया मेलोनी के कुल मिलाकर 33 लाख ही फॉलोअर्स हैं 33 लाख और 86 लाख व्यूज। बड़ी बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी जब एक्स पर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करती है तो एवरेज रीच उनकी 3 से 8 लाख होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका #मेलोडी वाला ये मेलोडी चॉकलेट वाला वीडियो 94 लाख से ज्यादा व्यूज को पार कर चुका है। यही नहीं, भारत के कई शहरों में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेलोडी टॉफी सोल्ड आउट हो चुकी है, मतलब वो लोग मिल नहीं रहा है, खरीद नहीं पा रहे। और जो पार्ले कंपनी इस टॉफी को बनाती है उसके शेयर्स में भी 5% का उछाल आया है। ये उछाल और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन क्योंकि पार्ले कंपनी के शेयर्स पर 5% का अपर सर्किट लगा था और इसके कारण एक दिन में शेयर्स की कीमतें इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए इस मामले में 5% का ही उछाल आया। एक और दिलचस्प बात है, जिस पार्ले कंपनी के शेयर्स की कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ी वो मेलोडी टॉफी वाले पार्ले कंपनी है ही नहीं। अब देखिए ये कैसा खेल हो गया। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज। ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। जो कंपनी मेलोडी टॉफी बनाती है वो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है, लेकिन उसके बहाने किसी और का ही उत्थान हो गया और पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ गया।

0: करके भारतीय कंपनी की ट्रॉफी को ग्लोबल मंच दिया। लेकिन जब अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी कोलंबिया गए थे तब वहां उन्होंने कोलंबियन कॉफी तैयार की थी, और इसे देखकर आज कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसे मिसाल को बड़ा मानते हैं, उसे दुनिया के दूसरे देशों ने पेश किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उसे मिसाल को बड़ा बनाते हैं, उस मिसाल को जिसे भारत ने पेश किया। और यही अंतर है जिसकी आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए,
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallory.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallory.
3: What's the best way to make the coffee then?
4: You see how it's bubbling?
3: Yeah.
4: That means that the coffee's fresh.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallory.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallory.
0: Italy ke Pradhanmantri को अगर आप देखें तो काफी उत्साह और जोश के साथ वो बोलती है सोशल मीडिया के रील्स में, और हैशटैग मेलोडी भी उन्होंने ही सबसे पहले लिखा था। इटली प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का आखिरी पड़ाव है जिसमें टॉफी वाली डिप्लोमेसी के साथ कार वाली डिप्लोमेसी भी देखी गई। हालांकि अब ये अक्सर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पहले गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, इसके बाद दोनों नेताओं ने एक ही कार में सफर करके ये संदेश दिया कि भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भरोसा और सहजता से भरे हुए हैं। कार वाली डिप्लोमेसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच डिनर वाली डिप्लोमेसी दिखी, और इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के कोलोसियम का भी दौरा किया। ये रात का दौरा था, इससे तस्वीरें आपको उतनी साफ नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये कोलोसियम प्राचीन रोम में शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र होता था जिसे 2000 साल पुराना माना जाता है। और यहां भी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी ली। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं और सर्कुलर ये हॉल है। यहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी ली और इस सेल्फी को पोस्ट करते हुए ये लिखा कि वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। देखिए,

कूटनीति की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे तस्वीरें सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती बल्कि इसमें तस्वीरें दो देशों के मजबूत संबंधों की गर्मजोशी को भी दिखाती हैं। लेकिन आज अगर जॉर्जिया मेलोनी को आप देखिए और प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक संबंधों में मेलेडी जैसी मिठास दिख रही है तो इसका कारण यह है कि मौजूदा वक्त में भारत और इटली के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है और इस पर जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख भी लिखा है जिसे हम आपको संक्षेप में जल्दी से बता देते हैं कि इसका सार क्या है। दोनों ने जो लेख लिखा है 2022 से पहले इटली और भारत के रिश्तों में वैसी केमिस्ट्री नहीं थी जैसी आज है। इसका कारण यह था कि तब इटली G7 देशों का पहला ऐसा देश था जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया था। इसे आम भाषा में

0: चाइना का वन बेल्ट वन रोड मिशन कहते थे, जिसमें वो आज का नया सिल्क रूट बनाकर पूरी दुनिया को पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, पाइपलाइंस, डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना चाहता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अब क्योंकि 2022 से पहले इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसलिए भारत और इटली के रिश्तों में उतनी गर्मजोशी और सहजता नहीं थी। लेकिन इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने इटली को तुरंत चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। यहां तर्क यही था कि चाइना यूरोप को खुद पर निर्भर बना रहा है और जॉर्जिया मेलोनी इसके खिलाफ थी। और आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अंदर ही अंदर इस बात को नहीं समझता है कि चाइना अपना वर्चस्व, अपनी हेजेमनी हर देश पर थोपना चाहता है। रूस के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस में जब व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के लिए मैं गई थी, तब हमें भी लोगों ने वहां पर यही कहा था कि आज हमारे लिए चाइनीज हेजेमनी एक चैलेंज बन गया है। और इसी को देखते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव से चाइना के अपने आप को, अपने देश को अलग कर दिया था। अब जिस वक्त जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना से अलग होकर एक नई राह पकड़ी थी, तो भारत ने इसमें अपने लिए एक मौका देखा। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की पहली मुलाकात नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के G20 समिट में हुई, और इसके बाद भारत और इटली के बीच ऐसा भरोसा बना कि 2023 के G20 समिट में हमने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का करारा जवाब था। यह था एक ऐसा आर्थिक गलियारा जो भारत से यूरोप के बीच बनना है। और आज के इटली दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच इस पर बात हुई, और हो सकता है कि जल्द से जल्द इसे जमीन पर उतारने की कोशिशें शुरू हो जाए। इस प्रोजेक्ट के दो केंद्र बिंदु हैं, एक है भारत और दूसरा है यूरोप, और बीच में है खाड़ी देश जिन्हें गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को दो भागों में विकसित किया जाएगा, जिनमें पहले भाग को ईस्ट कॉरिडोर कहा जाएगा, जो भारत को मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्ट करेगा। जैसे भारत के मुंबई और गुजरात में जो पोर्ट है, वहां से कार्गो शिपिंग रूट भारत को यूएई के जबेल अली पोर्ट से जोड़ेगा, तो सीधा पहुंच जाइए यूएई। गुजरात और मुंबई से जो समुद्री जहाज सामान लेकर निकलेंगे, वो इस शिपिंग रूट के रास्ते यूएई के जबेल अली पोर्ट जाएंगे, जो दुबई से लगभग 35 किलोमीटर ही दूर है। इसके बाद इन समुद्री जहाजों से यहां इस पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा, और फिर यहां से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो यूएई से इसराइल को जोड़ेगी। ये सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब होता हुआ सीधा इसराइल जाएगा। ये रेल लाइन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जो सऊदी अरब के रियाद से होते हुए जॉर्डन जाएगी, जॉर्डन के बाद इसराइल, और फिर इसका आखिरी स्टॉप इसराइल होगा। इसराइल के बाद एक बार फिर ट्रेनों से सामान उतारकर समुद्री जहाजों में लादा जाएगा, और इस शिपिंग रूट के रास्ते ये जहाज इसराइल से ग्रीस, ग्रीस से इटली, और ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा भाग होगा। यानी एक बार जॉर्डन इसराइल होते हुए समुद्री रास्ते से आगे बढ़े तो ग्रीस और इटली, ये पूरा नदन कॉरिडोर होगा, तो यूरोप ये पूरा आर्थिक रूट पहुंचेगा। अभी भारत और यूरोप के देशों के बीच जो व्यापार होता है, उसके लिए काफी घूमकर स्यूएज कैनाल से होते हुए भारत को यूरोप के देशों तक अपना सामान पहुंचाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता सीधा, जिसको कहते हैं डायगनली, आप एकदम से पहुंच जाएंगे। तो दोनों रास्ते हमने आपके लिए बता दिए हैं, क्योंकि इधर अगर आप देखिए तो नीचे के रास्ते से स्यूएज कैनाल से होकर जाना पड़ता है, और वहीं दूसरा रास्ता ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तो सीधे यहां से गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वहां से निकलिए, यूएई पहुंचे, यूएई से सऊदी अरब के रास्ते होते हुए रेल कॉरिडोर से आप सीधा पहुंच जाएंगे जॉर्डन, और सऊदी अरब के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इसराइल, फिर समुद्री रास्ते से सीधा आप पहुंच जाएंगे ग्रीस और इटली। लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तब यूरोप के साथ आयात निर्यात करने में भारत अपने 40% समय की बचत करेगा, और अभी स्यूएज कैनाल के रास्ते जहां एक समुद्री जहाज को इटली और जर्मनी जाने में लगभग 36 दिन लगते हैं, 36 डेज, वही नया कॉरिडोर बन गया तो 22 दिन लगेंगे, यानी लगभग 12 दिन की बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रंग को फीका कर देगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यही कॉरिडोर भारत और इटली के बीच इस मेलोडी को इतना चॉकलेटी बना रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी किया है। इसके अलावा इटली कुछ और वजहों से भी भारत के लिए महत्व रखता है, जैसे इटली मशीनरी, डिजाइन, ऑटो पार्ट्स, लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है, और ऐसे में भारत चाहता है कि वो अब सिर्फ बाजार बनकर ना रहे, बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बने, टेक्नोलॉजी पार्टनर बने और सप्लाई चेन पार्टनर बने। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। जिसमें इटली अगर हमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे उत्पादन में मदद करेंगे, इटली हमें हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग देगा तो हम उसे इंजीनियरिंग टैलेंट देंगे, इटली हमें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे सस्ता विशाल बाजार देंगे, और इटली हमें प्रीमियम ब्रांडिंग देगा तो हम उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम देंगे, और इस तरह दोनों देश मिलकर एक वैश्विक उत्पादन का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। भारत और इटली दोनों देशों ने तय किया है कि वो अपने व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाना चाहते हैं, जो 2,24,000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि अभी दोनों देशों के बीच 1,60,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। देखिए,
1: हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
2: Visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. Thank you very much.
0: Kendriya Vanijya Mantri Piyush Goyal ke mutabik saal 2013-14 mein Bharat ne 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं, 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलेडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलेडी शब्द ट्रेंड कर रहा है।
3: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Melt.
3: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Melt.
0: वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलेनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलेनी 49 साल की। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता 70% है, जबकि प्रधानमंत्री मेलेनी की सिर्फ 39% रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग। दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा की मानी जाती हैं, जिन्हें राइट विंग पार्टीज कहा जाता है। इनमें प्रधानमंत्री मेलेनी की पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली है और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 18 साल की उम्र में राजनीति में आए थे, जॉर्जिया मेलेनी 19 साल की उम्र में राजनीति में कदम रख चुकी थी। और इन दोनों नेताओं में एक और सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों नेता गरीबी से उठकर आए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे, जॉर्जिया मेलोनी की माँ भी कॉफी माफ कीजिएगा काफी गरीब थी और काफी संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। हालांकि अब आप ये देखिए कि ये मेलेडी भारत के विपक्षी नेताओं को तीखी लग रही है। आज रायबरेली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी को भारत को आर्थिक तूफान से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए थे तब वो मेलेनी के टॉफी खाकर मेलेडी के कह रहे हैं और देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।
4: नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे आप देखना क्या होता है, वापस आएंगे आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट चढ़वा दो, रोएंगे कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो कहेंगे, आप देखना।
0: आज राहुल गांधी ने सिर्फ मेलेडी का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार कहा।
4: दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहेंगे।
0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। खैर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं क्योंकि आज जब ये तमाम बातें देश के सामने आ रही हैं तो कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो कहा है उनके खिलाफ इस तरह के विवादित भाषण दिए जा रहे हैं, क्या उस देश में आप अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में मानेंगे और क्या उस देश को आप तानाशाह देश कहेंगे। आज चर्चा इस बात को इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश में चौकीदार चोर है प्रधानमंत्री को 2019 में कहने से लेकर अब 2026 में आप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल भी खुलकर देख रहे हैं। ऐसे में क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है? भारत में वैसे हालात हैं जैसे किम जोंग उन के उत्तर कोरिया, शी जिनपिंग के चाइना में है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नॉर्वे की घटना के बाद भारत की छवि एक ऐसे देश की बनाई जा रही है जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र मर चुका है, मानवाधिकार बिल्कुल नहीं है। नॉर्वे में जिस पत्रकार ने भारत को नीचा दिखाते हुए विदेश मंत्रालय से ये पूछा था कि उनका देश भारत पर क्यों विश्वास करे, उसी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कार्टून प्रकाशित किया है। इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को एक सपेरे के रूप में दिखाया गया और सांप की जगह पेट्रोल भरने वाली पाइप को दिखाया गया और इस पर लिखा है एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। हमारे देश में कुछ लोग इस कार्टून को देखकर खुश हो रहे हैं लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको भारत का अपमान नहीं दिखता? क्या इसमें एक बार फिर से भारत को सांप सपेरों वाला देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है? ये कार्टून क्या हमारे देश के तेल संकट की खिल्ली नहीं उड़ाता है? और सवाल तो ये है कि तमाम मुल्क पूरे विश्व के प्रभावित हुए हैं। अगर हम रशिया को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ज्यादातर जगहों पर उनकी करेंसी को चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा था इसीलिए सांप सपेरे से जोड़कर कैसे एक रेसिस्ट तौर तरीका दिखाया गया है, एक नस्ल भेदी तरीका दिखाया गया है इस कार्टून में, वो साफ दिखता है। हम पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया जो दूसरे देशों को नीचा दिखाता है उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव करता है? अगर ये इस तरह का पहला कार्टून होता तो हम मान लेते कि ये एक क्रिएटिव जर्नलिज्म है, चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हर बार होता है और बार बार भारत को स्नेक चार्मर या सांप सपेरों का देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। और हैरानी की बात यह है कि अपने प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध करने के चक्कर में कुछ पार्टियों के नेता इस भद्दे कार्टून को अपना पोस्टर बना लेते हैं, ढोल पीट रहे हैं आज। और अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उछलने वाले ऐसे तमाम लोग जो मौसमी तरीके से वहां पर निकलते हैं अपने अपने मुद्दे के हिसाब से, वो आज सुबह से इस पर ढोल बजा रहे हैं। सवाल यह है कि दरअसल इन लोगों ने एक नकली चश्मा लगाया हुआ है, ऐसा चश्मा जिनमें इन्हें राजनीतिक विरोध तो दिखता है लेकिन अपने देश का अपमान नजर नहीं आता। लेकिन आज इस चश्मे को तोड़ेंगे और आपको उन सच से रूबरू कराएंगे जो इस इंपोर्टेड चश्मे से कतई नहीं देखा जा सकता। सच नंबर एक, आज ये चश्मा जो है इंपोर्टेड चश्मा वो टूटना चाहिए। नॉर्वे कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे स्वतंत्र प्रेस उसके देश में है और भारत बहुत नीचे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रैंकिंग कौन बनाता है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है। ये रैंकिंग फ्रांस के एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस एनजीओ के 11% फंडिंग कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से मिलती है, तो कॉर्पोरेट कंपनीज का तो ये पैसा लेते हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। ये वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जिसने साल 2017 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करने वाले फ्रांस के इस एनजीओ को 2,24,00,000 रुपए की डोनेशन दी। साल 2019 में 1,96,00,000 रुपए, 21 में 3,37,00,000 रुपए डोनेशन। बड़ी बात यह है कि इस एनजीओ को डोनेशन देने वाला ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज सोरोस का है। अब जॉर्ज सोरोस का नाम लेने पर एक बार फिर से सोशल मीडिया में कई लोगों के पेट का गंभीर दर्द आज सामने निकलने वाला है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट है। वही जॉर्ज सोरोस जिन्होंने 24 जनवरी 2020 को स्विट्जरलैंड के डावोस में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाना चाहते हैं, वो ऐसी राष्ट्रवादी ताकतों से लड़ने के लिए अपने अलग अलग संस्थाओं को $1 बिलियन रुपए की मदद देंगे, और यह ऐलान किया था कि 24 जनवरी 2020 को उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं ये पैसा दूंगा लड़ने के लिए, और यहां तक कहा था कि भारत देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन पर आज बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सोचिए जो शख्स भारत में तख्ता पलट करने की बातें कहता है, अगर उसके एनजीओ की फंडिंग से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार हो रहा है तो इस पर कितना भरोसा करना है। अब सच नंबर दो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है उसने खुद एक लेख लिखकर इस बात पर दुख जताया कि जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हंगरी से जा रहा है और यह बात उसे पीड़ा दे रही है। मैं आपको पढ़कर भी दिखाती हूं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में हम हमेशा कागज पर लिखी चीज और फैक्ट्स के आधार पर ही कोई भी खबर आपको दिखाते हैं। कई लोगों को दर्द हो ना हो, हम उसे बेपरवाह होकर सच आपके सामने रखते हैं। तो ये सच आज आपके सामने इस पेपर में है। जब खुलकर दुख जताया जा रहा है सोरोस के निकलने पर, RSF regrets सोरोस NGO's departure from Hungary, Reporters Without Borders यानी RSF इस बात पर दुख जाहिर करता है, regrets that the Open Society Foundation has decided to close its Budapest office after Hungary's announcement of proposed law targeting NGOs that support immigration. The OSF's departure will hurt the independent Hungarian media outlets it supports. सच आपके सामने है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब सच नंबर तीन देखिए, जो संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करती है जो सॉर्ज सोरस के उस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है जिसका कनेक्शन राहुल गांधी से भी जुड़ा है। शलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति पहले भारत में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट था और ये वही व्यक्ति है जो 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल हुआ था। अब सच नंबर चार देखिए, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, नॉर्वे की जो लेबर पार्टी है वो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है और इस प्रोग्रेसिव अलायंस में हमारी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जबकि यहां भी जॉर्ज सोरोस इस गठबंधन का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रहा है। कहते हैं कि इसे बनाना वाला वही था। अब सच नंबर पांच पर आइए, कांग्रेस के साथ प्रोग्रेसिव अलायंस में शामिल नॉर्वे की यही लेबर पार्टी आज वहां की सत्ता में है और उसके द्वारा उस अखबार को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी उस अखबार को दी जाती है जिसकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल और विवाद खड़ा किया। नॉर्वे की सरकार कहती है कि वो सिर्फ इस अखबार को नहीं बल्कि इसके जैसे 162 अखबारों को मीडिया सपोर्ट के लिए प्रेस सब्सिडी देती है ताकि अखबार भी टिके रहे, बड़े अखबारों का मुकाबला कर सके। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या अगर भारत में सरकार किसी चैनल किसी अखबार को सब्सिडी दे तो क्या आप उसे निष्पक्ष मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था और संस्कृति अलग है, नॉर्वे की अलग है। कई अखबार, और इस बात को सच से सामने कहने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, कई अखबार, कई मैगजीन्स, कई न्यूज चैनल्स, कई जगहों पर इश्तेहार जरूर देती हैं पार्टियां, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सारी इश्तेहार देती हैं, सरकारी किसी भी पार्टी की हो वो इश्तेहार देती है, सब्सिडी नहीं। हम पूछते हैं कि जब यहां आप स्तर को समझते हैं तो बाकी मामलों में स्तर को क्यों नहीं समझा? ये बात आज सबके सामने आ रही है। तो आज ये आंकड़े देखने भी जरूरी है, आइए आपको दिखाते हैं। 2002 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में अगर आप देखिए इंडेक्स में तो कैसे ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज असल मुद्दा क्या है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो भारत जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंडेक्स वहां पर है लेकिन इंडेक्स के पीछे कौन है, ये हमने आपको दिखा दिया। और इसी के साथ जिन्हें आंखें बंद रखनी है वो अपनी आंखें बंद रखने के लिए आजाद है। पहले ये तो देखा जाए कि इनमें जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है और कितना हकीकत वास्तविकता से कितना मेल खाता है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 136 देशों में 102 पर थी। जिम्बाब्वे की रैंकिंग हमसे कम थी, 90 पर। अब जानते हैं जिम्बाब्वे को 33% अनाज भारत निर्यात करता है, लेकिन फिर भी भारत जिम्बाब्वे में इससे पीछे। जिम्बाब्वे ही क्यों, 24 देश ऐसे हैं जिन्हें अनाज का निर्यात भारत से होता है, हम उनको अनाज देते हैं और इन सब की रैंकिंग भारत से बेहतर। सोचिए इसे कैसे सही मान लें। इसके बाद आता है हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग 147 देशों में 116 है, लेकिन नेपाल की रैंकिंग 99, पाकिस्तान की 104। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है, जिस नेपाल में इतने दंगे हुए, उसकी स्थिति हमसे अच्छी दिखाई जा रही है, क्या भारत में कभी वैसा आपने देखा है? लेकिन फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स कहता है कि हम इन देशों से कम खुश हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं ये क्या पश्चिमी संगठनों के और उनके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ही तरह ये सब कुछ उनके लिए मैनिपुलेशन का एक आधार बना है और इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में करते हैं? क्योंकि अनाज जिन्हें हम देते हैं वो अनाज में हमसे ऊपर है, हम जिनको दवाइयां देते हैं वो भी खुशहाली में हमसे ऊपर है, भुखमरी से जूझ रहे आसपास के हमारे देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। तो आज कुछ सवाल पूछने जरूरी है। भारत के नीति आयोग ने साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी और इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि इसमें पश्चिम झुकाव ज्यादा है। यानी इसमें ये बताया जाता है कि पश्चिमी देशों का मीडिया तो शानदार है, लेकिन जो एशिया के देश हैं वहां ना तो प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी और ना मानवाधिकार है।

अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाइना की यात्रा से लौटे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए। ये राष्ट्रपति पुतिन की चाइना की 25वीं यात्रा है, जो रशिया और चाइना के बीच गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। अब चर्चा इस यात्रा की इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, अब पहुंचे हैं पुतिन, और अब देखा जा रहा है सारी जो सोशल मीडिया है चाइना की, वहां पर यही चर्चा है कि किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि पुतिन की इस यात्रा का कूटनीतिक कनेक्शन ट्रंप की चाइना यात्रा से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चाइना के साथ डील के रिश्ते के लिए आए थे, पुतिन दिल के रिश्ते की वजह से आए हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रशिया और चाइना के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को अब तक के उच्चतम स्तर पर होने की बात दोहराई। वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने की बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि अब रशिया और चाइना के बीच होने वाला लगभग पूरा व्यापार उनकी करेंसी रूबल और युआन में हो रहा है। दोनों देशों के बीच ये व्यापार लगभग 23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो डॉलर के लिए बड़ा झटका है। पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी से ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर चर्चा की। दोनों देशों ने ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ये जंग जल खत्म नहीं हुई तो दुनिया लॉ ऑफ द जंगल यानी जंगल राज की तरफ बढ़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय निगोसिएशन का रास्ता अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रंप के हालिया चाइना दौरे की वजह से रशिया और चाइना का यह समिट और भी खास हो जाता है। ट्रंप 14 और 15 मई को चाइना में हैं। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ व्यापारिक तनातनी, यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट पर चर्चा की थी। ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चाइना पहुंचना अमेरिका को यह संदेश देना कि रशिया और चाइना के संबंध अटूट है। प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन ने कहा कि रशिया चाइना को बिना रुकावट ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। उसके पास जॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में भी बड़ी क्षमता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रशिया चाइना पर काफी निर्भर हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई बाधित होने से की वजह से रशिया इस मौके का फायदा उठाकर चाइना को जमीनी रास्ते से सुरक्षित ईंधन देने की कोशिश में है। रशिया और चाइना इस वक्त मंगोलिया के रास्ते चाइना तक जाने वाली पार ऑफ साइबेरिया 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस पाइपलाइन के शुरू होने से रशिया को यूरोप से हुए नुकसान की भरपाई करने, चाइना को मिडिल ईस्ट के सी रूट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि दोनों देशों के बीच गैस की कीमतों को लेकर बातचीत अभी अंतिम दौर में है।

0: 25 周年।
1: इस साल चीन रूस के मैत्री सहयोग संधि के हस्ताक्षर की 25वीं सालगिरह है। इन वर्षों में दोनों देशों ने संधि में तय किए गए सिद्धांतों, जिनमें आपस में ना टकराना और ना ही आपस में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी को स्वीकारना, इसका ईमानदारी से पालन किया है। दोनों देशों ने आपसी सम्मान, समानता, वादों को ईमानदारी से निभाने और साथ मिलकर सहयोग से चलने को महत्व दिया है। तेजी से बदलती दुनिया में चीन और रूस एक मजबूत और स्थिर साझेदार बनकर उभरे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मैंने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। सबसे अहम बात यह है कि रूस और चीन स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश करीबी रणनीतिक साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम साथ मिलकर शांति और दुनिया की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं।
2: रशिया और चाइना की दोस्ती केवल हाथ मिलाने या गले मिलने तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है। मौजूदा परिस्थितियों में तो दोनों देशों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत बनती हुई दिख रही, क्योंकि ईरान, अमेरिका, सारी चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में रशिया और चाइना चाह रहे हैं कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है तो कैसे वो अपने आप को मजबूत करें। यूक्रेन युद्ध में फंसे रशिया को चीन का साथ चाहिए। ईरान युद्ध के कारण तेल सप्लाई बाधित होने से परेशान चाइना को दोस्त रशिया की मदद चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए थे तो ऐसे समय में चाइना ने उसके साथ व्यापार बढ़ाकर उसकी मदद की। इस वक्त रशिया के लिए उसका दोस्त चाइना अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस वक्त बन गया है। साल 2021 में रशिया और चाइना के बीच व्यापार जानते हैं कितना हुआ? 14,24,000 करोड़ रुपए का था, जो यूक्रेन के बाद बढ़ गया। साल 2024 में दोनों देशों का व्यापार 23,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब देख रहे हैं जंप। इस वक्त चाइना रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रशिया के कुल व्यापार में चाइना की हिस्सेदारी 35% है, जबकि चाइना के कुल व्यापार में रशिया की हिस्सेदारी केवल 4%। ये ट्रेड डेफिसिट चाइना का लगभग हर देश के साथ है। और जिस चाइनीज हेजेमनी की मैं बात कर रही थी, जो हमें भी परेशान करता है, हमारा भी ट्रेड डेफिसिट ऐसा है, वही ट्रेड डेफिसिट इस वक्त रशिया भी झेल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध थे, जिसकी वजह से वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के पार्ट्स, सैन्य उपकरण, सब कुछ के लिए चाइना पर निर्भर है। यूरोपीय बाजारों तक पहुंच खत्म होने के बाद रशिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। रशिया के कच्चे तेल के कुल निर्यात का 49% हिस्सा चाइना खरीद रहा है। 49%। युद्ध में फंसा रशिया जब सस्ती दरों पर कच्चा तेल दे रहा था, तब चाइना ने तेल खरीद कर मदद भी की, मौके का फायदा भी उठाया। अब ईरान युद्ध के कारण रशिया से कच्चा तेल खरीदना चाइना की मजबूरी बन गया है, इसीलिए उसे अपने दोस्त रशिया की पहले से ही कहीं ज्यादा अब जरूरत महसूस हो रही है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में कच्चे तेल के तौर पर रशिया चाइना को एक ऐसी चीज दे रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। चाइना अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल ईरान से खरीदता था, 90%, और ये तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। ये रूट अब बंद है तो चाइना की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? रशिया। युद्ध से पहले चाइना रशिया से 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगवा रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान से सप्लाई रुकी तो उसने कच्चे तेल की सप्लाई 24 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। दोनों देश फिर से पार ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन परियोजना को शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए रशिया चाइना को मंगोलिया के रास्ते गैस की सप्लाई करेगा, यानी चाइना की ऊर्जा जरूरतों को रशिया अपने दम पर संभालने के लिए खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन दोनों ही दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि चाइना और रशिया की दोस्ती उनके विरोध करने की रणनीति का भी हिस्सा है, लेकिन सच इससे अलग है। जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे यही लगता है कि इन दोनों देशों की साझेदारी आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर बनी है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कानून का डंडा बड़ी जोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, बहनों बेटियों के सम्मान सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम जेल होगा या बर्बादी होगी। पुलिस ने पहले मिर्जापुर में फिटनेस की आड़ में चल रहे जिम जिहाद का खुलासा किया और अब इसके मुख्य सरगना इमरान खान और मौलवी खलीलुर रहमान समेत 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और इनके 5 जिम को सील कर दिया गया है। मिर्जापुर में सेहत बनाने के नाम पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जिम ट्रेनर इमरान खान, फरीद और मौलवी खलीलुर रहमान ने मिलकर एक सिंडिकेट खड़ा किया जहां जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। इस गिरोह में आलम, फैजल, जहीर, शादाब, अशफाक, साहिल, सिपाही इरशाद शामिल थे। जिम में पहले फिटनेस ट्रेनिंग के बहाने नजदीकियां बढ़ाई जाती थी, फिर प्यार के जाल में फंसाकर एक फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू होता। लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। जबरन पैसे ऐंठे जाते थे, फिर उन पर धीरे धीरे जोर किया जाता था कि वो बुर्का पहने, मजार पर ले जाकर कलमा पढ़ने, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। इस पूरे खेल में एक महिला सानू भी शामिल थी जो लड़कियों का भरोसा जीतती थी और पुलिस का एक हेड कांस्टेबल इरशाद भी इस काले धंधे में इनका पार्टनर था। जनवरी के महीने में जब कुछ पीड़ित हिंदू लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तब इस गंदे खेल का खुलासा हुआ। और इसी के साथ हम रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, anybody can dream।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind।
9: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है। और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
11: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
12: एक हिंट तो देते।
13: विक्रम!
12: हिंट
13: बड़े आराम से।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
16: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
15: ज्यादा बड़ी ना है।
16: छोटे ऑन कर दे,
17: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
15: पैक कर दे समर कूल।
16: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
18: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: Cool fans se ghar ko sajaye.
20: Cool fans, bijli bachaye aur kam awaaz kare.
19: Cool fans, ghar ki shaan badhaye.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
4: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
3: ज्यादा बड़ी ना है।
4: छोटे ऑन कर दे,
5: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
3: पैक कर दे समर कूल।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियन ले बैन। 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन तक युद्ध और ऊर्जा संकट से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बीच आयोजित इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उस मुलाकात को लेकर बनेंगी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। अगर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है तो ये पिछले 16 महीनों में उनकी पहली इन पर्सन यानी आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों शीर्ष नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC स्थित व्हाइट हाउस में मिले थे, लेकिन 16 महीने की दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, भले ही फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा के बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ी द्विपक्षीय इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद फोन कॉल्स के जरिए लगातार होते रहे। साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रिकॉर्ड 8 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही कम से कम 3 से 4 बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल्स दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के तुरंत बाद सहयोग बढ़ाने और मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद सुरक्षा, व्यापार और इमिग्रेशन पर सकारात्मक चर्चा हुई। 2025 में पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने संवेदना जताने के लिए फोन किया, लेकिन सीज फायर का श्रेय लेने वाले उनके बयानों ने बेवजह की कड़वाहट पैदा की। हालांकि हालिया हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात पर चिंता जताई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप का रुख बेहद दोस्ताना और व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी भरा रहा। अगर दोनों नेता फ्रांस में मिले तो इसी गर्मजोशी को बहाल करने और टैरिफ के अलावा मध्य पूर्व संकट पर बात हो सकती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मिनट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आपको गलत समझने वालों को रास्ता दीजिए, सफाई नहीं। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: भारत इटली रिश्तों में नई उड़ान, व्यापार रणनीतिक साझेदारी में बनी बात, रोम में पीएम को मिला कृषि सम्मान, दौरे से लौटते ही कल दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी और अमित शाह को हद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर, कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष राहुल ने मेलनी को पीएम के मेलोडी देने पर भी किया कटाक्ष। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45.8 डिग्री तक चढ़ा तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी, 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी, कहा अब सिर्फ एक ही सवाल है, या तो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Namaskar.

0: करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Matt.
0: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है. आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी.
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम.
0: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है. तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था. वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार. वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी. तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था. पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं. वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर लय और ताल के संगम वाला संगीत. यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है.
2: With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view, we have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
3: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. ग्राजिए मिले.
0: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है. ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है. बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं. बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है. इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा.
2: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
0: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है. ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए. 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी.
3: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
0: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की. डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं. दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं. और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है. ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है. लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं. दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ. दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया. इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं. मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना. भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है. इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं. इसे समझिए,

0: नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
1: हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा पूरी कर ली है, कई सारी तस्वीरें हमने देखी, दिखाई, मुलाकातें देखी, लेकिन सवाल यही है कि 5 देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणय क्या लेकर लौट रहे हैं?
2: बिल्कुल सही, 5 देशों का दौरा, 45 से ज्यादा समझौते, अरबों डॉलर के निवेश का आश्वासन, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी के सूटकेस के साथ वापस भारत लौट रही हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इन 5 देशों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का फोकस क्या था। भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, क्योंकि यात्रा की शुरुआत यूएई से हुई थी, जहां पर भारत के रणनीतिक तेल जो भंडार है उसके अंदर यूएई ने निवेश बढ़ाने का आश्वासन दिया है, उसमें निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ 5 अरब डॉलर का भारत में निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर आप समझौतों की फेहरिस्त देखें तो प्रधानमंत्री मोदी नेदरलैंड पहुंचते हैं, जो कि यूरोप के अंदर भारत के निर्यात का एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। भारतीय निर्यात वहां ज्यादा होता है, हम नेदरलैंड से आयात कम करते हैं, और इस लिहाज से 17 समझौते, महत्वपूर्ण समझौते नेदरलैंड के अंदर हुए। इन समझौतों के अंदर भारत का निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है, नेदरलैंड के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से सहयोग किया जा सकता है, ये मुद्दे शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वीडन गए, और स्वीडन और नॉर्वे जो कि नॉर्डिक क्षेत्र के अंदर हैं, नॉर्वे के अंदर नॉर्डिक के साथ में सम्मेलन भी हुआ, शिखर बैठक हुई नॉर्डिक के देशों के साथ भारत की, और इसके अंदर किस तरीके से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो ब्लू इकोनॉमी है आर्कटिक के क्षेत्र के अंदर, कैसे सहयोग बढ़ाया जा सकता है, मिलकर काम किया जा सकता है। साथ ही नॉर्वे के पेंशन फंड को भारत में आकर्षित करने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, उसके लिए कोशिशें हुई।
1: बहुत धन्यवाद प्रणय। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दस्तक में हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटकर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के बीच 48 घंटे बाद महायुद्ध की घड़ी। आप देखते रहिए दस्तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
8: So they were disallowed from speaking their language.
7: In-depth conversations with A-list celebrities.
9: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
7: True crime podcasts you just can't stop listening to.
10: Others escape justice to live and die in infamy. These
7: plus the news and sports content you crave in podcast form.
11: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
7: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
12: Sokudo.
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
6: बड़े आराम से।
7: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
8: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
9: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का
10: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड से सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
16: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ हमारे देश के असली हीरो के हाथ जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान देश का हीरो।
17: इसमें फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
22: लाइक आई सेड बिफोर वी बेटर होल्ड दिस इन।
23: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले जहां स्वाद वहां JK।
24: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिया।
25: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
26: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
27: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
28: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
29: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था NTO को पता नहीं।
27: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
30: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
28: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ। NTA जागी पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
27: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
31: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
32: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, FitTuck. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on FitTuck YouTube.
33: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊंगा।
34: नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप
35: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
36: श्वेतपुर मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
0: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाया ओके।
1: शुभेंदु अधिकारी,
28: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
2: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
3: अनुपम मिश्र,
4: अमित भारद्वाज,
5: पीयूष मिश्रा,
6: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: क्या ट्रिशा ने खुदकुशी की? क्या उसकी हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया गया था? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? सस्पेंस गहरा है। ट्रिशा के पिता को न तो सुसाइड थ्योरी पर भरोसा है, न ही ससुराल वालों पर। वो उनके रसूख की बातें कर रहे हैं, वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 12 मई की दो तस्वीर से सस्पेंस गहरा गया। एक तस्वीर में रात के 10 बजे ट्रिशा रस्सी लेकर छत पर जाती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में उसके पति समर्थ सिंह उसे CPR देते दिख रहे हैं। ये दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। कैमरा दिखा रहा है अकेली छत पर जाती है ट्रिशा और फिर अनहोनी होती है और उसके पति उसे बचाने की कोशिश करते हैं, फौरन अस्पताल ले जाते हैं।
1: ये हमारी लड़ाई।
0: लेकिन ट्रिशा के पिता इस कहानी पर भरोसा नहीं करते। उसकी वजह भी है। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वो फोन पर अक्सर रोती थी, जलील करने की बात करती, प्रताड़ित करने की बात करती। 12 मई की रात को भी उसने अपनी माँ को फोन किया था, रात 10:05 पर। उसने कहा था कि अब वो टूट चुकी है और अब सहा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन कट गया और करीब 15 मिनट बाद सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रिशा फंदे से लटकी मिली है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई, यानी सिर्फ फांसी नहीं, शरीर पर और भी जख्म थे। यही वजह है कि परिवार अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रिशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसका शव अब भी भोपाल की मॉर्चरी में रखा है। इस केस में एक और सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे कथित तौर पर ट्रिशा ने फंदा लगाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उस बेल्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बेल्ट जब्त कर ली गई थी और उसकी जांच कराई जा रही है। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि रसूखदार सास की वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। कटारा हिल्स थाने से लेकर CM हाउस तक परिवार लगातार चक्कर लगा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर दिया, SIT बनाई गई है। लेकिन इसी बीच ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत भी मिल गई और अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अपनी जमानत अर्जी में ट्रिशा की सास ने ट्रिशा को ड्रग एडिक्ट बताया। कहा है कि वो नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी, जब ड्रग्स नहीं मिलती तो उसका व्यवहार बदल जाता था। लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मौत के बाद चरित्र हनन बता रहा है। अब सवाल यही, क्या ट्रिशा ने सचमुच खुदकुशी की या फिर 5 महीने पहले शुरू हुई शादी मौत की साजिश में बदल गई?
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। ट्रंप की ये बैठक लगातार चल रही है अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ, क्योंकि 48 घंटे बाद महायुद्ध हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील अगर साइन नहीं की तो एक बार फिर अमेरिका जबरदस्त हमला करेगा। ईरान को दिए अंतिम अल्टीमेटम के अनुसार अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है। तो क्या अगले 48 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध शुरू होना तय है?
5: Iran, everything's gone. Their navy's gone. Their air force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens. But we're a hot country. We're the hottest country anywhere in the world. With the

0: ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉक ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला, हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी।
1: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
0: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
2: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
2: I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
0: ईरान पर नए हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजरायल पहुंच चुका है। महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है।
3: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल अपनी बड़ी और बार बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुल्ला खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।
4: आइए आपको अमेरिका वाशिंगटन हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास लिए चलते हैं। रोहित, ईरान पर हमले की धमकी कोई नई बात नहीं है लेकिन ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ट्रंप क्या वाकई हमला कर सकते हैं? रोहित,
5: देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो उनके कमेंट्स रहे हैं और इनफैक्ट कल जेडी वैंस ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक पोस्चर जो है वो क्लियर किया कि अमेरिका जो है ऑब्वियसली ये एक फॉरएवर वॉर नहीं चाहता और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ही है कि जो हमने पहले 4 या 6 हफ्ते में जो डैमेज अमेरिका ने पहुंचाया ईरान को इट हैज बीन सफिशिएंट इनफ कि उनकी मिलिट्री नहीं रही है या उनकी नेवी नहीं है और जिस तरह के जो बार बार क्लेम्स अमेरिका ने किए हैं तो उसको लेके आई थिंक यू नो दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि अब ये शायद सही समय है एक डील करने का लेकिन उस डील में गारंटीज चाहता है अमेरिका। और जहां तक सवाल इस बात का है कि ये जो लिमिटेड समय की बात है कि किस तरह से इसको आगे देखा जाए या जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट था कि टाइम है कम टाइम है वो इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि मैं अटैक करने वाला था ईरान पे लेकिन मैंने रोक दिया तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक यू नो नॉट ओनली सेंडिंग अ मैसेज बट एक सच्चाई भी बयान कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये नेगोशिएशंस चलती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं और इवेंचुअली कभी ना कभी तो एक एक्सपेक्टेशन होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ईरान किसी डील को लेके समझौते को लेके आगे बढ़े। ये नेगोशिएशंस चलती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं और इवेंचुअली कभी ना कभी तो एक एक्सपेक्टेशन होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ईरान किसी डील को लेके समझौते को लेके आगे बढ़े और फिलहाल उन्हें उस तरह की चीजें नहीं दिख रही। उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक जो नया लेटेस्ट जो नेगोशिएशन का जो पेपर आया था वहां से पहली लाइन पढ़ के ही मैंने उसे फिर डस्टबिन में डाल दिया बिकॉज उसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर गारंटीज नहीं थी। तो आई थिंक हम अभी मई में हैं तीन साढ़े तीन चार महीने बाद यहाँ पे जो जब इलेक्शन होंगे मिड टर्म्स के लिए, उसमें इसे गलत अगर ये वॉर बढ़ती है तो इसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा रिपब्लिकन पार्टी पे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ऊपर. तो मुझे लगता है कि इसी वजह को लेके आई थिंक शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा है कि ही हैज टू डू अराउंड टू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन की अमेरिकन पावर कितनी है. और अगर उसके लिए अगर उन्हें ईरान के ऊपर फिर से हमला करना पड़े तो वो बता रहे हैं ईरान को, पूरी दुनिया को, मैं तैयार हूँ. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ईरान हैज टू टेक दिस इन सीरियसली. और साथ ही साथ अगर ईरान सचमुच चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे और नेगोशिएशन नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा गंभीर चेतावनी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, स्पेशली जब वेंस ने आके पोजिशन क्लियर की. उसके बाद भी अगर आप बात देखें तो ऐसा लगता है कि उनका पेशेंस जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो खत्म होता नजर आ रहा है.
4: बहुत धन्यवाद रोहित. रोहित शर्मा हमारे संवाददाता वाशिंगटन से जानकारी दे रहे थे. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान युद्ध अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है. जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध में दुनिया सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, निकला जाए, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल निकाला जाए और कैसे युद्ध रुकवाया जाए, दुनिया इसी माथापच्ची में लगी हुई है. नेटो से लेकर मिडिल ईस्ट के देश और पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक ईरान युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं. तो आइए हम आपको दिखाएं क्या ईरान युद्ध का कोई हल निकलेगा.
0: स्ट्रेट हॉर्मुज से दुनिया में हाहाकार, क्या कोई हल निकलेगा. हॉर्मुज में ईरान और अमेरिकी नाकेबंदी पर नेटो करेगा बैठक. पुतिन के चीन दौरे पर शी जिनपिंग ने की ईरान युद्ध पर चर्चा. क्यों जिनपिंग बोले दुनिया फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है. वैश्विक संकट के बीच पुतिन के चीन दौरे के मायने क्या है. ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी, अब पूरी दुनिया इस जंग के साइड इफेक्ट्स झेल रही है. भले ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच बारूद आज भी सुलग रहा है. हालात ऐसे हैं कि ये जंग कभी भी महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ना तो अमेरिका मानने को तैयार है, ना ही ईरान छुपने को तैयार है. अमेरिका शर्तें रख रहा है ईरान अपना एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम छोड़े, और ईरान कह रहा है कि चाहे जो हो जाए एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा. और ईरान अमेरिका की इस जंग में दुनिया चने के साथ घुन की तरह पिस रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है. वो हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है. ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नाटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है. अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने में नाटो की ओर से मदद न मिलने पर तीखे बयान देते रहे हैं. अब खुद नाटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं. आने वाली 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. इस बार का सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है. तुर्की दूसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है. इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी है. अगर जुलाई की शुरुआत तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा तो नाटो वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नौसैनिक बेड़ा भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. नाटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप ने पुष्टि की है कि ये सैन्य विकल्प पूरी तरह मेज पर है, और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस जैसे देश पहले से ही समुद्र सुरक्षा योजनाओं को अमली जमा पहनाने में जुटे हैं. अगर ये मिशन शुरू होता है तो ये नाटो के इतिहास का एक बड़ा आउट ऑफ एरिया यानी अपने तय क्षेत्र से बाहर का ऑपरेशन होगा, जो गठबंधन की सैन्य भूमिका को सीधे मिडिल ईस्ट तक बढ़ा देगा. हालांकि इस मिशन पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है. कई यूरोपीय देश डर रहे हैं कि नाटो के सीधे उतरने से ईरान के साथ तनाव और अधिक बढ़ सकता है.
4: और रही अब हम आपको दिखाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं. सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते उन्होंने किए. सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आग उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा.
0: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
6: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द करेक्टर ऑफ वॉरफेयर। मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। सप्लाई चेन्स आर बीइंग रीकॉन्फिगर्ड एंड इनोवेशन साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर देन एवर बिफोर।
0: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
6: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेम यूंग हैव बोथ प्लेस्ड स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
0: In ahem baithkon se pehle raksha mantri Rajnath Singh Seoul mein National Cemetery of Korea pahunche jahan unhone desh ke veer sainikon ko shraddhanjali arpit ki. Is dauran unhone pushp arpit kar un sainikon ko naman kiya jinhone apne rashtra ki seva mein sarvoch balidan diya. रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
4: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
10: It's your boy,
9: just
10: Jay-Z.
9: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: GK Max.
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: GK Max.
10: बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स,
10: बेस्ट पेंट
15: जेके मैक्स,
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
17: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
18: एयू,
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए।
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
22: जहां खबर वहां खबरदार।
26: इन एसोसिएशन विद
27: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
28: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

पांच देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की वापसी, इटली से रवाना, रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात, दौरे से लौटते ही कल दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर, कहा ये पाकिस्तान की भाषा, नेता विपक्ष ने मैलोनी को प्रधानमंत्री के मैलोनी देने पर भी कसा तंज। नेट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी, 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी, का अब सिर्फ एक ही सवाल है, या तो वो दस्तावेजों पर साइन करे वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जज रही सास की बहू त्रिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर जख्मों के निशान मिले। ये निशान मौत से पहले के हैं, यानी जब त्रिशा जिंदा थी। अब सवाल ये है कि अगर त्रिशा ने खुदकुशी की तो फिर जख्मों के ये निशान कैसे। हालांकि भोपाल के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जख्म ऐसे नहीं जिनसे त्रिशा की मौत होती। वैसे त्रिशा के पति की गिरफ्तारी और जज रही सास से पूछताछ से पहले ही भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने यह ऐलान कर दिया कि त्रिशा की मौत हत्या नहीं बल्कि खुदकुशी है।
1: यह सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं। सिंपल इंजरी है, हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट FSL द्वारा सीज किया गया था। सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। इसमें तो बहुत जल्दी FIR हुई है। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है।
0: ये भोपाल के पुलिस कमिश्नर है, नाम संजय कुमार। पुलिस कमिश्नर है तो जाहिर है सीनियर पुलिस अफसर होंगे। अब सीनियर है तो इन्हें पता होगा कि एक केस जिसकी अभी जांच चल रही है, जिसकी विसरा या फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिसके मुख्य आरोपी को इनकी पुलिस अभी पकड़कर पूछताछ भी नहीं कर पाई है, ऐसी सूरत में उस पर अपनी आखिरी राय पहले नहीं देनी चाहिए। पर लगता है कि कमिश्नर साहब बस किसी तरह इस केस को निपटाने में लगे हैं। त्रिशा की मौत के केस की डिटेल में जाएं उससे पहले सिर्फ सिलसिलेवार आप भोपाल के कमिश्नर साहब यानी संजय कुमार की बातें सुन लीजिए। केस का अंजाम अभी से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत उसी सवाल से जिसका जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। सवाल ये कि त्रिशा की मौत खुदकुशी है या हत्या। इस सवाल पर कमिश्नर साहब ने सोचने के लिए सेकंड भी नहीं लिया और अपना जवाब सुना दिया। आप भी सुनिए।
1: नहीं, अभी तक की जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमार्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है।
2: तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें।
1: नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है।
2: परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के।
1: नहीं, वो क्या है कि ये PM रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमार्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से।
0: कमिश्नर साहब ने जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दिया उसे सुनकर जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर आप त्रिशा की मौत को खुदकुशी बता रहे हैं, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्रिशा के जिस्म पर कई चोट और जख्मों की भी बात है, तो सुनिए कमिश्नर साहब ने इस पर क्या कहा।
1: सिंपल इंजरीज हैं, वो ऐसी इंजरी नहीं है कि जिसे किसी का मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, वो सिंपल इंजरी है। हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
0: कमिश्नर साहब के कॉन्फिडेंस का आलम ये कि जब उनसे पूछा गया कि त्रिशा की मौत 12 अप्रैल की रात को ही हो चुकी थी तो फिर भोपाल पुलिस को FIR दर्ज करने में 15 की देर रात 2:36 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा, जब त्रिशा के भाई और परिवार के बाकी सदस्य लगातार थाने के बाहर 13 अप्रैल से ही FIR लिखाने के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तो पुलिस ने तभी FIR तक क्यों नहीं की? और फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस त्रिशा की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी उसकी मौत के FIR लिखने के लिए 3 दिन बाद देर रात 2:36 का इंतजार करना पड़ा? इस सवाल पर भी कमिश्नर साहब का कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाया।
1: FIR में देरी नहीं हुई, FIR में तो देखो हमने 2 दिन में ही जांच करके FIR कर ली थी, जबकि अगर आप पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर देखोगे तो इस तरह के केसेज में 1 महीने का टाइम दिया जाता है जांच करने को। आप इस केस को दूसरे केसेज से कंपेयर करो, इसमें तो बहुत जल्दी FIR हुई है।
0: वाकई कमाल है कमिश्नर साहब, पेशा की मौत 12 अप्रैल की रात हुई, FIR 15 अप्रैल की देर रात 2:36 पर दर्ज हुई। ट्रिशा के घर वाले 2 दिन तक आपकी पुलिस के आगे FIR लिखने के लिए गुहार लगाते रहे और आप कह रहे हैं कि हमने तो बहुत जल्दी FIR दर्ज कर दिया। आपकी पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर के हिसाब से आप चाहते तो FIR दर्ज करने के लिए पूरा 1 महीना भी इंतजार कर सकते थे, पर यहाँ आपकी दाद देनी पड़ी कि वारदात के तुरंत बाद 3 दिन बाद तो FIR लिखी ली। हालांकि आप एक सीनियर पुलिस अफसर हैं, तो आप ये भी बखूबी जानते होंगे कि कानून कहता है कि खुदकुशी के मामले में FIR दर्ज करने की कोई तय कानूनी समय सीमा नहीं है, लेकिन सुसाइड एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए यही कानून ये भी कहता है कि पुलिस को शिकायत मिलने पर फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। FIR दर्ज करने में बेवजह देरी के चलते अदालत में या जांच में संदेह पैदा हो सकता है। FIR छोड़ी, कमिश्नर साहब को तो इस बात में भी कोई गलती शायद नजर नहीं आई कि जो इलास्टिक रस्सी या बेल्ट ट्रिशा के गले में फंदे की शक्ल में मिली उसे उनकी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सौंपी गई। जब कमिश्नर साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उनकी पुलिस बेल्ट मौके से तो ले आई थी, मालखाने में भी रख दिया, उसे सील भी कर दिया, उसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं की। अलबत्ता फॉरेंसिक टीम को उस वक्त भेजना भूल गए, बाद में भेज दिया और अब तो लिगेचर मार्क से बेल्ट का मिलान भी हो गया है।
1: जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट FSL द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। PM रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी पूरी तरह PM रिपोर्ट से मेल खाती है, उसे इन्वेस्टिगेशन पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा है।
2: सर, ये जो लिगेचर है उसकी रिपोर्ट में क्या इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो निशान थे ट्रिशा के गले पे वो उसी के थे?
1: हाँ, उसी बेल्ट के, वो मैच हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार।
0: कमिश्नर साहब का कॉन्फिडेंस जारी था, पर अगले सवाल पर लगा कि अब तो वो अपनी पुलिस की नाकामी शायद थोड़ा सा कबूल कर ले। लेकिन क्या मजाक, असल में जब उनसे पूछा गया कि 8 दिन हो चुके हैं फिर भी ट्रिशा की मौत के मामले में फरार उसका पति समर्थ सिंह अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही, तो कमिश्नर साहब ने इस पे गजब का दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया।
1: देखो क्या होता है, कई बार समय लग जाता है गिरफ्तारी करने में, चाहे अपराधी छोटा हो बड़ा हो, कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो ये इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पकड़ने की।
0: समर्थ को भोपाल पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और उधर दूसरी तरफ दूसरी आरोपी यानी ट्रिशा की सास जो कभी जज थी वो पहले ही अग्रिम जमानत का सर्टिफिकेट लिए पुलिस को खुद से दूर कर चुकी है। पैसे में ट्रिशा की मौत के पीछे का असली सच कैसे सामने आया? हालांकि ये सवाल छूट गया कि जब FIR में आरोपी नंबर 1 के तौर पर पूर्व जज और ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का नाम दर्ज है और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही अग्रिम जमानत भी ले ली है, तो भोपाल पुलिस ने उन्हें अग्रिम जमानत देने वाले उस कोर्ट के फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी? लगता है भोपाल पुलिस को पूर्व जज साहिबा को गिरफ्तार करने या उनसे पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अब पति फरार है, कभी जज रही सास जमानत पर, और इंसाफ की मांग के साथ ट्रिशा का परिवार भोपाल की सड़कों पर, तो जाहिर है ऐसे में ट्रिशा का अंतिम संस्कार कैसे हो? पिछले 8 दिनों से इंसाफ की इस लड़ाई के चलते ट्रिशा की लाश भोपाल के इसी सरकारी एम्स के मुर्दा घर में पड़ी है। एक तो ट्रिशा की मौत को 8 दिन हो चुके हैं, ऊपर से भोपाल में पारा 45 डिग्री के पार है, अब तो खुद एम्स वालों ने ही हाथ खड़े कर लिए हैं कि आगे ज्यादा दिनों तक वो ट्रिशा की लाश को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, यानी अब लाश खराब होने की भी नौबत आ गई। एम्स वालों ने खुद इस बारे में कमिश्नर साहब से भी बात की है।
1: क्योंकि हॉस्पिटल से भी हमें कन्वे किया गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टेम्परेचर हम कम नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो बॉडी के डिकम्पोज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको कन्वे किया गया है।

0: कैसे कह सकती है। जिस घर में एक मौत हुई, जिसकी बहू की लाश अब भी उस घर से कुछ दूरी पर मुर्दा घर में पड़ी हो, उस बहू के बारे में बाकायदा मीडिया को बुलाकर ऐसी ऐसी बातें कोई कैसे कर सकता है। पर गिरिबाला सिंह सास होने के साथ साथ एक जज भी रही है। जाहिर है कानून अब भी उनके नसों में दौड़ता है। उन्हें पता है कि कई बार भावनाएं कानून और इंसाफ पर भारी पड़ जाती हैं।
1: ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार, हमारे तो जेनरेशन फौज में रहे हैं। 62 वॉर, 65, 71, कारगिल, इवन दिस माय ब्रदर वो तो कुपवाड़ा में था उस समय, श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया, पैरा कमांडो रहा है। माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन, इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे। एंड दिस पीपल,
0: गिरिबाला जी आप जज रही हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि ड्रग्स लेना, खरीदना या ड्रग्स लेने वाले और खरीदने वाले की बातें छुपाना अपराध है। आप ऐलानिया कह रही हैं कि आपकी बहू ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स न मिलने पर उसके हाथ कांपने लगते थे। 5 महीने से त्रिशा आपके घर में थी। जब आपको पता था कि वो ड्रग्स लेती है, ड्रग्स खरीदती है, तो फिर एक अच्छा नागरिक या कम से कम एक कानून की मुहाफिज होने के नाते आपने इस गैर कानूनी चीज की जानकारी कभी पुलिस को क्यों नहीं दी? अब आप अपनी मुर्दा बहू के बारे में ये सारी बातें ऐलानिया बता रही हैं।
1: When we had gone to काकोली रॉय जी के पास हम लोग साथ को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी why do you want this, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा I have consumed in large quantities marijuana, उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। ना मारुआना कंजम्पशन, यू नो बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है, वी स्टिल डोंट नो। सिंगल सेशन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गई, तो इसका वहीं से तो शुरू हुआ। हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
0: आप जज की कुर्सी पर बैठ चुकी है, आपको अच्छे से पता है कि आपके लगाए इल्जाम पर अपना बचाव एक जिंदा इंसान ही कर सकता है, मुर्दे बचाव नहीं करते। आपने ये इल्जाम लगाया है कि त्रिशा को बच्चा नहीं चाहिए था और इसीलिए उसने बिना आपको बताए अबॉर्शन करा लिया। हालांकि त्रिशा के माँ बाप और भाई आप और आपके बेटे पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने गर्भवती होने के बाद त्रिशा को लगातार इस बात के ताने मारे कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा किसी और का है।
1: उसने तुरंत शुरू कर दिया था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा ऐसा लगता मुझे मार रहा है, मुझे मैं मर जाऊंगी अगर बच्चा होगा, ये उसने शुरू किया। तो वी सेड लेट अस गो इन फॉर प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। एक अगर बालिग स्त्री कहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए आफ्टर मैरिज, तो कोई तो कारण होगा।
0: मौत के बाद अब आप अपनी बहू पर ये भी इल्जाम लगा रही हैं कि वो घंटों फोन पर किसी से बात किया करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर नहीं बताती थी। सवाल यह है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत आपने कभी त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
2: रिकॉर्ड्स निकले, मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर देर तक फोन, व्हाइट फोन लगा।
1: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं किससे बात हो रही थी। ठीक है,
0: अफसोस तो इस बात का है कि त्रिशा की मौत की आंच कहीं आप तक न पहुंच जाए। इससे बचने के लिए अब आप अपनी बहू को दिमागी बीमार तक बता रही। त्रिशा तो आपकी बहू थी, कम से कम इस डॉक्टर से ही सीख लेती जिन्होंने त्रिशा का इलाज किया। लेकिन क्या मजाल कि बार बार पूछने पर भी ये त्रिशा की बीमारी के बारे में कुछ बताते।
1: शिज़ोफ्रेनिया इज अ यू नो प्रॉब्लम, जहां व्यक्ति के अंदर एक कदम आगे सेकंड, यू नो इट कैन मैनिक फेजेस भी होते, डिप्रेशन भी होता है।
2: शिज़ोफ्रेनिया का कब पता चला मैम?
1: एंजाइटी का लिखा है उसके पर्चे में, और जो दवाई दी ओलिज़ेप्राम, अगर आप उसको वो चेक करेंगे तो दैट इज गिवन फॉर ऑल दिस पेशेंट्स, मैनिक डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है,
3: देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि निश्चित तौर पर वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी, लेकिन पेशेंट की फाइन डिटेल्स देना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देना, उनकी दवा के बारे में जानकारी देना, और खासकर जब ऐसा कोई मामला चल रहा हो तो वहां पर हम पब्लिकली इस बात को।
2: सीज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट था क्या सर?
3: देखिए मैं उनके बारे में मतलब मैं आपसे

0: मैं चाहता हूं मैं उनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा यहां पर प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा कहता है कि हम उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे।
1: इस पूरे मामले में पिशा की सास गिरिबाला सिंह का व्यवहार सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। पिशा का परिवार पूछ रहा है कि जब उनकी बेटी इस दुनिया में जवाब देने के लिए जिंदा ही नहीं है तो फिर अब उनकी सास की तरफ से उसके चरित्र पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल पिशा की सास गिरिबाला सिंह ने पिशा पर ड्रग एडिक्ट होने के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड से आने वाली उनकी बहू उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। शुरुआत में उसने जो संस्कार दिखाए थे बाद में वो उसके बिल्कुल विपरीत थी। इसलिए गिरिबाला सिंह ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में पिशा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन पिशा जो अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही अपनी सास गिरिबाला सिंह के आरोपों का जवाब देने वाली है तो फिर सवाल ये उठता है कि एक जज होकर के भी और एक महिला होकर के भी क्या गिरिबाला सिंह को मर चुकी एक लड़की के बारे में जो कि उनकी बहू भी थी क्या इस तरीके की बातें कहनी चाहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: भोपाल पुलिस ने अपनी तरफ से तो ट्विशा की मौत को खुदकुशी करार दे दिया है लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद ट्विशा के आखिरी वीडियो ने भोपाल पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौत से ठीक पहले ट्विशा सीढ़ियों पर अपने हाथों में हेडफोन लिए जाते हुए नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि खुदकुशी करने जा रहा कोई शख्स अपने साथ हेडफोन लेकर क्यों जाएगा। गिरिबाला सिंह के ही घर के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी कई सवाल पूछ रही हैं। मौत से पहले ट्विशा की यह आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। अब पता नहीं सीसीटीवी कैमरे की घड़ी और तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर ये सचमुच खराब है क्योंकि इसमें तारीख और वक्त गलत दिखाई दे रहा है। 12 अप्रैल की रात ट्विशा सीढ़ियों के जरिए छत पर जाती नजर आ रही है। ट्विशा के हाथ में हेडफोन है। छत पर जाने के करीब घंटे भर के अंदर ट्विशा की मौत हो जाती है। घंटे भर बाद छत पर ट्विशा फंदे के सहारे लटकी मिली थी। अब यहाँ सवाल ये है कि खुदकुशी करने जा रहा एक शख्स अपने साथ हेडफोन लेकर क्यों जाएगा। सीढ़ियों से छत पर जाने के दौरान भी ट्विशा बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। यहाँ तक कि छत पर जाने के बाद उसने अपनी माँ से भी फोन पर बात की, तब भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये लगता कि बस अब वो मरने जा रही है। तो फिर आखिरी पलों में छत पर क्या हुआ? अब छत की तस्वीर तो है नहीं तो कैसे पता चले।
3: मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था, ये हेडफोन लेके गया है।
2: हाँ, सीढ़ियों पर फोकस कर रहे सीसीटीवी कैमरे के अगले फ्रेम से ये जरूर पता चलता है कि समर्थ और उसके साथ पहले एक और फिर दो लोग ट्विशा का सीना दबाकर उसकी सांस वापस लाने यानी उसे CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कैमरे की एक और तस्वीर बड़ी अजीब है। ये जज रही गिरिबाला सिंह सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। ऊपर जाने वाली सीढ़ी के शुरुआत में शायद एक कमरा है। गिरिबाला सिंह दरवाजा खोलती है और कमरे में दाखिल हो जाती है। अब इस तस्वीर को गौर से देखें। जब गिरिबाला सिंह ऊपर आकर कमरे में जा रही होती है तब उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर उनका बेटा समर्थ सिंह ट्विशा को CPR देने की कोशिश करता है लेकिन गिरिबाला सिंह एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें ऊपर की तरफ नहीं उठाते, न ऊपर देखने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। है ना अजीब। इसके आगे की तस्वीर तो और भी ज्यादा अजीब है। कुछ पल बाद ही गिरिबाला कमरे से बाहर आती है। हाथ में उनके कोई बैग या पर्स है पर इस बार वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है। जाहिर है ऊपर जो कुछ हो रहा है उन्हें सब नजर आ रहा है। वो समझ भी रही होंगी कि ट्विशा के साथ क्या हुआ या समर्थ इस वक्त वहाँ क्या कर रहा है लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि मानो गिरिबाला सिंह को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो पल भर के लिए ऊपर देखती है और फिर सीढ़ियों के रास्ते नीचे चली जाती है। अब जरा सोचिए, एक घर में एक हादसा हुआ है, ऐसे में किसी का भी रिएक्शन कम से कम ऐसा तो नहीं होगा जैसा जज रही गिरिबाला सिंह का है। कैमरे में कैद ये सबूत और FIR में दर्ज आरोपी के कॉलम में ये पहला नाम है यानी जज रही गिरिबाला सिंह का नाम। कानून का फायदा उठाकर बेशक गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत लेकर गिरफ्तारी से बच चुकी है। भोपाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती लेकिन कमाल देखिए कि आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद 8 दिन बाद भी भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह से अब तक एक बार भी पूछताछ नहीं की। अब चूंकि ट्रिशा का पति समर्थ सिंह फरार है तो 12 अप्रैल की रात की कहानी, क्राइम सीन का वाकया और ट्रिशा की मौत को लेकर भला गिरिबाला सिंह से बेहतर जानकारी पुलिस को और कौन दे सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि भोपाल पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है जो उसने अब तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ ही नहीं की। किसी आम सास ससुर के मामले में क्या यही भोपाल पुलिस ऐसा ही करती है? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

शुभेंदु अधिकारी तेजी से अपनी इमेज बदल रहे हैं। चुनाव में जो धार दिखाई थी उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। उनके फैसले, उनकी घोषणाएं, उनके शब्द बड़े गौर करने वाले हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने खुलकर कहा था कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए और हिंदू वोट ही मिलेंगे। अब वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ कहा था बल्कि कर भी वही रहे हैं जो हिंदू वोट को और सॉलिड कर सके। उनके ताजा एक्शन पर गौर करें। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। शुभेंदु पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं कि बंगाल की जनता को ये एहसास हो जाए कि राज्य में नई सरकार का आगाज हो चुका है। वो कानून व्यवस्था के सवाल पर सख्त अंदाज दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिख रहा है। सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु इस कोशिश में दिख रहे हैं कि जनता के जहन से ममता राज की यादें जल्द से जल्द मिटा दी जाए। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।

पांच देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की वापसी, इटली से रवाना, रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात, दौरे से लौटते ही कल दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर, कहा यह पाकिस्तान की भाषा, नेता विपक्ष ने मैलोनी को प्रधानमंत्री के मैलोनी देने पर भी कसा तंज। नेट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा है तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी, 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी का अब सिर्फ एक ही सवाल है, या तो वो दस्तावेजों पर साइन करे वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म।

0: में महाविकास अघाड़ी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाके के दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन के बाद हंगामे की खबर, जमीनों पर अवैध घरों को तोड़ने के दौरान भारी बवाल हुआ। बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़की थी हिंसा, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांद्रा में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज पर शिवसेना यूपीटी विधायक वरुण सरदेसाई का बयान, बोले अगर लोग बांग्लादेशी हैं तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बने, साथ ही इस कार्रवाई को बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति बताया। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक के मामले में केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार के दौरान हर साल कोई न कोई पेपर लीक हुआ है, साथ ही दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। नीट पेपर लीक मामले में आरसीसी पुणे कैंपस पर बुलडोजर कार्रवाई, शहर में आरोपी से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है पुणे नगर निगम। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बकाया संपत्ति कर और अनधिकृत इस्तेमाल के आरोपों में की गई कार्रवाई और इन संपत्तियों पर 3,20,00,000 रुपए का बकाया था संपत्ति कर। नीट पेपर लीक मामले की जांच विदर्भ तक पहुंची, सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी करके परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क पर खुलासा होने पर संभावना जताई। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त करने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। गुजरात के कच्छ समेत कई इलाकों में पेट्रोल डीजल संकट गहरा गया, किसानों की खेती और सिंचाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉडा कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 2 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। अकोला में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के बयान में लाख के बोगस बायो खाद जब्त करके गोदाम में सील किया गया। सूरत में गली में खेलते बच्चों पर टूट पड़े आवारा कुत्ते, 48 घंटे में 2 बच्चों पर जानलेवा हमले से दहशत। सूरत पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 20,00,000 की कीमत की विदेशी शराब को नष्ट किया गया। जामनगर में अज्ञात महिला ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी, पुलिस ने मानसिक तनाव इसका कारण बताया। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे नाकाफी बताया, कंपनियों को 900 करोड़ रुपए रोजाना के नुकसान से बचाने के लिए 17 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारत की कोई भी कंपनी मौजूद नहीं, युद्ध के बाद से शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के लिस्ट से बाहर होने की खबर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एआई और ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में 7,000 से ज्यादा नौकरियां कम करेगा, 4 साल में होने वाली इस छठी से बैंक के कामकाज को और बेहतर और सस्ता करने का भरोसा। देश में रोजाना औसतन 77.6 करोड़ डिजिटल पेमेंट होने की आरबीआई रिपोर्ट में दी गई जानकारी, यूपीआई आरटीजीएस और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने से भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई से सीधे अपने बैंक खाते में भविष्य निधि का पैसा निकाल पाएंगे, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि परीक्षण पूरा होने के बाद जल्द ही ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म में वापस आऊंगा ट्रेलर रिलीज किया गया, 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन फिल्म 13 यार हूं में से एक बार फिर से डेब्यू करने जा रहे हैं, 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। प्रीति जिंटा 8 साल के बाद फिल्म वाइब में बड़े पर्दे पर नजर आएंगी, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 19 साल के बाद एक बार फिर से साथ नजर आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा, एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हुई। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म सेक्शन 108 नूरानी चेहरा, संगीन तुम्बा 2 द ग्रेट एस्केप फरार में अहम रोल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई में हर आम इंसान से लेकर खास तक बड़ा पाव सबकी पहली पसंद मानी जाती है, लेकिन अब बड़ा पाव महंगा हो गया है, इस पर भी महंगाई की मार पड़ी है। बड़ा पाव की कीमत 5 रुपए तक बढ़ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा तक बढ़ जाना। पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है, इसीलिए मजबूरी में फूड स्टॉल पर बड़ा पाव के दाम भी बढ़ाने पड़े हैं।
1: चाहे सीएसटी पे आराम का वड़ा पाव हो या फिर दादर का कीर्ति कॉलेज का ये अशोक वड़ा पाव, यहाँ इन सब वड़ा पाव के स्टॉल्स में एक खासियत यह है कि पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरह से गैस सिलेंडर जो कमर्शियल गैस मिल रहा है उसका भाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, 1,000 से 3,000 हो गया, उसकी वजह से वड़ा पाव की इन दुकानों पर अब जो वड़ा पाव मिल रहा है वो तकरीबन 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ छोटे दुकानों पे हमने देखा कि 2 या 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन दुकानों पे सीधे 5 रुपए। इनफैक्ट अशोक वड़ा पाव की जो दुकान है ये कमर्शियल गैस की जब अनअवेलेबिलिटी थी तब ये काफी दिनों तक बंद भी था ये दुकान, लेकिन जब ये खुला है तो अब देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, देख लीजिए यहाँ लाइन लगी हुई है, जो लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे अशोक वड़ा पाव के कह लीजिए आशिक टाइप हैं, वो सब के सब यहाँ पर खा रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, आप लोग पहले भी खाते आए हैं?
2: हाँ।
1: कॉस्ट बढ़ गया है, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि अवेलेबल ऑप्शन है? अभी
2: वैलिड है क्योंकि कॉस्ट पीछे से बढ़ा हुआ है, अभी कोई नया नहीं बढ़ा है और सब जगह बढ़ा है, ऑल ओवर इंडिया बढ़ा है, खाली इधर नहीं बढ़ा है।
1: तो है, हर चीज की दाम बढ़ गया है, कमर्शियल गैस खासतौर से 1,000 से 3,000 पहुंच गया, लेकिन आप देख लीजिए जो लोग वड़ा पाव जो यहाँ पे खाते रहे हैं वो लंबी लाइन लगा के अभी भी आप लोग खा रहे। आप पहली बार खा रहे हैं, पहले से भी खाते हैं?
3: नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ।
1: फर्स्ट टाइम आई
3: है? हाँ,
1: अच्छा, आपको तो पता नहीं चला 5 रुपए बढ़ गया है यहाँ का दाम, लेकिन ऑफकोर्स पहले बार खा रहे हैं तो
3: श्योरली।
1: तो बिल्कुल जैसा आपने देखा कुछ लोग पहली बार खाने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे लोग रहते आसपास काम करते हैं या पढ़ने आते हैं क्योंकि कॉलेज पास में, वो सब अक्सर यहीं पर खाते हैं और उनका यही मानना है कि यहाँ का वड़ा पाव का भले ही दाम बढ़ गया हो, लेकिन क्योंकि हर जगह क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये थोड़ी सी जो बढ़त है वो जायज़ है, वाजिब है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई वासियों का स्टेबल डाइट माना जाता है वड़ा पाव, अक्सर लोग यहाँ पे सवेरे हो, शाम हो, रात हो, वड़ा पाव खाते हुए दिखते नजर आते हैं, लेकिन वड़ा पाव का जो कॉस्ट है वो अब बढ़ गया है। दरअसल जो वड़ा पाव, अगर आप देख लीजिए जो वड़ा पाव के जो स्टॉल्स होते हैं उसमें समोसा पाव या फिर कह लीजिए भजिया पाव, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन वड़ा पाव जो एक स्टेपल है वो थोड़ा सा महंगा हो गया। आखिर वजह क्या ये जानते हैं? आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं दुकान?
4: मैं तो तकरीबन 2 साल से हूँ मैं इधर।
1: तो भाव रिसेंटली भी बढ़ा है?
4: हाँ, पिछले 2-3 महीने से रेट बढ़ा हुआ है, तेल का रेट बढ़ा हुआ, बेसन का रेट बढ़ा हुआ है, गैस का रेट बढ़ा हुआ है। आप जान ही रहे रेट का, गैस का क्या स्थिति है अभी?
1: जो गैस का है वो तो तकरीबन 1,000 सीधे बढ़ गया है, और वो भी 2 तो 3,000।
4: 1,000 का गैस अभी हम लोग को 3,000 में मिल रहा है,
1: लेकिन अवेलेबल
4: अवेलेबल बहुत मुश्किल से मिल पाती है।
1: कैसे इसी वजह से आपने ये पूरा दाम बढ़ाया?
4: हाँ,
1: आपने कितना बढ़ाया?
4: लगभग 1-2 रुपए ऐसे करके बढ़ा हुआ है रेट। जी मैम,
1: तो आपने 1-2 रुपए, हमने 1-2 और दुकानों में पता किया, हालांकि यहाँ पे कह रहे हैं 1-2 रुपए बढ़ा है, कुछ और दुकानों में भी जैसे हम डिलाई रोड पे जैसे गए थे वहां पर भी 2 रुपए बढ़ा है। अशोक वड़ा पाव जहाँ पे कहा जाता है कि वड़ा पाव का इन्वेंशन हुआ था वहां पे तकरीबन 5 रुपए बढ़ा दिया गया, तो जिस तरह से इनपुट का जो कॉस्ट है, क्योंकि गैस का से लेके हर चीज जो है वो उसका कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से जो दुकानदार है उन्होंने वड़ा पाव का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ा दिया है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, क्योंकि आज जबरदस्त हंगामा हुआ है मुंबई में एक बार फिर से। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास एक इलाका है गरीब नगर, वहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है, जमकर हंगामा आज भी वहां देखा गया, क्योंकि 400 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, और आज भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करके हालात को काबू में लाना पड़ा। पुलिस ने 8 उपद्रवियों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस सरकारी काम में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है।

0: मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहा। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास करीब 450 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन अभी दो दिन और चलेगा। आज शाम को जब अतिक्रमण हटाने का अभियान अपने चरम पर था, तभी कुछ प्रदर्शनकारी आक्रामक होकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल झुग्गी में रहने वाले लोग कथित तौर पर अवैध रूप से बनी तीन मंजिला गरीब नगर सुन्नी मस्जिद को गिराए जाने से नाराज। स्थानीय लोगों का दावा है, मस्जिद गिराने का काम शुरू होने से पहले अधिकारियों ने उन्हें वहां से अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। लाठीचार्ज के दौरान पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने काफी मुश्किल से हालात को काबू में किया।
1: घर को टूटता देख उनका आफा छूटा, वो तिलमिला उठे और उन्होंने सीधे पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच भी काफी झड़प भी हुई। लगभग 3:30 से 4 बजे तक इस तरह की झड़प शुरू रही। उसके बाद पुलिस बल और अतिरिक्त मंगाया गया और उन सभी लोगों को जो यहां पर पथराव कर रहे थे उनको अब हिरासत में लिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। इस तरह की हिंसक कार्रवाई यहां पर होते दिखी, क्योंकि पिछले दो दिनों से यहां पर कई सारे बुलडोजर इसी तरह हम देख रहे हैं कि कम से कम 4 और 5 मंजिला, कभी टिन की, कहीं लकड़े की, कहीं पत्रे की, यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है, जो अवैध निर्माण बना हुआ है, उस पर लगातार हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है।
0: इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के लिए 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। इनमें मुंबई पुलिस के 400 जवान, आरपीएफ और जीआरपी के 400 जवान और रेलवे के कई अधिकारी शामिल हैं। ये झुग्गियाँ कई दशकों से रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कहने को ये झुग्गियाँ हैं, लेकिन ये 3 से 4 मंजिल तक बनी थी।
2: मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में लगातार दूसरा दिन है जब रेलवे की तोड़क कार्रवाई शुरू है। रेलवे का कहना है कि उनकी जमीन पर ये गैर कानूनी तरीके से झुग्गियाँ बांधी गई थी, जिसके बाद कोर्ट में कई सालों तक मामला चला। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्हें खाली कराया जा रहा है, इन्हें तोड़ा जा रहा है। लगातार दूसरा दिन है जब ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे थे, हम उनसे जानते हैं। आपसे रेलवे की बात हुई, कितने सालों से आप रह रहे हो?
3: 50 साल हो गए हम लोग को इधर आना, और 50 साल तो ज्यादा दिन गया, लेकिन मैं 50 साल बोल रही हूँ। अल्लाह का खड़ा कर दिया रोड पर, कोई पूछने वाला हम लोग को, देखो कैसे रो रही है। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, पैसे नहीं पानी है, सब तो चले जाएगा, बुढ़ा इंसान कहाँ जाएगा।
2: रेलवे का कहना है कि जमीन रेलवे की है, आप लोग गैर कानून।
4: रेलवे की जमीन है हम मानते हैं, मगर हम जो इतने सालों से रह रहे, 50 साल पुराना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, तो हमको घर के बदले घर दिया जाएगा ना? नहीं सर्वे हुआ, नहीं कुछ हुआ, डायरेक्ट आके जो बुलडोजर चल ला के, थोड़े 450 घर है, खाली 140 का घर पास किया हुआ, इतने जन कहाँ जाएंगे? हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, 15,000 भाड़ा चल रहा है, 1 लाख डिपॉजिट चल, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इतना हम लोग का तो एक जन की कमाई ही उतना, बोल रहे हम लोग बांग्लादेशी कहाँ से है? 92 का हमारे पास वोटर आईडी सब है, हम लोग इतने सालों से वोट दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है। हाँ सुमैया बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग बांग्लादेशी हम लोग कहाँ से है?
0: जो लोग इन झुग्गियों में रह रहे वो कह रहे हैं कि उनका आशियाना जमींदोज किया जा रहा है, तो अब वो जाए तो आखिर कहाँ जाए?
5: कोई नहीं है, एक ही बच्चा हैंडीकैप, मेरा घर था, घर तोड़ दिया है, हमको घर के बदले घर चाहिए, हमारा घर कोई है नहीं कमाने वाला सर, हमारे पास में कोई नहीं, घर के बदले घर दे दे सर, चावल दे दे हमको, बहुत बहुत।
2: आपको कोई दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात कही
4: गई सर? नहीं कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं कहा गया, खाली अभी जो पुलिस वाले ने 12 बजे का टाइमिंग दिया है कि यहाँ से 12 बजे से पहले ना पूरा खाली कर, अभी हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, हम दूसरे जगह कहीं नहीं जा सकते।
0: झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड दिखाकर पूछ रही हैं कि उन्हें बांग्लादेशी कहकर आखिर क्यों भगाया जा रहा है।
3: सब इधर से किधर जाऊं मैं, बुढ़ा इंसान किधर जाऊं?
6: ऐसा 1994 का 94 का इलेक्शन कार्ड है, जब से मेरी माँ वोट देते हुए आ रही है, अब बताओ हम लोग कैसा बांग्लादेशी हो गए? हमारा इससे पहले हम लोग बिहार से, यूपी से, कोई ये पूरे इंडिया का ही लोग है ना। 1960 का मेरे बाप का, मेरा जमीन का डॉक्यूमेंट है, कैसा बांग्लादेशी हो जाएंगे? और हमको
2: रेलवे का कहना है कि जमीन उनकी है, आप लोग उनकी जमीन पर।
6: बिल्कुल सही बात है सर, हम लोग मना नहीं कर रहे सर। रेलवे की, रेलवे कौन है? रेलवे अपने इंडिया सरकार है ना, हम लोग कौन है? इंडिया सरकार के अंदर में आते हैं ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आप खाली करो, बाकी हमको घर तो दो। हमको आप बोले थे कि हम सब घर को सर्वे करूंगा, सिर्फ 100 से 150 घर को सर्वे किया, बाकी हम लोग को बोला तुम लोग का बाद में होगा। अब बाद में हमको बांग्लादेशी हाई कोर्ट का ऑर्डर ये सब डाल करके हम लोग बेघर कर रहे हैं। बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे सर?
0: झुग्गी में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ आग लगी थी तब उन्हें भारत सरकार ने ही मुआवजा दिया था, लेकिन अब उन्हें घुसपैठिया कहकर भगाया जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारी झुग्गी वालों की मांग है कि उन्हें झुग्गी के बदले घर दिया जाए।
7: तुम्हारी जगह आप जगह ले लो, जगह के बदले
6: देखिए।
7: और रहने की बांग्लादेशी है, भगाओ यहाँ से। आप आईडी चेक करो हम लोग बांग्लादेशी है या नहीं है। कल है आप लोग आईडी चेक,
8: हम लोग आईडी देखा है। जब ये पूरा दलदल था तो रेलवे को याद नहीं आया कि ये रेलवे की जगह? जब हम लोग ने अभी भर उड़ के सब अच्छा भरने उड़ के करके अच्छा के तो अभी रेलवे में लगा है कि ये रेलवे की जगह है। 2011 में जो आग लगी तभी रेलवे वाला हमको भगा देता, जब क्यों नहीं भगाया? तब तो सरकार की तरफ से हमको बहुत मदद भी मिली, 5,000 का चेक पास हुआ, 25,000 का चेक पास, बहुत कुछ मिला हमको।
2: आखिरी सवाल सरकार से आप लोगों की क्या मांगे, आप क्या चाहते
8: हैं? यही हमको घर के बदले घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए।
0: अतिक्रमण हटने के बाद खाली हुई जमीन का इस्तेमाल मुंबई से शुरू होने वाली 50 नई ट्रेनों के संचालन और बांद्रा टर्मिनस के विस्तार के लिए किया जाएगा।
2: सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहां पर मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैनात ना हो और क्रिएट ना हो, लोगों में शांति का माहौल बना रहे। इसीलिए बड़े पैमाने पर 4 दिन तक पुलिस का बल जो है एक तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद रहेगा। छावनी में इस जगह को तब्दील कर दिया गया है और आने वाले और 2 दिनों तक ये कार्रवाई जो है वो शुरू रहेगी। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
9: तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि एनटीए के साथ पेपर लीक की साजिश रचने वाले केमिस्ट्री के प्रोफेसर शिवराज के आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर आज बुलडोजर एक्शन लिया गया है। पुणे महानगर पालिका की टीम ने 2 प्रॉपर्टीज को सील किया है, वहीं सीबीआई उसके बेटे से भी पूछताछ कर रही है।
0: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है सीबीआई के साथ। पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
10: शिवराज मोटेगांवकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहाँ आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नजदीक जो यह ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
11: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
0: पुणे में बुराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
10: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वहीं ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगांवकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगांवकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उससे लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहां जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहां बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहां मोटेगांवकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
12: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगांवकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
10: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और ये साफ साफ दिख रहा है। पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
12: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगांवकर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
13: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले, हे फोड़ले, खासदार फोड़ले, तसा पेपर पन फोड़ला। लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
12: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
9: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में रोम पहुंचे। भारत इटली रिश्तों में नई उड़ान, रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति। रोम में प्रधानमंत्री मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान मिला। बोले 140 करोड़ भारतीयों किसानों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम की का ऐलान। इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद के साथ लड़ने का वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का किया ऐलान। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। आईएमईसी पर भी दोनों ने सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, कहा देश में महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन मोदी जी मेलोनी के साथ टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, अब हिंदुस्तान का मजदूर, युवा और किसान देश को बचा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। विदेश दौरे से लौटते ही आज शाम 4 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है बैठक। रक्षा अधिग्रहण को लेकर चर्चाएं की गई। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। हावड़ा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा। फालता सीट पर पुनर्मतदान से पहले जहांगीर खान नाम के वापस लेने पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष बोली, सुरक्षा निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंता के बीच लिया गया, यह फैसला व्यक्तिगत है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन। बीजेपी ने जारी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। एनआईए ने कोलकाता से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, सुरक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप। केरल में कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री सतीशन ने अपने पास वित्त कानून समेत 35 विभागों को रखा। केरलम सरकार में रमेश चेन्नीथला के पास गृह सतर्कता और 3 अन्य विभागों की जिम्मेदारी। वहीं केपीसीसी के प्रमुख सनी जोसेफ को बिजली, पर्यावरण और संसदीय मामलों का प्रभार सौंपा गया। केरल में दूध के दाम 4 रुपए बढ़ाए गए। नए सीएम सतीशन ने मंजूरी दी, बढ़े हुए दाम 1 जून से लागू हो जाएंगे। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में टीवी के की शानदार जीत पर गेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चलकर अपनी मन्नत पूरी की है, भगवान की पूजा करके आशीर्वाद लिया। भोपाल में त्रिशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा, कोर्ट ने खारिज की है परिवार की याचिका। मुंबई में महाविकास अघाड़ी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की, वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। मुंबई के बांद्रा में हरीब नगर इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। रेलवे की जमीनों पर बनाए गए अवैध घरों को तोड़ने के दौरान भारी बवाल। बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़की थी हिंसा, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांद्रा में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज पर शिवसेना यूपी के विधायक वरुण सरदेसाई का बयान। बोले, अगर लोग बांग्लादेशी हैं तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बने। साथ ही इस कार्रवाई को बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति बताया। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा बीजेपी सरकार के दौरान हर साल कोई न कोई पेपर लीक हुआ है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। नीट पेपर लीक मामले में आरसीसी पुणे कैंपस पर बुलडोजर कार्रवाई। शहर में आरोपी से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जांच में जुटा पुणे नगर निगम। नगर निगम अधिकारियों ने बताया बकाया संपत्ति कर और अनधिकृत इस्तेमाल के आरोपों में की गई है कार्रवाई। इन संपत्तियों पर 3.20 करोड़ यानी कि 3,20,00,000 रुपए बकाया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच विदर्भ तक पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ हुई, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। गुजरात के कच्छ समेत कई इलाकों में पेट्रोल डीजल संकट गहराया। किसानों की खेती और सिंचाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। देशभर में ई फार्मेसी के विरोध में केमिस्टों की देशव्यापी हड़ताल। मुरादाबाद में केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा है ज्ञापन, प्रशासन को सौंपा। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में नागपुर में भी 7,000 मेडिकल स्टोर बंद है, मांगे न माने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में मेडिकल स्टोर बंद है, दवाइयों के लिए भटके मरीज, ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन। केमिस्ट बोले, मांगे न मानी तो आंदोलन करेंगे तेज। दिल्ली में भी दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर, कई मेडिकल स्टोर बंद, लोगों को हो रही है परेशानी, जन औषधि केंद्र बने हैं सहारा। गाजियाबाद में भी केमिस्टों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन, ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर्स बंद थे।
पंजाब गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने दी ई बस से यात्रा, लोगों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने की अपील की। मेघालय के उमरोई में मिलिट्री स्टेशन पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ, 12 मित्र देशों की सेनाएं अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। मेघालय में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और आधुनिक युद्ध तकनीक पर होगा परीक्षण प्रशिक्षण, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मिलेगी मजबूती। चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के लिए दूसरे हफ्ते भी बुलडोजर एक्शन जारी, 300 से ज्यादा अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। पटना में बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। रांची एयरपोर्ट को मिली है नई सुविधाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने उद्घाटन किया, यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू। अफसर सेंटर में मिलेगा स्थानीय उत्पादों को मंच, रांची एयरपोर्ट पर खुली नई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए बना किड्स प्ले जोन। कोची में आईओएस सागर पर फहराया गया झंडा, समंदर की निगरानी करेगा आईओएस सागर, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना मौजूद थे। आईओएस सागर ने बढ़ाया समुद्री गौरव, कोची के सैन्य अनुशासन का शानदार नजारा, हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी। बगा में 227 नए बिहार पुलिस जवान पास आउट, जवानों का दमदार मार्च पास्ट, परेड ग्राउंड में गूंजा जवानों का जोश। एसएसबी ने अनुशासन, आपदा प्रबंधन, हथियार संचालन और पब्लिक डीलिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग दी और ड्रिल का शानदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में मानव सुधार भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम में चयन हुआ, घर में जश्न का माहौल। अमृतसर में गर्मी के बीच एसजीपीसी के खास इंतजाम, श्री हरमिंदर साहिब के श्रद्धालुओं के लिए बिछाए गए विशेष मैट, फर्श पर दिन भर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मैदानों पर बढ़ती हुई गर्मी के बीच पहाड़ों पर लगातार सैलानियों का पहुंचना जारी, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे हैं सैलानी, बांदीपुरा पहुंच रहे पर्यटक। भयंकर गर्मी की चपेट में आया आधा भारत, दिल्ली के ब्रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचाया तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी में बुंदेलखंड के 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, दिन के समय सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी का छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला, तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा, आने वाले दिनों 50 डिग्री तक जा सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में 23 मई तक पड़ेगी भयंकर गर्मी, मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार, 11 जिलों में 2 दिन तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, तपती गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। यूपी के 15 जिले भीषण गर्मी से प्रभावित हैं, अयोध्या के पास पारा 41 डिग्री के पार, गर्मी ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। चंदौली में पारा पहुंचा 44 डिग्री के पार, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, प्रशासन की लोगों से बिना वजह घर से बाहर न निकलने की अपील। अलवर में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ट्रैफिक सिग्नल्स पर टेंट लगाकर पुलिस ने लोगों को राहत दी। अकोला में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी। औरैया में भी तापमान बढ़कर 45 डिग्री हो गया है, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा है खास इंतजाम। औरैया में भीषण गर्मी से बढ़ गया बिजली का बोझ, ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर, लाइन मैन लगातार रख रहे हैं निगरानी। गाजियाबाद में प्रिंटिंग इंक और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की कई टीमों ने मशक्कत करके काबू पाया। अलवर में खुशखेड़ा थाने में कबाड़ यार्ड में हाई टेंशन तार की वजह से आग लग गई थी, 50 से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गए। श्रीनगर में प्लाईवुड शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी थी, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देहरादून में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एसी फटने से लगी थी आग, कई घायल हुए, एक महिला की मौत हुई। बेंगलुरु में छोटी छात्र की आत्महत्या पर मणिपाल एकेडमी के एचओडी फैकल्टी पर एफआईआर दर्ज, मानसिक उत्पीड़न के आरोपों पर प्रबंधन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में दर्दनाक हादसा, छत से गिरकर एमबीए छात्रा की मौत से हड़कंप मचा। यूपी में भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उड़ीसा से लाई जा रही थी 3 करोड़ के गांजे की खेप बरामद की गई, 4 की गिरफ्तारी। मथुरा में दर्दनाक हादसा, चाय पी रहे 4 लोगों को कंटेनर रौंद डाला, 2 की मौत हुई, 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। रीवा में तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रही 3 जैन साध्वियों को मारी थी टक्कर, 1 की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर है। पंजाबी सिंगर इंदर कौर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था, हत्या की वजह बनी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार स्कॉडा कार डिवाइडर से जाकर टकराई, हादसे में 2 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर है। अकोला में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 92 लाख के बोगस बायो खाद को जब्त करके गोदाम में सील किया गया। सूरत में गली में खेलते बच्चों पर टूट पड़े आवारा कुत्ते, 48 घंटे में 2 बच्चों पर जानलेवा हमले से दहशत। सूरत पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 20 लाख की कीमत की विदेशी शराब की बॉटल्स को नष्ट किया गया।
जामनगर में अज्ञात महिला ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्मदाह किया। पुलिस ने मानसिक तनाव के कारण कदम उठाने की आशंका जताई। गुजरात के पंचमहल में गोधरा अहमदाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से टकरा गया था वाहन। हादसे में एक की मौत हुई, कई घायल हुए। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। 15 किलो हेरोइन बरामद की गई, 2 की गिरफ्तारी। प्रयागराज में एक अस्पताल में डॉक्टर्स और अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, कई घायल हुए। राजस्थान के अजमेर में आईपीएल सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। करोड़ों के लेनदेन से जुड़े उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए। बिहार के कटिहार में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान 12 राउंड गोलियों से दहशत हुई। फायरिंग रेंज में घरों की खिड़कियां और कार के शीशे टूटे, इलाके में फैली सनसनी। इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म में वापस आऊंगा ट्रेलर रिलीज किया गया, 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन फिल्म तेरा यार हूं मैं से वापसी करने जा रहे हैं, 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रीति जिंटा 8 साल के बाद फिल्म वाइप से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। 19 साल के बाद फिर से साथ आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा। एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन तुम्बार 2, द ग्रेट एस्केप फरार में अहम रोल में नजर आएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफे के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने नाकाफी बताया इसे। कंपनी ने 900 करोड़

बैंक को कामकाज बेहतर और सस्ता करने का भरोसा। देश में रोजाना औसतन 77.6 करोड़ डिजिटल पेमेंट होने की आरबीआई रिपोर्ट में दी गई है जानकारी। ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई से सीधे अपने बैंक खाते में भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। पुतिन जिनपिंग ने अमेरिका की गैर जिम्मेदार परमाणु नीति की निंदा की। ईरान के खिलाफ सेना ऑपरेशन में अमेरिका को बड़ा नुकसान, अमेरिका की रिपोर्ट का दावा। ईरान ने से लड़ाई में अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान और ड्रोन नष्ट हो गए। जंग के बीच अमेरिका ईरान में समझौते की कोशिश तेज हुई। ईरान ने अमेरिका के सामने रखे प्रस्ताव। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले। नेटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान, बाल्टिक देश यूक्रेनी ड्रोन के लिए नहीं खोलेंगे अपना एयर स्पेस। तनाव बढ़ने के डर से बाल्टिक देशों ने बंद किए अपने रास्ते। बाल्टिक देश लिथुआनिया में ड्रोन घुसने से मच गया धड़कंप। सरकार ने हमले का जारी किया अलर्ट, भागकर बंकरों में छुप गए थे लोग। राजधानी विलनियस में हवाई यातायात हुआ प्रभावित। यूक्रेनी शहरों पर रूस का भीषण हमला, ओडेसा और सुमी में रूस ने बरसाए थे बम, कई इमारतें तबाह हो गई। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मोजोन ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं के बीच पोलैंड और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को लेकर चर्चा। ईरान से जंग के बीच इसराइल में समय से पहले चुनाव की तैयारियां। संसद भंग करने के शुरुआती प्रस्ताव को मिली मंजूरी। संसद में प्रस्ताव के पक्ष में पड़े रिकॉर्ड 110 वोट, विरोध में एक भी वोट नहीं। चीन में शंघाई के रेस्टोरेंट में चाकूबाजी, दो जापानीज और एक चीनी नागरिक घायल हुए। मानसिक रूप से बीमार शख्स ने किया था हमला।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलेडी की चर्चा है, कई जगह इसका स्टॉक खत्म हो गया है। इससे जुड़े वीडियो के व्यूज कुछ ही घंटों में 100 मिलियन को पार कर गए हैं और इसकी पेरेंट कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर का अपर सर्किट लग गया है। सोचिए, असल कंपनी नहीं जो मेलेडी बनाती है, लेकिन उसी के जैसा नाम रखने वाले कंपनी का शेयर जो है वो ऐसा बढ़ा कि अपर सर्किट लग गया। और इसकी वजह थी प्रधानमंत्री मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया गिफ्ट। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। सोशल मीडिया पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के लिए मेलेडी का इस्तेमाल, हैशटैग मेलेडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने आज मेलेडी डिप्लोमेसी को रियल कर दिया, लेकिन विपक्ष को मेलेडी की मिठास रास नहीं आई और उसे इससे तीखी आलोचना वो इसकी कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिमी मीडिया के मन में और फन में भारत के लिए इतना जहर क्यों भरा है। बीते दिन जब हमने इस रिपोर्टर की सच्चाई दिखाई थी तो कई लोगों के पेट में गंभीर दर्द हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करने की एक बड़ी योजना का वो एक हिस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी इटली से पहले नॉर्वे के दौरे पर थे, जहां एक पत्रकार ने सवाल के नाम पर तमाशा किया और उसके बाद एक अखबार ने हदें पार की। उसे प्रधानमंत्री मोदी का एक विवादित कार्टून बनाते हुए भारत को सपेरों के देश जैसा दिखा दिया। आज सवाल यह है कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ इतना रेसिस्ट, इतना नस्ल भेदी क्यों है। वो आज भी सपेरों का ही देश बनाना चाहता है भारत को। और आखिर में आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग दौरे के बारे में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बताएंगे। ट्रंप को चाइना से लौटे एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि पुतिन जिनपिंग से मिलने पहुंच गए। आज आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन शी जिनपिंग की यारी ट्रंप की डील पर भारी पड़ रही। लेकिन आज

सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि साल 1983 में बनी एक साधारण टॉफी 1983 में बनी एक सिंपल सी टॉफी 2026 में भारत इटली के रिश्तों का ग्लोबल सिंबल कैसे बन गई। इटली के रोम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी का एक पैकेट गिफ्ट के रूप में दिया, तब कूटनीति की दुनिया में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई। ऐसा ट्रेंड जिसमें सॉफ्ट पावर का एक नया मॉडल छिपा था। अब तक ज्यादातर देशों की सॉफ्ट पावर उनकी फिल्में, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनके पुराने स्मारक, उनकी भाषा, ये सब हुआ करती थी। लेकिन कूटनीतिक संबंधों में एक टॉफी भी किसी देश की सॉफ्ट पावर बन सकती है, ये पहली बार दुनिया ने देखा। और इस टॉफी डिप्लोमेसी की हर तरफ खूब चर्चा होने लगी। देखिए

0: मेलेडी शब्द मोदी और मेलेनी के नाम से बनाया गया है जोड़कर, और शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये टर्म कॉइन किया, जिसे कहते हैं ये शब्द बनाया गढ़ा। साल 2023 में जब दुबई में COP28 का शिखर सम्मेलन हुआ था, तब जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी जिसका कैप्शन था गुड फ्रेंड्स एट COP28#मेलोडी। इसके बाद 2024 के G7 समिट में भी प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी सेल्फी को #मेलोडी लिखकर पोस्ट किया था, और यहीं से यह शब्द भारत और इटली के नए रिश्तों का प्रतीक बना। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तो इंटरनेट पर यह तस्वीरें छाई हुई हैं। आज शाम तक जॉर्जिया मेलोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को 136 मिलियन यानी 13 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि एक्स पर भी इस वीडियो को 94 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। ये व्यूज भी तब है जब एक्स पर जॉर्जिया मेलोनी के कुल मिलाकर 33 लाख ही फॉलोअर्स हैं 33 लाख और 86 लाख व्यूज। बड़ी बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी जब एक्स पर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करती हैं, तो एवरेज रीच उनकी 3-8 लाख होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका #मेलोडी वाला ये मेलोडी चॉकलेट वाला वीडियो 94 लाख से ज्यादा व्यूज को पार कर चुका है। यही नहीं, भारत के कई शहरों में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मेलोडी टॉफी सोल्ड आउट हो चुकी है, मतलब वो लोग मिल नहीं रहा है, खरीद नहीं पा रहे। और जो पार्ले कंपनी इस टॉफी को बनाती है उसके शेयर्स में भी 5% का उछाल आया है। ये उछाल और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन क्योंकि पार्ले कंपनी के शेयर्स पर 5% का अपर सर्किट लगा था और इसके कारण एक दिन में शेयर्स की कीमतें इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए इस मामले में 5% का ही उछाल आया। एक और दिलचस्प बात है, जिस पार्ले कंपनी के शेयर्स की कीमतें तेजी से ऊपर चढ़ी वो मेलोडी टॉफी वाले पार्ले कंपनी है ही नहीं। अब देखिए ये कैसा खेल हो गया। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज। ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। जो कंपनी मेलोडी टॉफी बनाती है वो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है, लेकिन उसके बहाने किसी और का ही उत्थान हो गया और पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ गया। उस कंपनी का पार्ले जी वाली इस टॉफी से, मेलोडी टॉफी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के वीडियो ने ऐसा कमाल किया कि लोगों ने पार्ले इंडस्ट्रीज के ही शेयर खरीदने शुरू कर दिए। और इसे आप ये भी समझ पाएंगे कि भारत और इटली के रिश्तों में ये मेलोडी कैसे एक नई मिठास घोल रही है। और सोचिए, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि एक रुपए की टॉफी कूटनीतिक संबंधों में वो काम कर सकती है जो बाकी चीजें नहीं कर पाती है। यहाँ बहुत सारे लोग इस मेलोडी मोमेंट को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर की तरफ से देख रहे हैं, हकीकत में ये घटना भारत और इटली के संबंधों का सबसे मजबूत आधार बन सकती है। कैसे, उसे इस उदाहरण से समझिए। एक जमाना था जब 1970 के दशक की शुरुआत में चाइना ने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी की थी। उस वक्त अमेरिका और चाइना के रिश्तों में कोई बराबरी नहीं थी, कहां अमेरिका कहां चाइना। अमेरिका आज के चाइना को चाइना मानता ही नहीं था, लेकिन चाइना के सबसे बड़े नेता माओ ज़ेडोंग चाहते थे कि अमेरिका के साथ चाइना के रिश्ते बेहतर। इसी दौरान एक घटना हुई जिसे उस वक्त का पिंग पोंग मोमेंट कहा जाता है, जब तब जापान में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें अमेरिकी खिलाड़ी ग्लेन कॉन गलती से चाइनीज टीम की बस में चढ़ गए थे। अब सोचिए आप, कब की घटना है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप था और ये जो ग्लेन कॉन की आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिकन खिलाड़ी थे, गलती से ये चाइना की बस पे चढ़ गए। ये घटना अनजाने में हुई थी, लेकिन इसी दौरान चाइना के एक खिलाड़ी ने उनकी दोस्ताना बातचीत उनकी होने लगी एक खिलाड़ी से, चाइनीज खिलाड़ी से, और उस खिलाड़ी ने उन्हें एक सिल्क स्कार्फ भेंट के रूप में दी, सिल्क का जो स्कार्फ होता है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये तस्वीर बड़ी चर्चित हुई। सिल्क का स्कार्फ, और वो भी चाइनीज खिलाड़ी ने अमेरिकन खिलाड़ी ग्लेन कॉन को दी थी। चाइना ने मौके का फायदा उठाया, अमेरिका की पिंग पोंग टीम को उनके देश आने के लिए आमंत्रित कर दिया। ये वो पल था जहां से अमेरिका और चाइना की दोस्ती हुई, जिस अमेरिका ने साल 1949 के बाद से अपना कोई प्रतिनिधिमंडल चाइना नहीं भेजा था, उसकी पिंग पोंग टीम अप्रैल 1971 में चाइना गई। और इसके कुछ महीनों बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी पहली बार चाइना के दौरे पर आए और यहीं से कहते हैं कि चाइना ने तरक्की करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के मोमेंट्स कई बार सामान्य लगते हैं, लेकिन ये इतने भी सामान्य नहीं होते। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट की है, तो ऐसा करके हम इटली के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि मेलेडी ट्रॉफी की कहानी में आज के आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी छिपी हुई है। 1980 के दशक में भारत के ट्रॉफी उद्योग पर बाहरी कंपनियों का बहुत ज्यादा दबदबा बन गया था। देश में वही ट्रॉफियां बाजार में बिकती थी जो इम्पोर्टेड होने के साथ महंगी ट्रॉफियां होती थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 5 पैसे 10 पैसे में ट्रॉफियां आ सकती हैं। लेकिन इसके बाद 1983 में मेलेडी ट्रॉफी लॉन्च हुई। यहां से भारत को यह आत्मविश्वास मिला कि हम भी इम्पोर्टेड सामानों को छोड़कर अपना खुद का सामान बना सकते हैं और अपने उपभोक्ताओं तक उसको पहुंचा सकते हैं। और आज भारत की कहानी भी कुछ ऐसी है। भारत भी अब आत्मनिर्भर बनकर मेड इन इंडिया सामान बनाना चाहता है और हम ऐसा कर भी रहे। और यहां आप इस अंतर को भी देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए तो उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट करके भारतीय कंपनी की ट्रॉफी को ग्लोबल मंच दिया। लेकिन जब अक्टूबर 2025 में राहुल गांधी कोलंबिया गए थे, तब वहां उन्होंने कोलंबियन कॉफी तैयार की थी। और इसे देखकर आज कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसे मिसाल को बड़ा मानते हैं, से दुनिया के दूसरे देशों ने पेश किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उसे मिसाल को बड़ा बनाते हैं, उस मिसाल को जिसे भारत ने पेश किया। और यही अंतर है जिसकी आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए,
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: What's the best way to make the coffee then?
3: You see how it's bubbling?
4: Yeah.
3: That means that the coffee's fresh.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
0: इटली के प्रधानमंत्री को अगर आप देखें तो काफी उत्साह और जोश के साथ वो बोलती है सोशल मीडिया के रील्स में, और हैशटैग मेलेडी भी उन्होंने ही सबसे पहले लिखा था। इटली प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का आखिरी पड़ाव है, जिसमें ट्रॉफी वाली डिप्लोमेसी के साथ कार वाली डिप्लोमेसी भी देखी गई। हालांकि अब ये अक्सर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पहले गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक ही कार में सफर करके ये संदेश दिया कि भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भरोसा और सहजता से भरे हुए हैं। कार वाली डिप्लोमेसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच डिनर वाली डिप्लोमेसी दिखी, और इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के कोलोसियम का भी दौरा किया। ये रात का दौरा था, इससे तस्वीरें आपको उतनी साफ नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये कोलोसियम प्राचीन रोम में शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र होता था, जिसे 2000 साल पुराना माना जाता है। और यहां भी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी ली। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं और सर्कुलर ये हॉल है। यहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने एक सेल्फी ली और इस सेल्फी को पोस्ट करते हुए ये लिखा कि वेलकम टू रोम माई फ्रेंड। देखिए,

0: कूटनीति की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे तस्वीरें सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती बल्कि इसमें तस्वीरें दो देशों के मजबूत संबंधों की गर्मजोशी को भी दिखाती हैं। लेकिन आज अगर जॉर्जा मेलोनी को आप देखिए और प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक संबंधों में मेलेडी जैसी मिठास दिख रही है, तो इसका कारण यह है कि मौजूदा वक्त में भारत और इटली के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है। और इस पर जॉर्जा मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख भी लिखा है जिसे हम आपको संक्षेप में जल्दी से बता देते हैं कि इसका सार क्या है। दोनों ने जो लेख लिखा है, 2022 से पहले इटली और भारत के रिश्तों में वैसी केमिस्ट्री नहीं थी जैसी आज है। इसका कारण यह था कि तब इटली G7 देशों का पहला ऐसा देश था जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया था। इसे आम भाषा में चाइना का वन बेल्ट वन रोड मिशन कहते थे, जिसमें वो आज का नया सिल्क रूट बनाकर पूरी दुनिया को पोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, पाइपलाइंस, डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना चाहता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अब क्योंकि 2022 से पहले इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसलिए भारत और इटली के रिश्तों में उतनी गर्मजोशी और सहजता नहीं थी। लेकिन इसके बाद जॉर्जा मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने इटली को तुरंत चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। यहां तर्क यही था कि चाइना यूरोप को खुद पर निर्भर बना रहा है और जॉर्जिया मेलोनी इसके खिलाफ थी। और आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अंदर ही अंदर इस बात को नहीं समझता है कि चाइना अपना वर्चस्व, अपनी हेजमनी हर देश पर थोपना चाहता है। रूस के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस में जब व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के लिए मैं गई थी, तब हमें भी लोगों ने वहां पर यही कहा था कि आज हमारे लिए चाइनीज हेजमनी एक चैलेंज बन गया है। और इसी को देखते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव से चाइना के अपने आप को, अपने देश को अलग कर दिया था। अब जिस वक्त जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना से अलग होकर एक नई राह पकड़ी थी, तो भारत ने इसमें अपने लिए एक मौका देखा। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की पहली मुलाकात नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के G20 समिट में हुई, और इसके बाद भारत और इटली के बीच ऐसा भरोसा बना कि 2023 के G20 समिट में हमने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का करारा जवाब था। यह था एक ऐसा आर्थिक गलियारा जो भारत से यूरोप के बीच बनना है। और आज के इटली दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच इस पर बात हुई, और हो सकता है कि जल्द से जल्द इसे जमीन पर उतारने की कोशिशें शुरू हो जाए। इस प्रोजेक्ट के दो केंद्र बिंदु हैं, एक है भारत और दूसरा है यूरोप, और बीच में है खाड़ी देश जिन्हें गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को दो भागों में विकसित किया जाएगा, जिनमें पहले भाग को ईस्ट कॉरिडोर कहा जाएगा, जो भारत को मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्ट करेगा। जैसे भारत के मुंबई और गुजरात में जो पोर्ट है, वहां से कार्गो शिपिंग रूट भारत को यूएई के जबेल अली पोर्ट से जोड़ेगा, तो सीधा पहुंच जाइए यूएई। गुजरात और मुंबई से जो समुद्री जहाज सामान लेकर निकलेंगे, वो इस शिपिंग रूट के रास्ते यूएई के जबेल अली पोर्ट जाएंगे, जो दुबई से लगभग 35 किलोमीटर ही दूर है। इसके बाद इन समुद्री जहाजों से यहां इस पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा, और फिर यहां से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो यूएई से इसराइल को जोड़ेगी। ये सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब होता हुआ सीधा इसराइल जाएगा। ये रेल लाइन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जो सऊदी अरब के रियाद से होते हुए जॉर्डन जाएगी, जॉर्डन के बाद इसराइल, और फिर इसका आखिरी स्टॉप इसराइल होगा। इसराइल के बाद एक बार फिर ट्रेनों से सामान उतारकर समुद्री जहाजों में लादा जाएगा, और इस शिपिंग रूट के रास्ते ये जहाज इसराइल से ग्रीस, ग्रीस से इटली, और ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा भाग होगा। यानी एक बार जॉर्डन इसराइल होते हुए समुद्री रास्ते से आगे बढ़े तो ग्रीस और इटली, ये पूरा नदन कॉरिडोर होगा, तो यूरोप ये पूरा आर्थिक रूट पहुंचेगा। अभी भारत और यूरोप के देशों के बीच जो व्यापार होता है, उसके लिए काफी घूमकर स्यूएज कैनाल से होते हुए भारत को यूरोप के देशों तक अपना सामान पहुंचाना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता सीधा, जिसको कहते हैं डायगनली, आप एकदम से पहुंच जाएंगे। तो दोनों रास्ते हमने आपके लिए बता दिए हैं, क्योंकि इधर अगर आप देखिए तो नीचे के रास्ते से स्यूएज कैनाल से होकर जाना पड़ता है, और वहीं दूसरा रास्ता ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तो सीधे यहां से गुजरात और मुंबई के जो पोर्ट्स हैं वहां से निकलिए, यूएई पहुंचे, यूएई से सऊदी अरब के रास्ते होते हुए रेल कॉरिडोर से आप सीधा पहुंच जाएंगे जॉर्डन, और सऊदी अरब के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इसराइल, फिर समुद्री रास्ते से सीधा आप पहुंच जाएंगे ग्रीस और इटली। लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, तब यूरोप के साथ आयात निर्यात करने में भारत अपने 40% समय की बचत करेगा। और अभी स्यूएज कैनाल के रास्ते जहां एक समुद्री जहाज को इटली और जर्मनी जाने में लगभग 36 दिन लगते हैं, 36 डेज, वही नया कॉरिडोर बन गया तो 22 दिन लगेंगे। यानी लगभग 12 दिन की बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रंग को फीका कर देगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यही कॉरिडोर भारत और इटली के बीच इस मेलेडी को इतना चॉकलेटी बना रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलेडी ने भी किया है। इसके अलावा इटली कुछ और वजहों से भी भारत के लिए महत्व रखता है, जैसे इटली मशीनरी, डिजाइन, ऑटो पार्ट्स, लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है, और ऐसे में भारत चाहता है कि वो अब सिर्फ बाजार बनकर ना रहे बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बने, टेक्नोलॉजी पार्टनर बने और सप्लाई चेन पार्टनर बने। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं, जिसमें इटली अगर हमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे उत्पादन में मदद करेंगे, इटली हमें हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग देगा तो हम उसे इंजीनियरिंग टैलेंट देंगे, इटली हमें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी देगा तो हम उसे सस्ता विशाल बाजार देंगे, और इटली हमें प्रीमियम ब्रांडिंग देगा तो हम उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम देंगे, और इस तरह दोनों देश मिलकर एक वैश्विक उत्पादन का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। भारत और इटली दोनों देशों ने तय किया है कि वो अपने व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाना चाहते हैं, जो 2,24,000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि अभी दोनों देशों के बीच 1,60,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। देखिए,
1: हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है, इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे।
2: Visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. Thank you very much.
0: Kendriya Vanijya Mantri Piyush Goyal ke mutabik saal 2013-14 mein Bharat ne 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं, 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलेडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलेडी शब्द ट्रेंड कर रहा है।
3: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Mel.
3: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
4: Mel.
0: वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलेनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलेनी 49 साल की। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता 70% है, जबकि प्रधानमंत्री मेलानी की सिर्फ 39% रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग। दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों नेताओं की पार्टियां दक्षिणपंथी विचारधारा की मानी जाती हैं, जिन्हें राइट विंग पार्टीज कहा जाता है। इनमें प्रधानमंत्री मेलानी की पार्टी का नाम ब्रदर्स ऑफ इटली है और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 18 साल की उम्र में राजनीति में आए थे, जॉर्जिया मेलोनी 19 साल की उम्र में राजनीति में कदम रख चुकी थी। और इन दोनों नेताओं में एक और सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों नेता गरीबी से उठकर आए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय वाले थे, जॉर्जिया मेलोनी की माँ भी काफी गरीब थी और काफी संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। हालांकि अब आप ये देखिए कि ये मेलेडी भारत के विपक्षी नेताओं को तीखी लग रही है। आज रायबरेली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी को भारत को आर्थिक तूफान से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए थे, तब वो मेलानी के टॉफी खाकर मेलेडी के कह रहे हैं और देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।
4: नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे आप देखना क्या होता है, वापस आएंगे आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर पट्टी चढ़वा दो, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना।
0: आज राहुल गांधी ने सिर्फ मेलेडी का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार कहा।
4: दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहिए।
0: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि आज जब ये तमाम बातें देश के सामने आ रही हैं तो कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो कहा है उनके खिलाफ इस तरह के विवादित भाषण दिए जा रहे हैं, क्या उस देश में आप अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में मानेंगे और क्या उस देश को आप तानाशाह देश कहेंगे। आज चर्चा इस बात को इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश में चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को 2019 में कहने से लेकर अब 2026 में आप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल भी खुलकर देख रहे हैं। ऐसे में क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है? भारत में वैसे हालात हैं जैसे किम जोंग उन के उत्तर कोरिया, शी जिनपिंग के चाइना में है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नॉर्वे की घटना के बाद भारत की छवि एक ऐसे देश की बनाई जा रही है जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र मर चुका है, मानवाधिकार बिल्कुल नहीं है। नॉर्वे में जिस पत्रकार ने भारत को नीचा दिखाते हुए विदेश मंत्रालय से ये पूछा था कि उनका देश भारत पर क्यों विश्वास करे, उसी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कार्टून प्रकाशित किया है। इस कार्टून में प्रधानमंत्री मोदी को इस पेरे के रूप में दिखाया गया और सांप की जगह पेट्रोल भरने वाली पाइप को दिखाया गया और इस पर लिखा है एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति। हमारे देश में कुछ लोग इस कार्टून को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको भारत का अपमान नहीं दिखता? क्या इसमें एक बार फिर से भारत को सांप सपेरों वाला देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है? ये कार्टून क्या हमारे देश के तेल संकट की खिल्ली नहीं उड़ाता है? और सवाल तो ये है कि तमाम मुल्क पूरे विश्व के प्रभावित हुए हैं। अगर हम रशिया को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ज्यादातर जगहों पर उनकी करेंसी को चोट लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा था इसीलिए सांप सपेरे से जोड़कर कैसे एक रेसिस्ट तौर तरीका दिखाया गया है, एक नस्ल भेदी तरीका दिखाया गया है इस कार्टून में, वो साफ दिखता है। हम पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे स्वतंत्र मीडिया जो दूसरे देशों को नीचा दिखाता है उनके खिलाफ नस्लीय भेदभाव करता है। अगर ये इस तरह का पहला कार्टून होता तो हम मान लेते कि ये एक क्रिएटिव जर्नलिज्म है, चलिए ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ हर बार होता है और बार बार भारत को स्नेक चार्मर या सांप सपेरों का देश बताकर मजाक उड़ाने की कोशिश होती है। और हैरानी की बात यह है कि अपने प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध करने के चक्कर में कुछ पार्टियों के नेता इस भद्दे कार्टून को अपना पोस्टर बना लेते हैं, ढोल पीट रहे हैं आज। और अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उछलने वाले ऐसे तमाम लोग जो मौसमी तरीके से वहां पर निकलते हैं अपने अपने मुद्दे के हिसाब से, वो आज सुबह से इस पर ढोल बजा रहे हैं। सवाल यह है कि दरअसल इन लोगों ने एक नकली चश्मा लगाया हुआ है, ऐसा चश्मा जिनमें इन्हें राजनीतिक विरोध तो दिखता है लेकिन अपने देश का अपमान नजर नहीं आता। लेकिन आज इस चश्मे को तोड़ेंगे और आपको उन सच से रूबरू कराएंगे जो इस इंपोर्टेड चश्मे से कतई नहीं देखा जा सकता। सच नंबर एक, आज ये चश्मा जो है इंपोर्टेड चश्मा वो टूटना चाहिए। नॉर्वे कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे स्वतंत्र प्रेस उसके देश में है और भारत बहुत नीचे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रैंकिंग कौन बनाता है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है। ये रैंकिंग फ्रांस के एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस एनजीओ के 11% फंडिंग कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से मिलती है। तो कॉर्पोरेट की पूरी दुनिया में सबसे स्वतंत्र प्रेस उसके देश में है और भारत बहुत नीचे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रैंकिंग कौन बनाता है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है। ये रैंकिंग फ्रांस के एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस एनजीओ के 11% फंडिंग कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप से मिलती है। तो कॉर्पोरेट का दर्द आज सामने निकलने वाला है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट है। वही जॉर्ज सोरोस जिन्होंने 24 जनवरी 2020 को स्विट्जरलैंड के डावोस में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाना चाहते हैं, वो ऐसी राष्ट्रवादी ताकतों से लड़ने के लिए अपने अलग अलग संस्थाओं को $1 बिलियन रुपए की मदद देंगे, और यह ऐलान किया था कि 24 जनवरी 2020 को उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं ये पैसा दूंगा लड़ने के लिए, और यहां तक कहा था कि भारत देश में जो मुस्लिम रह रहे हैं उन पर आज बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सोचिए जो शख्स भारत में तख्ता पलट करने की बातें कहता है, अगर उसके एनजीओ की फंडिंग से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार हो रहा है तो इस पर कितना भरोसा करना है। अब सच नंबर दो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है उसने खुद एक लेख लिखकर इस बात पर दुख जताया कि जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हंगरी से जा रहा है और यह बात उसे पीड़ा दे रही है। मैं आपको पढ़कर भी दिखाती क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में हम हमेशा कागज पर लिखी चीज और फैक्ट्स के आधार पर ही कोई भी खबर आपको दिखाते हैं। कई लोगों को दर्द हो ना हो हम उसे बेपरवाह होकर सच आपके सामने रखते हैं। तो ये सच आज आपके सामने इस पेपर में है। जब खुलकर दुख जताया जा रहा है सोरोस के निकलने पर, RSF रिग्रेट्स सोरोस एनजीओज डिपार्चर फ्रॉम हंगरी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF इस बात पर दुख जाहिर करता है, रिग्रेट्स दैट द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हैज डिसाइडेड टू क्लोज इट्स बुडापेस्ट ऑफिस आफ्टर हंगरीज अनाउंसमेंट ऑफ प्रपोज्ड लॉ टारगेटिंग एनजीओज दैट सपोर्ट इमिग्रेशन। द OSF's डिपार्चर विल हर्ट द इंडिपेंडेंट हंगेरियन मीडिया आउटलेट्स इट सपोर्ट्स। सच आपके सामने है ब्लैक एंड व्हाइट में। अब सच नंबर तीन देखिए, जो संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करती है जो सोर्स सोरस के उस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है जिसका कनेक्शन राहुल गांधी से भी जुड़ा है। शलील शेट्टी नाम का एक व्यक्ति पहले भारत में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट था और ये वही व्यक्ति है जो 11 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ शामिल हुआ था। अब सच नंबर चार देखिए, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, नॉर्वे की जो लेबर पार्टी है वो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है और इस प्रोग्रेसिव अलायंस में हमारी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जबकि यहां भी जॉर्ज सोरोस इस गठबंधन का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रहा है। कहते हैं कि इसे बनाना वाला वही था। अब सच नंबर 5 पर आइए। कांग्रेस के साथ प्रोग्रेसिव अलायंस में शामिल नॉर्वे की यही लेबर पार्टी आज वहां की सत्ता में है और उसके द्वारा उस अखबार को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी उस अखबार को दी जाती है जिसकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल और विवाद खड़ा किया। नॉर्वे की सरकार कहती है कि वो सिर्फ इस अखबार को नहीं बल्कि इसके जैसे 162 अखबारों को मीडिया सपोर्ट के लिए प्रेस सब्सिडी देती है ताकि अखबार भी टिके रहे, बड़े अखबारों का मुकाबला कर सके। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या अगर भारत में सरकार किसी चैनल किसी अखबार को सब्सिडी दे तो क्या आप उसे निष्पक्ष मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था और संस्कृति अलग है, नॉर्वे की अलग है। कई अखबार, और इस बात को सच से सामने कहने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, कई अखबार, कई मैगजीन्स, कई न्यूज चैनल्स, कई जगहों पर इश्तेहार जरूर देती हैं पार्टियां, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सारी इश्तेहार देती हैं। सरकारी किसी भी पार्टी की हो वो इश्तेहार देती है, सब्सिडी नहीं। हम पूछते हैं कि जब यहां आप स्तर को समझते हैं तो बाकी मामलों में स्तर को क्यों नहीं समझा? ये बात आज सबके सामने आ रही है। तो आज ये आंकड़े देखने भी जरूरी है, आइए आपको दिखाते हैं। 2002 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में अगर आप देखिए इंडेक्स में तो कैसे ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज असल मुद्दा क्या है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो भारत जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि ये इंडेक्स वहां पर है लेकिन इंडेक्स के पीछे कौन है, ये हमने आपको दिखा दिया। और इसी के साथ जिन्हें आंखें बंद रखनी है वो अपनी आंखें बंद रखने के लिए आजाद है। पहले ये तो देखा जाए कि इनमें जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है और कितना हकीकत वास्तविकता से कितना मेल खाता है। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 136 देशों में 102 पर थी। जिम्बाब्वे की रैंकिंग हमसे कम थी, 90 पर। अब जानते हैं जिम्बाब्वे को 33% अनाज भारत निर्यात करता है लेकिन फिर भी भारत जिम्बाब्वे में इससे पीछे। जिम्बाब्वे ही क्यों, 24 देश ऐसे हैं जिन्हें अनाज का निर्यात भारत से होता है, हम उनको अनाज देते हैं और इन सब की रैंकिंग भारत से बेहतर। तो सोचिए इसे कैसे सही मान लें। इसके बाद आता है हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग 147 देशों में 116 है लेकिन नेपाल की रैंकिंग 99, पाकिस्तान की 104। अब सोचिए जिस पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है, जिस नेपाल में इतने दंगे हुए, उसकी स्थिति हमसे अच्छी दिखाई जा रही है, क्या भारत में कभी वैसा आपने देखा है? लेकिन फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स कहता है कि हम इन देशों से कम खुश हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि जितने भी इंडेक्सेस हैं ये क्या पश्चिमी संगठनों के और उनके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ही तरह ये सब कुछ उनके लिए मैनिपुलेशन का एक आधार बना है और इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में करते हैं? क्योंकि अनाज जिन्हें हम देते हैं वो अनाज में हमसे ऊपर है, हम जिनको दवाइयां देते हैं वो भी खुशहाली में हमसे ऊपर है, भुखमरी से जूझ रहे आसपास के हमारे देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। तो आज कुछ सवाल पूछने जरूरी है। भारत के नीति आयोग ने साल 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी और इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि इसमें पश्चिम झुकाव ज्यादा है। यानी इसमें ये बताया जाता है कि पश्चिमी देशों का मीडिया तो शानदार है लेकिन जो एशिया के देश हैं वहां ना तो प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी और ना मानवाधिकार है।

अब अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाइना की यात्रा से लौटे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए। ये राष्ट्रपति पुतिन की चाइना की 25वीं यात्रा है, जो रशिया और चाइना के बीच गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। अब चर्चा इस यात्रा की इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे, अब पहुंचे हैं पुतिन, और अब देखा जा रहा है सारी जो सोशल मीडिया है चाइना की, वहां पर यही चर्चा है कि किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि पुतिन की इस यात्रा का कूटनीतिक कनेक्शन ट्रंप की चाइना यात्रा से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप चाइना के साथ डील के रिश्ते के लिए आए थे, पुतिन दिल के रिश्ते की वजह से आए हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रशिया और चाइना के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को अब तक के उच्चतम स्तर पर होने की बात दोहराई। वैश्विक मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने की बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि अब रशिया और चाइना के बीच होने वाला लगभग पूरा व्यापार उनकी करेंसी रूबल और युआन में हो रहा है। दोनों देशों के बीच ये व्यापार लगभग 23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो डॉलर के लिए बड़ा झटका है। पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी से ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर चर्चा की। दोनों देशों ने ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ये जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो दुनिया लॉ ऑफ द जंगल यानी जंगल राज की तरफ बढ़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय निगोसिएशन का रास्ता अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रंप के हालिया चाइना दौरे की वजह से रशिया और चाइना का यह समिट और भी खास हो जाता है। ट्रंप 14 और 15 मई को चाइना में है। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ व्यापारिक तनातनी, यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट पर चर्चा की थी। ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चाइना पहुंचना अमेरिका को यह संदेश देना कि रशिया और चाइना के संबंध अटूट है। प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन ने कहा कि रशिया चाइना को बिना रुकावट ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। उसके पास जॉइंट रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में भी बड़ी क्षमता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रशिया चाइना पर काफी निर्भर हो चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई बाधित होने से की वजह से रशिया इस मौके का फायदा उठाकर चाइना को जमीनी रास्ते से सुरक्षित ईंधन देने की कोशिश में है। रशिया और चाइना इस वक्त मंगोलिया के रास्ते चाइना तक जाने वाली पार ऑफ साइबेरिया 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस पाइपलाइन के शुरू होने से रशिया को यूरोप से हुए नुकसान की भरपाई करने, चाइना को मिडिल ईस्ट के सी रूट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि दोनों देशों के बीच गैस की कीमतों को लेकर बातचीत अभी अंतिम दौर में है।

0: 25 周年।
1: इस साल चीन रूस के मैत्री सहयोग संधि के हस्ताक्षर की 25वीं सालगिरह है। इन वर्षों में दोनों देशों ने संधि में तय किए गए सिद्धांतों, जिनमें आपस में ना टकराना और ना ही आपस में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी को स्वीकारना, इसका ईमानदारी से पालन किया है। दोनों देशों ने आपसी सम्मान, समानता, वादों को ईमानदारी से निभाने और साथ मिलकर सहयोग से चलने को महत्व दिया है। तेजी से बदलती दुनिया में चीन और रूस एक मजबूत और स्थिर साझेदार बनकर उभरे हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मैंने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। सबसे अहम बात यह है कि रूस और चीन स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश करीबी रणनीतिक साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं और वैश्विक मंच पर स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम साथ मिलकर शांति और दुनिया की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं।
2: रशिया और चाइना की दोस्ती केवल हाथ मिलाने या गले मिलने तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है। मौजूदा परिस्थितियों में तो दोनों देशों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत बनती हुई दिख रही, क्योंकि ईरान, अमेरिका, सारी चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में रशिया और चाइना चाह रहे हैं कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है तो कैसे वो अपने आप को मजबूत करें। यूक्रेन युद्ध में फंसे रशिया को चीन का साथ चाहिए। ईरान युद्ध के कारण तेल सप्लाई बाधित होने से परेशान चाइना को दोस्त रशिया की मदद चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए थे तो ऐसे समय में चाइना ने उसके साथ व्यापार बढ़ाकर उसकी मदद की। इस वक्त रशिया के लिए उसका दोस्त चाइना अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस वक्त बन गया है। साल 2021 में रशिया और चाइना के बीच व्यापार जानते हैं कितना हुआ? 14,24,000 करोड़ रुपए का था, जो यूक्रेन के बाद बढ़ गया। साल 2024 में दोनों देशों का व्यापार 23,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब देख रहे हैं जंप। इस वक्त चाइना रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रशिया के कुल व्यापार में चाइना की हिस्सेदारी 35% है, जबकि चाइना के कुल व्यापार में रशिया की हिस्सेदारी केवल 4%। ये ट्रेड डेफिसिट चाइना का लगभग हर देश के साथ है, और जिस चाइनीज हेजेमनी की मैं बात कर रही थी, जो हमें भी परेशान करता है, हमारा भी ट्रेड डेफिसिट ऐसा है, वही ट्रेड डेफिसिट इस वक्त रशिया भी झेल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध थे, जिसकी वजह से वो चाइनीज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन के पार्ट्स, सैन्य उपकरण, सब कुछ के लिए चाइना पर निर्भर है। यूरोपीय बाजारों तक पहुंच खत्म होने के बाद रशिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। रशिया के कच्चे तेल के कुल निर्यात का 49% हिस्सा चाइना खरीद रहा है। 49%। युद्ध में फंसा रशिया जब सस्ती दरों पर कच्चा तेल दे रहा था, तब चाइना ने तेल खरीद कर मदद भी की, मौके का फायदा भी उठाया। अब ईरान युद्ध के कारण रशिया से कच्चा तेल खरीदना चाइना की मजबूरी बन गया है, इसीलिए उसे अपने दोस्त रशिया की पहले से ही कहीं ज्यादा अब जरूरत महसूस हो रही है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में कच्चे तेल के तौर पर रशिया चाइना को एक ऐसी चीज दे रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। चाइना अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल ईरान से खरीदता था, 90%, और ये तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। ये रूट अब बंद है, तो चाइना की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? रशिया। युद्ध से पहले चाइना रशिया से 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल मंगवा रहा था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान से सप्लाई रुकी तो उसने कच्चे तेल की सप्लाई 24 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। दोनों देश फिर से पार और साइबेरिया 2 पाइपलाइन परियोजना को शुरू करने की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए रशिया चाइना को मंगोलिया के रास्ते गैस की सप्लाई करेगा, यानी चाइना की ऊर्जा जरूरतों को रशिया अपने दम पर संभालने के लिए खड़ा हो गया है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन दोनों ही दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि चाइना और रशिया की दोस्ती उनके विरोध करने की रणनीति का भी हिस्सा है, लेकिन सच इससे अलग है। जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे यही लगता है कि इन दोनों देशों की साझेदारी आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर बनी है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में। अपराधियों पर कानून का डंडा बड़ी जोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, बहनों बेटियों के सम्मान सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम जेल होगा या बर्बादी होगी। पुलिस ने पहले मिर्जापुर में फिटनेस की आड़ में चल रहे जिम जिहाद का खुलासा किया, और अब इसके मुख्य सरगना इमरान खान और मौलवी खलीलुर रहमान समेत 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और इनके 5 जिम को सील कर दिया गया है। मिर्जापुर में सेहत बनाने के नाम पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जिम ट्रेनर इमरान खान, फरीद और मौलवी खलीलुर रहमान ने मिलकर एक सिंडिकेट खड़ा किया जहां जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। इस गिरोह में आलम, फैजल, जहीर, शादाब, अशफाक, साहिल, सिपाही, इरशाद शामिल थे। जिम में पहले फिटनेस ट्रेनिंग के बहाने नजदीकियां बढ़ाई जाती थी, फिर प्यार के जाल में फंसाकर एक फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध, और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू होता। लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। जबरन पैसे ऐंठे जाते थे, फिर उन पर धीरे धीरे जोर किया जाता था कि वो बुर्का पहने, मजार पर ले जाकर कलमा पढ़ने, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। इस पूरे खेल में एक महिला सानू भी शामिल थी जो लड़कियों का भरोसा जीतती थी, और पुलिस का एक हेड कांस्टेबल इरशाद भी इस काले धंधे में इनका पार्टनर था। जनवरी के महीने में जब कुछ पीड़ित हिंदू लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब इस गंदे खेल का खुलासा हुआ। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपको गलत समझने वालों को रास्ता दीजिए, सफाई नहीं। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: The word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी?
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था, नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
4: With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view, we have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
4: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है. ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए. 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी.
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की. डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं. दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं. और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है. ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है. लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं. दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ. दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया. इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं. मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना. भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है. इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं. इसे समझिए, नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना. एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है. इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी. ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है. इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है. मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है. आज तक ब्यूरो.
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं. सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए. सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा.
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं. अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे. इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ. इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं.
5: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टूडे. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर.

0: manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and the innovation cycles are becoming shorter than ever before.
1: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
0: We must fully leverage the trusted strategic partnership between India and the Republic of Korea. The Prime Minister Sri Narendra Modi and the President Lee Jae-myung have both placed strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains, with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
1: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
2: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
1: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
3: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
1: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
4: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
1: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
5: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर,

0: और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बैनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बैनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है।
1: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बैनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बैनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
2: हम पॉलिसी मेकर हैं, टीएमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
1: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बैनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
3: पेले घाटा का राजू नस्कर, आठरा पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बैनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
1: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बैनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बैनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
3: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
4: अभिषेक बैनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
1: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 CRPF जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व CM और TMC प्रमुख बैनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर, बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
3: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
1: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
5: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
6: मुस्लिम भाई दर के जो अनुरोध करूँ, अपनारा गोरु किनबें ना। गोरु अपनारा किने कुर्बानी देवें ना, आमरा देबो ना। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
1: ইত্যাদি নাহি, শুভেন্দু সরকার নে ওবিসি আরক্ষণ ব্যবস্থা মে ভি বদলাব কিয়া হে। রাজ্য মে ওবিসি আরক্ষণ 17% সে ঘটাকার 7% কর দিয়া গিয়া হে। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: Word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
5: Melt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
6: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
5: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
5: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवम्बर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया, और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुउद्देशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। सप्लाई चेन्स आर बींग रिकॉन्फिगर्ड एंड इनोवेशन साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर देन एवर बिफोर।
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेम यूंग हैव बोथ प्लेस्ड स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: In ahem baithkon se pehle raksha mantri Rajnath Singh Seoul mein National Cemetery of Korea pahunche jahan unhone desh ke veer sainikon ko shraddhanjali arpit ki. Is dauran unhone pushp arpit kar un sainikon ko naman kiya jinhone apne rashtra ki seva mein sarvoch balidan diya. रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
8: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
9: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
3: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
10: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
3: आपको बता दें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
11: हम पॉलिसी मेकर हैं, टीएमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
3: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
9: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पोपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
3: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहाँ से अभिषेक बनर्जी सांसद है। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
9: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
0: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
3: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
9: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
3: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
3: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
13: মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা स्वावलंबी।
3: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर पीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
14: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
15: शिवराज मोटेगावकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो यह ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
16: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
14: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
15: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वहीं ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगावकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगावकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उसके लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहां जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहां बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहां मोटेगावकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
14: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगावकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगावकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
15: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और ये साफ साफ दिख रहा है। पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
14: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगावकर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
17: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले, हे फोड़ले, खासदार फोड़ले, तसा पेपर पन फोड़ला। लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
14: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है। भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तब भी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and innovation cycles are becoming shorter than ever before.
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेमयूंग हैव बोथ प्लेस्ड strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। ईरान को दिए गए आखिरी अल्टीमेटम के मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है।
3: ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉक ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी।
8: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
3: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
9: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
3: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
9: I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up France.

0: इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इसराइल पहुँच चुका है। महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है।
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अपनी बड़ी और बार बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मात गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुल्ला खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में TMC के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
0: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। TMC के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में CM शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
3: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।

0: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहली बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
2: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर, और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात ये है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं, और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3: हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं, और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
1: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
4: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
0: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 CRPF जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व CM और TMC प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
1: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
0: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले TMC के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में TMC के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस TMC नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
5: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। OBC सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम OBC पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
6: मुस्लिम भाई दर का जो अनुरोध करूँ, अपनारा गोरु किनबें ना। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেবো না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
0: ইত্যাদি ही नहीं, শুভেন্দু সরকার ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था
6: আমরা দেবো না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
0: इतना ही नहीं, शुभेंदु

0: सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी, मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Matt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।

0: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं, मेलोनी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था, नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोनी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोनी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोनी का जवाब मेलोनी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है, इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
1: With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view, we have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
0: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
1: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
0: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवम्बर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
0: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
4: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and the innovation cycles are becoming shorter than ever before.
0: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
4: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेमयूंग हैव बोथ प्लेस्ड strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
0: In ahem baithakon se pehle raksha mantri Rajnath Singh Seoul mein National Cemetery of Korea pahunche jahan unhone desh ke veer sainikon ko shraddhanjali arpit ki. इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
3: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
0: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
5: बोलो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
0: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
6: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
7: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर, और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं, और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
8: हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं, और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
6: पेले घाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
6: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
3: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
0: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 CRPF जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व CM और TMC प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर, बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
6: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
0: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले TMC के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में TMC के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस TMC नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं, और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
9: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। OBC सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम OBC पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
10: মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা स्वावलंबी हो वाला मने करी।
0: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने OBC आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में OBC आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां OBC आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
3: नीट पेपर लीक मामले में CBI की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। CBI हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित RCC क्लासेस के नालंदा कैंपस पर PMC ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
11: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी दो संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
12: शिवराज मोटेगांवकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहाँ आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो ये ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
13: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
11: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
12: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वही ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगांवकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगांवकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उससे लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहाँ जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहाँ बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहाँ मोटेगांवकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं। आरसीसी की तरफ से मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
11: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगांवकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
12: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3,20,00,000 तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और साफ साफ दिख रहा है पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
11: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगांवकर की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही है। वहीं आदित्य ठाकरे ने 22,00,000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
14: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले, हे फोड़ले, खासदार फोड़ले, तसा पेपर पन फोड़ला, लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो दो तीन प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
11: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी, जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी ट्रॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है। भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्राज्य मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया, और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and the innovation cycles are becoming shorter than ever before.
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेमयूंग हैव बोथ प्लेस्ड strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
8: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़।

0: त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
2: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3: हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
1: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग, एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
4: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा।

0: कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
1: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है, 6 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता, टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़ फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा,
2: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
1: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया, नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन, बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं, और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
3: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
1: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है,
4: মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না, গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না, এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা स्वावलंबी हो वाले मन करी।
1: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर पीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
5: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। टीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
6: शिवराज मोटेगांवकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो यह ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
7: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
5: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
6: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वहीं ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगांवकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगांवकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उसके लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहाँ जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहाँ बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहाँ मोटेगांवकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है
5: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी, तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगांवकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
6: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 3,20,00,000 तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और साफ साफ दिख रहा है पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
5: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगांवकर की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही है। वही आदित्य ठाकरे ने 22,00,000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
8: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले है फोड़ले खासदार फोड़ले तसा पेपर पन फोड़ला, लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
5: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी, जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: Word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है। भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राज्य मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवम्बर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया, और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and the innovation cycles are becoming shorter than ever before.
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: We must fully leverage the trusted strategic partnership between India and the Republic of Korea. The Prime Minister Sri Narendra Modi and the President Lee Jae-myung have both placed strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
8: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
9: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
3: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
10: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
3: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
11: हम पॉलिसी मेकर हैं, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
3: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
9: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पोपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
3: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
9: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
0: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
3: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
9: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
3: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
3: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
13: মুসলিম ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা स्वावलंबी हो वाले मने कोड़ी।
3: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर पीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
14: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटे गांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटे गांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटे गांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
15: शिवराज मोटेगांवकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो यह ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
16: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
14: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
15: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वही ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगांवकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगांवकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उससे लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहाँ जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहाँ बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहाँ मोटेगांवकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंपस अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
14: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगांवकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
15: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगांवकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और साफ साफ दिख रहा है पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
14: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगांवकर की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
17: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले है फोड़ले खासदार फोड़ले तसा पेपर पन फोड़ला, लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
14: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: Word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है। भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Matt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया, और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुउद्देशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। सप्लाई चेन्स आर बींग रीकॉन्फिगर एंड इनोवेशन साइकिल्स आर बिकमिंग शॉर्टर देन एवर बिफोर।
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेम यूंग हैव बोथ प्लेस्ड स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: In ahem baithkon se pehle raksha mantri Rajnath Singh Seoul mein National Cemetery of Korea pahunche jahan unhone desh ke veer sainikon ko shraddhanjali arpit ki. Is dauran unhone pushp arpit kar un sainikon ko naman kiya jinhone apne rashtra ki seva mein sarvoch balidan diya. रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई धार। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
8: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का

0: कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
2: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3: हम पॉलिसी मेकर हैं, टीएमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
1: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
4: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
0: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल।

0: रास्ता में फार सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
1: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
0: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
2: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
3: मुस्लिम भाई दर के जो अनुरोध करूँ, आपनारा गोरु किनबेन ना। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেবো না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
0: ইত্যাদি ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर पीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
5: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
6: शिवराज मोटेगावकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो ये ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
7: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
5: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
6: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वही ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यही रही का जेसीबी लेके आए और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगावकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगावकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उससे लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहाँ जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहाँ बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहाँ मोटेगावकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
5: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगावकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगावकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
6: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और साफ साफ दिख रहा है पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
5: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगावकर की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही है। वही आदित्य ठाकरे ने 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
8: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले है फोड़ले खासदार फोड़ले तसा पेपर पन फोड़ला, लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
5: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले पुणे आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी, मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Matt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
5: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और, इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए। नवम्बर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सियोल में राजनाथ सिंह की बड़ी कूटनीतिक पहल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए गए। सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाषण के दौरान विरोधियों को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
3: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो देशों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया और उसके बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहुदेशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें डिफेंस साइबर सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर समझौता भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज और दक्षिण कोरिया की कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं।
7: डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर रीडिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। Manufacturing is becoming increasingly technology intensive. Supply chains are being reconfigured and innovation cycles are becoming shorter than ever before.
3: दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री आन यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
7: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेम यूंग हैव बोथ प्लेस्ड strong emphasis on advancing this partnership across multiple domains with defense emerging as an increasingly important pillar of our bilateral cooperation.
3: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
8: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
9: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
3: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
10: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
3: आपको बता दें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
11: हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
3: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
9: बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
3: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
9: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग, एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार जारी है।
3: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है। 6 पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा।
9: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
3: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
12: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
3: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है।
13: মুসলিম ভাইদেরকে যে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না। গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা स्वावलंबी हो वाले मन करी।
3: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब पुणे महानगर पालिका भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई हिरासत में लिए गए शिवराज के पुणे स्थित आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर पीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया। करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स, अवैध निर्माण और बिना अनुमति क्लासेस चलाने के आरोप में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है।
14: नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी 2 संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं।
15: शिवराज मोटेगावकर की रिमांड होने के बाद अब उनका पुणे का जो कोचिंग क्लासेस है वो सील कर दिया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ ताला लगा दिया है। इसका कारण यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स पेंडिंग था। आप ये सीधी नोटिस देख सकते हो जहां आदेश दिया गया है कि पुणे के जंगली महाराज रास्ते के नज़दीक जो ये ऑफिस है इस दफ्तर में, और इससे पहले यहाँ क्लासेस भी चलते थे, तो यहाँ पीएमसी ने बोल दिया है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज का टैक्स पेंडिंग है। पालिका के अफसर हमारे साथ है, एग्जैक्टली क्या किस तरीके की कार्रवाई है?
16: एक्चुअली हम बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इधर का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था और उन्होंने जो इधर जो डॉक्यूमेंट्स लगते कंप्लीशन के लिए वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे, इसकी वजह से हमने ये सील कर दिया है। उनको एक पहले लेटर दिया था रिमाइंडर का कि ये आप ऑक्यूपेशन लीजिए और बाद में उसका वापर शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे न करते हुए उन्होंने वापर शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको एक लेटर दिया था, बाद में हमने इसको सील कर दिया।
14: पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ।
15: अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पुणे का आरसीसी का नालंदा कैंपस है, वहीं ताला लगाया गया था, लेकिन पालिका मतलब पुणे पालिका प्रशासन यहीं रही का जेसीबी लेके आए, और यहाँ आप सीधा देख सकते हो पार्किंग लॉट है जिसे क्लोज किया गया था, जो एक्चुअल स्ट्रक्चरल प्लानिंग में नहीं है। तो मोटेगावकर जो यहाँ लीज एग्रीमेंट कर चुका है उसी ने अलग अलग जगहों पर इस तरीके के ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया था, जिसे पालिका ने जेसीबी लाते हुए तोड़ दिया है और सीधे सीधे इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी और भी मोटेगावकर के कोई प्रॉपर्टीज होगी या फिर उसके लीज पे ली हुई प्रॉपर्टीज होगी और उसकी परमिशन नहीं होगी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग होगा तो उसी पे इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। आप सीधा देख सकते हो पीएमसी के अफसर यहां जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि ये इलीगल था, यहां बांधा गया था, इसकी परमिशन नहीं थी और ये सब कार्रवाई की गई है। यहां मोटेगावकर का ये बड़ा सा बोर्ड आप दिखाई दे रहा होगा, ये नालंदा कैंप अभी हम खड़े हैं, आरसीसी की तरफ से मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे और यही जो सेकंड फ्लोर है वहाँ ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी सीज हुई है।
14: इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एनटीए के साथ मिलकर पेपर लीक की आपराधिक साजिश के आरोपी शिवराज मोटेगावकर के बेटे से पुणे में सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने उन छात्रों और उनके माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जिन पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए आरोपियों के साथ आर्थिक लेन देन करने का शक है। एक तरफ ये कार्रवाई हो रही थी तब दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका प्रशासन ने मोटेगावकर के क्लास को सील कर बुलडोजर चलवा दिया।
15: पालिका के अफसर यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ताला लगा दिया और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है जहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं पे किया गया है और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख तक ये अमाउंट जा रही है और इसी वजह से पालिका ने इस पर कार्रवाई की है। हालांकि मोटेगावकर यहाँ क्लासेस चलाते थे, लीज पे था, लेकिन जो ओनर था उस पर भी अब कार्रवाई की गई है और ये साफ साफ दिख रहा है। पालिका के अफसर यहाँ आए और उन्होंने सामने आते हुए इस प्रॉपर्टी पर अब कार्रवाई कर दी है और क्लासेस को सीधा ताला ठोक दिया है।
14: फिलहाल पीएमसी की कार्रवाई और सीबीआई जांच ने मोटेगावकर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब जांच एजेंसियां पुणे में उनकी दूसरी संपत्तियों और आर्थिक लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है।
17: आप देख रहे हो पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल कल्चर हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन आज यही होने जा रहा है। कभी जो हम कहते हैं ना कि आमदार फोड़ले है फोड़ले खासदार फोड़ले तसा पेपर पन फोड़ला, लेकिन यही बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो 2-3 प्राइम अक्यूज है वो महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारा तो यही कहना है कि अगर ये सच में अक्यूज है और गिल्टी है तो जिन बच्चों के जिन विद्यार्थियों के नसीबों को इन्होंने खराब कर दिया है उसी की सजा करके इनको पूरे चौक में फांसी दी जानी चाहिए।
14: इधर पेपर लीक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इनकी सीबीआई कस्टडी की मियाद खत्म हो गई थी, जबकि एक और आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है। भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
5: Melt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी।
6: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
5: with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism, and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
5: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और, इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए, नवम्बर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। ईरान को दिए गए आखिरी अल्टीमेटम के मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है।
3: ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉक ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी।
7: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
3: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
8: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
3: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
8: I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
3: ईरान पर नए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजरायल पहुंच चुका है। महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है।
9: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
3: अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी

0: व्यक्तियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुला खुला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।
1: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
0: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
2: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
0: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया। लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की

0: मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
1: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
2: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
3: हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही है और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
1: पहले घाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
1: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग, एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wait.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
8: ज्योतिष में गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल योग का जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, क्या करें उपाय कि गुरु चांडाल योग के प्रभाव से बच जाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
6: Thank God I get to wait.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

0: पांच देशों की सफल यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली से रवाना प्रधानमंत्री मोदी। रोम में व्यापार रणनीतिक साझेदारी पर बनी बात। आज शाम दिल्ली में मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गदर। कहा यह पाकिस्तान की भाषा। नेता विपक्ष ने मेलोनी को प्रधानमंत्री के मेलोडी देने पर भी कसा तंज। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। प्रचंड गर्मी की चपेट में आधा भारत। दिल्ली के रिज इलाके में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। 48 डिग्री के साथ यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म इलाका। और ईरान को ट्रंप की नई धमकी। कहा अब सिर्फ एक ही सवाल, या तो वो दस्तावेज पर साइन करें वरना हम करेंगे पूरे मामले को खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं और इटली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों ही मुल्कों के रिश्तों के लिए बड़ा मूल्यवान हो गया है। देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल अभी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी।
1: A word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant